100.7 MHz पर ये आकाशवाणी की FM प्रसारण सेवा का लखनऊ केंद्र है। आज दिन रविवार, ज्येष्ठ मास की 24वीं तिथि, शक संवत 1948, तदानुसार 14 जून सन 2026 है। प्रातः के 5:55 हो रहे हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

में राम क्षण क्षण में श्याम। हो मस्जिद में अजान या वाहे गुरु का नाम, तुम सुन लेना भगवान, करना सबके कष्टों का निदान। तुम्हारे चरणों में नमन, तुमको बारंबार वंदन। हमारी प्रार्थना स्वीकारो प्रभु, पुष्पांजलि के हर पुष्प में तुम पधारो प्रभु।

रहे हैं एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपकी मित्र तरुश्री, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं लेकर आपकी पसंदीदा भक्ति और आध्यात्मिकता से महकता आपका पसंदीदा कार्यक्रम पुष्पांजलि। इस पावन मेला में आपकी आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ हम मंगल मूर्ति विघ्न विनाशक भगवान गणेश के चरणों में सादर वंदना के साथ करते हैं। आइए उनके पावन स्मरण से अपने अंतःकरण को अलौकित करें ताकि जीवन का प्रत्येक मार्ग निर्विघ्न और कल्याणकारी हो।

श्रोताओं, वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। वे न केवल अंधकार मिटाते हैं बल्कि हमारे जीवन को आरोग्य और शक्ति से भरते हैं। उनकी पहली किरण में जो जीवन शक्ति है उसे आज अपने भीतर महसूस कीजिए। आइए भगवान सूर्य को नमन करें और अपने तन और मन की शुद्धि का संकल्प लें। ओम सूर्य देवाय नमः।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भक्ति और आध्यात्मिकता से महकता आपका पसंदीदा कार्यक्रम पुष्पांजलि मेरे यानी तरुश्री के साथ। ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए भी झुककर ही कदम उठाना पड़ता है। ठीक वैसे ही अगर उस अनंत आकाश जैसी कृपा को पाना है तो पहले अपने अहंकार की सीढ़ियों से नीचे उतरना होगा। आइए प्रभु भक्ति में एक बार फिर से लीन हो जाते हैं और करते हैं उसका स्मरण।

कहते हैं भगवान छप्पन भोग के नहीं, सिर्फ सच्चे प्रेम के भूखे होते हैं। तभी तो चक चक कर खिलाए गए वो बेर भी दुनिया के सबसे मीठे बेर बन गए। आइए भक्ति के इसी निश्चल रंग में डूबते हैं इस बड़े ही प्यारे और मनमोहक भजन के साथ।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पुष्पांजलि। मैं हूं आपके साथ आपकी मित्र तरुश्री, सिर्फ और सिर्फ एफएम रेनबो पर। जिन्हें पा लेने के बाद दुनिया में कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता, उन देवों के देव महादेव के चरणों में चलिए, खुद को समर्पित करते हैं। आंखें बंद कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, देखिए कैसे सारे संकट दूर हो जाते हैं।

श्रोताओं, 6:55 हो रहे हैं और इसी खूबसूरत से मधुर भजन के साथ पुष्पांजलि की यात्रा यहीं तक। 7 से आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार गीत मेरे यानी तरुश्री के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

हेलो एंड सलाम नमस्ते कानपुर। सुबह के बज चुके हैं 7 तारीख है 14 जून 2026 एंड विशिंग यू ऑल अ फैंटास्टिक संडे मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके संडे को सुपर एनर्जेटिक फ्रेश और म्यूजिकल बनाने के लिए 102.2 एफएम रेनबो कानपुर पर आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर में।

दोस्तों, अभय जोधपुरकर की रूहानी आवाज में एक खूबसूरत ट्रैक आप एंजॉय कर रहे थे फिल्म जीरो से, जिसका म्यूजिक कंपोज किया था सुपर टैलेंटेड अजय अतुल ने और लिरिक्स थे इरशाद कामिल के। तो दोस्तों, आपके फेवरेट म्यूजिक चैनल 102.2 एफएम रेनबो कानपुर पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर। और प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि आज यहाँ एंटरटेनमेंट बॉक्स में कौन कौन से प्रोग्राम है। तो दोस्तों, अब से कुछ

देर में यानी 8:30 पर सुनिएगा प्रोग्राम सुरों की पुरानी महफिल। ये इंटरटेनमेंट जर्नी जारी रहेगी प्रोग्राम रस बहार के साथ, जिसका टाइम होगा सुबह 9 बजे, और विविधा में सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा प्रोग्राम पॉप टाइम 9:45 पर। बातों मुलाकातों की महफिल सजेगी सुबह 11 बजे प्रोग्राम हमनवा में, दोपहर 3 बजे, और हम लेकर हाजिर होंगे प्रोग्राम म्यूजिक आर। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर सुनिए स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा 3:45 पर, जिसमें आप सुनेंगे डॉक्टर प्रवीण कटियार से दीपशिखा गुप्ता की बातचीत। और शाम 4 बजे आनंद लीजिएगा अपने फोन इन प्रोग्राम हेलो कानपुर का। सो फ्रेंड्स, जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस एट योर फेवरेट म्यूजिक चैनल 102.2 FM रेनबो कानपुर, क्योंकि यहां आपके एंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम है।

दोस्तों ये धमाकेदार ट्रैक आप एंजॉय कर रहे थे फिल्म बेफिक्रे से। सेंसेशनल आवाज थी बेनी दयाल की, म्यूजिक कंपोज किया था विशाल एंड शेखर ने और लिरिक्स थे जयदीप सैनी के। और एक ब्रांड न्यू डे ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज के साथ गिफ्ट के साथ हमारा दोस्त बनकर हमारा स्वागत कर रहा है। द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया यानी APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि जरा आसमान की ओर देखो, हम अकेले नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड हमारे प्रति मित्रवत है और सपने देखने और काम करने वालों को सर्वोत्तम देने के लिए ही प्रयासरत है। जी हाँ दोस्तों, शायद इसीलिए शिद्दत से की हुई मेहनत को ये कायनात अपने मकाम तक पहुंचाने में मदद करती है। और दोस्तों यही था हमारा आज का थॉट ऑफ द डे।

दोस्तों, अरिजीत सिंह और आशीष कौर की आवाजों में ये गाना आप सुन रहे थे फिल्म सिम्बा से, जिसका म्यूजिक कंपोज किया था तनिष्क बागची ने और लिरिक्स थे रश्मि विराग के। तो मित्रों, वक्त है डिजिटल वर्ल्ड की खिड़की खोलने का और जानने का कि हमारे फेवरेट स्टार्स सोशल मीडिया पर क्या हलचल मचा रहे हैं। सो लेट्स चेक आउट द टॉप सोशल मीडिया ब्लिंक्स। तो दोस्तों, सबसे पहले बहुत खूबसूरत बात गुलजार साहब ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि गलतियां इंसान को संभलना सिखाती हैं, मगर इल्जाम अक्सर रिश्ते तोड़ देते हैं। उधर बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने अपने आने वाली फिल्म वेलकम टू द जंगल के ट्रेलर लॉन्च पर अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा है कि ट्रेलर लॉन्च में आपका स्वागत है, अगला पड़ाव जंगल। दोस्तों, इस फिल्म का ट्रेलर अब YouTube पर अवेलेबल है, जो 26 जुलाई को रिलीज होने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि भारत की नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। हमारी माताएं, बहनें और बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी अद्भुत प्रतिभा और कौशल से मां भारती का गौरव बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, सोशल मीडिया ब्लिंक्स के बाद बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले प्रोग्राम की तरफ। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर। लीजिए सुनिए प्रोग्राम का अगला गाना।

दोस्तों, ये गाना आप सुन रहे थे फिल्म हमसे है मुकाबला से। शंकर महादेवन और यार रहमान और नेल जेम्स की आवाजें थी। म्यूजिक दिया था यार रहमान ने, लिरिक्स थे पी के मिश्रा के। और दोस्तों, इस ट्रैक के बाद टाइम आ गया है टाइम मशीन में बैठने का, यानी कि इतिहास के उन पन्नों को पलटने का जो सीधा जुड़े हैं हमारे अपने देश भारत के इतिहास से। तो चलिए जानते हैं कि 14 जून की तारीख इंडियन हिस्ट्री के लिए क्यों है खास। तो दोस्तों, 14 जून सन 1958 में ही भारत के महान नोबेल पुरस्कार विजेता साइंटिस्ट डॉक्टर सीवी रमन को मास्को में लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसकी वजह से आज का यह दिन हमारे विज्ञान जगत के लिए बहुत बड़ा है और पूरी दुनिया में भारत का सर फख्र से ऊंचा हुआ था। सन 1960 में आज ही के दिन भारत के फ्लाइंग सिख कहे जाने वाले मिलखा सिंह ने फ्रांस में हुई एथलेटिक्स मीट की 450 मीटर की दौड़ में एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। उनकी इसी रफ्तार ने आगे चलकर पूरी दुनिया में भारत का लोहा मनवाया। तो चलिए इतिहास के उन सुनहरे पन्नों से बाहर आते हैं और आज के दौर में, और सुनते हैं ये गाना।

0: पपॉन और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना आप सुन रहे थे फिल्म बॉबी जासूस से। शांतनु मोइत्रा का म्यूजिक था, स्वानम किरकिरे के लिरिक्स। तो दोस्तों प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। हम यूं गए और यूं वापस आए, जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
4: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
5: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
4: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
5: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड कानपुर, पिन कोड है 208002।
4: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
1: हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: सो वेलकम बैक दोस्तों, आपने ट्यून इन किया है 102.2 FM रेनबो कानपुर और प्रोग्राम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग कानपुर, आपके दोस्त एंड शो होस्ट आज एक गौरव के साथ। चलिए दोस्तों प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं क्या है खास सिटी अपडेट्स में। तो दोस्तों ये अपडेट्स खास हैं हमारे स्टूडेंट मित्रों के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर ने July 2026 से साइबर सिक्योरिटी के एरिया में एक नया और स्पेशल ग्रेजुएशन प्रोग्राम बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी यानी BSCyber शुरू करने की घोषणा की है। दोस्तों पूरे देश में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए इस पाठ्यक्रम को तैयार किया गया है। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में एंट्रेंस प्रोसेस पारंपरिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों से अलग होगी। IIT कानपुर इस प्रोग्राम के लिए एक खास वेब पेज की डेवलप कर रहा है जिसके अगले हफ्ते तक शुरू होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, जहां इस प्रोग्राम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाएगी। फिलहाल हम आपको लेकर चलते हैं प्रोग्राम के अगले गाने की तरफ।

दोस्तों, इस खूबसूरत गाने का म्यूजिक कंपोज किया था शंकर एहसान लॉय ने, और ये बेमिसाल आवाज थी अदनान सामी की। फिल्म का नाम था सलामे इश्क, गीत के बोल लिखे थे समीर ने। और दोस्तों, समय हो चुका है देश दुनिया के अपडेट्स जान लेने का। तो आपको बता दें दोस्तों कि इंटरनेट के बढ़ते यूजेस और नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए पहले ऑस्ट्रेलिया और अब कनाडा सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों की इंटरनेट मीडिया तक पहुंच लिमिटेड करने के उद्देश्य से संसद में बिल C-34 पेश किया है। सरकार का कहना है कि मौजूदा कानून नुकसान होने के बाद कार्रवाई करते हैं, बट नया कानून बच्चों को संभावित ऑनलाइन खतरों से पहले ही बचाने पर केंद्रित होगा। दोस्तों, बच्चे देश का भविष्य होते हैं, यानी वो आने वाले कल होते हैं, और ये सोच कहीं ना कहीं बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट को सुरक्षित करने में बहुत बड़ी सोच होगी। 102.2 FM रेनबो कानपुर पर वक्त है एक और गाने का।

सो फ्रेंड्स, प्रोग्राम में वक्त है मौसम का हाल जान लेने का, जो कल यानी सैटरडे मॉर्निंग में हुई तेज बारिश की वजह से एकदम खुशगवार हो गया है। इसके साथ ही प्री मानसून की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है और अच्छी बात यह है कि मौसम विभाग के अकॉर्डिंग अगले 48 घंटों तक आंधी और बारिश के आसार बने हुए हैं। और चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आगामी 5 दिनों में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने की वजह से गरज चमक और तेज हवाओं के साथ 14 जून 2026 यानी आज हल्की बारिश होने की पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन लू का प्रकोप भी जारी रहने के आसार हैं। आज का मैक्सिमम टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस जाने की संभावना है। और दोस्तों, इसके साथ ही याद रखिएगा, मौसम चाहे कैसा हो, 102.2 FM रेनबो कानपुर पर एंटरटेनमेंट म्यूजिक के साथ हम आपका मौसम सुहाना बनाए रखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनिए ये गाना।

ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाजों में, अंकित तिवारी का संगीत था और लिरिक्स थे मनोज मंतशिर के, फिल्म का नाम था तुम बिन पार्ट टू। तो दोस्तों प्रोग्राम के एंड में हम आ पहुंचे हैं स्पोर्ट्स अपडेट्स तक। तो दुनिया हो रखी है गोल। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की, जहां कल अमेरिका ने पराग्वे को 4-1 से हरा दिया और इस फुटबॉल मैच में फॉलोरिन बलगुन ने अमेरिका की तरफ से 2 गोल दागे। वहीं दूसरी ओर क्रिकेट अपडेट्स में इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के बीच चल रहे वनडे मैचेस की सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। बारिश के चलते ये मैच 25 ओवर का कर दिया गया था, जिसमें शुभमन गिल ने 84 रनों की अविजित पारी खेली और इंडिया इस सीरीज में 1-0 से आगे है। और आज यानी 14 जून को आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप में होने जा रहा है एक हाई वोल्टेज मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिसका टाइम होगा आज शाम 7:30। मैदान होगा एस्बेस्टन स्टेडियम इंग्लैंड। टीम इंडिया की कमान सुपर कूल हरमनप्रीत कौर के हाथों में है, तो वहीं पाकिस्तान की अगुवाई युवा सनसनी फातिमा सना कर रही हैं। और दोस्तों हौसला अफजाई के लिए बने रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर पर, क्योंकि इस मैच की कमेंट्री आप सुन सकते हैं शाम 6:30 पर 102.2 FM रेनबो पर। फिलहाल आप इंजॉय कीजिए प्रोग्राम का ये गाना।

दोस्तों 102.2 एफएम रेनबो कानपुर पर आप सुन रहे थे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर, जहां वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। तो आप यूं ही बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एंटरटेनमेंट जर्नी आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल इस प्रोग्राम से अपने दोस्त एंड शो होस्ट आजय गौरव को दीजिए इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैव अ फैंटास्टिक संडे।

0: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
0: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
0: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
4: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त

0: सामान्यतः टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और सीएसआईआर ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल x@AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: क्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक

0: मिर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
1: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुँच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी हैं। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
2: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
3: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
0: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
5: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
4: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान की इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
4: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी

0: है। फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ते ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long-life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. US President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch-rivals Pakistan in Birmingham this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At a community reception held at the iconic Hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister. Prime Minister Modi interacted warmly with members of the community and witnessed colourful cultural performances featuring classical Indian dance forms including Kathak, Odissi, Bharatnatyam presented by French and Italian artists.

लीजिए, पेशे खिदमत है प्रोग्राम का ये पहला गीत। फिल्म बाजीगर से विनोद राठौर और आशा भोंसले की आवाजें हैं, अनु मलिक का संगीत है और लिरिक्स हैं जफर गोरखपुरी के।

फिल्म मेजर साहब से आप सुन रहे थे ये गाना. उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें थीं, आनंद मिलन का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे.

और लीजिए आप सुनिए फिल्म अकेले हम अकेले तुम से। ये गाना उदित नारायण, शंकर महादेवन और आमिर खान की आवाज़ें हैं, अनु मलिक का संगीत है और शैलेंद्र का बोल है।

लड़की उमर की उठा कड़क की कमा कातिल अदा जालिम हया।

सुखविंदर सिंह मनहर, कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में ये गाना आप सुन रहे थे फिल्म सौदागर से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, लिरिक्स थे आनंद बख्शी के, और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुरों की पुरानी महफिल अब खत्म होता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल हैव अ वंडरफुल मॉर्निंग कानपुर 102.2 एफएम रेनबो कानपुर पर फंडे यानी कि संडे की इस हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग के साथ मैं आपका दोस्त एंड शो होस्ट राजे गौरव आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं प्रोग्राम रस बहार में। तो दोस्तों आज है हमारा प्यारा संडे यानी अपने और अपनों के लिए थोड़ा क्वालिटी टाइम निकालने का दिन बट साथ साथ एक्स्ट्रा खर्चों का भी दिन है। और दोस्तों आज प्रोग्राम रसबहार में हम एक ऐसी कला की बात करने जा रहे हैं जो हम सब के पास होती है बट मानता कोई नहीं, और मैं बात कर रहा हूँ कंजूसी की यानी पैसों को अपने सीने से लगा के रखने की।

जी हाँ दोस्तों, ये पैसा हो तो मुसीबत और ना हो तो मुसीबत, आए पैसा और फिर ना जाए पैसा, शायद हम में से ज़्यादातर लोगों का सोचना कुछ इसी तरह का होगा। एक्चुअली दोस्तों, दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पैसों को हाथ का मैल समझकर उड़ाते हैं और दूसरे वो जो पैसों को इतना संभाल कर रखते हैं और इतना आदर सम्मान करते हैं कि जैसे उनका अगला जन्म भी पैसों से ही चलने वाला है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों को ही अपनी आदत पर नाज होता है। वैसे दोस्तों, लोग जिसे कंजूसी कहते हैं ना, मैं उसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहता हूँ। भाई अब टूथपेस्ट खत्म होने के बाद भी जब तक उसे बेलन से ना दबाया जाए और उसका बाकी बचा कुचा मटेरियल भी ना निकाला जाए, शैम्पू की बोतल में पानी डालकर आखिरी बार झाग ना बनाया जाए, तब तक दिल को तसल्ली कहाँ मिलने वाली। मगर दोस्तों, आप टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि आपके एंटरटेनमेंट में कोई कंजूसी नहीं होने वाली। आप सुन रहे हैं ये गाना फिल्म जोजो से, जो कह रहा है भाई सबसे बड़ा रुपया।

102.2 FM रेनबो कानपुर पर आप इंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम रस बहार, आपके दोस्त एंड शो होस्ट आजय गौरव के साथ। और आज हमारी आपकी गुफ्तगू चल रही है कंजूसी यानी पैसा बचाने के टैलेंट पर। वैसे कंजूसी में जो सुकून है ना दोस्तों, वो पैसा खर्च करने में कहाँ। मॉल में जाकर 5,000 की शॉपिंग करने के बाद भी अगर सब्जी वाले से 5 रुपये का धनिया और मिर्चा फ्री में ना मांगा तो आत्मा को तृप्ति कहाँ मिलती है। वैसे फिजूल खर्ची करने वाले लोगों को अक्सर बहुत प्यारा पति, प्रेमी, दिल फरियाद पिता, सर्वप्रिय रिश्तेदार और दरिया दिल दोस्त का दर्जा पाते तो देखा ही है आपने। और वहीं दूसरी ओर ये जो हमारे यहाँ शादी ब्याह में मिले हुए गिफ्ट के रैपर्स को बड़े आराम से निकाला जाता है ताकि वही रैपर किसी और के गिफ्ट रैप करने के काम आ सके। तो भैया ये कंज्यू

यूसी नहीं है, ये है हमारा इको फ्रेंडली नेचर। तो चलिए पैसों और दिलों के इस कनेक्शन को जोड़ते हुए सुनते हैं मज़ेदार ट्रैक, क्योंकि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पैसों बिना सब सूना। लेकिन दोस्तों, ये पैसा बचाने के चक्कर में अपनों से दूरियां मत करिएगा।

0: एंड आई नो दोस्तों, प्रोग्राम रसबहार आप खूब इंजॉय कर रहे हैं, मगर प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का. सो डोंट गो अवे, वी आर जस्ट विल बी राइट बैक. जस्ट स्टे ट्यून विद अस.
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं. अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें. और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं. खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं. अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं.
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी। यू आर लिसनिंग कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 FM रेनबो कानपुर।

0: वेलकम बैक दोस्तों 102.2 एफएम रेनबो कानपुर पर आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम रस बहार। तो दोस्तों प्रोग्राम रस बहार में आज आप आनंद ले रहे हैं कंजूसी भरी बातों का। तो मित्रों जरा सोचिए कि दो कंजूस दोस्तों की इंतहा क्या होती होगी। एक दूसरे की बातों में हाँ मिलाते हुए दोनों इसी उम्मीद में दोस्ती जारी रखते हैं कि कभी तो अगला चाय पिलाएगा क्यों नहीं। खर्च करने में एक दूसरे से होड़ करते हुए वो एडवर्टीजमेंट याद आ जाता है कि भाई मेरी कमीज उसकी कमीज से सस्ती कैसे। फिलहाल दोस्तों इस प्रोग्राम में बात कंजूसी की हो रही है, मगर सोचिए कि आज की लाइफस्टाइल और फ्यूचर प्लानिंग की बहुत बड़ी ज़रूरत बन गई है, क्योंकि पैसा भले ही सब कुछ नहीं होता बट ज़िंदगी की गाड़ी को आराम से बढ़ाने के लिए ये बहुत कुछ होता है।
1: पैसा क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा।

जी हाँ दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कंजूसी की। और दोस्तों, कंजूसी ना हमारी लाइफ को मज़ेदार भी बनाती है। तो भाई, मजाक से हटकर अगर सोचें तो कंजूस लोग ही होते हैं ना जो बुरे वक्त में सबसे पहले काम आते हैं। जब दुनिया क्रेडिट कार्ड के बिल से परेशान होती है, तब ये हमारे घर के कंजूस लोग ही होते हैं जो अपनी गुल्लक से पैसे निकाल कर सबकी हेल्प करते हैं। मगर कोई आपको कंजूस कहे ना अगली बार तो बुरा मत मानिएगा, बस मुस्कुरा कर कहना कि हम कंजूस नहीं है भाई, हम तो आने वाले कल की नींव मजबूत कर रहे हैं।

आपने ट्यून इन किया है 102.2 FM रेनबो कानपुर और सुन रहे हैं प्रोग्राम रस बहार, जहां महंगाई के जमाने में बात हो रही है पैसा बचाने की, जिसे अक्सर लोग कंजूसी समझ बैठते हैं। बट अब दोस्तों करें भी तो क्या, पैसा ज़रूरत के साथ साथ अब सर्वोपरि बनता जा रहा है, कमाने के जरिए कितने भी हो। बट महंगाई के इस दौर में पैसों को पंख लगे हुए हैं, जेब से ये कब उड़ जाते हैं पता ही नहीं चलता।

दुबले पतले हो गए सैया। अरे कमा कमा के मर गए सैया, मोटे सैया पतले सैया।

0: खाए जात है।
1: दोस्तों फिल्म पिपली लाइफ का ये गाना, मज़ेदार गाना जो है, हम सबको इसके लिरिक्स में आज की हकीकत समझ में आती है कि नहीं।

102.2 FM रेनबो कानपुर पर आप सुन रहे थे प्रोग्राम रस बहार, जहां वक्त है आपसे विदा लेने का, क्योंकि घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब आगे बढ़ा जाए। तो दोस्तों, फिलहाल चलते चलते हम आपको सुनवा रहे हैं प्रोग्राम का एक और अगला गाना, लेकिन तब तक के लिए दिल खोल कर जिए, खुशियां बांटें, और खुशियां बांटने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए, है ना, लेकिन जेब जरूर थोड़ी सी संभाल कर रखिए, क्योंकि महीना अभी आधा हुआ है। 102.2 FM रेनबो पर आप सुनते रहिए एंटरटेनिंग म्यूजिक, क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त है। दीजिए अपने रेडियो दोस्त गौरव को इजाजत। नमस्कार।

0: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
1: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
0: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप, तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
1: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
0: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
2: एक आवश्यक सूचना सुनिए, कला साहित्य शिक्षा खेल चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।

0: कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

102.2 FM रेनबो कानपुर पर आप सभी सुनने वालों का स्वागत है प्रोग्राम पॉप टाइम में। इस प्रोग्राम की पहली पेशकश हम आपको सुनवा रहे हैं अदनान सामी की आवाज में।

0: दोस्तों, प्रोग्राम का ये आखिरी गीत आप सुन रहे थे लकी अली की आवाज़ में, और इस गाने के साथ प्रोग्राम पॉप टाइम अब ख़त्म होता है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
1: महाराणा प्रताप की 15 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रतिमा के अनावरण के बाद रक्षा मंत्री एक रैली को संबोधित करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री भूपेंद्र चौधरी, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल सहित जिले के कई जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। ये दल तीर्थ क्षेत्र में दान पात्रों को लेकर लगाए जा रहे आरोपों की जांच कर शासन को अपनी रिपोर्ट देगा। लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, IG रेंज किरण S तथा विशेष सचिव वित्त नील रतन कुमार को SIT का सदस्य बनाया गया है। ट्रस्ट के अनुसार अफवाहों पर रोक लगाने और मामले की सच्चाई सामने लाने की के लिए इसकी गहन जांच आवश्यक है। ट्रस्ट ने कहा कि यह तीर्थ क्षेत्र की छवि और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को चोट पहुंचाने की गहरी साजिश है, जिसका पर्दाफाश होना बेहद जरूरी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी अमृत सरोवर स्थलों पर व्यापक जनभागीदारी के साथ सामूहिक योग के विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाए। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों पर आयोजित होने वाले योग दिवस कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा सभी जनपदों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू करने जा रही है। योजना के तहत पात्र शिक्षकों, कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। इसके लिए बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल का बीटा वर्जन फिलहाल परीक्षण के दौरान से गुजर रहा है। स्टेट हेल्थ एजेंसी सांचीज की CEO अर्चना वर्मा ने बताया कि योजना के औपचारिक शुभारंभ से पहले विभाग पात्र कर्मचारियों का डेटा एकत्र करने और उसे त्रुटि रहित बनाने में जुटी है। अब तक 3.5 लाख से अधिक पात्र कर्मचारियों का डेटा संकलित किया जा चुका है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: अब आप सुनेंगे कार्यक्रम मोरपंख। मोहन राकेश की कहानी संग्रह से ली गई कहानी उर्मिल जीवन, जिसके प्रस्तुतकर्ता हैं सुरेंद्र राजेश्वरी जी।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivi.ac.in के

मोर पंख की आज की इस कड़ी में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। आज जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं उसका शीर्षक है उर्मिल जीवन।

कल नीरा 7 बरस की थी, आज वो 17 बरस की है। 10 बरस का समय एक लहर की तरह उसे साथ बहा ले गया। हवा ने पानी के रुख बदल दिए, समय ने जीवन के। 10 बरस में कितना परिवर्तन हो गया। 10 बरस पहले नन्ही टांगे जिन परिधियों को लांग लेती थी, आज उनके बाहर झांकना भी उसके लिए संभव नहीं। पहले वो नासमझ बालिका थी, आज समझदार नवयुवती है। जीवन यही है, व्यंग भी यही है।

उसकी चंचलता गंभीरता में बदल गई है। उसकी मुखरता ने खामोश रहना सीख लिया है। सोचने लगती है तो वर्तमान से बहुत पीछे रह जाती है, वहां से लौटे तो बहुत आगे निकल जाती है। वर्तमान के केंद्र पर विचारधारा भ्रांत होकर घूमती है। नीरा ने अपने को देखा। शारीरिक विकास उसके और नन्ही नीरा के अस्तित्व में एक युग का अंतर बतलाता है। तब चाहती थी जल्दी जल्दी बड़ा होना, आज चाहती है पहले की तरह बालिका बन जाना।

शैशव की चाह पूरी हो चुकी है, आज की चाह कभी पूरी नहीं होने की, ये वो सब समझती है। फिर भी विचार वश से बाहर होकर चलते हैं। नीरा कमरे में टहलने लगी। उसे अनुभव हो रहा था सारा वातावरण ही विषैला हो गया है, एक एक चीज में तर्जना है। सजावट का सामान सोनेपन की विडंबना को महत्व देता है। वो कमरे में अकेली थी और अकेलापन धीरे धीरे विश्वमय होता जा रहा था।

कल रात को उसका विवाह हुआ था, वो रात जो जीवन की मधुरतम कल्पना थी एक विभीषिका बनकर छाई रही। सुहाग रात आज होगी, इस समय संध्या है और संध्या के बाद तारे निकलेंगे, फिर रात आ जाएगी। उसे लगा जैसे जीवन तत्व ही निशेष हो रहा है। आज की रात जीवन में घातक कटुता घोल देगी। संभव हो तो वो रात दिन के मनकों से बनी जीवन माला का ये काला मन का तोड़कर फेंक दे, मगर जानती है एक मन का तोड़ने से माला ही टूट जाएगी, उसमें इतना साहस नहीं है। पलंग पर बैठकर नीरा ने चारों ओर देखा। 10 बरस में आंखें इस घर की दीवारों से परिचित हो गई हैं। रंग कई बार बदल गए, पलंग से चादरें भी उतरती रही। उसकी आशा जीजी घर की रानी थी। 1 महीना पहले जीजी ने भी आंखें मूंद ली और उनके स्थान पर आज स्वयं यहां आ गई है। देह कांप उठी। 10 बरस पहले एक अपरिचित व्यक्ति को जीजा के रूप में देखा था और आज से उसी को पति के रूप में पहचानना है। और जीजा का वो प्यार भरा संबोधन, नीरू रानी, नीरू रानी का आज से तात्पर्य बदल जाएगा, नया अर्थ होगा और नई ही व्याख्या होगी। हृदय भारी होता गया। विवाह हो चुका, आग की साक्षी में वागदान करके मां ने आंसू पोंछ लिए। घर का गाछ जला तो उसकी राख में नया अंकुर रोप दिया गया। पानी की कुछ छींटों में राख सदा के लिए दब गई। बाहर आकाश फैला है, शून्य शून्य पर अंतर्वेदना की छाप नहीं पड़ती। शैशव के चित्र कहीं इस आकाश में अंकित होते तो उन पर काली तूलिका से दाग कर देती। चर्र मर्र बैलगाड़ी सड़क पर चल रही थी। नीरा को बहुत पुरानी बात याद आ गई। पिता ने कभी कहा था, जीवन एक बैलगाड़ी है, एक हिचकोले से इसके तख्ते हिल जाते हैं, एक कील टूट जाए तो पहिए निकल जाते हैं। तब केवल सुना था, आज ठीक समझ रही है। पिता की मृत्यु हुई, कील टूट गई, पहिए निकल गए और गाड़ी बैठ गई।

0: आज वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शै गुलाम, वक्त का हर शै फेराज।
1: नन्ही कृष्णा ने उसका दुपट्टा खींचा। नीरा एकदम सचेत हुई, पल भर कृष्णा की भोली आंखों को देखती रही, फिर गोदी में लेकर उसका मुंह निहारा, उसके बालों को सहलाया, फिर गोदी से उतार दिया। कल तक वो कृष्णा की मौसी थी, आज से उसकी सौतेली माँ है। मौची, कृष्णा ने कहा, तुम माँ को ले कल क्यों नहीं आई? नीरा मन ही मन रोती, कृष्णा आज भी अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है, क्या वो कभी उसे माँ के रूप में स्वीकार करेगी? नीरू रानी का अर्थ बदल सकता है, पर कृष्णा का कोश बहुत छोटा है, वो अपने शब्दों का एक ही अर्थ जानती है। वो उसे कहती है मौची, कृष्णा के लिए वो मौसी ही रहेगी। उसका शैशव जानता है लहू और पानी का विवेक। बच्ची के प्रश्न का उत्तर न देकर नीरा ने कहा, जा उधर जाकर खेल मुन्नी, मेरा वहां अकेले होगी।
2: नहीं मौची, पहले बता माँ कल भी आएगी कि नहीं?
1: नीरा ने उसे अपने साथ सटा लिया, स्वर को सहेज कर कहा, तू मीरा को जिस दिन नहीं मारेगी उसी दिन आएगी। अच्छा जा, मीरा के साथ खेल बाहर। कृष्णा संतुष्ट हो गई, नीरा के गले में बाहें डालकर नाचने लगे, फिर उसे छोड़कर भाग गई। नीरा ने सामने देखा, आंखें दीवार पर लगे हुए चित्र पर अटक गई। नीरा की आंखों के आगे शमशान का वो दृश्य आया, जब आशा जीजी की चिता से चिंगारियां निकली थी। चिंगारियों की ओट में कितना रोई थी वो, कितना सिसके थे उसके जीजा।

और महीना बर्बाद, वैसे ही आग के चारों ओर जीजा ने उसके साथ फेरे लिए। उसे लगा जैसे बहन चिता के चारों ओर घूम रही है। चटकती हुई चिंगारियां और बोले जा रहे वेद मंत्र दोनों एक से ही थे। विवाह हो गया बिना सज धज और चहल पहल के। समय के संकेत ने उसे सौभाग्यवती बना दिया। लाल चूड़ियां और लाल सिंदूर।

नीरा ने फिर देखा। छुरी पर लहू गीला सा लगता था। कसाई, आग, बकरी और घास, ये एक परंपरा है। वो भी इसी परंपरा को निभा रही है। उसने आंखें मूंदने की चेष्टा की। मन का भारीपन धीरे धीरे पलकों पर फैल गया। नन्ही नन्ही नीरा, छोटा सा घर, माता और पिता, साधारण चहल पहल, बाजी बारात और जीजी का विवाह। किनारेदार कपड़े पहनकर जीजी कैसे बदल गई। मिठाइयां और बताशे, केले के खंभे, रोली और हवन कुंड, सेहरा बांधे एक अपरिचित व्यक्ति, सहज आत्मीयता। मां ने कहा, नीरो तेरे जीजा, जा जीजा के पास। जीजा ने बाहें फैलाई, कहा, आ नीरो रानी, तुझे खिलौना देंगे, मेले ले जाएंगे। नीरा पास नहीं गई, दूर भाग गई। रोती हुई जीजी डोली में बैठी। मां ने कच्ची लस्सी में पैर डाले। फिर जीजी लौट कर आई, गुड़िया जैसे लाल होंठ और झांकियों की सीता जैसे कपड़े। नीरा हंसी और तालियां पीटने लगी। फिर वही अपरिचित व्यक्ति, जीजा। मां ने कहा, जा पूछ दूध कब पियेंगे। नीरा पास गई, सिमटी और संकुचित से जीजा ने उसे दोनों बाहों से पकड़ लिया और पास खींचा। दो मोटे मोटे होंठ, नाक के लंबे बाल और विचित्र सी गंध। नीरा हिचकिचाई, पीछे हटी और फिर उसने उस व्यक्ति के गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया। चौंक कर नीरा ने आंखें खोली। वही शून्य आकाश, दूर दूर तक गालिमा में ओझल होती हुई धरती के चित्र। शैशव कहाँ है? पीछे, बहुत पीछे। बीच में 10 बरस की दीवार है। झिंगुर बोलने लगे, अभी रात होने वाली है। गोधूली के गहरे पृष्ठपट पर एक तारा झिलमिलाने लगा। नीरा की आंखों से 2 आंसू टपक पड़े। उसने झट से आंखें पोंछ ली। ये कैसा अपशकुन है?

आज तो सुहागरात है। पहले इसी कमरे में जीजी की सुहागरात हुई थी, और वो साथ का कमरा, उस कमरे में जीजी के प्राण निकले थे। वहां का वातावरण अब भी जैसे कराह रहा है, अव्यक्त और मध्यम सा स्वर, नीरा। ओह मां, हाय, ओह मां।

0: कभी तो हंसाए।
1: विचारों को उसने झटक दिया, उठकर फिर टहलने लगी। फूलदान के फूल ठीक किए, सिंगार मेज के पास जाकर शीशे में चेहरा देखा। बाहों में मांसलता है और गालों पर गुलाबीपन। जीजी के गाल पिचक गए थे, बाहें सूखकर कैसी हो गई थी, पतली हड्डियां जैसी। रूखे से मुंह में दांत कैसे लगते थे, बड़ी बड़ी आंखें कितनी डरावनी थी। और वो उसे देखकर अंतिम दिन भी कहती रही, नीरा तेरा ब्याह तो देख लेती, बाबूजी की तरह मैं भी तेरे ब्याह से पहले ही। नीरा की आत्मा चीख उठी, देखो जीजी, देखो तुम्हारा नीरा का ब्याह हो गया, आज उसकी सुहाग रात है, देखो। और उस पर शिथिलता छा गई, निढाल सी वो पलंग पर बैठी रही, फिर लेट गई। छत की कड़ियों में मकड़ी का जाला था, जाला धीरे धीरे फैलने लगा, फैलकर इतना बड़ा हो गया कि नीरा उसमें उलझ गई, बिल्कुल अवसन्न और निश्चित।

चेष्ट पृथ्वी की धुंधली रेखाएं आकाश की कालिमा में खो गईं, तारे निकल आए और रात हो गई। गर्म सांस के स्पर्श ने नीरा की पलकों को खोल दिया। दो उत्सुक होंठ उसके होंठों के बहुत निकट आ रहे थे। नीरा सहमी और सिमटने लगी। दो हाथों ने उसकी बाहों को पकड़ लिया। बाहर अंधकार था। उसे मन में लगा कि आकाश ने भी आंखें मूंद ली हैं। दो मोटे मोटे होंठ, नाक के लंबे बाल और विचित्र सी गंध, निकट और निकट, आंखों के दो गहरे गड्ढे। नीरा हिचकिचाई, चाहा बाहें झटक दे और जोर से तमाचा लगाए जिससे सारा वातावरण झन्ना उठे, मगर हाथ नहीं उठ सका। आज वो नासमझ बालिका नहीं, समझदार नवयुवती है।

उर्मिल जीवन। श्रोता, अभी आप सुन रहे थे मोहन राकेश की कहानी संग्रह पहचान से ली गई ये कहानी। आपको कैसी लगी हमें जरूर लिखिएगा। आज का सफर यहीं तक, अगले अंक में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मोरपंख, मोहन राकेश की कहानी संग्रह से ली गई कहानी उर्मिल जीवन। प्रस्तुतकर्ता थे सुरेंद्र राजेश्वरी जी।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
3: भाई अब मैच का क्या होगा?
2: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
4: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
5: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
4: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
5: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444।
6: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
7: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
8: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
9: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
8: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
5: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
7: हमारी जनगणना हमारा विकास।
8: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

हेलो एवं सलाम नमस्ते सुस्वागतम वेलकम खुशामदीद मेहरबान दोस्तों 102.2 FM रेनबो कानपुर पर हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके फेवरेट प्रोग्राम

हेलो एवं सलाम नमस्ते सुस्वागतम वेलकम खुशामदीद मेहरबान दोस्तों 102.2 एफएम रेनबो कानपुर पर हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके फेवरेट प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है हम नवा।

0: मैं हूं आपका दोस्त एंड शो होस्ट आरजे गौरव, और आज स्टूडियो में मेरे साथ मेरी हमनवा और आपकी दोस्त हैं
1: रितु। आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। स्वीकार कीजिए मेरा स्नेहिल नमस्कार। और गौरव, अगले एक घंटे तक हम साथ मिलकर करेंगे ढेर सारी बातें, सुनवाएंगे अपने लिसनर्स को दिल को छू लेने वाले गीत और साझा करेंगे रोचक जानकारियां।
0: जी बिल्कुल सही है। और दोस्तों, हर रोज इसी टाइम हम आपके पास हम नवा प्रोग्राम लेकर हाजिर होते हैं और करते हैं आपसे ढेर सारी गपशप, कुछ इन्फॉर्मेटिकल बातें, कुछ स्वास्थ्य के प्रति चेतना।
1: बिल्कुल।
0: फिलहाल तो रितु जी, वैसे एक संडे का जो खुशनुमा दिन है ना, वो शुरू हो चुका है, तो आज की क्या प्लानिंग है? जैसा कि सबने संडे की प्लानिंग पहले से ही कर रखी होती है।
1: बिल्कुल गौरव, वैसे तो देखो आज तो कोई भी प्लानिंग नहीं है क्योंकि आज तो हम ड्यूटी पर हैं और निश्चित बात है कि शाम को 6 बजे तक घर पहुंचेंगे और उसके बाद तो कोई प्लानिंग हो ही नहीं सकती है क्योंकि इतनी थकान हो जाती है फिर यहाँ से जाने के बाद। लेकिन वैसे और संडे की बात करें तो कहीं ना कहीं घूमने का भी प्लान होता है या हम किसी रिलेटिव के यहाँ भी हम लोग चले जाते हैं जिनके यहाँ बहुत टाइम से नहीं गए होते हैं, तो संडे को प्लान कर लेते हैं कि चलो आज हम वहाँ चलेंगे।
0: भाई मेरा तो प्लान जो है वो सुबह से जो है अपने लिसनर्स को एंटरटेन करने का था, और आगे मुझे लग रहा है कि जो आगे का प्लान रहेगा ना वो आपका रहेगा एंटरटेन करने का।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: तो इससे बेटर प्लान हमारे लिसनर्स के लिए तो और कुछ हो ही नहीं सकता है।
1: बिल्कुल।
0: तो फिलहाल दोस्तों, हम नवा प्रोग्राम में हम आज बहुत सारे टॉपिक्स आपके साथ लेकर आए हैं जो हम आपसे बातचीत करेंगे।
1: तो आज हम मना रहे हैं विश्व रक्तदाता दिवस, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही नया अकादमिक सत्र शुरू हो चुका है गौरव, तो आज हम बात करेंगे शिक्षा को कैसे बनाए रुचिकर और प्रैक्टिकल।
0: बिल्कुल सही है। और जो अगला टॉपिक होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उस टॉपिक का नाम होगा आप भले तो जग भला। और इसी टॉपिक के लिए हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता अपने विचार हमसे साझा करें, और ईमेल आईडी नोट कर लीजिए aircansomedia@gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए aircansomedia@gmail.com।
1: और गौरव, हर ट्रेंड को फॉलो करना कहाँ तक सही है इस विषय पर भी हम बात करेंगे। तेजस्विनी के अंतर्गत बात करेंगे अरुणिमा सिन्हा की, और अंत में होगी चटपटी रेसिपी। और एक बार फिर से हम बता देते हैं अपने श्रोताओं को, ईमेल आईडी भी बता देते हैं और वो सब्जेक्ट भी बता देते हैं जिस पर हमने उनके विचार जो है वो आमंत्रित किए हैं। तो विषय है कि आप भले तो जग भला।
0: तो दोस्तों, आज इतने सारे टॉपिक्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होगा वो होगा आज जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का, यानी कि रक्तदाता दिवस का। तो इस पे भी आप अपने विचार हमसे हमारी ईमेल आईडी पे जरूर शेयर करें, और तब तक के लिए सुनिए ये प्यारा सा गाना आपके लिए।

0: जी बहुत खूबसूरत गीत ऋतु जी आपने श्रोताओं के लिए बजाया है। और भाई हमसे हमारी भी तमन्ना है श्रोताओं से मिलने की रोज ही, और हमारे श्रोताओं की भी तमन्ना है हमसे मिलने की रोज ही,
1: बिल्कुल
0: है ना। तो आज ये बहुत खूबसूरत गाने के साथ इस प्रोग्राम को हम स्टार्ट करें और आगे बढ़ा रहे हैं। और आज का दिन भी बहुत खूबसूरत है ना। वो कहते हैं ना कि आज है विश्व रक्तदाता दिवस।
1: बिल्कुल गौरव, और ये दिवस प्रतिवर्ष 14 जून को मनाया जाता है।
0: जी
1: इसका उद्देश्य लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करना और स्वैच्छिक रक्तदाताओं का सम्मान करना है।
0: जी बिल्कुल सही बात है। और रक्तदान महादान के उद्देश्य से जो है ना ये आज का दिन ज़रूर मनाया जाता है। और ब्लड वैसे भी हमारे शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। ये शरीर के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने का काम भी करता है। यदि किसी दुर्घटना, ऑपरेशन, प्रसव या गंभीर बीमारी के दौरान किसी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़ जाए तो केवल रक्तदान ही उसके जीवन की रक्षा कर सकता है। और आज भी रक्त का कोई विकल्प नहीं है, कोई उसका ऑप्शन अवेलेबल नहीं है पूरे वर्ल्ड में, इसलिए रक्तदान का महत्व और भी बढ़ जाता है।
1: और विश्व रक्तदाता दिवस महान वैज्ञानिक कर्ल लैंडस्टीनर की जयंती पर मनाया जाता है।
0: जी।
1: उन्होंने रक्त समूहों की खोज करके चिकित्सा विज्ञान को एक नई दिशा प्रदान की। उनकी खोज के कारण ही आज सुरक्षित रक्तदान संभव हो पाया है।
0: बिल्कुल सही है। और हमारे देश में प्रतिदिन हजारों मरीजों को रक्त यानी कि ब्लड की आवश्यकता होती है। थैलेसीमियस और ये पीड़ित से पीड़ित बच्चे और जो कैंसर रोगी हैं, दुर्घटनाओं में घायल लोगों तथा प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी जो है ना रक्त जीवन रक्षक साबित होता है। और एक यूनिट रक्त कई लोगों की मदद कर सकता है, इसलिए रक्तदान केवल एक सामाजिक कार्य नहीं बल्कि मानवता की सबसे बड़ी सेवा है।
1: बिल्कुल सही बात है। और दुर्भाग्य से गौरव आज भी समाज में रक्तदान को लेकर अनेक भ्रांतियां फैली हुई हैं।
0: जी जी।
1: कुछ लोग सोचते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है या स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जबकि चिकित्सकों के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित होता है। शरीर कुछ ही समय में रक्त की कमी को पूरा कर लेता है।
0: जी बिल्कुल सही है। और कहीं ना कहीं इस सोच से हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी जो है रक्त दान करने में संकोच करते हैं। उन्हें किसी न किसी तरह का डर भी सताता है, और शायद इसी डर को निकालने के लिए या इसी संकोच को निकालने के लिए आज का दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। और रक्तदान का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ना वो ये है कि इससे किसी अनजान व्यक्ति को एक नया जीवन मिलता है। जब हम किसी की जान बचाने में योगदान करते हैं ना, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उससे बड़ा पुण्य का काम जो है मुझे लगता नहीं कि कोई हो ही सकता है। और यही कारण है कि रक्तदान को महादान भी कहा जाता है। और यकीन करिए दोस्तों कि जब आप किसी भी तरह का जब आप दान करते हैं, इनफैक्ट जब कोई आपके शरीर से जुड़ा हुआ हो, जैसे कि बहुत से लोग जो है अपनी आंखें दान कर देते हैं या और भी चीज़ें हैं, वो जो टाइम होता है ना, वो जो पल होता है और उसके बाद का जो आपका सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो एकदम हाई होता है।
1: बिल्कुल। और आज आवश्यकता इस बात की है गौरव कि हम स्वयं जागरूक बने और दूसरों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित करें। विद्यालयों, महाविद्यालयों, सामाजिक संस्थाओं और स्वास्थ्य संगठनों को समय समय पर रक्तदान शिविर आयोजित करने चाहिए। वैसे होते हैं, मैंने देखा है कई जगह, और युवाओं को इस अभियान से विशेष रूप से जोड़ना चाहिए, क्योंकि वे समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। और यदि आप स्वस्थ हैं और रक्तदान के लिए पात्र हैं तो नियमित रूप से स्वैच्छिक रक्तदान करने का संकल्प लें। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी परिवार की खुशियां लौटाने का कारण बन सकता है।
1: तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें, रक्तदान करेंगे, जीवन बचाएंगे, मानवता की सेवा का ये संदेश घर घर पहुंचाएंगे।
0: बिल्कुल सही है। और ये जान लेते हैं कि कौन दे सकता है रक्तदान, कौन कर सकता है, इसके लिए एलिजिबिलिटीज क्या होती हैं। भाई आपकी जो आयु है वो एज है जो 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वजन आपका जो है वो कम से कम 45 से 50 किलोग्राम हो।
1: व्यक्ति स्वस्थ हो, हीमोग्लोबिन का स्तर निर्धारित मानकों के अनुरूप हो, और रक्तदान से पहले चिकित्सीय जांच आवश्यक होती है, मतलब आपको किसी भी तरीके की कोई बीमारी ना
0: जी
1: हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एज इंश्योरेंस की मतलब कि आप स्वस्थ हैं
1: है।
0: और आपसे जो है ब्लड किसी और को दिया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: और सबसे जो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि आप हर 3 महीने में ब्लड डोनेट कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और गौरव आज विश्व रक्तदाता दिवस पर हमारे साथ हमारे कुछ साथी जुड़ चुके हैं, तो सुनते हैं उनके विचार क्या
0: हैं। देखते हैं कि वो रक्तदान को लेकर क्या कहते हैं हमसे।
2: एफएम रेनबो कानपुर के सभी श्रोताओं को रोली का नमस्कार और वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्लड डोनर का मतलब होता है जो रक्त दान करता है, मतलब कि रक्त दाता। तो रक्त दाता होना एक बहुत ही प्राउड की बात होती है। मैं खुद भी साल में 1 से 2 बार ब्लड डोनेट करती हूँ, और जिसको करने के बाद बहुत तसल्ली होती है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैंने थोड़ी देर पहले ब्लड डोनेट किया है, क्योंकि ब्लड डोनेट करने के कुछ देर बाद मैं अपने काम पे चली जाती हूँ। तो ये जो मिथ है लोगों में कि ब्लड डोनेट करने से कोई भी प्रॉब्लम होती है, या हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं होता है। या अगर ये लगता है कि हमारे शरीर में ब्लड कम हो जाएगा, या हम डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो हम नहीं दे सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको डायबिटीज़ की वजह से कोई भी तरह की समस्या नहीं है और आपका डायबिटीज़ स्टेबल चल रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाकर अपने वाइटल्स को टेस्ट कराकर उनके पैरामीटर में चेक करके देख सकते हैं कि डॉक्टर अगर उसे ओके करता है तो आप ज़रूर ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इसलिए बिना कुछ सोचे और समझे पहले जाकर ये पता करिए कि आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं कि नहीं। हर वर्ष ब्लड डोनेशन डे वाले दिन हर बार एक अलग नारा दिया जाता है। तो हमारे पास इस वर्ष के अभियान का नारा है, मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें जीवन बचाएं। यह अवसर न केवल वर्तमान डोनर्स के को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए थैंक यू कहने का होता है, बल्कि नई जनरेशन को भी इस लाइफ सेविंग कार्य में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, क्योंकि हमारी नई जनरेशन बहुत ही एनर्जेटिक होती है, पर कुछ मिथ्स के कारण वो शायद डरते हैं। तो उनको ये चीज़ बहुत क्लियर करने के लिए ये दिन मनाया जाता है कि आप जानिए, समझिए और इस परोपकार में अपना भी योगदान दीजिए। इस वर्ष ड्रॉप योर ड्रॉप पहल के माध्यम से दुनिया के लोगों को एक सरल सामूहिक कार्य में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह नारा इस संदेश को स्पष्ट क्रिया और प्रभाव से जोड़ता है और श्रोताओं को याद दिलाता है कि रक्तदान सीधे जीवन को बचाता है, और WHO ने जो वर्ल्ड हेल्थ डे 2026 के नारे स्वास्थ्य के लिए एकजुट विज्ञान के साथ खड़े रहने की भावना को प्रदर्शित किया है, वो उसके अनुरूप है। तो रक्तदान करना एक बहुत ही महान और परोपकार का कार्य है जो हर किसी स्वस्थ इंसान को जरूर करना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने हम किसी न किसी की मदद करते हैं, किसी न किसी के घर के चिराग को बचाते हैं, किसी न किसी के तो काम आता ही है वो ब्लड। और जब कभी भी हमारे किसी अपने को या हमें इस तरह की कोई भी जरूरत पड़ती है, तो हमें भी किसी एक ऐसे ही महान रक्तदाता की वजह से जीवन दान मिल सकता है, या हमारी जरूरत पे वो हमारे काम आ सकता है। तो मेरे सभी दोस्तों से, सभी सुनने वाले श्रोताओं से ये रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग ज़रूर इस दिन रक्तदान करने के लिए आगे बढ़ें और एक अपने आप को एक महान रक्तदाता की तरह सोचें, क्योंकि रक्तदान ही जीवन दान है। तो 14 जून 2026 को सब लोग बाहर आइए, रक्तदान कीजिए, सब किसी न किसी की ज़िंदगी बचाएंगे आप, और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारे सामने आकर हमें भी दुआएं देंगे और आशीर्वाद देंगे। सो प्लीज़ टेक माय वर्ड्स सीरियसली एंड गो अहेड फॉर ब्लड डोनेशन, इट इज़ अ मोस्ट हम्बल वर्क वी कैन डू। थैंक यू वेरी मच।
3: FM रेनबो के सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार। मैं अंजनी निगम आपको इस विश्व रक्तदाता शिविर की शुभकामनाएं देता हूं, एवं इस अवसर पर मैं अपनी तरफ से सभी श्रोताओं को यह बताना चाहता हूं कि रक्तदान महादान है। इसमें एक व्यक्ति के द्वारा किए हुए रक्तदान से 3 जिंदगियां बचती हैं। इसलिए समय समय पर रक्तदान करें। समय समय पर ऐसी जानकारी मिलती है कि बहुत से दानदाताओं को यह भ्रम होता है कि वह मधुमेह से पीड़ित हैं, इसलिए रक्तदान नहीं कर सकते, जबकि सत्यता यह है कि केवल इंसुलिन लेने वाला व्यक्ति ही रक्तदान करने काबिल नहीं होता है, बाकी सभी लोग

0: रक्तदान कर सकते हैं। एवं बहुत लोगों को ये भ्रांति भी होती है कि ब्लड डोनेशन से कमजोरी आ जाती है, जबकि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में केवल 24 से 48 घंटे में साफ सुथरा खून पुनः बन जाता है। केवल सावधानी ये रखनी चाहिए कि जब ब्लड डोनेट करने जाएं तो उसके पहले स्वस्थ आहार, कुछ फल खा लें, कुछ जूस पी लें, और ब्लड डोनेट करने के बाद 2 मिनट आराम से लेटे रहें, क्योंकि तुरंत उठ जाने से ब्लड का जो दिमाग की तरफ से खाली हो चुका होता है उससे दानदाता को चक्कर आने की संभावना रहती है। अतः इससे घबराएं नहीं, और इस शुभ अवसर पर मेरा सभी को यह संदेश है कि वह हर 3 माह में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। मैं स्वयं 42 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूं। इस कड़ी में मेरा सभी जागरूक नागरिकों को यह अनुरोध है कि वह जब भी मौका मिले तो ब्लड डोनेट करें, क्योंकि एक व्यक्ति के 1 यूनिट ब्लड डोनेट करने से 3 जिंदगियां बचती हैं। अंत में मेरा सभी श्रोताओं को ये संदेश है कि रक्तदान महादान की श्रेणी में आता है। धन्यवाद।
1: तो रितु जी, सबसे पहले तो इन दोनों को ही बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो है हमारे 102.2 FM रेनबो कानपुर के द्वारा जो है ये मैसेज दिया ब्लड डोनर्स को और प्रेरित किया कि भाई हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी बात मैं सोच रहा था इस दौरान कि भाई हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए, ये तो है ही, लेकिन हमें इसके साथ ही साथ ना ये भी जो है इंश्योर कर लेना चाहिए कि हम सही तरह से ब्लड डोनेट कर रहे हैं, है ना। वैसे आजकल बहुत सारी सुविधाएं होती हैं जहां भी आप ब्लड डोनेट कर रहे होते हैं, बट फिर भी आप अपनी तरफ से इंश्योर कर लीजिए कि जो नेडल या फिर जो भी इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे हैं वो हाइजीन के साथ हैं या नहीं है, या किस तरह से उसे यूज किया जा रहा है,
2: ये भी थोड़ा सही कही तुमने गौरव, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है ना कि बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उस समय ये सब हो सकता है, हो जाता है कई बार।
1: बिल्कुल सही बात है।
2: तो अगर हम देने जा रहे हैं तो ये हमें ही देखना है कि
1: जी जी बिल्कुल सही,
2: मतलब स्वच्छता हमें ही देखनी है कि वहाँ मतलब साफ सुथरा है, या मतलब जो भी नीडल लगा रहे हैं तो वो एक
1: सही
2: मतलब,
1: तरह से
2: हाँ सही तरीके से लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, और एक दूसरे को वही तो नहीं लगा दे रहे हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सही है रितु जी। तो फिलहाल तो ये जो बातें हैं कि भाई हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए या फिर, तो इन सारी बातों का एक ही मतलब है, मुझे लगता है कि इंसान ही इंसान के काम आता है।
2: बिल्कुल,
1: है ना। तो जिंदगी का इसी फंडे को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं ये गाना।

0: जी, हमारा जो अगली बार बात करने का जो प्रोसेस है दी, वो आगे इसलिए बढ़ रहा है और हम कनेक्ट भी कर रहे हैं इससे। हमारा जो अगला टॉपिक कनेक्ट हो रहा है वो है आप भले तो जग भला, यानी कि यहाँ फिर से एक बार बात हो रही है इंसानियत की, है
1: बिल्कुल.
0: ना। तो भाई इस बारे में तो आज सुबह सुबह का एक इंसिडेंस मुझे याद आ गया और मैं शेयर भी करना चाहूँगा आप सभी से कि आज सुबह जब मैं घर से निकल रहा था ना, तो एक गाड़ी वाले ने एक मुझे जो है कट मार दिया। और नेचुरली मुझे क्या किसी को भी गुस्सा आ ही जाएगा, और उस टाइम भी मेरे गुस्से का ठिकाना नहीं था, बट थोड़े संयम का परिचय देते हुए मैंने मुस्कुरा कर हाथ हिलाते हुए उसको बोला कि भाई ठीक है, आप जाओ, कोई बात नहीं। और उसने भी रिप्लाई में गाड़ी का शीशा नीचे करके सॉरी बोल दिया। और इस वाक्य पर मुझे याद आ गया कि भाई जो बहुत पुरानी कहावत है कि भाई आप भले तो जग भला, है ना,
1: बिल्कुल.
0: यानी कि आपके अंदर का मौसम अगर सुहाना है ना, तो बाहर की धूप भी आपको अच्छी लगने लगती है। तो दोस्तों, अब आपका मूड भी जो है ना वो बेस्ट होता है, और जब आप भले होते हैं तो जग भी भला लगता है। ये कहावत के बारे में आपकी क्या राय है, आपके आपके जो है क्या विचार हैं, ऐसा जो भी कुछ भी इंसिडेंस हो, जो भी एक्सपीरियंस हो, वो आप हमारी ईमेल आईडी पर ज़रूर शेयर करें। ईमेल आईडी फिर से एक बार आपको बता देते हैं, aircansomedia@gmail.com।
1: आप भले तो जग भला, यानी अगर हमारी सोच और हमारा नजरिया पॉजिटिव है तो पूरी दुनिया हमारे लिए अच्छी बन जाती है.
0: बिल्कुल
1: ये
0: सही
1: कहावत पुरानी जरूर है गौरव, लेकिन 100% सच कहावत है. अक्सर हम सुबह उठते ही दूसरों में कमियां ढूंढने लगते हैं, जैसे कि वो पड़ोसी ऐसा है, वो ऑटो वाला वैसा है, और मेरा बॉस तो बहुत खड़ूस है. लेकिन कभी सोचा है कि जैसा हमारा नजरिया होता है ये दुनिया वैसी ही दिखती है. अगर हम खुद अंदर से शांत, खुश और भले हैं ना, तो सामने वाले की कड़वाहट भी हमें छू नहीं पाती है. बिल्कुल सच है ये.
0: एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। और रितु जी, बहुत ही पते की बात कही है आपने। और अक्सर जो है हम सोचते भी हैं कि जब दुनिया सुधरेगी तब हम सुधरेंगे, है ना, या बॉस अच्छा मिलेगा तो हम अच्छा काम
1: अच्छा काम
0: करेंगे,
1: करेंगे.
0: या ट्रैफिक कम होगा तब हम शांत रहकर गाड़ी चलाएंगे। मगर दोस्तों, यहाँ बात इसके जस्ट उल्टी है। एक्चुअली साइकोलॉजी कहती है कि हमारा जो दिमाग है ना, एक प्रोजेक्टर की तरह होता है। अंदर जो भी फिल्म चलेगी वो स्क्रीन यानी कि दुनिया पर वो ही दिखाएगा जो आपके दिमाग में चल रहा हो।
1: बिल्कुल.
0: और अगर आप अंदर से शांत हैं तो दुनिया का शोर भी आपके बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा लगता है, करेक्ट?
1: बिल्कुल सही बात है ये. और आप भले तो जग भला, इस बात का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें महात्मा बनना है, बल्कि
0: जी
1: इसका मतलब है थोड़ा सा स्मार्ट बनना. जब आप किसी को देखकर मुस्कुराते हैं ना, तो सामने वाला ना चाहते हुए भी मुस्कुरा देता है. और इसे कहते हैं रिपिल इफेक्ट, यानी जब पानी में एक पत्थर फेंको तो लहरें दूर तक जाती हैं.
0: बिल्कुल सही बात कही है। और मैं तो कहूंगा कि भी दुनिया को बदलने की तो छोड़िए, क्योंकि ये दुनिया ना बहुत बड़ी है। बस आप खुद के नजरियों को थोड़ा सा साफ रखिए। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो खुद के साथ भले होते हैं, तो पूरी कायनात आपको खूबसूरत लगने लगती है। और
1: बिल्कुल
0: बहुत ही खूबसूरत नेमत ऊपर वाले ने हम सबको दी है, वो है मुस्कुराहट।
1: बिल्कुल. और ये बात सही है कि आपकी सामने वाले से चाहे जितनी लड़ाई झगड़ा हो, चाहे जो भी हो, अगर आपने एक बार उससे अच्छे से बात कर ली या मुस्कुरा कर बात कर ली, तो सामने वाला भी मतलब आपके प्रति वैसे ही हो जाता है.
0: जी बिल्कुल सही है, आपका नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाता है। भाई आप जो देते हैं आपको
1: वही
0: मिलता
1: बिल्कुल
0: है
1: मिलता
0: ना।
1: है.
0: तो इसी बात पे एक गाना मैं जरूर आपको सुनवाना चाहूंगा।
1: बिल्कुल.

0: नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो भी नेकी की राहों पे चलता है ऊपर वाला उसके साथ हमेशा होता है। 102.2 एफएम रेनबो कानपुर पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हम नवा, मेरे यानी आपके दोस्त एंड शो होस्ट आरजे गौरव और आरजे
1: ऋतु
0: के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो जो है ना, कुछ ऐसा हो जाए दुनिया में कि लोग एक दूसरे की हेल्प करते रहे ना, एक तरह का
1: हमेशा।
0: ये हमेशा, और एक दूसरे को देख के ही लोग इसको ट्रेंड समझकर ही आगे बढ़ने लगे तो कितना बढ़िया
1: क्या बात है गौरव, तुमने तो बिल्कुल
0: है
1: ट्रेंड को पकड़
0: ना बिल्कुल
1: लिया
0: सही बात है। और ऐसा अगर हो जाए तो मुझे तो लगता है कि एक दुनिया बिल्कुल बहुत हसीन हो जाएगी, है ना। लेकिन अब सवाल इस बात का भी उठता है कि जिस तरह से लोग आजकल हर ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, है ना, तो हर ट्रेंड को फॉलो करना कहाँ तक सही है ना, ये
1: बिल्कुल,
0: सवाल
1: मतलब
0: बहुत
1: मेरे
0: जरूरी है
1: अगले सब्जेक्ट पर आ गए हैं गौरव आप,
0: जी
1: है ना।
0: बिल्कुल सही बात है। तो आजकल हर कोई किसी ना किसी भी तरह से जो है ना ट्रेंड के पीछे भाग रहा है, फिर वो चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ओर रील्स हो, या अजीबोगरीब फैशन ट्रेंड हो, या फिर खान पान का कोई भी नया स्टाइल हो। और आज किसी भी ट्रेंड को फॉलो करने की होड़ में ना खुद से ही एक सवाल पूछने की बहुत ज़रूरत है कि हर ट्रेंड को फॉलो करना कहाँ तक सही है दोस्तों। दरअसल ट्रेंड को फॉलो करना थोड़ा मज़ेदार भी हो सकता है, लेकिन जब ये ट्रेंड भेड़ चाल बन जाए ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर होती है।
1: हाँ बिल्कुल, और हम सब अपनी कुछ विशेषताओं के साथ इस दुनिया में आए हैं गौरव,
0: बिल्कुल
1: और
0: सही बात,
1: हमारी अपनी एक चॉइस है, लेकिन
0: राइट
1: जैसे ही कोई नया ट्रेंड आता है हम अपनी पसंद नापसंद भूलकर बस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं,
0: बिल्कुल सही,
1: और अगर सब एक जैसा ही दिखने और करने लगेंगे तो हमारी

0: अपनी पहचान कहीं छुप कर रह जाएगी,
1: ऑब्वियसली,
0: है ना। और ट्रेंड की बात करें ना, तो जैसे क्या होता है अभी, जैसे मार्केट में इस समय बहुत सारे कॉटन के कपड़े आए हुए हैं। अब तुम देखो हर दूसरा व्यक्ति वही कॉटन के कपड़े सेम डिजाइन और सेम प्रिंट का पहने आपको नजर आएगा। तो ये एक ट्रेंड की बात है ना। तो अगर हम ट्रेंड का पीछा करते हैं तो हम एक जैसे ही दिखते हैं फिर।
1: अच्छा, लेकिन कई बार रितु जी होता क्या है कि जैसे कि आपने कॉटन के कपड़ों की बात कही, तो ये मौसम के हिसाब से थोड़ी जरूरत भी बन जाती है। अगर ये ट्रेंड आप फॉलो करते हैं तो ये अच्छा है आपके लिए।
0: हाँ, लेकिन हम ट्रेंड तो ठीक है, लेकिन हम वैसा ही प्रिंट ले लें, हमने आपको देखा, हमें अच्छा लगा कि अरे आपने ये पहना है तो हम भी ऐसा ही पहनेंगे, तो वो गलत है।
1: इनफैक्ट कई बार तो जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आपको शोरूम वाला या फिर जो गारमेंट्स की शॉप में जो काम करते हैं वो आपको बोलते हैं कि अरे सर ये ले लीजिए, बहुत ये ट्रेंड में,
0: ट्रेंड में
1: ये चल रहा है।
0: बिल्कुल।
1: तो भाई हम क्यों लें ट्रेंड्स का, हमारी अपनी चॉइस है।
0: बिल्कुल,
1: हम जो पसंद करेंगे वो पहनेंगे, राइट। तो भाई हर ट्रेंड को आंख बंद करके फॉलो करना सही नहीं है, हमें इसे अपनी जो है ना वैल्यूज, जरूरतों और लक्ष्यों के आधार पर भी परखना चाहिए। और सही डायरेक्शन में ट्रेंड फॉलो करना आपको फायदा भी पहुंचा सकता है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बात करी आपसे, और बात बट लेकिन जो है ना, हर चलन के पीछे भागने से आपका समय और पहचान दोनों खो सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का मानना भी है कि इसमें भाई अगर हम कुछ किसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं तो इसमें हर्ज क्या है ना, आखिर क्यों ना करें हम इस जो है ट्रेंड को फॉलो, और मतलब क्यों ना चलें दुनिया के साथ, है ना।
0: दरअसल गौरव, हर समय दूसरों की नकल करने से आपकी अपनी पहचान या वैल्यू जो है वो खत्म हो जाती है, साथ ही साथ टाइम और पैसों की भी बर्बादी होती है। और सभी ट्रेंड आपके काम के नहीं होते हैं, उन पर समय लगाने से आपकी जरूरी उद्देश्य कहीं पीछे छूट सकते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई आप लोगों को दिखाने के लिए, सिर्फ अपने दिखावे के लिए लोगों के साथ चलना चाह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत है। और लगातार बदलते वक्त और ट्रेंड के साथ ना कदम मिलाने की जो कोशिश में जो फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट की चिंता हो सकती है, और यानी कि इस फॉलो करने की जो होड़ है ना आज में, आप कहीं ना कहीं पीछे ना रह जाएं, ये चिंता हमेशा आपके दिमाग में बनी रहती है, जो एक्चुअल में होनी ही नहीं चाहिए।
0: ये बात बिल्कुल सही है गौरव। दरअसल ट्रेंड की शुरुआत में उसे अपनाना फायदेमंद हो सकता है जब वो शुरुआत में आता है, लेकिन जब वो पुराना हो जाए तो उसे छोड़ देना ही अच्छा होता है। आपको ये देखना चाहिए कि क्या वो ट्रेंड आपके जीवन, करियर या व्यवसाय से मेल खाता है या नहीं।
1: बिल्कुल सही बात है, और अगर कोई ट्रेंड फॉलो कर भी रहे हैं आप, तो उसमें जो है ना अपना खुद का ओरिजिनल ट्विस्ट यानी कि अपनी कोई क्रिएटिविटी जरूर डालें, फिर वो चाहे कोई फैशन हो या कुकिंग हो, इस तरह से फॉलो किए हुए ट्रेंड आपके बिजनेस आइडिया या फिर लाइफ के लिए ना बेनिफिशियल हो सकते हैं। और जहाँ तक ट्रेंड की बात चल रही है, तो आजकल मुझे लगता है कि लोगों का फर्स्ट जो दिमाग जाता है ना, वो जाता है सोशल मीडिया रील्स पर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तुमने ये बात सही कही है गौरव, क्योंकि मैं देखती हूँ रील्स वगैरह, तो किसी की रील्स तो बहुत अच्छी होती है, नो डाउट, लेकिन कुछ लोग तो सच में मतलब बस ट्रेंड के पीछे भागते हैं, और
1: कोई डायलॉग आ गया तो पता लगा बहुत सारी रील्स हमें वैसी ही। तो चलिए दोस्तों, इन रील्स की बातों को पीछे छोड़ते हैं और आपको सुनवाते हैं एक बड़ा तड़कता भड़कता सा गाना।

0: तो दोस्तों प्रोग्राम हमनवा में अब हमने जो है ना कई सारी बातें करी भाई, स्वास्थ्य की बात करी
1: बिल्कुल
0: और जो है भलाई की बात करी
1: हाँ
0: है ना, और तो और भाई रील्स और ट्रेंड की भी बात कर ली,
1: हाँ बिल्कुल
0: और अब समय है रे तो जी
1: शिक्षा का
0: जी बिल्कुल सही है
1: है ना। तो अब शिक्षा की भी बात कर लेते हैं, और जैसा कि सब जानते हैं कि नया एकेडमिक सत्र जो है वो शुरू हो चुका
0: शुरू हो
1: है।
0: चुका है
1: तो ये जो सत्र है केवल नई किताबों, नई कक्षाओं और नए पाठ्यक्रम का प्रारंभ नहीं होता है,
0: जी,
1: बल्कि ये नए सपनों, नए संकल्पों और नई संभावनाओं का भी आरंभ होता है। हर विद्यार्थी चाहता है कि उसकी पढ़ाई ऐसी हो जो उसे बोझ ना लगे, बल्कि सीखने की खुशी दे। आज के समय में शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने योग्य बनना भी है। इसलिए शिक्षा को रुचिकर और प्रायोगिक बनाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
0: बिल्कुल सही है। और बहुत लंबे समय तक तो जो है ना मुख्य रूप से जो शिक्षा का मतलब होता था, जो पढ़ाई लिखाई का मतलब होता था, वो सिर्फ यहाँ तक सीमित था कि भाई रटना है, परीक्षा पास करने पर जो है हमें अपना फोकस करना
1: बस
0: है ना,
1: किताबों में लिखी बातें
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: सही है किताबों में लिखी बातें हैं और उनको याद कर लेना है, लेकिन उनका जो वास्तविक जीवन में जो क्या उपयोग है, यानी कि प्रैक्टिकली उसको कैसे सीखा जा सकता है या कैसे सीखें, ये थोड़ी सी इसकी कहीं ना कहीं कमी रही है ना। तो
1: बिल्कुल
0: इसका जो रिजल्ट निकल कर आया है वो ये था कि डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन कई बार जो जरूरी स्किल्स है ना उसकी कमी रह जाती है। इसलिए अब शिक्षा को व्यावहारिक अनुभवों से जोड़ना जो है ना वो बहुत जरूरी हो गया है।
1: बिल्कुल। और शिक्षा को रुचिकर बनाने के लिए सबसे पहले हमें सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना होगा। यदि कक्षा में केवल व्याख्यान ही चलता रहे तो विद्यार्थियों की रुचि कम हो जाती है, और इसके स्थान पर समूह चर्चा है, प्रश्नोत्तरी है, वाद
0: जी
1: विवाद,
0: जी
1: नाटक, मॉडल निर्माण और प्रोजेक्ट कार्य जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जब विद्यार्थी स्वयं किसी कार्य में भाग लेता है तो वे विषय को अधिक अच्छी तरह से समझते हैं और लंबे समय तक याद भी रखते हैं, मतलब प्रैक्टिकली।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही है। और बहुत सारी जगह पर जो है ये सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं और बहुत सारे जो संस्थान हैं वो इस पर ध्यान भी दे रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो है जो शिक्षा में इन सारी चीज़ों की जरूरतें हैं वो
1: बिल्कुल
0: ज़रूरतें ही बनी हुई हैं, उन्हें पूरा करना अभी बाकी है। और वैसे भी जो है जो आज

0: का एरा है ना, वो जो है टेक्नोलॉजी का जो है एरा है, यानी कि बोलते हैं डिजिटल एरा है। तो स्मार्ट क्लास, डिजिटल कंटेंट, एजुकेशनल वीडियो और ऑनलाइन जो ऑर्गेनाइजेशंस का जो उपयोग है ना, वो शिक्षा को अधिक प्रभावी और आकर्षक बना सकता है। तकनीक के माध्यम से कठिन विषयों को भी जो है सरल और रोचक बनाया जा सकता है।
1: बिल्कुल, और प्रैक्टिकल शिक्षा का अर्थ है सीखना और उसे जीवन में लागू करना।
0: बिल्कुल सर।
1: विज्ञान की प्रयोगशालाएं, शैक्षणिक भ्रमण, सामाजिक सर्वेक्षण, पर्यावरण संरक्षण गतिविधियां और सामुदायिक परियोजनाएं विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन से जोड़ती हैं। जब विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करते हैं और समस्याओं का समाधान खोजते हैं, तब उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और उनकी सोच जो है वो विकसित होती है।
0: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज की डेट में जो हमारे पास आधुनिक संसाधन अवेलेबल हैं, अगर हम उन पे ध्यान देके किसी भी चीज को लेकर आगे बढ़े, तो मुझे लगता है या फिर ये एक ट्रुथ है कि हमें उसके रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे मिलेंगे।
1: बिल्कुल।
0: और इसके
1: और
0: साथ साथ जो है ना, आज के समय में केवल विषय ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, विद्यार्थियों को संचार कौशल, नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क, समय प्रबंधन, डिजिटल साक्षरता और समस्या समाधान जैसे कौशल भी सीखने चाहिए। ये कौशल उन्हें भविष्य में सफलता प्राप्त करने में सहायता करेंगे। और मुझे तो लगता है कि आज की जो जनरेशन है वो इतनी जल्दी जो है ग्रो कर रही
1: हाँ
0: है
1: बिल्कुल,
0: कि उन्हें ये सारे स्किल्स ना बहुत छोटी उम्र में आने चाहिए।
1: आने चाहिए।
0: और ये स्मार्ट जनरेशन है, मुझे लगता है आ भी जाते हैं।
1: आ भी जाते हैं, सच कह रहे
0: कई
1: हैं।
0: बार आप ऐसे बच्चों से मिलते हैं जिनके अंदर कुछ विलक्षण प्रतिभाएं होती हैं, है ना, और आप वो अनएक्सपेक्टेड होती हैं। आप जब उनसे बात करते हो आपको लगता है कि नहीं यार, तो
1: सच में हाँ
0: उम्र से ज्यादा
1: उम्र
0: मैच्योर
1: से ज्यादा मैच्योर हैं। और इन सभी चीजों में टीचर्स जो होते हैं उनकी भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।
0: जी।
1: शिक्षक केवल ज्ञान देने वाले नहीं बल्कि मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत होते हैं।
0: जी।
1: यदि शिक्षक विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने, नए विचार प्रस्तुत करने और रचनात्मक सोच विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें, तो शिक्षा स्वतः ही रुचिकर बन जाती है।
0: बिल्कुल सही है। और पेरेंट्स को भी जो है ना, बच्चों पर केवल अंकों का प्रेशर नहीं डालना है ना उनके बजाय, बल्कि उनकी जो उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो टैलेंट है, उनको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रत्येक बच्चा जो है ना वो अलग होता है, उसके पास अपनी अलग प्रतिभाएं होती हैं और सीखने की जो क्षमता है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होती है। बच्चों को खेल, आर्ट, संगीत और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए।
1: बिल्कुल, और नई शिक्षा नीति भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में रचनात्मक, आलोचनात्मक चिंतन, कौशल विकास और व्यवहारिक ज्ञान का विकास करना है। ये शिक्षा को केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं रखती है बल्कि जीवन से जोड़ने का भी प्रयास करती है।
0: बिल्कुल सही बात है। और नया अकादमिक सत्र हमें ये अवसर देता है कि हम सीखने के तरीके को बदलें और शिक्षा को वास्तव में सार्थक बनाएं, जो कि आने वाले भविष्य के लिए और बच्चों के लिए बहुत
1: बहुत
0: जरूरी
1: जरूरी है
0: ना।
1: हम्म।

0: और गौरव, अब समय को देखते हुए हम नवा प्रोग्राम के हम तेजस्विनी सेगमेंट के करीब आ गए हैं, तो आज हम तेजस्विनी सेगमेंट में बात करेंगे अरुणिमा सिन्हा की, जो कि भारत की एक प्रसिद्ध पर्वतारोही, पूर्व राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी और प्रेरणादायक वक्ता हैं। वे दुनिया की पहली महिला दिव्यांग पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सफलता प्राप्त की।
1: अरुणिमा सिन्हा का जन्म उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में हुआ था और वे राष्ट्रीय स्तर की बॉलीवुड खिलाड़ी थीं। अर्धसैनिक बल में नौकरी करने का सपना देखती थीं और वर्ष 2011 में दिल्ली जाते समय ट्रेन में कुछ लुटेरों से जो है उनकी झड़प हो गई और उनकी चेन छीनने की जो कोशिश की और विरोध करने पर उन्होंने चलती ट्रेन से ही छलांग लगा दी, है ना,
0: उन्हें चलती ट्रेन से ही धक्का दे दिया गया।
1: जी जी जी।
0: और रेलवे ट्रैक पर गिरने के बाद दूसरी ट्रेन उनके पैर के ऊपर से गुजर गई, जिसके कारण उनका एक पैर काटना पड़ा। ये घटना उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बन गई।
1: बिल्कुल सही बात है। और अस्पताल में उपचार के दौरान ही उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का संकल्प लिया। कृत्रिम पैर के सहारे उन्होंने जो है कठोर प्रशिक्षण लिया और 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर इतिहास रच दिया। दुनिया की पहली महिला अमिनिटी यानी कि दिव्यांग बनी जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया।
0: एवरेस्ट के बाद अरुणिमा सिन्हा ने सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने का लक्ष्य रखा। उन्होंने एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की।
1: बिल्कुल सही। और उन्होंने 2015 में जो है ना पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार और विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से भी नवाजा गया।
0: और अरुणिमा सिन्हा की कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और मेहनत से असंभव लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। वे आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
1: बिल्कुल सही बात है ऋतु जी। और अगर सपने बड़े हों और उनमें मजबूत हों तो कभी भी जो है ना बाधा आपको सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकती है। और उनकी इस कहानी से हमें ये पता लगता है कि नॉर्मली इस कंडीशन में जब किसी से जो है झगड़ा और उनको जिस तरह से धक्का दे दिया गया, इस कंडीशन में जो है आदमी अपना आत्मविश्वास खो देता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन उनका आत्मविश्वास और बढ़ा और उन्होंने आज अपना नाम सफल किया।
0: बिल्कुल।
1: तो ऋतु जी, इसके साथ ही प्रोग्राम के एंड में ना हम आ पहुंचे हैं हमारी रेसिपी पे। तो आज की रेसिपी में दोस्तों हमारे पास है ऑनियन उत्पम रिंग्स। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि किन किन सामान की जरूरत पड़ेगी। वो है सूजी 1 कप, दही आधा कप, पानी आधा कप, बारीक कटी सब्जियां 1 कप, गाजर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, हरा धनिया और मसला हुआ पनीर। और ये पनीर अगर आपके घर का हो तो बेस्ट है।
0: बिल्कुल,
1: है ना। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर व नमक स्वादानुसार, चिली फ्लेक्स आधा छोटा चम्मच और एक अन्य सामग्री यानी कि प्याज के 2 छल्ले,
0: मतलब प्याज 2 लेनी है और छल्लों में काटना है उनको।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही है। और तेल 1 बड़ा यानी कि बड़ा चम्मच। और इसकी जो विधि है वो है, सबसे पहले तो बोल में सूजी, दही, पानी, सब्जियां, नमक, काली मिर्च और चिली फ्लेक्स मिलाकर घोल कर तैयार करें। इसे 15 से 20 मिनट तक के लिए ढककर रखें। अब तवे पर हल्का तेल लगाएं और प्याज की रिंग्स रखें। रिंग्स के अंदर तैयार घोल भरें। मध्यम आंच यानी कि धीमी आंच पर जो है ना दोनों तरफ से इसको सुनहरा और कुरकुरा होने तक पकाएं। हरी चटनी के साथ इसको गर्मा गर्म परोसें।
0: क्या बात है भाई, रेसिपी हमारी बन गई है अनियन उत्पम रिंग्स।
1: बिल्कुल सही है। और रितु जी देखिए, मैं सुबह से हूँ तो मुझे भूख भी लगाई है लेकिन भूख से पहले हम श्रोताओं को एक गाना जरूर सुनाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: है ना।

0: 102.2 एफएम रेनबो कानपुर पर दोस्तों आप सुन रहे थे प्रोग्राम हमनवा, मेरे यानी आरजे गौरव और आरजे
1: रितु के साथ।
0: और जहां वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, तो दोस्तों हम रोज यूं ही इसी समय पर आपसे रोज मिलते रहेंगे और करते रहेंगे प्यारी प्यारी बातें, अच्छी अच्छी बातें, और आप बने रहिए हमारे साथ यूं ही प्रोग्राम में आगे, और आपके आज सारा दिन आगे बने रहेंगे हमारे।
1: मैं आपके साथ रहूंगी 3 से 3:45 तक। आज हम प्रोग्राम होगा म्यूजिकर और उसके बाद हेल्थ मंत्रा हम पेश करेंगे।
0: काफी प्रोग्राम है आपके लिए फिलहाल इस प्रोग्राम
1: साथ से ही होगा। हेलो कानपुर।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिलहाल इस प्रोग्राम से हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन में लगभग 150 से ज्यादा लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन में लगभग 150 से ज्यादा लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान तत्काल होना चाहिए और इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान उन्होंने गौशाला में गौ सेवा भी की। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष अभियानों के तहत प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज प्रयागराज के अल्लापुर क्षेत्र पहुंचे। यहां उन्होंने मलिन बस्ती में आयोजित स्वच्छता एवं प्लास्टिक अपशिष्ट निस्तारण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 12 वर्षों का कार्यकाल देश के कोने कोने में विकास और स्वच्छता की अलग जगाने वाला रहा है। असम में कल हुए भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान हादसे में प्रदेश के दो वीर भी शहीद हो गए। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह बागपत के कंडेरा गांव के थे, जबकि सार्जेंट जितेंद्र शर्मा अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके के गांव सालपुर निवासी थे। दोनों के निधन से इलाके में शोक की लहर है। असम के जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुई इस दुर्घटना में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा के साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम भी शहीद हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विमान हादसे पर गहरा शोक जताया है। प्रदेश सरकार जुलाई माह में राज्य के सभी जनपदों में निपुण संकल्प कार्यशालाओं का आयोजन करेगी। प्रदेश के 33 केंद्रों पर 6 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक आयोजित होने वाली इन कार्यशालाओं में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी, शैक्षणिक विशेषज्ञ एवं जिला स्तरीय टीमों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं। निपुण भारत मिशन के माध्यम से बच्चों में आधारभूत भाषा एवं गणितीय दक्षताओं का विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित निपुण संकल्प कार्यशालाएं शैक्षणिक सत्र 2026-27 की प्रभावी रणनीति तैयार करने, विद्यालयों की गुणवत्ता बढ़ाने तथा प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 1 बजे। जुड़े रहिए FM रेनबो से।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर। फिर रात को फुर्सत के वो पल,
2: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
1: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lakhnaki.
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ।
5: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।

0: इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, पीसीओडी या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
1: द गिफ्ट ऑफ ब्लड इज द गिफ्ट ऑफ लाइफ। कहा जाता है कि रक्त दान से बड़ा कोई दान नहीं होता, और दोस्तों हमारी संस्कृति में तो यूं भी दान की महिमा हमेशा से बहुत मानी गई है। नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी अपनी दोस्त ज्योति और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो का प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस। हर साल 14 जून को पूरी दुनिया में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है, और इस दिवस का उद्देश्य होता है स्वैच्छिक और सुरक्षित रक्तदान को बढ़ावा देना और उन लाखों रक्तदाताओं का सम्मान करना जो बिना किसी स्वार्थ के किसी की जिंदगी बचाने में अपना योगदान देते हैं। दुर्घटनाओं, बड़ी सर्जरी, प्रसव, थैलेसीमिया, कैंसर और कई गंभीर बीमारियों में रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में आपका रक्त किसी के लिए आशा की किरण बन सकता है। तो आज के इस खास दिन हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अनिल कुमार को, जिनका रक्त बैंक सेवाओं में लंबा अनुभव है। डॉक्टर साहब, एफएम रेनबो लखनऊ के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो श्रोताओं, अगर आपके मन में रक्तदान से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप सीधे डॉक्टर अनिल कुमार से बात कर सकते हैं, जो कि है चरक हॉस्पिटल से और जिनके पास गहन अनुभव है इस क्षेत्र का। और आप सवाल करेंगे कैसे, आप हमें डायल कर सकते हैं 0522-223-8852 पर या फिर 0522-223-8845 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारे पुराने ईमेल आईडी पर fmakashwanilakhnow@gmail.com। एक बार फिर याद दिला दूं कि आप सुन रहे हैं हमारा वीकली हेल्थ शो, जिसका नाम है हेल्थ एंड फिटनेस, एफएम रेनबो लखनऊ 107 MHz पर, न्यूज ऑन AIR ऐप पर और DTH पर भी। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम शुरू होते ही हमारे पास ढेर सारे ईमेल्स आने शुरू हो गए और ईमेल्स के साथ साथ फोन्स भी आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं पहला कॉल लूं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि रक्तदान हमें करना क्यों चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि भाई हमारा खून है, हम किसी और को क्यों दे दें, तो इस विषय में आपका क्या कहना है?
2: रक्तदान इसलिए जरूरी है कि रक्त कहीं बनता नहीं है, रक्त किसी के शरीर से निकलता है और किसी के शरीर में जाता है, और इसको अगर हम करते रहेंगे तो बहुत सारे जिंदगी को हम बचा सकते हैं। वैसे तो आइडियली ये होना चाहिए, जैसा विकसित देशों में होता है, कि रक्तदान लोग करते रहते हैं रेगुलर, और मरीज जब बीमार होता है तो रक्तदान की जरूर उनसे नहीं कहा जाता है कि ये है, और उस तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं।
1: तो सीधी सी बात है ये कि हम कितना भी डेवलप्ड क्यों ना हो जाएं, कितना भी हम एडवांस क्यों ना हो जाएं, लेकिन किसी फैक्ट्री में आज भी ब्लड नहीं बनता है नहीं है। तो आप अगर किसी की जान बचाना चाहते हैं, निस्वार्थ रूप से सेवा करना चाहते हैं मानवता की, तो ये एक ऐसा काम है जो कि आप करके देख सकते हैं, और करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, और साथ में ये भी है कि हर किसी को जरूरत पड़ती है, आज हो सकता है हमें जरूरत है, कल किसी और को जरूरत है, तो एक दूसरे के लिए रक्तदान करते रहेंगे, इसी से हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, हेलो जी, हेलो, हाँ हेलो, हाँ जी,
3: ये मतलब पूछ रहे थे मैम
1: जी,
3: रक्तदान होता है ना, तो इसको कैसे, मतलब इसको क्या करना चाहिए, मतलब कैसे क्या होना चाहिए?
1: अच्छा, आप ये जानना चाहती हैं बेसिकली कि कौन रक्तदान कर सकता है और कहाँ जा करके रक्तदान करना चाहिए, है ना? अपना एक बार नाम बता दीजिए। ओके, काफी हल्की आवाज आ रही है आपकी, लेकिन आपका सवाल समझ में आ गया। डॉक्टर साहब, इनका ये कहना है कि कौन रक्तदान कर सकता है, क्या कोई ऐसा भी है जिसे रक्तदान करने से पहले 4 बार सोचना चाहिए? और अगर मान लीजिए

0: मेरा बहुत मन है कि मैं रक्तदान करूं, तो किस जगह जाकर के, कौन से ऑथेंटिक प्लेसेस हैं जहां पर मैं अपना ब्लड डोनेट कर सकती हूं?
1: रक्तदान किसी भी ब्लड बैंक में, किसी भी पूरे देश के किसी भी ब्लड बैंक में जाके किसी भी टाइम कर सकते हैं। ज्यादातर ब्लड बैंक 24 घंटे खुलते हैं
0: जी,
1: तो कभी भी कर सकते हैं। और कौन लोग कर सकते हैं, ये पूरा वो है कि जिसका 18 से 65 वर्ष के जो लोग होते हैं वो कर सकते हैं। 45 किलो से ज्यादा वजन होना चाहिए और बाकी हीमोग्लोबिन 12.5 के ऊपर होना चाहिए। और बाकी चीजें तो टेस्ट होती हैं, ब्लड प्रेशर और सभी चीजें टेस्ट की जाती हैं।
0: और ये हमें खुद कराना होता है या जब हम ब्लड डोनेट करने जाते हैं तब ये की जाती है ब्लड बैंक से?
1: ये सारी चीजें ब्लड बैंक में की जाएंगी, निशुल्क की जाएंगी, और रक्तदान भी पूरा निशुल्क होता है
0: जी।
1: तो सारी जांच वहां पे निशुल्क की जाएंगी, उसमें किसी को बाहर से पहले से कराने की जरूरत नहीं है।
0: मतलब एक फायदा ये होता है कि अगर हम ब्लड डोनेट कराते हैं तो उस वक्त हमारी सारी जांचें हो जाती है कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं है हमें, या हमारा हीमोग्लोबिन ठीक है या फिर नहीं है। ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी डॉक्टर साहब। एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो।
2: हेलो
0: जी, नमस्कार। मिथिलेश जी, थोड़ा सा जोर से बोल सकते हैं, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है।
2: आवाज आ रही
0: है? हाँ, बेटर बेटर, मच बेटर।
2: डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार।
1: हाँ, नमस्कार जी।
2: हमको सुझाव कुछ लेने हैं आपसे, जैसे ब्लड डोनेट करने के लिए, कोई अस्थमा का पेशेंट है, उसका ब्लड डोनेट हो जाएगा?
1: नहीं, अस्थमा के पेशेंट को नहीं करना चाहिए। कभी कभी ब्लड डोनेट करने के बाद अस्थमा का अटैक पड़ सकता है, बहुत रेयर, कम पड़ता है, रेयर पड़ता है, लेकिन फिर भी पड़ सकता है। और फिर अस्थमा के दवाइयां अक्सर कार्टिसोन लेते ली जाती हैं, उस उनमें मना होता है, इसलिए अस्थमा के मरीजों को नहीं डोनेट करना चाहिए।
2: और डोनेट करने के लिए जो है कम से कम हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए?
1: 12.5
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल के लिए और आपके सवाल के लिए। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि एस्मा का मरीज, एस्मा के जो पेशेंट्स होते हैं वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, तो कौन वो लोग हैं जो ब्लड डोनेट कर ही नहीं सकते एस्मा के मरीजों के अलावा?
1: एस्मा के दिल के जो मरीज हैं, हार्ट के कोई पेशेंट हो या उनकी कोई सर्जरी हुई हो हार्ट की, लिवर फेल हो गया है, किडनी फेल हो गई है, और मिर्गी के दौरे हैं या कोई पागलपन का दौरा पड़ा है, माइग्रेन हफ्ते में 2 बार अगर होता है, कैंसर है, कैंसर ठीक भी हो गया तब भी नहीं डोनेट करना चाहिए, नहीं कर सकते हैं। एचआईवी का होना या उनके जीवन साथी को एचआईवी हो, सिफिलिस, गोनोरिया हो, तो ये लोग जो हैं कभी डोनेट नहीं कर सकते हैं। बाकी कई सारे होते हैं जहाँ टेम्पर इंसुलिन पे अगर डायबिटिक है और इंसुलिन पे अगर है तो वो डोनेट नहीं कर सकते हैं। थायराइड बीमारी अगर अनियंत्रित है तो नहीं कर सकते, नियंत्रित है तो कर सकते हैं। और ये तो परमानेंट चीज़ें हैं जो कभी नहीं डोनेट कर पाएंगे, लेकिन इसके अलावा कई सारी कंडीशन होती हैं जिनमें टेम्परेरी अनफिट होते हैं, उनको वो फिर उनकी एक लंबी लिस्ट है, उनको वहीं पे देख लेते हैं ब्लड बैंक में, अगर उनमें से कोई होता है तो टेम्परेरी के लिए। टेम्परेरी मतलब वो कोई चीज, किसी का फीवर आ रहा है, एंटीबायोटिक ले रहा है, तो उस समय 3 दिन अगर एंटीबायोटिक नहीं लिया है तभी कर सकते हैं।
0: मतलब सीधी सी बात है कि जब भी ब्लड डोनेट करने जाएं तो डॉक्टर से अपनी हिस्ट्री जरूर डिस्कस करें। डॉक्टर साहब, एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है, टैटू कराने के बाद, टैटू आजकल बहुत फैशन में चल रहे हैं, तो क्या टैटू कराने के बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं?
1: 6 महीने का गैप होना,
0: 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए। और हाइपरटेंशन जो कि बड़ी कॉमन सी बीमारी है, क्या उसमें अलाउड होता है ब्लड डोनेट करना?
1: हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल्ड है
0: जी,
1: ऊपर का ब्लड प्रेशर 100 से 150, नीचे वाला 50 से 100, अगर इस बीच में है, दवाई के साथ भी अगर कंट्रोल कर रखा है तो ब्लड डोनेट कर सकते हैं।
0: तो हम एक कॉलर हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, स्वेच्छा जी इशारा कर रही हैं कि अब हमें कॉलर से बात कर लेनी चाहिए, तो स्वेच्छा जी आपकी बात मानते हुए अब हम हमारे कॉलर से बात करते हैं। हेलो।
3: हेलो सर, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
3: मैं आशिक बोल रहा हूँ, जिला बदायूं, कस्बा दादागंज।
0: ओके, तो आशिक जी हमें बताइए आपका सवाल क्या है।
3: सर ये जैसे जानना चाहते हैं, जैसे किसी का अगर दिमाग का ऑपरेशन हुआ हो तो ब्लड को डोनेट कर सकते हैं?
0: सर्जरी हुई है ब्रेन की।
1: हाँ, तो सर्जरी होने के, ये बड़ी सर्जरी है, तो इसको सर्जरी होने के 1 साल बाद कर सकते हैं जी।
0: और भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो जल्दी से हमें कॉल करिए, फोन नंबर्स वही पुराने 223-8852 एंड 223-8845। इनके पहले लखनऊ का कोड 0522 ये ऐड करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप लखनऊ के बाहर कहीं से कॉल कर रहे हैं, या अगर आप अपने मोबाइल फोन को यूज कर रहे हैं हमसे कनेक्ट होने के लिए। हमारा ईमेल आईडी ये भी आपको रटा होगा, लेकिन फिर भी अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो फिर आपको बता दूं कि ईमेल आईडी fmakashwanilakhnow@gmail.com। मैं ज्योति, प्रोग्राम का नाम हेल्थ एंड फिटनेस, और आज खास तौर पर आपके लिए हमने हमारे स्टूडियोज में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के दिन इन्वाइट किया है डॉक्टर अनिल कुमार को, जिनके पास काफी गहरा एक्सपीरियंस है इसी क्षेत्र का। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि थीम है आज के इस दिन की, वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स। तो मानवता जिसके बारे में हम बहुत बात करते हैं, कई बार हमें लगता है कुछ अच्छा करना चाहिए लेकिन समझ नहीं पाते क्या करें, तो सीधी सी चीज है, इंसान की जिंदगी बचाइए। और बहुत ही आसान है, ब्लड डोनेट करके आप एक नहीं कई जिंदगियों को बचा सकते हैं, और इस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो जी, नाम बताए। सबसे पहले तो आप रेडियो से दूर हो जाइए प्लीज
4: जी।
0: जी
4: प्रकाश बोल रहे हैं।
0: जी प्रकाश जी, अपना सवाल पूछिए।
4: मेरी दिक्कत ये, हम 4 साल से डेली आयरन की गोली खा रहे, नहीं खाते है ना तो सांस एकदम थमने लगती है।
0: आयरन की गोली अगर नहीं खाती है तो कमजोरी महसूस होती है और सांसें थमने लगती हैं। आपको क्या सजेस्ट किया है किसी बीमारी की वजह से आयरन की टैबलेट्स लेने को?
4: नहीं नहीं, ब्लड की कमी हो गई थी ना, उसके बाद से दिक्कत हो रही है।
0: और कब से ले रही हैं आप ये दवा?
4: मैम प्रकाश बोल रहा हूँ।
0: अच्छा ओके ओके ओके, आप कब से ये दवा ले रहे हैं?
4: 4 साल हो चुके।
0: उम्र कितनी होगी आपकी?
4: मेरी 30 साल होगी।
0: ओके, तो डॉक्टर साहब इनका ब्लड डोनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं, ये जस्ट ये जानना चाहते हैं कि 4 साल से, क्योंकि पहले इनका हीमोग्लोबिन कम हुआ था, 4 साल से ये लगातार आयरन की टैबलेट्स ले रहे हैं, अगर नहीं लेते हैं तो फिर इनकी सांस फूलने लगती है, इनको तकलीफ होने लगती है। तो क्या ये कुछ ऐसा है जिसके लिए इन्हें डॉक्टर से इमीडिएटली बात करनी चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे इस सवाल पर?
1: बिल्कुल, उनको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। एक तो हीमोग्लोबिन, इसका मतलब है गिर जाता होगा उनका
0: जी,
1: या सांस की कोई बीमारी है
0: जी,
1: तो दोनों हालत में इनको डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए जल्दी जल्दी, और उसको फॉलो करना चाहिए।
0: तो दोस्तों एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस। आज हमने आपके सवालों का जवाब देने के लिए इनवाइट किया है हमारे स्टूडियोज में डॉक्टर अनिल कुमार को, जो कि ब्लड डोनेशन से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनके जवाब दे रहे हैं। और इस वक्त कौन है हमारे साथ? हेलो
5: हेलो
0: जी, नमस्कार।
5: नमस्कार, मैं आशीष बोल रहा हूँ, तहसील गोला, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से।
0: जी सवाल पूछ लें।
5: जी मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि जो कुछ लोग नशा करते हैं, जैसे कि अल्कोहल का सेवन करते हैं या कुछ लोग चिकन पीते हैं, तो उनके लिए रक्तदान जरूरी है या नहीं?
0: जो लोग नशा करते हैं जी, हाँ सवाल दोहराइए।
5: जो लोग नशा करते हैं, मतलब अल्कोहल का सेवन करते हैं या कुछ लोग कोई भी नशा करते हैं, तो वो रक्तदान कर सकते हैं या नहीं कर सकते?
0: ओके, तो वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं डॉक्टर साहब या फिर नहीं? बहुत ही अच्छा सवाल है इनका।
1: पिछले 12 घंटे में कोई नशा नहीं किया होना करना चाहिए, तो 12 घंटे में कोई नशा न करें, वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं।
0: और वैसे तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि नशा करना ही क्यों, लेकिन अगर आपने किया है तो ब्लड डोनेशन से पहले आप इंश्योर करिए कि 12 घंटे पहले आपने किसी भी तरह का कोई नशा ना किया हो। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे अच्छे गानों की फरमाइश की है, तो हम अपने कॉलर से बात करेंगे, हम ईमेल्स भी लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का।
6: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
7: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
6: चरक हॉस्पिटल @ हरदोई रोड, दुबग्गा।

आपके लिए वो सारी प्रोग्राम जो कि आपको ना एंटरटेन, आपका ज्ञान भी बढ़ाते हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस, जिसे हम बुलाते हैं इंडियाज मोस्ट ऑथेंटिक हेल्थ शो, जिसमें हम खुद बुलाते हैं एक्सपर्ट्स को हमारे स्टूडियोज में, और आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट करके, उनसे बात करके

0: साथ कौन जुड़े हैं? हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, हाँ जी बताएं।
1: डॉक्टर जी को नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
1: डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते हैं कि जिसके डायबिटीज रहता है तो वो क्या रक्तदान कर सकता है?
2: डायबिटीज अगर इंसुलिन पर है तो वो नहीं कर सकता है, और शुगर कंट्रोल्ड है अगर आपने दवाई से, या शुगर और इंसुलिन नहीं ले रहे हैं तो कर सकते हैं। हाँ, दवा
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो हेलो।
1: हाँ
0: जी, सवाल पूछे।
1: सवाल सुन लिया, मुझे थायराइड है
0: जी।
1: थायराइड बारे में ले सकते हैं कि नहीं? डॉक्टर साहब ने शुगर सुन लिया।
0: अच्छा, थायराइड। ओके, थायराइड के बारे में।
2: थायराइड पे अगर आपने कंट्रोल कर रखा है थायराइड को तो दे सकते हैं।
0: तो थायराइड और शुगर, डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया कि अगर ये अंडर कंट्रोल है, और स्पेशली अगर डायबिटीज में आप इंसुलिन नहीं ले रहे हैं तो आप बिल्कुल ब्लड डोनेट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ढेर सारे ईमेल भी हमारे सामने हैं और मुझे लगता है कि उनको भी हमें ले लेना चाहिए। आहिल खान उर्फी खान बुलंदशहर से पूछ रहे हैं कि अगर किसी को एलर्जिक राइनिटिस है तो क्या वो ब्लड डोनेट कर सकता है? राइनाइटिस नाम की बीमारी, एलर्जी वाली, तो क्या ब्लड डोनेट हो सकता है?
2: ब्लड डोनेट कर सकते हैं, एंटीबायोटिक ले रहे हैं और फीवर नहीं होना चाहिए।
0: दीपक मिश्रा जी का भी ईमेल आया है लखीमपुर खीरी से। ये जानना चाहते हैं कि मेरा हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी कम हो जाता है, 18 साल की उम्र है, वेट है सिर्फ 42 kg, 3 महीने के लिए ठीक ठाक रहेगा, फिर से कम हो जाएगा, तो ऐसे में, और तलवों में बहुत दर्द रहता है, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए?
2: किसी फिजिशियन से कंसल्ट करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल से दोनों चीजें एक दूसरे से संबंधित होंगी, तो फिजिशियन से कंसल्ट कर लें।
0: मुनेश कुमार राज का भी ईमेल है लखीमपुर खीरी से। ये कह रहे हैं कि रक्तदान करने के लिए क्या वजन होना चाहिए?
2: 45 किलो कम से कम वजन होना चाहिए।
0: आगे लिख रहे हैं कि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, हर साल ब्लड की जांच कराता हूं, हीमोग्लोबिन 14 पॉइंट रहता है, लेकिन मेरा वजन 45 किलो है 32 साल की उम्र में, तो कर सकता हूं डोनेट?
2: 45 साल वेट है तो कर सकते हैं, अगर इससे कम होगा तो नहीं
0: एक
2: कर सकता
0: हूं। और बड़ा अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब, इनके ईमेल में नीचे जो लिखा है कि क्या रक्तदान करने से शरीर में दोबारा खून बन जाता है, या जो खून गया वो गया?
2: नहीं नहीं, बिल्कुल बनता है। रक्तदान करने का करीब आपका हीमोग्लोबिन जो है 21 दिन में वापस आ जाता है, और हीमोग्लोबिन जो चीज़ें बनाती हैं वो करीब 1.5 से 2 महीने में पूरी रिकवर हो जाती हैं, और इसीलिए रक्तदान का जो कम से कम समय है पुरुषों में 3 महीने और महिलाओं में 4 महीने का समय है।
0: तो जो ब्लड आप डोनेट कर रहे हैं उसकी वजह से कोई कमजोरी या कोई बीमारी नहीं होने पाती?
2: नहीं, कोई कमजोरी बीमारी उससे नहीं होती।
0: डॉक्टर साहब, कॉलर्स भी हैं हमारे साथ, लेकिन एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक हमें अभी लेना होगा।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है, और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है, और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki. टाइम हो गया है 12:31 और ठीक 21 सेकेंड। आप है हेल्थ एंड फिटनेस में ज्योति के साथ, और आज खास तौर पर हमने हमारे स्टूडियोज में बुलाया है डॉक्टर अनिल कुमार को।

0: जिनका लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है ब्लड बैंक सर्विसेज में रक्तदान से जुड़ा हुआ, अगर कोई भी सवाल है तो आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हैं, अपनी शंकाओं अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। और कैसे करना है आपको क्लियर, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, 223-8852 एंड 223-8845 ये हमारे फोन नंबर्स हैं, ईमेल आईडी वही पुराना fmakashwani@gmail.com। और खास तौर पर डॉक्टर साहब को बुलाने की वजह क्या है, आज है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। हम सभी जानते हैं कि रक्तदान महादान है, लेकिन फिर भी जाने क्यों हिचकते हैं, जाने क्यों हमें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं वैसा तो नहीं होगा। तो ये जो कहीं कहीं कहीं वाले सवाल हैं उनको आप पूछ सकते हैं बिल्कुल यही यानी कि 100.7 FM रेनबो पर डायरेक्टली डॉक्टर अनिल कुमार से। सो लेट्स सी इस वक्त कौन हमारे साथ फोन लाइन पर है और इनका क्या सवाल है। हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं और सवाल भी।
1: नमस्ते डॉक्टर साहब को, मेरा नमस्ते।
2: नमस्कार जी।
1: मैम, मैं बबलू यादव मोहनलालगंज लखनऊ ग्राम धनवासा से बोल रहा हूँ। मैम, मैं ये डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि कितने महीने के अंतराल में डोनेट करना चाहिए और कितनी उम्र होनी चाहिए लगभग लास्ट।
2: 18 से 65 साल उम्र होनी चाहिए और पुरुष लोग हर तीन महीने पे खून दे सकते हैं और महिलाएं हर 4 महीने में ब्लड दे सकती हैं।
1: जी डॉक्टर,
0: बहुत अच्छा सवाल था इनका कि कितना गैप होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ब्लड डोनेट करने से फायदे क्या होते हैं? कई बार हमने सुना है कि बड़े फायदे भी होते हैं, तो आप ये मत सोचिए बड़ा नुकसान हो जाएगा। कोई नुकसान नहीं, फायदे ही फायदे। उन फायदों के बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए प्लीज।
2: ब्लड डोनेट, एक तो 5 जांचें होती हैं जो मुफ्त होते हैं, ब्लड डोनेशन और उससे जुड़ा सारा काम कार्य जो है मुफ्त होता है, कोई पेमेंट नहीं है। तो 5 जांच हम लोग करते हैं
0: जी।
2: एक तो HIV/AIDS के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए, हेपेटाइटिस सी के लिए, सिफिलिस और मलेरियल पैरासाइट मलेरिया के लिए 5 जांच करते हैं। और इनमें से कोई जांच पॉजिटिव आती है तो सूचित करते हैं फोन करके कि आपको बुला लेते हैं और उनको बता देते हैं कि ये निकला है और आगे क्या करना है आपको। प्लस ये कि एक आपके अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करने में आसानी होती है। और सबसे बड़ा फायदा तो ये है, एक जो महसूस होता है ब्लड देने के बाद कि हमने बहुत अच्छा सामाजिक कार्य किया है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है।
0: तो इससे भी
2: ये फायदे हैं।
0: हमारी संस्कृति में तो यूं भी कहा जाता है कि दान पुण्य करते रहना चाहिए, कितने सारे व्रत त्योहार होते हैं जिन पर दान करने का अलग ही महत्व होता है, तो ऐसे में रक्तदान को
2: रक्तदान तो सबसे बड़ा दान
0: जी। और कितने लोगों को फायदा होता है एक इंसान के ब्लड डोनेट करने से? डॉक्टर साहब,
2: एक यूनिट उससे फायदा करने में कम से कम 3 से 4 लोगों को होता है।
0: मतलब एक इंसान 3 से 4 लोगों की जिंदगी बचाता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ओके जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है जो आपने बताई। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर अपनी बारी का इंतजार करते हुए। तो डॉक्टर साहब, इनका फोन तो डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन जो वादा मैंने आपसे किया था मैं उससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट नहीं हुई। हाँ, आपकी पसंद का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग अब मैं प्ले करने जा रही हूँ। और दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि किस तरह से हमसे कनेक्ट करें और अपना सवाल डायरेक्टली डॉक्टर अनिल कुमार से पूछे जिनके एक्सपर्टीज हैं ब्लड डोनेशन में, तो फिर बता दूं 0522223-8852 एंड 0522223-8845 ये दोनों हमारे नंबर हैं। तो गाने से पहले चलिए, क्योंकि हमारे कॉलर फिर से कनेक्ट हो गए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
3: हेलो
0: जी, नमस्कार।
3: नमस्ते
0: जी।
3: ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर डोनर उपलब्ध नहीं है और हमें ब्लड चाहिए तो कैसे ब्लड मिले?
2: हाँ, डोनर उपलब्ध नहीं है तो ब्लड अगर पेशेंट की ऐसी डिमांड है कि उसको तुरंत चाहिए तो हम लोग बिना डोनेशन के उपलब्ध कराते हैं।
3: मेडिकल कॉलेज वगैरह में उपलब्ध है?
0: ब्लड बैंक का मतलब शायद यही होता होगा डॉक्टर साहब की, ऐसे लोगों को
2: जी हाँ बिल्कुल दे सकते हैं,
0: लेकिन ये स्थिति ना आए तो ज्यादा अच्छा है।
2: लेकिन ज्यादा अच्छा है कि आप बीच बीच में ब्लड डोनेट करें। और जब ब्लड डोनेट करता है तो एक और फायदा होता है कि हम लोग एक डोनर कार्ड इशू करते हैं उनको, वॉलंटरी डोनेशन कार्ड, जिससे वो अगले कुछ महीनों तक जो है वो बिना रक्तदान के ब्लड वापस ले सकते हैं।
0: ओके।

0: बल्कि एक यूनिट आप डोनेट करेंगे तो दो अलग अलग यूनिट हम आपको दे देंगे। तो आप हमेशा रक्तदान करते रहिए, तो अगर आपको ऐसी स्थिति आती है तो तुरंत आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी।
1: और ये स्थिति ना आए इसीलिए तो हम बार बार अवेयर करते हैं हमारे लिसनर्स को, हमारे श्रोताओं को, क्योंकि बार बार जो हम कह रहे हैं कि रक्त का कोई विकल्प नहीं है, किसी भी फैक्ट्री में नहीं बनता, कितना भी पैसा आप देना चाहें उसके बदले आप इसी मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल नहीं करा सकते हैं। इसलिए रक्तदान करते रहिए और करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और आपकी पसंद का गाना आपको सुनाएंगे। अब हम
2: से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
3: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
2: पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
3: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: 12:40 और ठीक 57 सेकेंड्स, और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कौन है? हेलो।
4: हेलो
3: जी, नमस्कार।
4: नमस्ते डॉक्टर साहब को। नमस्कार।
5: नमस्कार जी।
4: डॉक्टर साहब, हमें मेरा सवाल ये डॉक्टर साहब जी कि मेरा सवाल ये डॉक्टर साहब कि मुझे अगर ब्लड डोनेट करना है तो किस हॉस्पिटल में जाना चाहिए?
3: ओके, आपने अपना नाम नहीं

0: चाहता हूँ कि किस तरह अपने खून को हेल्दी रखा जा सकता है, क्योंकि मेरी बेटी बहुत कमजोर है, तो ब्लड को किस तरह इतना हेल्दी रखें कि कोई जरूरत ना पड़े तो ज्यादा अच्छा है।
1: नॉर्मल डाइट लेते हैं तो किसी तरह के साथ में और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ एक नॉर्मल डाइट लें, नॉर्मल डाइट का मतलब है जिसमें सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हों, जो रूटीन खाते हैं हम लोग तो वही खाएं, वही सफिशिएंट है, उसके अलावा अलग से लेने की ज़रूरत नहीं। जब तक किसी वजह से हीमोग्लोबिन कम ना हो जाए या कोई बीमारी ना हो जाए तो उसका इलाज कराएं उस समय, और बाकी नॉर्मल डाइट ही बेस्ट है।
0: विजयपाल यादव जी आपके और वैभव प्रकाश जी आपके सवालों का भी जवाब डॉक्टर साहब दे चुके हैं, उम्मीद है आपने सुना होगा। राजेश कुमार जी मोदीपुरम मेरठ से ईमेल कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि 60 किलो वजन है, रक्तदान करना चाहते हैं, कितने लीटर तक रक्तदान कर सकते हैं?
1: रक्तदान आप उसमें मर्जी पे नहीं कितना कर सकते हैं, रक्तदान के दो ही गाइडलाइन हैं। अगर 60 किलो 45 से 60 किलो वजन है तो 350 ml 350 ml लिया जाता है, अगर 60 किलो से ज्यादा वजन है तो 450 ml लिया जाता
0: मतलब है। मतलब ये लीटर्स में नहीं होता है?
1: नहीं, लीटर्स में बिल्कुल नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारी जो गाइडलाइन है वो इस हिसाब से हैं कि रक्त देने वाले को जरा भी किसी नुकसान की आशंका भी नहीं रहे, इसलिए लीटर में नहीं होता, 350 ml या 450 ml।
0: राजेश कुमार जी के सवाल का जवाब डॉक्टर साहब ने दिया। अगर आपका कोई सवाल है तो अभी भी हमारे पास बहुत वक्त है, जल्दी से हमें आप फोन कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं, क्योंकि खास तौर पर आपके लिए ही तो हमने इनवाइट किया है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर डॉक्टर अनिल कुमार को हमारे स्टूडियोज में, जिनकी एक्सपर्टीज है, जिनका एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में। तो लेट्स सी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कौन है। हेलो।
2: हेलो
0: जी, नमस्कार, नाम बताएं और सवाल पूछें।
2: मैं मैम प्रेम शंकर बोल रहा हूँ।
0: जी प्रेम शंकर जी बताएं।
2: राजेजीपुरम से बोल रहा हूँ। मैम ये जानना चाह रहा हूँ, जो खून लोग डोनेशन करते हैं तो मैम इसमें कोई गड़बड़ी निकल जाती, कैसे पता चलेगा? मतलब कि उसको गलत लोग चढ़ा देते कभी कदार।
0: ओके, मतलब ब्लड जो लोग चढ़वाते हैं उनको गलत ब्लड तो नहीं चढ़ेगा, ये कैसे पता करा जाए, है ना?
1: नहीं, ब्लड जब होता है तो उसकी 5 जांच हम लोग करते हैं, जो 5 चीज़ें रक्त के थ्रू फैलती हैं, तो वो उनका टेस्ट करते हैं हम लोग, और अगर वो टेस्ट में कोई भी 5 में से, नाम बता देता हूँ, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी एड्स या सिफिलिस या मलेरिया होता है, तो इन 5 जांच को करते हैं, अगर इनमें से कोई ब्लड निकलता पॉजिटिव निकलता है तो उस ब्लड को फेंक दिया जाता है, प्रॉपर तरीके होता है उसका, उस तरह से फेंक दिया जाता है, वो कभी किसी को दिया नहीं जाता।
0: तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस लगातार तरक्की कर रहा है इस क्षेत्र में, बहुत R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये मत सोचिए कि कहीं गलत ब्लड तो नहीं चढ़ जाएगा, क्योंकि अगर आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया आपकी भी जांचें होती हैं, तो बिना किसी भय के, बिना किसी शंका के, बिना किसी डर के ब्लड डोनेट भी करिए, और ज़रूरत है तो फिर अपने, अगर आपका कोई अपना है तो उसको आप ब्लड चढ़वा भी सकते हैं। राहत का ईमेल आया है डॉक्टर साहब एक और, उनका ये कहना है कि जो रेयर ब्लड ग्रुप होते हैं उनको कैसे ब्लड मिल सकता है, क्या उनको कोई रजिस्ट्रेशन हमेशा से करा के रखना चाहिए, चाहे जरूरत हो या ना हो, या जरूरत पड़ने पर उनको ब्लड मिल जाता है, और कौन से रेयर वैसे होते हैं ब्लड ग्रुप्स, ये भी हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
1: ब्लड लेने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ब्लड देने के लिए सोसाइटीज होती हैं और सभी ब्लड बैंक मेंटेन रखते हैं रिकॉर्ड कि अगर आपको ब्लड देना है, रेयर ब्लड ग्रुप है तो आप दे सकते हैं, बाकी लेने के लिए तो ये अवेलेबिलिटी पे है कि जो आप ब्लड बैंक देखेंगे, अब तो इंटरनेट पे साइट पे अवेलेबल रहता है, सारे अस्पतालों के पास वो साइट होती है, उनसे डेली आप देख सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप कहाँ पर अवेलेबल है, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा आपको लेने के लिए। और दूसरा सवाल क्या था? मैं
0: दूसरा सवाल ये था कि जो रेयर ब्लड ग्रुप होते हैं, आपने हालांकि जवाब दे दिया कि उनको क्या ब्लड लेने के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और वैसे ब्लड ग्रुप होते कौन से जिन्हें की रेयरेस्ट फ्रेयर बोला जाता है?
1: रेयरेस्ट तो RS null 1 होता है, वो तो थ्योरेटिकल इसलिए है कि वो पूरे वर्ल्ड में समय केवल 60 लोगों का लगभग वो ब्लड ग्रुप है
0: okay.
1: और मैंने अपने 16 साल करियर में वो उस ब्लड ग्रुप का कोई नहीं देखा है
0: okay.
1: लेकिन दूसरा ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप नेक्स्ट रेयर आता है वो भी उस बॉम्बे में पहली बार मुंबई में पाया गया था, वहाँ से खोज हुई थी इसके लिए, इसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, वो होता है लेने के लिए, उसमें भी रजिस्ट्रेशन नहीं, देने के लिए वो बहुत मुश्किल से मिलता है कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप के मरीज को केवल बॉम्बे ब्लड ग्रुप का ही ब्लड चढ़ाया जा सकता है और उसकी सोसाइटी है मुंबई में और बहुत अच्छी सोसाइटी है, उनके पास रजिस्ट्रेशन है और अगर जरूरत होती तो आप किसी भी ब्लड बैंक या हॉस्पिटल को संपर्क करेंगे, वहाँ से वो उन सोसाइटी को संपर्क करते हैं तो बाई एयर वो लोग भेजते हैं ऑल ओवर इंडिया, बॉम्बे ब्लड ग्रुप अवेलेबल कराते हैं। और जो कॉमनली सबसे कम ब्लड ग्रुप होता है वो ए बी निगेटिव होता है, निगेटिव सारे कम होते हैं और ए बी निगेटिव सबसे कम होता है, रेयर उनमें है, और ये देने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए
0: जी
1: सभी निगेटिव्स को, और लेने के लिए तो अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी कहाँ पर अवेलेबल है,
0: और ये अवेलेबिलिटी बनी रहे इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आप, मैं, हम सब जो कि एलिजिबल हैं ब्लड डोनेशन के लिए, तो हम सभी ब्लड डोनेट करते रहें। डॉक्टर साहब एक बहुत छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक लूंगी और उसके बाद जो हमारे कॉलर वेट कर रहे हैं उनसे बात करते हैं।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर,
3: पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
5: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
6: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
7: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
6: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
8: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
0: 12:50 हो गए हैं, वक्त का पता ही नहीं चला, तो इससे पहले कि एक बज जाए और हमें प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़े, जल्दी से हमारे इन कॉलर को लाइन पर ले लेते हैं। हेलो।
9: हेलो
0: जी, नमस्कार, नाम बताएं और सवाल पूछें डॉक्टर साहब से।
9: मेरा नाम मोहम्मद साहिल है, मैं लखनऊ से इंद्रनगर से बोल रहा हूँ, इंद्रनगर राजीव नगर से। मेरा सवाल ये कि कान संबंधी दिक्कतें होने पर ब्लड डोनेट कर सकते हैं?
0: जी, कौन सी दिक्कतें होने पर?
9: कान में पर्दा छेद हो या कान बहता हो।
0: अच्छा, कान अगर बहता है तो क्या उसके बाद भी ब्लड डोनेट किया जा सकता है? डॉक्टर साहब,
1: फीवर नहीं होना चाहिए और कोई एंटीबायोटिक न ले रहे हो तो दे सकते हैं।
0: तो सीधी सी बात है कि आप अगर ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं तो जो भी वहां पर वॉलंटियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं उन्हें अपनी मेडिकल हिस्ट्री जरूर बताएं। अगर आप कोई दवा ले रहे हैं तो उसके विषय में भी पूरी जानकारी दें। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो। हेलो, हाँ जी बताइए।
10: मेरा नाम सावित्री है, मैं देवी जगदीशपुर से बोल रही हूँ।
0: थोड़ा आप अपने फोन के करीब आ जाइए कि आपकी आवाज बहुत ही हल्की आ रही है।
10: हेलो, मेरा नाम सावित्री है, मैं देवी जगदीशपुर से बोल रही हूँ।
0: हाँ जी सावित्री जी, बताइए सवाल पूछिए।
10: उन्नाव से। मेरे भाई ने जब से मेरे भाई ने एक बार ब्लड रक्तदान किया था ना,
0: हाँ,
10: तब से उनको कमजोरी है, तब से उनके शरीर में कमजोरी नहीं आ रही।
0: डॉक्टर साहब, सावित्री जी का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इनके भाई ने एक बार ब्लड डोनेट किया था और तब से उसको कमजोरी रहने लग गई है, तो आप प्लीज बताएं कि क्या उस वजह से इनको कमजोरी रहने लग गई है या फिर कोई और वजह है, और अगर और भी जो भ्रांतियां हैं ब्लड डोनेशन से जुड़ी हुई, जैसे लोगों को लगता है हमें कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, हमारी वीकनेस हो जाएगी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें कोई बीमारी पकड़ ले, इस विषय में भी हमारे श्रोताओं को बताइए प्लीज।
1: रक्त दान से कोई कमजोरी नहीं होती है मैम। एक तो कभी कभी लोगों के

0: क्योंकि दिमाग में बैठा हुआ है, रक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है, दोबारा नहीं बनता है, तो वो दिमागी तौर से कुछ लगता है। अगर फिर भी कमजोरी लग रही है तो एक बार उनकी दिखा लें किसी डॉक्टर को, वो हीमोग्लोबिन टेस्ट हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन टेस्ट हो जाने के बाद ये पता लग जाएगा कि वो रक्तदान से तो नहीं हुआ है, या कहीं हीमोग्लोबिन तो कम नहीं हो गया। रक्तदान से होता नहीं है, क्योंकि 12:30 पे हम लोग से नीचे ब्लड डोनेशन नहीं कराते हैं, और अगर उससे थोड़ा बहुत गिर भी गया, 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं गिरता है, तो 11:30 आप आ जाएगा, जो कि 3 हफ्ते में रिकवर हो जाता
1: तो ये सिर्फ एक भ्रांति है।
0: है। ये सिर्फ एक
1: और
0: भ्रांति
1: डॉक्टर साहब,
0: है।
1: ये जो भ्रांति है कि कई बार इन्फेक्शंस हो जाते हैं या बीमारियां लग जाती हैं, ये भी कई लोग बार बार पूछ रहे हैं।
0: नहीं, जो भी ब्लड लिया जाता है वो निडेल वगैरह बहुत स्टराइल वन टाइम यूज होता है
1: हाँ
0: उनका, वो पैक्ड होती है वन टाइम यूज, सेकेंड टाइम आप यूज कर ही नहीं सकते, ब्लड बैग से अटैच निडेल आती है, तो
1: जी,
0: इसलिए उससे कोई इन्फेक्शन किसी तरह का होने का कोई चांस नहीं है,
1: मतलब नुकसान तो बिल्कुल नहीं
0: बिल्कुल
1: होता
0: नहीं होता।
1: और फायदे जरूर हैं जिनके
0: फायदे
1: बारे
0: तो
1: में आपने
0: बिल्कुल
1: बताया।
0: बिल्कुल
1: डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो,
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे?
2: मेरा नाम ध्रुवकांत पांडे है, मैं
1: जी
2: न्याय
1: पांडे
2: विहार
1: जी।
2: कॉलोनी लखनऊ से बोल रहा हूँ।
1: जी पांडे जी, सवाल पूछिए
2: डॉक्टर
1: प्लीज।
2: को। नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे एक स्टंट पड़ा है और मेरी जो ब्लड थिनर की दवाइयाँ चलती हैं, और बीच में मुझे विटामिन D3 और B12 की डेफिशिएंसी थी, जिसको मैं इंजेक्ट के थ्रू ठीक कर लिया मैंने। डॉक्टर साहब, क्या मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ कभी जरूरत पड़ने पे? मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव है।
0: नहीं, ऐसा है कि पांडे जी की अगर स्टेंटिंग पड़ा हुआ है तो फिर ब्लड डोनेट
2: हाँ
0: नहीं कर सकते हैं, उसको पूरी
2: ओके
0: कभी नहीं कर
2: ओके।
0: सकते हैं।
1: लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस विषय में सोच रहे हैं इतनी
0: हाँ
1: समस्या के बाद भी।
0: बिल्कुल
1: पांडे
0: बिल्कुल
1: जी, हैट्स ऑफ टू यू।
2: इसके अलावा भी मेरे बच्चे हैं, मेरे 2 बेटे हैं, वो समय समय पे देते रहते हैं, 5-6 महीने के रेगुलर अंतराल पे। बीच में जरूरत पड़ी थी उसके एक दोस्त के मदर को ब्लड की जरूरत थी, मैंने अप्रोच किया, लेकिन लड़कों ने मिल करके गैदरिंग करके कवर कर लिया। एक मन में रहता है कहीं भी जरूरत पड़े, क्योंकि मेरा वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है
1: जी
2: और
1: जी
2: डोनेटर ब्लड ग्रुप है, बहुत लोगों को जरूरत पड़ती है।
1: बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को आपके जैसे और लोगों की जरूरत है। डॉक्टर साहब, इन्होंने जो बात कही यूनिवर्सल डोनर वाली बात कही ओ पॉजिटिव, तो ऐसे कौन से ब्लड ग्रुप्स होते हैं जिनका खून, जिनका ब्लड हर किसी को चढ़ सकता है?
0: हाँ नहीं, यूनिवर्सल डोनर का कंसेप्ट यथासंभव नहीं होता है, सिर्फ
1: जी
0: बहुत ही इमरजेंसी कंडीशंस में होता है, जैसे एम्बुलेंस लेके एक्सीडेंट की साइट पे चल दी और
1: जी
0: वहीं पे ब्लड बिल्कुल बह रहा है, तो
1: जी
0: वो निगेटिव या वो पॉजिटिव भी ब्लड लेके चलते हैं, और उस इमरजेंसी कंडीशन में जहाँ ब्लड ग्रुप करने का भी आपके पास टाइम नहीं है,
1: जी
0: इतनी खून बह रहा है, वहाँ वो पॉजिटिव यूज करते हैं, नहीं तो हमेशा जो है ब्लड ग्रुप करके ही करते हैं। ब्लड ग्रुप करने में 5 मिनट से भी कम समय का लगता है,
1: जी
0: इसलिए ब्लड ग्रुप करके ही चढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर इतना भी टाइम नहीं है तो भी यूज करते हैं। ये बहुत पुराना कंसेप्ट था यूनिवर्सल डोनर का, जो अब यूज जनरली नहीं होता जब तक बहुत ही क्रिटिकल इमरजेंसी कंडीशन ना हो।
1: डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन अब जब आप इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं तो फर्ज मेरा ये भी बनता है कि जो अच्छे से गाने आपने सुनाने के लिए प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था, मैं वो गाने आपको सुना दूं। तो 2 गाने तो हो चुके, तीसरा ये गाना विच हैपन्स टू बी मेरा भी फेवरेट, तो चलिए सुनते हैं वो कौन थी फिल्म का ये ब्यूटिफुल गाना लता जी की आवाज में।

0: तो अच्छा काम कल पर बिल्कुल भी मत टालिए। इस गाने को सुन लीजिए, ये भी यही कहता है कि भाई काल करे सो आज कर, जो करना है वो आज ही करिए। और स्पेशली आज का दिन, ये तो बहुत ही स्पेशल है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे आज के दिन मनाया जा रहा है, जिसकी थीम है वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स। और इसीलिए खास तौर पर हमने बुलाया हमारे स्टूडियोज में प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस में डॉक्टर अनिल कुमार को, जिनका एक्सपर्टीज है इसी फील्ड में। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, अगर आप संक्षेप में हमारी श्रोताओं को कुछ कहना चाहें तो।
1: मैडम ये है कि 18 से 65 साल की उम्र है और 45 किलो से ज़्यादा वजन है और 12.5 से ज़्यादा हीमोग्लोबिन हो, वो तो खैर हम लोग टेस्ट कर लेंगे, लेकिन यथासंभव हर किसी को ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपने खुद ही बताया कि ब्लड कहीं बन नहीं सकता है, सब एक आदमी से देके और एक सोसाइटी में अगर इस तरह का माहौल बन जाए कि सब लोग डोनेट करें, तो कभी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि ज़रूरत के टाइम आपको कहा जाए, जिस समय आप परेशान होते हैं, कि उस टाइम ब्लड डोनेट किया जाए और सबको ब्लड मिलता रहेगा।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात एकदम स्पष्ट है कि रक्त का कोई कारखाना नहीं होता, इसे केवल इंसान ही इंसान को दे सकता है, और इसी कारण रक्तदान केवल दान नहीं बल्कि मानवता की सबसे सुंदर अभिव्यक्तियों में से एक है। अ सिंगल पिंच कैन सेव 3 lives और मे बी मोर देन 3 lives, अ सिंगल जेस्चर कैन क्रिएट अ मिलियन स्माइल्स। डॉक्टर अनिल कुमार जी, आज आपने रक्तदान से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं पर सरल और उपयोगी जानकारी हमारी श्रोताओं तक पहुंचाई, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया आकाशवाणी लखनऊ से, मार्गदर्शन सुश्री सुमोना एस पांडे जो कि हमारी कार्यक्रम प्रमुख हैं, प्रोड्यूसर हैं श्री कुंवर बहादुर सिंह, और विशेष सहयोग के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी मैं स्वेच्छा जी को। मैं ज्योति अब प्रोग्राम को वाइंड अप करने की आपसे इजाजत लेती हूं। अगले रविवार फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए, और अगर संभव हो तो रक्तदान जरूर कीजिए, क्योंकि आपका दिया हुआ रक्त किसी की धड़कनों को फिर से जीवन दे सकता है। नमस्कार।
2: सुनते रहिए 100.7 FM रेन।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है और इसका दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने आज मीडिया से बातचीत में मंदिर निर्माण और दान प्रकरण की जांच को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित घोटाले के मामले में सरकार ने SIT का गठन किया है। श्री मिश्रा ने बताया कि सरकार ने एक सप्ताह में प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट मांगी है। मंदिर निर्माण कार्यों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि श्रीराम मंदिर परिसर की सुरक्षा और सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 4 किलोमीटर लंबी आधुनिक तकनीक आधारित बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती प्रारंभिक परीक्षा 2025 आज औरैया जनपद के 9 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा एक ही पाली में आयोजित की गई, जिसमें कुल 3,438 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था की गई थी। प्रदेश सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू करने जा रही है। योजना के तहत पात्र शिक्षकों, कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। स्टेट हेल्थ एजेंसी सांचीज की CEO अर्चना वर्मा ने बताया कि योजना के औपचारिक शुभारंभ से पहले विभाग पात्र कर्मचारियों का डेटा एकत्र करने और उसे त्रुटि रहित बनाने में जुटी है। अब तक 3.5 लाख से अधिक पात्र कर्मचारियों का डेटा संकलित किया जा चुका है। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आए आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD फ्री डिश।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

1:09 और ठीक 7 सेकंड हो रहे हैं। आपसे थोड़ी देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें और इलाकाई खबरों के बाद हम फिर मिलेंगे लेकर होठों पे तेरी बात।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन किया। जनता दर्शन के दौरान 150 से ज्यादा लोगों ने अपने मसाइल वजीर आला को सुनाए। लोगों में एतमाद पैदा करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वे उनके मसाइल के फौरी हल को यकीनी बनाएं और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने गाय की पनागाह में गाय की खिदमत भी की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर दौरे के दौरान आज दोपहर बाद गोरखपुर महानगर हल्के में 926 रुपए से ज्यादा की लागत वाले 226 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आला मुख्तलिफ स्कीमों के फैजियाब अफराद को सर्टिफिकेट भी तकसीम करेंगे। वाजिर है कि वजीर आला ने कल अपने दौरे के पहले रोज गोरखपुर में 295 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के 319 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों के फैजियाब अफराद को सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस दौरान वजीर आला ने आवाम को खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम की क्यादत में यही नया हिंदुस्तान है। उन्होंने कहा,
1: मेरा मानना है कनेक्ट

0: एक्टिविटी जितनी फास्ट होगी प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी, और प्रगति होगी नौजवान को बाहर प्लान नहीं करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में काम मिलेगा, वहीं पे नौकरी मिलेगी, वहीं रोजगार मिलेगा। और यही तो ये डबल इंजन सरकार के कार्यों की पूरे देश के अंदर एक नई पहचान है।
1: सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए मीटिंग में शिरकत के लिए अयोध्या पहुंचे राम मंदिर की तामीर कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने मंदिर की तामीर और एहतियात के स्कैंडल की तहकीकात से मुतालिक अहम मालूमात शेयर की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चंदा से मुतालिक मुबैना घोटाले की जांच की गई है। हुकूमत ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर SIT तश्कील देकर मामले में अपनी संजीदगी का मुजाहरा किया है। उनके मुताबिक तहकीकाती टीम में 3 सीनियर और तजुर्बेकार अफसरान शामिल मिल है। हुकूमत ने 1 हफ्ते में इब्तदाई रिपोर्ट और 15 दिन में हतमी रिपोर्ट तलब की है। SIT की सिफारिशात की बुनियाद पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर इम्तिहानी एहलकारों के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है। प्रोग्राम का मकसद NTA इम्तिहानात की निगरानी और अमल को मजबूत बनाना और ऑफलाइन कलम और कागज पर मबनी इम्तिहानात के हमवार, महफूज और मियारी इनकाद को यकीनी करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश क़यादत में मुल्क ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर चलते हुए न्यूज़ इस मौके की मुनासिबत से एक खुसूसी सीरीज नश्र कर रहा है। आज हम शहरियों की जिंदगियों में आसानी लाने के लिए हुकूमत की कोशिशों के बारे में मालूमात फराहम कर रहे हैं।
2: केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। GST ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 GST संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी हैं। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है।
1: भारतीय फिजाइया का AN-32 तैयारा कलासाम में गिरकर तबाह हो गया। यह हादसा जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर पेश आया। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सर्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर एयर चीफ खेमा राम कुमावत और अग्निवीर एयर चीफ दानिश आलम की इस हादसे में मौत हो गई। वाज़ेह है कि तैयारा हादसे में उत्तर प्रदेश के बागपत के कंडेरा गांव के स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह और अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके के गांव सालपुर के बाशिंदे सर्जेंट जितेंद्र शर्मा शामिल थे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने तैयारा हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज के जरिए आज मुनक़िद होने वाले गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर भर्ती इम्तिहान के लिए उम्मीदवारों की मुतवक्का भीड़ को एडजस्ट करने के लिए वसी और खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। उम्मीदवारों और दीगर मुसाफिरों को महफूज और आरामदेह सफर फराहम करने के लिए अगर जरूरत हो तो इम्तिहान की खुसूसी ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। जौनपुर, इटावा और अमरोहा में भी सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दरमियान यह इम्तिहान मुनक़िद किया जा रहा है। इम्तिहान को राजदारी और मुनसिफाना बनाए रखने के लिए मुतल्लिक़ अफसरान को जरूरी अहकाम दिए गए हैं। राजधानी लखनऊ समेत रियासत के कई जिला में बारिश से गर्मी से राहत मिली है। महकमा मौसमियात ने अगले 3 रोज तक रियासत के मगरबी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। ताहम आज से रियासत के मशरकी हिस्सों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।

1:17 और 3:38 सेकेंड्स। आप है ज्योति के साथ इन द प्रोग्राम HPTB, यानी कि होठों पे तेरी बात। दूसरे शब्दों में कहें तो भले ही आप तक पहुंच रही है मेरी आवाज, लेकिन मेरी आवाज में होंगे बस आपके जज्बात, आपके अल्फाज। आपसे आज मैं जानना चाहती हूँ कि इस मौसम में, ये जो वेकेशंस का मौसम होता है, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है? आप पहाड़ों में जाना पसंद करते हैं या फिर समंदर आपको बुलाते हैं? मतलब आप माउंटेन पर्सन है या फिर सी पर्सन, या जब कभी छुट्टी होती है तो आप चुपचाप अपने गाँव की ओर चले जाते हैं? नानी हाउस आपका फेवरेट डेस्टिनेशन है या फिर कोई आसपास की जगह? जल्दी से मुझे ईमेल करिए और बताइए। मैं ज्योति बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ आपके ईमेल्स का।

0: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
1: जी हाँ, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, साथ ही साथ ईमेल्स भी पहुंचाते रहिए। मोनू सेठ ने लिखा है कि घर के काम में व्यस्त था

खेती की मशागत चालू है और आपका प्रोग्राम में काम करते वक्त सुन रहे हैं। अभी बरसात नहीं हुई है तो गाना सुना दीजिए जी, पूरी कोशिश की जाएगी। इन्होंने ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से ईमेल किया है, श्री सुधाकर राजे यादव, डॉक्टर प्रशांत राजे यादव जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमार सर्वद देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और कुमारी कल्पना देशमुख के साथ इतने सारे लोगों ने मिलकर के ईमेल। जिला रायबरेली, गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू भानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी काका, इन्होंने लिखा है आपको प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सतीश अनेजा जी के दो दो ईमेल आए, इन्होंने लिखा है गर्मी की छुट्टियों में हम पहाड़ों में जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। खुशी की बात है कि हम अधिकतर मनाली जाते हैं, मनाली इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। आगे लिखते हैं वहां हमारा घर भी है तो अगली बार हमें इन्वाइट करिए ना अब सतीश जी। आगे लिख रहे हैं कि मनाली से थोड़ा आगे लाहौल स्पीति में बर्फ पड़ रही है जिसका पूरा आनंद लेते हैं। कुछ दिन बाद वहीं से रेनबो लखनऊ सुना करेंगे। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा एंड सुल्तान रजा साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत बात लिखने के लिए, इतनी तारीफ करने के लिए। आगे इन्होंने लिखा है कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रजा, जीशान रजा, अफजल रजा, मोनिश रजा, सादिक रजा, इकबाल रजा, और जब बात घूमने फिरने की आती है तो हमको ना ही पहाड़ों से सुकून मिलता है ना ही समंदर के किनारे, हमें तो सुकून मिलता है अपने गांव जाकर जहां हमारे घर के अंदर बहुत से पेड़ लगे, उन पेड़ों के नीचे बैठकर खाना खाना, इस मौसम में आम खाना, जामुन खाना, वाह क्या बात है, और वो सब भी फ्री में होता है। अगर हम पहाड़ों पे गए तो पैसा खर्च होता है, लेकिन हमारे गांव जाकर नहीं तो पैसा खर्च होता है और ना ही तकलीफ होती है और मजा भी दुगना हो जाता है। मेरा गांव है मोहम्मदपुर थाना शेरगढ़ जिला बरेली, लेकिन अभी बरेली से ईमेल कर रहा हूँ। मैं इतना अच्छा आपने बिल्कुल सीन मेरी आंखों के सामने खींच दिया कि मैं क्या कहूँ। मेरा भी मन कर रहा है आपके गांव आ करके पेड़ के नीचे बैठ करके रोटी शोटी खाने का और आम जामुन एकदम फ्रेश फ्रेश डाल वाले उनका आनंद उठाने का। तो भाई छुट्टी का मतलब ही होता है थोड़ी सी मौज मस्ती, थोड़ी सी मटर गश्ती। आप कहाँ जाना पसंद करते हैं छुट्टियों में, मतलब आप माउंटेन पर्सन है या आप सी पर्सन है, मुझे बताइए जल्दी से ईमेल करके।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।
6: एक बजकर 34 मिनट और ठीक 4 सेकंड्स। प्रोग्राम का नाम HPTB, यानी ये होटो पे तेरी बात। सीधे सीधे कहें तो आवाज भले ही मेरी है, लेकिन सब तक पहुंच रहे होंगे बस आपके अल्फाज, आपके जज्बात। ऑन द टॉपिक, छुट्टियों में आप कहाँ जाना पसंद करते हैं? आर यू अ माउंटेन पर्सन, या फिर आपको समंदर अपनी ओर खींचता है? छुट्टियाँ अपनी नानी के घर बिताना पसंद करते हैं, गांव जाते हैं, या चुपचाप घर पर ही रहते हैं? लगातार ईमेल्स हमें आ रहे हैं और मैं जानती हूँ आप सबको ईमेल आईडी हमारा रट चुका है, लेकिन फिर भी एक बार फिर आपको बता देती हूँ कि आप ईमेल हमें कर सकते हैं fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। वकील अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी तारीफ के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक्चुअली मेरा दिन बना दिया। लिख रहे हैं, छुट्टियों में गांव अच्छा लगता है, हमारे आम की बाग है उसी में हम रोज आते हैं, खेत भी हमारे उधर है।

आम के बाग में है, आम गिरने लगे हैं। वकील अहमद मंसूरी, कटका अथूरी, जिला सीतापुर, साहिबा अंसारी, शाजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफशा सिद्दीकी, अहमद नवाब, सबका नाम इन्होंने लिख दिया है। मुनेश कुमार राज लिखते हैं भानपुर हरोवा जिला लखीमपुर खीरी से, हम हैं एफएम के दीवाने, आपकी आवाज से हमें हर कोई जाने, रोना पड़े तो गुदगुदाए ना कोई, हंसने के लिए हजार होते हैं बहाने, वाह वाह वाह वाह। ये बात तो बिल्कुल सही है, आप अगर दुखी होते हैं तो एक बार कोई आपकी परेशानी सुन लेता है, दो बार सुन लेता है, 90% केसेस में कोई आपकी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं देता और बाद में सुनना भी पसंद नहीं करता, तो क्यों नहीं हर वक्त मुस्कुराते रहे, क्योंकि समस्याएं हैं तो उनके समाधान भी है, मिल ही जाएंगे सूनर और लेटर। आगे लिखते हैं कि मैं पहाड़ों को पसंद करता हूं, पिछले साल उत्तराखंड के शिवपुरी घूमने गया था। जनवेश कुमार जी लिख रहे हैं कि कल आपने और रत्ना जी ने जो जीएमएल किया था अच्छा लगा था, मुझे अपना घर लखनऊ शहर अच्छा लगता है, वहीं मैं छुट्टियां बिताना पसंद करता हूं। रत्ना जी को भी ये नमस्कार करें, उम्मीद करती हूँ रत्ना इस वक्त आपका प्रोग्राम ये वाला, क्योंकि ये तो आपका प्रोग्राम हो गया ना, सुन रही होंगे। लिख रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ की भूल भुलैया चौक और वहां की आइसक्रीम खाने में बड़ा आनंद आता है। जनवेश कुमार ग्राम रसूलपुर पोस्ट सकरावा जिला कन्नौज, इस वक्त नोएडा में सुन रहा हूँ। नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से लिखती हैं, किसी को देखकर जज मत करो, क्या पता भगवान तुम्हें उससे भी बेहतर देने वाले हो। हेल्थ एंड फिटनेस अच्छा लगा, मुद्दा मैं नहीं सुन पाई, अपनी दोस्त के यहाँ आई हुई थी, अब तो सुन लिया होगा है ना, अगर मैं कहीं भी जाना पसंद करती हूँ तो अपनी दोस्त पीहू के साथ। अंकित वैश्य का ईमेल आया, लिख रहे हैं शिमला में मैं मोनू मामा जी से मिलने जा रहा हूँ, यानी कि गांव में। ओके, शिमला से इन्होंने ईमेल किया है और लिख रहे हैं कि गांव में जो आनंद है वो कहीं बाहर कहाँ, गांव में पैसे भी नहीं खर्च होते, सारी चीजें उपलब्ध रहती हैं। राजा बाबू फ्रॉम शिमला, तो भाई पैसे खर्च होते हैं हर जगह, पैसे खर्च होते ही बात अलग है कि अगर आप मामा के घर जा रहे हैं तो मामा आपको सारी चीजियां यूं ही उपलब्ध करा देते हैं। अशोक कुमार लिख रहे हैं रायबरेली उचाहार धमधामा से कि छुट्टियों में घर पर ही रहता हूँ, मौका मिला तो कभी कभी घूमने भी चला जाता हूँ। अनिता साहू, आलोक साहू, मुस्कान साहू, अमन साहू के साथ मेल किया है। भाई ये भी बात सही है, छुट्टियों के नाम पर हम सब घर से निकल पड़ते हैं और होता क्या है कि नॉर्मल डेज से कहीं ज्यादा थक जाते हैं। अभी मैं भी कुछ दिनों के लिए बाहर थी और कुछ ऐसी थकान लेकर आई हूँ कि तकरीबन 5-6 दिन हो चुके हैं लेकिन थकान उतरने का नाम ही नहीं ले रही है। तो इससे तो मैं टोटली अग्री करती हूँ कि हम सब छुट्टियों में घूमने जाना है घूमने जाना है, इसको ऐसे रिचुअल बना लेते हैं कि कभी कभी नॉर्मल डेज से कहीं ज्यादा थक जाते हैं। मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं, लिखते हैं ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी सी तारीफ के लिए। आगे लिख रहे हैं कि पहाड़ों पर जाते हैं और यहाँ हैदराबाद में पहाड़ बहुत हैं, गांव जाने का मन करता है लेकिन काम ज्यादा होने की वजह से नहीं हो पाता। एक्चुअली मेरा गांव राजकटरा अहमदपुर बाराबंकी में है। सादिया अंसारी, साहिबा अंसारी, समा अंसारी, गुलफशा, अप्पी, एमन नवाब, अप्पी, सबको नमस्कार बोल रहे हैं। तो जी, किसी को समंदर पसंद है, किसी को पहाड़ पसंद है, किसी को हरियाली में घूमना फिरना पसंद है, तो कई ऐसे भी हैं हमारे दोस्त जिन्हें बस घर में रहना ही पसंद है। लेकिन ना कितना अच्छा लगता है जब हम एक दूसरे को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो थोड़ा और कुछ बताइए अपने बारे में, जल्दी से ईमेल भेजिए और मुझे बताइए कि आप छुट्टियों में कहाँ जाना पसंद करते हैं। आप मतलब माउंटेन कॉलिंग वाले पर्सन है या फिर समंदर आपको अपनी ओर खींचता है या फिर जस्ट यूं ही अपने घर में रहना छुट्टियों में भी आपको ज्यादा भाता है। मैं हूँ ज्योति और मुझे आप सुन रहे हैं प्रोग्राम HPTV यानी होटो पे तेरी बात में।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: कभी कभी घर में रहना, रिलैक्स करना ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम सभी को लगता है कि छुट्टियां हुई हैं तो घर से बाहर निकला जाए, दुनिया को देखा जाए। कितनी बड़ी और कितनी खूबसूरत ये दुनिया है ना। और ऐसे भी कहा जाता है कि ये जो ट्रैवलिंग है ना, ट्रैवलिंग आपको जो एक्सपीरियंसेस देती है, जो ज्ञान देती है, वो किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में, किसी भी किताब में मिल ही नहीं सकता। और किसी ने कहा भी है ना कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही नौजवानी फिर कहाँ। इसीलिए तो जैसे ही मैंने आज का क्वेश्चन थ्रो किया कि आपको छुट्टियों में कहाँ जाना पसंद है, ढेर सारे ईमेल्स मेरे सामने स्क्रीन पर आ गए। आलोक साहू जी का ईमेल है, रायबरेली ऊंचाहार धमधमा से लिख रहे हैं कि छुट्टियों में कहीं जा नहीं पाता, घर पर ही रहकर रेडियो सुनता हूं और अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान।

बनते रहते हैं, समोसे पकौड़े समोसे पकौड़े समोसे पकौड़े के साथ कोल्ड ड्रिंक आराम खाते हैं, और ये तो छुट्टियां ऐसे ही मस्ती में बीत रही है। भाई ये बहुत गलत बात है, मतलब लंच के टाइम पे आप समोसे पकौड़े की बात कर रहे हैं, बहुत ही गलत बात है। मुझे भी भूख लगने लग गई, नॉट फेयर। बाबू अंसारी देव कली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से लिख रहे हैं। ओके जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतनी प्यारी प्यारी बातें, इतनी ढेर सारी तारीफ के लिए शुक्रिया। लिखते हैं, कहना चाहता हूँ कि मुझे छुट्टी मिलती है या फिर मैं जब कभी फ्री होता हूँ तो घर पर ही रहना पसंद करता हूँ। ये भी अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मोनू सेठ जी लिखते हैं, मैं एक दुकानदार हूँ, मेरे लिए सब दिन बराबर है। मतलब कभी तो टाइम निकाला करिए मोनू जी। सूरज उगने से पहले ही दुकान के ताले खुल जाते हैं, त्योहारे की भीड़ हो या इतवार, दुकानदार के दिन कभी ना थमते हैं। कोई छुट्टी नहीं, कोई विराम नहीं, बस सुबह से शाम का एक चक्र है। ग्राहक की एक मुस्कान पर ही टिकी उनकी रोजी रोटी का मंत्र है। जब आराम की चादर ओढ़ कर सपनों की मीठी नींद सोती है, तब भी एक छोटे से बल्ब की रोशनी में उनकी दुकान की चौखट कभी ना रोती है। परिवार के साथ भी पल बिताना उनके लिए त्योहार से कम नहीं, पर लोगों की जरूरतों के आगे दुकानदार की कोई छुट्टी नहीं। हर मौसम की मार सहकर हर रोज वही सामान सजाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हालात, दुकान पर जरूर आते हैं। बहुत बड़ी बात है, लेकिन मोनू जी कभी कभी ना आपको थोड़ा सा टाइम अपने आप को अपनी फैमिली को देना भी चाहिए, और उसके लिए जरूरी है कि सब कुछ छोड़कर बंद करके घूमने फिरने भी निकला जाए, क्योंकि काम है ये तो कभी खत्म हो ही नहीं सकते, है ना। आशा वसी लिख रहे हैं, मुझे तो पहाड़ों पर जाना पसंद है, एकांत और ठंडा मौसम, लेकिन स्टूडेंट लाइफ है तो अभी ज्यादा कहीं घूम नहीं पाती। नेवर माइंड, सबसे बड़ी बात है ये कि आपको घूमना पसंद है और अभी आप बहुत छोटी हैं, स्टूडेंट हैं, तो आगे जरूर घूमेंगे। अर्जित हर्षित अर्पित प्रिंस परी सेठ, हम सभी लोग बुआ के यहाँ नानी के यहाँ घूमने जाने वाले हैं। बुआ जी ने भी बुलाया है और नानी जी ने भी, वाह भाई वाह, क्या बात है। परी का ईमेल आया है। एमन लिख रही है कि आपने पूछा मैं किस टाइप की पर्सन हूँ, तो मैं ना ही हूँ सी टाइप की पर्सन और ना ही हूँ मैं माउंटेन टाइप की पर्सन है। मुझे माउंटेन से डर लगता है, ऊंचाई से डर महसूस होता है, सी पर्सन भी नहीं हूँ, पानी के लहरों से डर लगता है। मैं हूँ नेचर टाइप की पर्सन, यानी मुझे हरियाली बहुत पसंद है। यहाँ जहाँ भी हूँ वहाँ पर जमीन पर हरी हरी घास हो, खूब पेड़ लगे हो, बेंच पड़ी हो, वहाँ शांति से बैठकर अपने ख्यालों में गुम हो जाना चाहती हूँ। वैसे घूमने के मामले में लखनऊ गई हुई हूँ, अगर कोई मुझसे घूमने को कहे तो लखनऊ में ही घूमना चाहूंगी। आई लव लखनऊ। एमन नवाब संडीला, जो आपने पूरा सीन क्रिएट किया है ना, हरी हरी घास हो, एकांत हो, तो मतलब मैं क्या कहूँ, मेरी आंखों के सामने पूरी पिक्चर बन गई। लेकिन हाँ, अगर लखनऊ आइएगा तो हम सबसे मिलने जरूर आइएगा, भूल तो नहीं जाएंगी। मैं महेंद्र देपन राजस्थान के नागौर जिले के गांव रूण से हूँ। मेरा मानना है कि पहाड़ों की गोद में जो शांति और सुकून है उसका कोई मुकाबला नहीं। मुझे ठंडे और बर्फीले पहाड़ों की वादियों में खो जाना पसंद है। मैंने लोनावला और खंडाला की खूबसूरत वादियों का अनुभव किया है, जो जन्नत जैसे हैं। पहाड़ों के अलावा मुझे हमारे देश के पवित्र धार्मिक स्थलों पर भी जाना अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पर आत्मिक शांति मिलती है। कुछ नाम ले दीजिए, बाबू भाई अंसारी, रोशनी रावत दीदी, बबीता राव दीदी। तो ये जो जन्नत वाली बात कही ना आपने, कहा जाता है ना कि जमीन का जन्नत कश्मीर है, इसी बात पे ये गाना।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।
3: रामेश्वर जी का ईमेल आया। रामेश्वर कठेरिया ग्रामवा पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से उमाकांती कठेरिया के साथ लिख रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाते, बस आपका प्रोग्राम लगातार सुनते रहते हैं। ओके रवि कुमार जी ने गाने की फरमाइश की, तो ये अभी फरमाइश वाला तो प्रोग्राम चल ही नहीं रहा। अभी तो मैंने आपसे ये पूछा है कि आपको छुट्टियों में कहाँ पर जाना पसंद है। जितेंद्र नामदेव, बबलू नामदेव, अंजू नामदेव, खनक नामदेव, आरोही नामदेव, सौम्या नामदेव, ग्राम पोस्ट खन्नौदी, जिला शहडोल से जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। सब लोग मिलजुल कर और इतना अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, थैंक यू। इस छुट्टी में बच्चे तो नाना नानी क्या चले गए हैं, तो वहां पर आम का आनंद उठा रहे होंगे क्योंकि वहां पर आम का बड़ा सा बागीचा है। रोशनी रावत ने लिखा है जी, पहले तो शुक्रिया रोशनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लिखती है चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही हूँ, रहने वाली हूँ बमहना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव की। मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, कहीं भी ले चलो। और थोड़े दिनों बाद मैं फिर से जाने वाली हूँ, बहुत सारे राज्यों में गई हुई हूँ।

तो जी सीधी सी बात है ये कि घूमना फिरना मुझे ऐसा लगता है जरूरी नहीं है कि आप बहुत दूर जाएं, बहुत ज्यादा खर्च करके जाएं, लेकिन थोड़ा घर से निकलना ये आपको बहुत कुछ सिखाता है, नो डाउट। आंचल सेठ ने लिखा है, दीदी नमस्ते, महाकाल गई थी और अभी भैया के यहाँ हूँ, मायके में हूँ, 7 दिन यही रहूंगी, आपके प्रोग्राम सुनती रहूंगी। हाँ सुनती रहिए और फीडबैक भी देती रहिए। ग्राम करेली बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, माहे नूर अंसारी, नसरीन अंसारी, समा अंसारी, इन सब ने ईमेल किया है और अब टाइम हो गया है कि प्रोग्राम को वाइंड अप किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबने इतने अच्छे फीडबैक दिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। थोड़ी देर पहले ये कहा था ना आप में से किसी ने कि कहीं भी घूमना पसंद है। कहीं भी आप जा सकते हैं प्रोवाइडेड कि आपकी कंपनी अच्छी हो, तो इसमें मैं टोटली अग्री करती हूँ क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि आप एक जगह एक बंदे के साथ जाते हैं तो आपका दूसरा एक्सपीरियंस होता है और दूसरी कंपनी में जाते हैं तो फिर दूसरा एक्सपीरियंस होता है। तो कहीं भी घूमने जाइए, कुछ भी करिए, बस ये ध्यान रखिए कि आपका साथ बहुत खूबसूरत हो, बहुत हसीन हो, कुछ ऐसा हो कि आप कुछ ये कह सकें कि तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं। बारिश अली खान जी का भी ईमेल आया है, देवस्थल के दर्शन जाने का प्लान बना रहे हैं। तो जी ऑन दिस नोट ज्योति कहती है, आपसे टाटा फ्रॉम दिस प्रोग्राम, ये खूबसूरत गाना आपके साथ छोड़कर जा रही हूँ, फिर न्यूज ब्रेक और उस पर आपके ईमेल्स, आपकी फरमाइश और बस आपकी पसंद के सॉन्ग्स इन द प्रोग्राम हॉट मेल्स। स्टे ट्यून्ड।

0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
1: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
2: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध कराई जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति

0: भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, अरिसा पीठा, चकोली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। रजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, लाट, पुदुचेरी और कार्यकाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: दिलीप, अंजलि, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों बाद आपका ईमेल मिला है। आपकी आवाज सुनकर दिल खुश हो जाता है। ओके जी, थैंक यू, थैंक यू। प्रोग्राम की इन्होंने फरमाइश की है, प्रोग्राम में इन्होंने गाने की फरमाइश की है कि कोई भी गाना इनमें से आप प्ले कर दीजिए। सारे गाने बहुत अच्छे हैं, पूरी कोशिश की जाएगी। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, इनका भी ईमेल आया। भगवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, स्वीट सी बात लिखी है कि प्रोग्राम पसंद आ रहा है, आप ईमेल शामिल करें ना करें, हम तो प्रोग्राम सुनते रहेंगे। बिट्टू गगनेजा जी का ईमेल आया जलालाबाद वेस्ट से, सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। भाई सजेशन तो आपका बिल्कुल सही है बहुत अच्छा सजेशन है, लेकिन अब मैं क्या बोलूं। इन्होंने लिखा है कि जो लोग कई ईमेल भेज रहे हैं उनके ईमेल शामिल मत करिए। अब किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल चलिए मुझे लगता है कि एक चीज होती है जिसे कहते हैं कि हम अपने आप पर नियंत्रण रखें, एक ईमेल भेजें जिससे कि सबके ईमेल शामिल हो सके। बसंत कुमार सिन्हा शॉ का ईमेल है, दमदम एयरपोर्ट कैलकाटा से बसंत, रेखा देवी सिन्हा, अजय, तनुश्री गुप्ता, नन्हे मुन्ने, अन्विका बेबी, और लिखते हैं कि नाम शामिल करने के लिए

आपका दिल से शुक्रिया दीदी, और राइड बहुत बहुत शुक्रिया आपका ईमेल भेजने के लिए। फिलहाल आप ही में से किसी की पसंद का ये गीत आपके रेडियो सेट पर।

0: सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।
2: खुश रहो, खुशियां बांटो। मैंने कह रही, ये कह रहे हैं अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा और भाई सुच्चा सिंह पाठक। विजय महोबिया जी का ईमेल है, लिख रहे हैं कि हमारे मित्र हमसे रुष्ट हैं, उनके लिए गाना सुना दीजिए जी। पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन अच्छा ये रहेगा ना, पेंटर बाबू विजय सिंह महोबिया रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से, आप अपने दोस्त को फोन करिए या फिर उनके घर जाकर के बैठ जाइए, उनसे जाकर के कहिए कि भाई ये जो दोस्ती है ना, छोटी छोटी सी बातों में नहीं टूटनी चाहिए। तुम्हारी यादों के झोंके मुझे सोने नहीं देते हैं, भिगा देते हैं पलकों को, मगर रोने नहीं देते हैं। मैं अक्सर भूल जाता हूँ जरूरी काम सब अपने, वो बीते पल तुमसे मुझे जुदा होने नहीं देते हैं। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, सतीश अनेजा जी, लीजी जी आपका ईमेल फिर से शामिल हो गया, हैप्पी। पहले भी शामिल हुआ था सतीश अनेजा, विमला अनेजा जी चंडीगढ़ सिटी से। एमके राज जी, मनीष कुमार राज हरवा जिला लखीमपुर खीरी भानपुर से। हम हैं एफएम रेडियो के दीवाने, आपकी आवाज से हमें हर कोई जाने, चलती है आवाज उड़ती है धूल। हमारे इस ईमेल को पढ़ना ना जाना भूल, आनी बनी आ गया, रेडियो पर ज्योति मैम का नाम छा गया। ओके नाम इस प्रकार है, शिवम शिवानी राधा रानी अनुराधा के साथ लक्ष्मी, मोहम्मद शादा विलेज बेलाई संडीला डिस्ट्रिक्ट हरदोई, गुड आफ्टरनून मैम कैसे हो आप, मूवी का नाम बताया है और फिल्म के गाने की फरमाइश की है, कमलकांत गुप्ता जी, दीपा रिमझिम गुप्ता, ये दोनों पिपरिया से, समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, अंकुर राघव गुप्ता, मसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से, मोहम्मद जाकिर मसूरी, सबरू निशा शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। रोजी डी कैस्ट्रो, जॉन डी कैस्ट्रो, पॉल डी कैस्ट्रो, विलिस डी कैस्ट्रो, इन सब ने भी मिल करके ईमेल किया है, जनकपुरी सहारनपुर से। ब्रिजेश सिंह जी आपका ईमेल प्ले, आपका ईमेल भी पढ़ा जा चुका है ना, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आप ही में से किसी एक की पसंद का ये खूबसूरत गाना सुनाते हैं। फिल्म का नाम है तेजाब।

0: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
1: संदीप मक्कड़ जी का ईमेल है मेरे सामने। भरत मक्कड़, कमल साहनी और कमल साहनी पिंगावाला चौक गोरिया जलंधर पंजाब से। अजमत अली साहब ने भी अपना कीमती वक्त दिया है जिला सीतापुर से। ओके, रहने वाले जिला सीतापुर के हैं लेकिन अभी दिल्ली से ईमेल कर रहे हैं। गाने की फरमाइश की है जी, कोशिश की जाएगी, बिल्कुल कोशिश की जाएगी। लेकिन जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे अपनी अपनी घड़ियों में 2:47 और 33 सेकेंड्स हो चुके हैं, तो कितने गाने हम प्ले कर पाते हैं, लेट्स सी। राजू मिकलानी, बबीता मिकलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू का भी ईमेल आया है दुर्गा कॉलोनी हांसी से। बोधराज खुरवाल जी का ईमेल आया, संदीप मक्कड़ और गोविंद परमार। गोविंद परमार जी ने गांधीनगर गुजरात से ईमेल किया है। जीके परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष एंड दीपल, बाबू अंसारी जी का भी ईमेल है। गाना डेडिकेट करना चाहते हैं रेडियो दोस्त कुलदीप गुप्ता, महेंद्र देपन, फैज अंसारी, गौश मोहम्मद अंसारी जी को। और ईमेल इन्होंने कहां से किया है? ओके, इन्होंने ईमेल किया देवकली अहमदपुर बाजार 12 बंकी से। नमस्ते, मैं गौन नटोही जिला प्रतापगढ़ से हूँ। मैम जी आपका प्रोग्राम अच्छा लगता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना नाम आपने नहीं लिखा, तेज भान जी आपके ईमेल आईडी से मैं ये गेस कर सकती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके ईमेल के लिए। आरिफ खान, सोनू खान, राजू केवट, रवि मिश्री, विनायक तिवारी, इन सबके भी ईमेल आए। खनौदी शहडोल MP से। इनके अलावा शाहरुख नूर अंसारी, बोझराज खोरवाल, जावेद अख्तर, दिलावर खान, कमलकांत गुप्ता, रविंद्र मोहन दास और जितेंद्र नामदेव के अलावा जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप में से किसी के ईमेल्स, किसी के नाम छूटने ना पाए। रियासत हुसैन साहब का ईमेल है, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, हरजिंदर शिंदा, हीरा मणि वर्मा, सतीश अनेजा जी, राजकुमार डूडी, दिग्दर्शन गौड़ जी, अक्रम हुसैन, प्रिंस सदानंद मंडूरकर, सतीश अनेजा, ब्रिजेश सिंह, रमाकांत सिंह, मूसा शेख, संजय ढिंगिया, मुकेश कश्यप, मोहम्मद सादिक, रविंद्र मोहन दास, उत्तम कुमार भगत, जय खोरवाल, इन सबके भी ईमेल हमारे तक पहुंचे थे। तो जी, कोशिश पूरी की गई कि आप में से ज्यादातर लोगों के ईमेल्स पढ़ लिए जाए, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि वक्त इजाजत नहीं देता, तो इसलिए वक्त के सामने तो हम सभी मजबूर हैं, है ना। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं ये खूबसूरत गाना, फिल्म का नाम नरसिम्हा। फरमाइश करने वाले हैं आप ही में से हमारे एक पुराने दोस्त।

2:58 और ठीक 3 सेकंड्स हो चुके हैं और ये वो टाइम है जबकि अब प्रोग्राम को हमें वाइंड अप करना ही होगा. रविंद्र मोहन दास, नीलू शर्मा, वारिस अली खान जी, मोहसिन रजा जी, मूसा शेख जी, पूरी कोशिश की गई है कि आप में से किसी के भी नाम मिस ना हो. रमेश चौधरी जी का भी ईमेल आया है बिल्कुल अभी अभी, जोधपुर राजस्थान से. रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी एंड हिमाक्ष, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबने अपना कीमती वक्त दिया और प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया. लेकिन अब ज्योति को प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना होगा. सो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आगे भी रेनबो के पिटारी में बहुत कुछ है आपके लिए खास.

Hi, this is Udit Narayan. You are listening 102.2 FM Rainbow शहर की म्यूजिकल हार्ट बीट. दिल से जुड़े रहें और सुनते रहें शहर की म्यूजिकल हार्ट बीट को.

102.2 की फ्रिक्वेंसी पर आपने ट्यून इन किया है एफएम रेनबो कानपुर को। गुड आफ्टरनून दोस्तों, म्यूजिक आवर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त ऋतु और आज मैं लेकर आई हूं एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक थीम, रक्तदान महादान। रक्तदान के बारे में आपके क्या विचार हैं, साझा कीजिए हमसे। ईमेल आईडी है airkansoemedia@gmail.com।

दोस्तों रक्त यानी ब्लड वो अमूल्य उपहार है जिसे ना तो किसी फैक्ट्री में बनाया जा सकता है और ना ही किसी प्रयोगशाला में। ये केवल एक इंसान से दूसरे इंसान को मिल सकता है। एक यूनिट रक्त 3 लोगों तक की जान बचा सकता है, इसीलिए इसका दान कहलाता है महादान।

वेल गाइस, इंडिया में हर वर्ष लाखों यूनिट ब्लड की आवश्यकता होती है। दुर्घटनाओं, ऑपरेशन, कैंसर, थैलेसीमिया और प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड की जरूरत पड़ती है। ऐसे में स्वैच्छिक रक्तदाता किसी देवदूत से कम नहीं होते। रक्तदान से किसी की जान बचाई जा सकती है। रक्तदाता का स्वास्थ्य परीक्षण भी हो जाता है। शरीर में नया ब्लड बनने की प्रक्रिया सक्रिय होती है और समाज में

रक्तदान महादान जी हाँ, यही थीम है हमारे आज के म्यूजिक आवर प्रोग्राम की। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है, तो हम आपको बता दें कि ये एक भ्रम है। सच्चाई ये है कि स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान के बाद सामान्य जीवन जी सकता है। शरीर कुछ ही दिनों में रक्त की कमी पूरी कर देता है और रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित प्रक्रिया है। तो याद रखिए, डर नहीं, जागरूकता जरूरी है। लेकिन अभी जरूरत है एक और ट्रैक की।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
8: म्यूजिक आवर प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं FM रेनबो कानपुर से 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर। प्रोग्राम में आज की थीम है रक्तदान महादान। अगर आपने रक्तदान किया है तो हमें बताइए कब और किसके लिए। इस ईमेल आईडी पर AIRKANSOMEDIA@gmail.com। दोस्तों रक्तदान केवल दान नहीं बल्कि जीवन दान है। कल्पना कीजिए, एक सड़क दुर्घटना में घायल युवक अस्पताल पहुंचता है, डॉक्टर कहते हैं कि तुरंत रक्त चाहिए। तभी एक अनजान रक्तदाता आगे आता है और रक्तदान कर उस युवक की जान बच जाती है। दोस्तों उस रक्तदाता को शायद कभी ये पता भी ना चले कि उसने किसकी जिंदगी बचाई, लेकिन उसका ये कार्य हमेशा अमूल्य रहेगा। प्रोग्राम में बातें जारी रहेंगी लेकिन इस ट्रैक के बाद।

दोस्तों, रक्तदान समाज को जोड़ने का माध्यम है। ये जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर मानवता की सेवा का संदेश देता है। किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान लाने का सबसे सरल तरीका है रक्तदान। तो दोस्तों, यदि आप स्वस्थ हैं तो साल में कम से कम एक या दो बार रक्तदान अवश्य करें। आपके कुछ मिनट किसी परिवार की खुशियां लौटा सकते हैं। तो रक्तदान करिए, जीवन बचाइए और एंजॉय कीजिए ये ट्रैक।

0: सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: डियर रेनबो लिस्नर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
3: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
2: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
3: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
2: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 3:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
4: इस समय आप एंजॉय कर रहे हैं FM रेनबो कानपुर को 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर अपनी रेडियो दोस्त ऋतु के साथ। बातें हो रही हैं रक्तदान महादान की।

वेल गाइस, रक्तदान किसी को दिया गया सबसे अनमोल उपहार है। ये ऐसा दान है जो देने वाले को भी खुशी देता है और पाने वाले को नया जीवन। रक्त की हर बूंद अमूल्य है। आपका छोटा सा प्रयास किसी के जीवन का आधार बन सकता है। तो दोस्तों, चलते चलते बस इतना ही कहूंगी, जागरूक रहिए और रक्तदान करके मानवता की सेवा कीजिए। इसी संदेश के साथ मुझे म्यूजिकार प्रोग्राम से दीजिए इजाजत, लेकिन आप एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत ट्रैक।

102.2 की फ्रिक्वेंसी पर आपने ट्यून इन किया है एफएम रेनबो कानपुर को। दोस्तों, हमारा अगला प्रोग्राम होगा हेल्थ मंत्रा, जिसमें विश्व रक्तदाता दिवस पर विशेष रेडियो वार्ता हम लेकर आए हैं। इसमें आज आप सुनेंगे डॉक्टर प्रवीण कटियार से दीपशिखा गुप्ता की बातचीत। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर आपने ट्यून इन किया है एफएम रेनबो कानपुर को।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा।
2: कार्यक्रम का आज का ये अंक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ मैं दीपशिखा गुप्ता, और आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है शहर के जाने माने वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर प्रवीण कटियार जी को, जो कि कानपुर आईएमए के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका आकाशवाणी कानपुर के हमारे स्टूडियो में।
3: धन्यवाद दीपशिखा जी मुझे आमंत्रित करने के लिए।
2: डॉक्टर साहब आज हम मना रहे हैं विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, और आज हम चाहते हैं कि रक्तदान के विषय में आपसे कुछ जरूरी बातें की जाएं जिनका लाभ हमारे सभी लिसनर्स को मिल सके। इस क्रम में सबसे पहले हम आपसे आज पूछना चाहेंगे कि रक्तदान को महादान क्यों कहा जाता है।
3: सर्वप्रथम तो सभी डोनर्स को जो ब्लड डोनेट करते हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं ब्लड डोनर डे की, साथ में बहुत ही साधुवाद क्योंकि उनका दिया गया एक यूनिट रक्त 3 जीवन बचाता है। अब रक्तदान क्यों करें यह एक विषय है जिस पे मैं बताना चाहूँगा कि रक्त का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसे कहीं बना नहीं सकते, ह्यूमन ब्लड है तो ये ह्यूमन से ही आएगा, और हर एक 3 सेकंड में पूरे विश्व में एक ब्लड की जरूरत होती है कि एक बंदे को जरूरत है हर एक 3 सेकंड में, और जैसा मैं बता चुका हूँ कि एक यूनिट से 3 लोगों की जान बच सकती है। और सबसे बड़ा जो महादान कहने का विषय है वो इसलिए कि गिफ्ट ऑफ लाइफ है, आप किसी को जीवन दान दे रहे हो, उससे बड़ा दान तो कोई भी नहीं। और एक आंकड़ा मैं बताना चाहूंगा कि पूरे विश्व में 75 मिलियन लोग जो पूरे एक वर्ष में ब्लड डोनेट करते हैं, 5 लाख फीमेल्स हैं जो कि प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन से जिनकी डेथ होती है, जिसमें कि 1.5 लाख फीमेल्स खून की कमी की वजह से डेथ होती है। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा आंकड़ा है, और उसके लिए हमें और अवेयरनेस की जरूरत है, लोग और डोनेट करें। एक आंकड़ा मैं और बताना चाहूंगा कि जो 80% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उसमें से केवल 20% लोगों को ही ब्लड प्राप्त हो पाता है, और जो वॉलंटरी डोनर्स हैं वो करीब 18% है। तो आप सोचिए कितनी और जरूरत है पूरी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के।
2: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि रक्तदान का महत्व बहुत ज्यादा है, और आपने जो आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत किए डॉक्टर साहब, उनसे हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे श्रोता भी ये समझ सकेंगे कि रक्तदान का महत्व कितना है और रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन अपने श्रोताओं की कुछ शंकाओं का समाधान हम चाहते हैं कि आज आपके माध्यम से करें। तो सबसे पहला सवाल इस क्रम में आपसे ये पूछना चाहेंगे कि रक्तदान कौन कर सकता है, इसके लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए उस व्यक्ति की, और वजन से संबंधित अगर कोई इंस्ट्रक्शन हो तो वो भी बताएं।
3: जी, रक्तदान 18 से लेकर 60 वर्ष तक के व्यक्ति कर सकते हैं, वह स्वस्थ होने चाहिए, उनको कोई बीमारी ना हो, और 45 किलोग्राम से अधिक वजन होना चाहिए। हीमोग्लोबिन के संबंधी भी रिक्वायरमेंट है, जो मेल्स हैं, पुरुष हैं उसमें 12.5 ग्राम पर डीएल से अधिक वैल्यू हो हीमोग्लोबिन की, और फीमेल्स में 12 ग्राम पर डीएल से अधिक वैल्यू हो, तो ऐसे सभी लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं।
2: डॉक्टर साहब ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनके होने पर व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता है?
3: रक्तदान जो लोग नहीं कर सकते हैं, तो पहले तो आते हैं कि जो लोग जीवन पर्यंत रक्तदान नहीं कर सकते, तो ऐसे लोग हैं जिनको कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग डिसऑर्डर है
2: जी,
3: कि ब्लीडिंग से संबंधित कोई भी समस्या वो लोग नहीं कर सकते हैं, हीमोफीलिया इसमें एक आ गया। इसी तरीके से हार्ट किडनी लीवर बीमारी वाले लोग नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ जिनको कैंसर है वो लोग नहीं कर सकते हैं, जिनको कि टीबी है, लेप्रोसी है, मेंटल डिसऑर्डर है, एपिलेप्सी है, अस्थमा है, ऐसे लोग भी नहीं कर सकते हैं, और डायबिटीज से ग्रसित वो लोग जो कि इंसुलिन ले रहे हैं वो लोग भी रक्तदान नहीं कर सकते हैं, जिनको हाई बीपी की शिकायत रहती है वो लोग भी नहीं कर सकते हैं। फिर आते हैं कि कौन से लोग 1 साल बाद कर सकते हैं, जिसकी सर्जरी हुई है तो सर्जरी के 1 साल बाद वो कर देगा, जिसको टाइफाइड है वो टाइफाइड ठीक होने के 1 साल बाद ब्लड डोनेट कर सकता है, डॉग बाइट वाले भी 1 साल बाद कर सकते हैं। इसी तरीके से 6 महीने का रिस्ट्रिक्शन जिन लोगों पे है वो लोग हैं जिनको कि कभी मलेरिया हुआ, मलेरिया का ट्रीटमेंट के बाद 6 महीने बाद वो कर सकते हैं, जो टैटू और जिन्होंने बॉडी पियर्सिंग कराई भी वो उन्होंने तत्काल कराई है तो वो लोग भी, उन पे भी रिस्ट्रिक्शन है, वो 6 माह बाद ही कर पाएंगे। ऐसे किसी ने कोई वैक्सीनेशन कराया हुआ है तो उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शन है कि वो 6 माह बाद कर पाएगा, और किसी ने अगर दांत भी निकलवाया है तो उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शन है कि वो दांत निकलवाने के 6 माह बाद ब्लड डोनेट कर पाएगा। तो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ये लोग ब्लड डोनेट ऐसे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस के बाद ही कर पाएंगे।
2: डॉक्टर साहब, ये समझने के बाद कि कौन से ऐसे लोग हैं जो रक्तदान कर सकते हैं और ये भी समझने के बाद कि कौन से ऐसे लोग हैं जो रक्तदान नहीं कर सकते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक व्यक्ति कितना फ्रीक्वेंटली रक्तदान कर सकता है, यानी कि अगर उसने आज की डेट में रक्तदान किया है तो अगली बार वो रक्तदान कब कर सकता है।
3: रक्तदान का एक नियम है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो ब्लड डोनेट कर रहा है तो 3 महीने बाद ही दोबारा रक्तदान कर पाएगा।
2: डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातें रक्तदान के विषय में आज आप हमारे लिसनर्स को बता रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि अपनी पसंद का कोई एक गीत आज आप हमारे सभी लिसनर्स को सुनवाते चलें।
3: पल पल दिल

0: डॉक्टर साहब की पसंद पर एक खूबसूरत सा गीत सुनने के बाद एक बार वापस लौट आए आकाशवाणी कानपुर के अपने स्टूडियो में, जहां आज हम बात कर रहे हैं शहर के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर प्रवीण कटियार जी से। और आज बातें हम कर रहे हैं रक्तदान के विषय में, क्योंकि आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। आगे बढ़ते हुए आपसे हमारा सवाल ये होगा कि रक्तदान जब किया जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति से जब रक्त लिया जाता है, तो उस समय किन बातों का ख्याल एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को भी रखना चाहिए?
1: जो रक्त लेने का प्रोसीजर है वह वॉलंटरी ब्लड डोनेशन है, व्यक्ति स्वयं करता है और उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है, उससे एक फॉर्म भराया जाता है, उससे एक कंसेंट ली जाती है कि वो अपनी मर्जी से ही रक्त दे रहा है। साथ में साथ उसकी हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है, वेट, क्योंकि ये एक मानक है, उस मानक में ही जब बंदा आएगा तभी वो ब्लड डोनेट कर पाएगा। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर के पार्ट पे ध्यान ये रखना है कि जो ब्लड डोनेशन के मानक हैं वो मानक के अनुरूप ही बंदा लें ब्लड डोनेशन के लिए, एक बात ये। और दूसरी बात जो मैं बताना चाहूँगा कि जो ब्लड लिया जाता है किसी भी बंदे का जिसने डोनेट किया, उसकी जाँचें होती हैं और वो पूरी जाँचें होने के बाद भी वो दूसरों को देने के लिए काम में लाया जाता है। कोई अगर ये सोचे कि ऐसे किसी को दे दिया जाता है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्लड डोनेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेकर स्टेट गवर्नमेंट से लेकर बहुत ही सख्त मानक हैं, ब्लड को लेने से लेकर ब्लड को किसी भी नीडी को देने तक।
0: डॉक्टर साहब, रक्तदान के बाद रक्तदाता को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए या कौन से प्रिकॉशंस हैं जिनको फॉलो करना चाहिए?
1: जिस भी व्यक्ति ने रक्तदान किया है तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि वो रक्तदान से पहले क्या करके आए, तो उसके लिए कि उसकी नींद पूरी हुई हो और उसने प्रॉपर मील लिया हो, उचित खाना खाया हो और अपने को मेंटली प्रिपेयर कर लिया हो कि नहीं भाई हमें कल जाके ब्लड डोनेट करना है, तब वो रिलैक्स होके आएगा। नहीं तो क्या होता है, ब्लड डोनेट करने आया तो उसको एंजाइटी हो गई, कहीं कुछ हो गई, दिमाग में कुछ और सोच रहा है, तो इन चीजों का व्यक्ति को ध्यान रखना है। और इसके बाद जब ब्लड डोनेशन हो जाता है, हार्डली 8 to 10 minutes लगते हैं एक डोनेशन में, उसके बाद उसको थोड़ी देर रेस्ट करना है, फ्लूट लेना है और फ्लूट 24 घंटे तक लेना है। दूसरी बात यह है कि 1 घंटे तक इसको स्मोकिंग नहीं करनी है, और जब वो नेक्स्ट मील लेगा उसको अल्कोहल नेक्स्ट मील के बाद ही अगर उसको लगता है कि लेना है तो उसके बाद ही लेना है, उससे पहले नहीं लेना है। साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है कि लोग डोनेट करके उठे तुरंत निकल गए, एलिवेटर में चढ़ गए, तो वो काम नहीं करना है। ब्लड डोनेशन के बाद 1 दिन तक आपको कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करनी है, कोई फिजिकल गेम नहीं खेलना है, इन बातों का ध्यान रखना है ब्लड डोनेशन के बाद।
0: डॉक्टर साहब, ब्लड डोनेशन के बाद ऐसी कौन सी सामान्य समस्याएं हैं, या कहना चाहिए कि ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं कि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, तो कौन सी समस्याएं हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है और उनका जब एक बार मैनिफेस्टेशन हो जाए उसके बाद लोगों को क्या करना चाहिए?
1: कभी कभी क्या होता है कि डिजी फील करता है व्यक्ति, डिजी फील करता है, तो उसका तरीका यह होता है कि बेड पे लेट गया, उसने फुट इंड अपना ऊपर कर लिया, फुट ऊपर कर लिए तो 5 से 10 मिनट में उसको रिलैक्स फील हो जाता है। कभी कभी क्या होता है उसको चक्कर आके गिर गए, तो उस केस में क्या है, उसको फ्लूट लिटाना है, फ्लूट देना है। नॉर्मली ये मान के चलिए कि 1% केसेस में, मतलब 1% केस ऐसे होंगे जिनमें ये समस्याएं होती हैं, वैसे केसेस में कोई भी ऐसा मेजर या माइनर कोई भी ऐसा इशू देखने में नहीं मिलता।
0: डॉक्टर साहब, लोगों को भ्रांति रहती है कि हमने अगर ब्लड डोनेट किया तो हमारे शरीर में रक्त की मात्रा कम हो जाएगी और इस कारण लोग ब्लड डोनेट करने के लिए आगे अक्सर नहीं आते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे सभी लिसनर्स को बताएं कि एक बार ब्लड डोनेट करने के बाद जो शरीर से रक्त निकाला जाता है उसकी पूर्ति शरीर कितने समय में स्वयं कर लेता है।
1: बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि तमाम लोगों को ये भ्रांति है कि हम रक्त देंगे तो हमें कमजोरी आ जाएगी और बनेगा नहीं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बता चुका हूँ आपको कि 5 से 6 लीटर ब्लड रहता है बॉडी में, और जो डोनेशन का मिनिमम ड्यूरेशन है कि एक बार आप देंगे तो 3 महीने बाद ही आपका ब्लड लिया जाएगा, उससे पहले आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। जो ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम है उसको बॉडी, मतलब आपने ब्लड डोनेट किया तो ब्लड प्लाज्मा बॉडी 24 से 48 घंटे में बना लेती है। इसी तरीके से जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो 3 वीक्स में बॉडी बना लेती है। जो आपका गया वो कितने देर में आएगा मैं वो बता रहा हूँ, और प्लेटलेट और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं विद इन मिनट्स बन जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपका 3 से 6 हफ्ते में जो गया वो सब ऑलमोस्ट पूरा हो गया। और मैं बता चुका हूँ कि जो ब्लड देता है उसको देने के 5-10 मिनट बाद भले थोड़ा ऑकवर्ड फील हो, लेकिन उसके बाद उसको एक नई एनर्जी का एहसास होता है, क्योंकि सेल्स नई आ गई, नई सेल्स आ गई, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि उसने एक लाइफ का गिफ्ट किसी को दिया है, अगर वो दिमाग में हिज लेके चलता है तो वो फीलिंग फिर वर्ड में किसी और चीज में नहीं मिल सकती।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने, और बहुत सारी अच्छी बातें आज आपने हमारे लिसनर्स को बताई। चलते चलते हम चाहेंगे कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर अपनी तरफ से कोई एक संदेश आप हमारे सभी लिसनर्स से साझा करें।
1: मेरा संदेश सभी नगरवासियों को और पूरे देशवासियों के लिए यही है कि अधिक से अधिक संख्या में ब्लड डोनेट करें, और ईश्वर ने आपको धरती पे भेजा है अच्छे काम करने के लिए, तो ब्लड डोनेट करके अच्छा काम करें और आप भी जीवनदाता बने।
0: बहुत अच्छा संदेश आपने हमारे सभी लिसनर्स को दिया कि आप भी जीवन दाता बन सकते हैं। तो हमारी अपील अपने सभी नगरवासियों से और अपने सभी लिसनर्स से यही रहेगी कि अधिक से अधिक मात्रा में आगे आएं और आज रण करें कि आप भी जीवन की रक्षा करेंगे ब्लड डोनेशन के माध्यम से। फिलहाल डॉक्टर साहब आज इतनी सारी बातें, इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमारे सभी श्रोताओं से साझा करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।
1: धन्यवाद दीपशिका जी।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा।

0: 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर आपने ट्यून इन किया है एफएम रेनबो कानपुर को।
1: लीजिए सुनिए कार्यक्रम हेलो कानपुर।

0: A very happy Sunday evening to all my lovely listeners. आप सुन रहे हैं FM Rainbow 102.2 और मैं हूँ सारिका शुक्ला. दोस्तों, कुछ आवाजें दिलों को जोड़ जाती हैं, कुछ बातें चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाती हैं, और जब अपने साथ होना तो शामें और भी खूबसूरत हो जाती हैं. तो तैयार हो जाइए डियर लिसनर्स, क्योंकि अब होंगी ढेर सारी बातें, आपकी फरमाइशें, आपके किस्से और सीधे दिल से दिल का कनेक्शन. तो चलिए दोस्तों, अब वक्त हो चला है इस महफिल की पहली दस्तक का. देखते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर और कौन सा गीत है इनके दिल के करीब. हेलो कानपुर.
1: हेलो,
0: कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो, मैं परी बोल रही हूँ, लखनऊ से.
0: परी, बहुत बहुत स्वागत है. कैसी हैं आप?
1: मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं. ये बताइए कि क्या करती?
1: मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ
0: जी.
1: हाँ जी.

0: तो लोगों के आशियाने बनाती हैं आप?
1: हाँ जी हाँ जी, लोगों के सपनों के घर वो मैं
0: जी,
1: बनाती हूँ।
0: बहुत अच्छा। तो इस सपनों के घर में डेकोरेटर हैं आप, आपका जो काम है उसके अकॉर्डिंग क्या आप हरियाली को कुछ जगह देती हैं?
1: जी बिल्कुल, हमारे यहाँ तो ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं कि जिनको मोस्टली ग्रीनरी बहुत चाहिए होती है, उनकी प्रायोरिटी ग्रीनरी होती है कि बालकनीज और छोटा सा पैच बना दे हम लोग, कि उनको मतलब ग्रीनरी में बैठने का, बाहर फ्रेश एयर में उनको वो मिले। तो हमारे बहुत ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनको हम ये प्रोवाइड करते हैं कि उनको ग्रीनरी का थोड़ा

0: बालकनीज और छोटा सा पैच बना दे हम लोग, कि उनको मतलब ग्रीनरी में बैठने का, बाहर फ्रेश एयर में उनको वो मिले. तो हमारे बहुत ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनको हम ये प्रोवाइड करते हैं कि उनको ग्रीनरी का थोड़ा हिंदी में बोले तो उनको आनंद मिले वृक्षों का.
1: और क्योंकि वृक्ष हमारी लाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ हमें ऑक्सीजन मिलती है और वहीं आंखों को ठंडक मिलती है. तो पौधे लगाना सिर्फ प्रकृति का उपहार नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी. और इसी के लिए लोग ऐसा चाहते हैं कि भाई हर जगह खूबसूरती हो, ग्रीनरी हो और हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ और स्वस्थ रहे. तो बताइए कि आज आप किस फिल्म का गाना सुनना चाहती हैं?
0: आप मुझे सैयारा फिल्म का कोई सॉन्ग सुना दीजिए जो आपकी पसंद हो. वैसे आपकी आवाज मुझे बहुत ही प्यारी लगती है, मैं आपके सारे प्रोग्राम सुनती हूँ.
1: अच्छा ये बताइए कि FM रेनबो कानपुर से बजने वाले प्रोग्राम्स में आपको कौन से सबसे ज्यादा पसंद हैं?
0: मुझे रिसेंटली आपका हमनमा प्रोग्राम जो आप लोग आपस में बातचीत करते हो,
1: जी.
0: मुझे उसमें बहुत ही मजेदार लगता है मुझे वो.
1: और जो ये अभी FM रेनबो कानपुर से हेलो कानपुर शुरू हुआ है, ये आपको कैसा लग रहा है?
0: जी मुझे वो भी अच्छा लग रहा है. आपके सारे प्रोग्राम्स, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आपके सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं.
1: अच्छा
0: आपकी चॉइस, आपके सॉन्ग के चॉइसेस तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं.
1: तो भी हमारे प्रोग्राम्स को आप लखनऊ में रहते हुए कैसे सुनती हैं?
0: आपसे
1: जी, आप न्यूज ऑन AIR ऐप के थ्रू हमें सुनती हैं. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इंतजार रहेगा आपकी कॉल का दोबारा से. थैंक यू,
0: ओके, थैंक यू, बाय.
1: बाय.

0: हेलो कानपुर।
1: हेलो कानपुर।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम ये सचेंडी के पास गलीपुर पड़ता है, वहां से अखंड प्रताप सिंह बोल रहे हैं।
0: स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। बताइए कि कैसे हैं आप?
1: मैम अच्छे हैं? हाँ, आकाशवाणी से हमको बहुत मैम ज्ञान मिलता है, तरह तरह के अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं, सब जानकारियां मिलती हैं घर बैठे आकाशवाणी से।
0: जी, और कब से जुड़े हुए हैं आप आकाशवाणी से?
1: अरे हमको मैम हो गया कम से कम 20 साल हुए जुड़े हुए इससे।
0: जी, तो जितनी भी ऑथेंटिक न्यूज़ होती हैं इसी के थ्रू आपको अवेलेबल होती हैं, तो इस बारे में
1: वही तो कह रहे मैम कि आकाशवाणी के माध्यम से सब जानकारियां मिलती हैं, जैसे सब पूरे हर जगह की, और यही मैम है कि इससे बहुत बढ़िया लगता है हमको।
0: और आकाशवाणी का ही चैनल है FM रेनबो, तो इससे जुड़े हैं कि नहीं आप?
1: हाँ, FM रेंगो से भी जुड़े हैं, उसमें आपका 11 से 12 के बीच में वो प्रोग्राम आता है, हम नवा वो आपका प्रोग्राम हम अक्सर सुनते हैं।
0: जी,
1: हाँ
0: और FM रेनबो कानपुर से हेलो कानपुर भी प्रसारित होता है। तो बताइए आज किस फिल्म का गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: मैम, हमको सुनवा दीजिए वो ये सॉन्ग है, हम ये तो सच है कि भगवान है।
0: ठीक है। हेलो कानपुर। हाँ
2: हेलो,
0: जी, कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
2: हाय, मेरा नाम सविष्का है और मैं दिल्ली से बोल रही हूँ।
0: कैसी हैं सविष्का आप और क्या करती हैं सविष्का?
2: मैं बहुत अच्छी हूँ और अभी करेंटली गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ।
0: ओके, तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विश्व रक्तदाता दिवस, तो इस बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे लिसनर्स को?
2: मेरा ऐसा मानना है कि एक बहुत बड़ा टाबू बना हुआ है सोसाइटी में रिगार्डिंग ब्लड डोनेशन। सबको ऐसा लगता है कि ब्लड डोनेट करने से आपकी बॉडी में जितना ब्लड का अमाउंट है वो कम हो जाता है, सर्कुलेशन वीक हो जाता है, या फिर इमिडिएटली जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो कमजोरी आ जाती है बॉडी में। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सब स्टीरियोटाइप्स तभी ब्रेक होंगे जब ज्यादा से ज्यादा लोगों के लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचेगी कि ये सब सिर्फ एक भ्रम है, ये सब र्यूमर्स हैं, ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट आप बायोलॉजिकली भी देखा जाए तो जब ब्लड डोनेशन आप करते हैं तो आपकी बॉडी में सर्कुलेशन स्ट्रांग होता है क्योंकि जल्दी रेजुवेनेशन होता है, और एथिकली देखें तो आप किसी की जिंदगी को दूसरा मौका दे रहे हैं, और इससे बड़ा आई डोंट थिंक कोई भी चैरिटी का कोई भी काम हो सकता है। ब्लड डोनेशन पर्सनली एंड फॉर सोसाइटी ऑल्सो इज अ वेरी गुड थिंग, एंड आई थिंक मोर एंड मोर पीपल शुड टेक दिस अप।
0: क्या बात है, क्या मैसेज दिया है आपने हमारे लिसनर्स को। और वैसे कहते भी हैं कि रक्तदान महादान, तो इस दान में सभी को आगे आना चाहिए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। सविष्का, बताइए आज किस फिल्म का गाना सुनना चाहती हैं?
2: मैं सुनना चाहूंगी ये तो सच है कि भगवान है।
0: ओके, पहुंच रहा है आपकी पसंद का गाना आपके रेडियो और मोबाइल सेट्स पर। बाय।
2: थैंक यू।

0: हेलो कानपुर।
1: हेलो कानपुर दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं राजेश बोल रहा हूँ, कुर्सठ हरदोई से, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मेरठ से बोल रहा हूँ।
0: जी स्वागत है राजेश जी आपका। कैसे हैं आप?
1: बस आप लोगों की मोहब्बत है, आकाशवाणी का खिंचाव है और हम लोग खींचे चले आते हैं, बस
0: जी
1: अच्छे हैं।
0: तो ये बताइए कि राजेश जी, आप FM रेनबो कानपुर का चैनल भी, जो आकाशवाणी का है, इसे सुनते हैं?
1: बिल्कुल जी, जो आपका प्रोग्राम सुबह मतलब 8:30 से भी प्रसारित होता है, ठीक है,
0: जी
1: और इधर 10 11 से 12 जो हमनवा आता है
0: जी
1: वो भी बहुत अच्छा, और इधर 3 से 4 के बीच में मतलब गानों पे फरमाइश, जो मतलब की फरमाइशी भी है, 4 से 5 में है,
0: जी जी
1: और उससे बीच।
0: तो राजेश जी, ये बताइए कि आकाशवाणी के 90 वर्ष, जो 8 जून से हो गए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: ठीक, आपको सच बताऊं तो मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी रेडियो मतलब बजाते थे, ठीक है,
0: जी
1: तो मैं सुनता रहता था, और सुनते सुनते सुनते सुनते एक दिन क्या हुआ कि मैंने पिताजी का रेडियो ही खोल डाला, तो हमको ये आवाजें कहाँ से आती हैं। जब
0: जी
1: आवाजें आती हैं तो फिर खोल डाला, पिताजी ने डांटा कि राजे नहीं, ये आकाशवाणी से आती हैं, हमारे यहाँ इधर क्या है कि मैं हरदोई में रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि हरदोई जो है लखनऊ कानपुर रायबरेली लखीमपुर मतलब कि कुछ ऐसे जिले हैं लखनऊ मंडल के अंतर्गत, उनसे पूरा घिरा हुआ है, तो कि यहाँ पे क्या है कि कानपुर का भी सुनाई पड़ता है, रायबरेली का भी रेडियो स्टेशन सुनाई पड़ता है, लखनऊ का भी सुनाई पड़ता है, और लखीमपुर का मतलब कई चैनल कैच कर लेता है, तो बहुत सारे चैनल एक में मिक्स हो जाते हैं, तो जो फ्रिक्वेंसी लग जाए, तो उसी बीच में सुनते सुनते मैं आप लोगों को सुना, तो रेडियो भी खोल रहा, पिताजी ने डांटा, फिर सुनते सुनते क्या हुआ कि मैंने 5 क्लास में पहुंचा, फिर मैं आकाशवाणी लखनऊ पे लेटर लिखा, ठीक है,
0: जी
1: और फिर उसके बाद में आपके यहाँ पे शाम को 6:30 से कार्यक्रम आता था विविध भारती पे, जो मुझे याद नहीं आ रहा, उस पे भी मैंने बहुत सारे लेटर लिखे, बड़ा अच्छा
0: अनुरोध
1: लगा।
0: गीत आता था पहले।
1: हाँ,
0: जी
1: अनुरोध गीत, हाँ उसमें तो बहुत अच्छा लगा, तो फिर सुनते सुनते मतलब कि काफी चीजें आप लोगों से सीखी, जैसे कि शुद्ध उच्चारण हुआ आकाशवाणी से,
0: बहुत
1: और जानने को भी सुनने को भी मिलता है, तो ऐसे लगता है कि आप लोग मतलब कि पका पकाया खाना परोस के रखते हैं।
0: क्या बात है आकाशवाणी के बारे में।
1: बिल्कुल जी, क्या है कि हम लोगों को जुड़े रहना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने से बहुत चीजें क्लियर हो जाती है, जैसे कि एक सस्ता माध्यम रेडियो है, ठीक है, चाहे एप्लीकेशन के माध्यम से जो न्यूज ऑन AIR ऐप है उसके माध्यम से सुन सकते हैं कहीं भी रह के, क्योंकि अब तो बहुत ही आसान हो गया, पहले क्या होता था, अब सच बताऊं कि आपको, मैं तो जाता था खेतों में भी रेडियो ले जाता था,
0: क्या बात है।
1: और उस समय ऐसा था, एक जस्ट ना आपके यहाँ से जो डॉक्टर गरिमा शैलेंद्र मैम थी वो फोन इन प्रोग्राम करती थी, इतना अच्छा लगता था, और भी बहुत सारे आपके यहाँ से जैसे कि मालिनी दी हैं, आप भी हैं,
0: जी
1: और ये कौशल मैम है, और ये क्या नाम पूर्णिमा मैम है, बहुत सारी मतलब के एंकर हैं, आप भी प्रेजेंट हैं, कार्यक्रम करते हैं, तो तारीफ एक की तो की जाए कम ही है, लेकिन सभी लोग बहुत अच्छे हैं।
0: और ऐसे ही शिद्दत से ही हमें प्यार देते रहिए। और बताइए कि आज किस फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: मेरी फरमाइश आपकी पे निर्भर है।
0: ठीक है, कोई भी। हाँ
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी आपको
1: ओके
0: कि
1: ओके राजेश,
0: आपने हमें कॉल लगाया।
1: ओके
0: नमस्कार।
1: नमस्ते,
0: हेलो कानपुर।
2: हेलो,
0: कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
2: राजेश बोल रहे हैं, अरमापुर से।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
2: अच्छे हैं मैडम।
0: और कौन कौन है आपके घर में?
2: बिटिया है, बेटा है, मिसेस है।
0: जी तो कैसे दिन बीत रहे हैं आपके?
2: अच्छे बीत रहे हैं, अभी तो सर्विस चालू है हम लोग की।
0: कहाँ जॉब करते हैं आप?
2: SF में, स्मॉल आर्म्स।
0: जी तो क्या काम है वहाँ पर आपका?
2: हम लोग फिटर में है मैडम।
0: ओके, और काम के दौरान आप रेडियो सुन लेते हैं?
2: हाँ वो बजता रहता है साइड में।
0: और आप जुड़े रहते हैं हमसे?
2: हाँ हाँ हाँ।
0: अच्छा राजेश जी, नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बताइए, लोगों को क्या संदेश देंगे आप?
2: मेरा संदेश तो यही है कि इससे लोग बचे तो ज्यादा बेहतर रहेंगे, अच्छा जीवन जी सकेंगे।
0: जी
2: अच्छा, इससे दूर रहें आप लोग।
0: बिल्कुल, जिससे कि खुद को भी सेफ कर सकेंगे और फैमिली के साथ साथ समाज को भी अच्छा बना सकेंगे।
2: हाँ, मजबूत रहता है उससे, परिवार अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा।
0: जी स्वस्थ रहेगा, लड़ाइयाँ नहीं होंगी, झगड़े नहीं होंगे, है ना, और खुद भी आप फिट चुस्त दुरुस्त रहेंगे।
2: यस यस।
0: बताइए कि आज किस फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
2: धर्मवीर का ले लीजिएगा।
0: कौन सा गाना?
2: सात अजूबे इस दुनिया में।
0: ठीक है जी, नमस्ते।
2: नमस्ते।

0: हेलो कानपुर।
1: नमस्कार मैम,
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं पहली बार कॉल लगा मैम आपके केंद्र में, और
0: जी
1: मैं सुरेश कुमार सारथी बोल रहा हूँ मैम, छत्तीसगढ़ बेमेतरा जिला वार्ड क्रमांक 20 से।
0: स्वागत है आपका। आपका पहली बार कॉल लगा है तो आपको बहुत बहुत बधाई
1: बहुत
0: है
1: बहुत
0: आपको।
1: बधाई हो,
0: बिल्कुल
1: हमारे सारथी परिवार की ओर से आपके केंद्र के पूरे यूनिट को बहुत बहुत बधाई है मैम।
0: बिल्कुल, आपको भी बधाई है कि आपका कॉल पहली बार लगा। बताइए कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है मैम, अभी तो भीषण गर्मी है अपने तरफ,
0: जी,
1: और गर्मी के इस मौसम में अब घर से बाहर निकलना बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है मैम।
0: तो क्या कर रहे हैं गर्मी से बचाओ आप?
1: गर्मी की बचाव के लिए मैम अब तो हम लोग अधिक से अधिक पानी पीते हैं,
0: जी
1: और सेहत को ध्यान में देते हुए, ख्याल रखते हुए ना नमक मिर्ची और मसाला युक्त भोजन नहीं करते हैं मैम,
0: जी जी
1: और अधिक से अधिक फल फ्रूट खाने और फल फ्रूट उपयोग ज्यादा करते हैं मैम, और जैसे कि खीरा है, ककड़ी है, कलिंगर है, शरबत है,
0: जी
1: आम का जूस है, गन्ने का जूस है, और बेल की जो फल होता है ना मैम, बेल उसका रस बना के पीना चाहिए मैम, जिससे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है।
0: बिल्कुल। और अगर धूप में निकले तो सर ढककर निकले।
1: सर ढककर निकले और छाता अवश्य रखें, छाता ओढ़ कर निकले और एक बॉटल पानी अपने साथ में जरूर लेकर चले मैम।
0: बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं आप लोगों को भी।
1: जी मैम,
0: बताइए।
1: और क्या है मैम, अभी ये जो गर्मी जो है मैम, पेड़ों की धड़ल्ले से कटाई हो रही है मैम, कटाई को रोकथाम करना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए मैम, ताकि आगामी आने वाली जो पीढ़ी है वो इस तरह की भीषण गर्मी और जल संकट से निजात पाया जा सके मैम।
0: क्या बात है, तो बहुत अच्छा संदेश दिया है आपने लोगों को कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। और जैसा कि मुहिम भी चल रही है, एक पेड़ माँ के नाम, है ना,
1: जी मैम,
0: तो माँ के नाम ही एक पेड़ लगा दीजिए, बहुत उपकार होगा इस धरती पर। बताइए आज किस फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: फिल्मों का नाम है मैम सावन को आने दो,
0: जी
1: यशुदास की मधुर आवाज में है मैम, चांद
0: जी जी
1: जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान,

0: हेलो कानपुर।
1: हेलो कानपुर। नमस्कार मैडम
0: नमस्कार, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी। ग्रीन रोड अयोध्या नगर अकबरपुर से अमीर बाबू बोल रहे हैं मैडम।
0: स्वागत है आपका। आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं अमीर बाबू जी, कैसे हैं आप?
1: जी शुक्रिया मैम, अच्छे हैं। आप बताएं कैसी हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं।
1: जी आपका आपका नाम जानना चाहेंगे मैम।
0: जी सारिका शुक्ला।
1: जी सारिका शुक्ला, ओके मैम।
0: जी आकाशवाणी FM रेनबो के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ बताएंगे हमसे और हमारे लिसनर से?
1: अच्छी सेवा है जो हम लोगों को मिल रही है। जी बहुत अच्छी सेवा है ये। लोगों का थोड़ा एंटरटेनमेंट होता रहता है। कार्यक्रम तो मैडम लगभग सभी अच्छे हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई अच्छा नहीं कह सकते, ये नहीं अच्छा लगता है। अलग अलग सुनने वालों का अपना अपना सुनने का वो है कि कौन क्या किसको क्या पसंद है।
0: बिल्कुल। और जो इससे आपका जुड़ाव है उसके बारे में क्या कहेंगे आप?
1: जी जुड़ाव तो मैम बहुत है, लगता है रेडियो दिन भर रेडियो लगभग बजता ही रहता है दुकान में और लगभग लगभग सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
0: तो कब से जुड़े हुए हैं आप रेडियो से, आकाशवाणी से?
1: लगभग सन 1990 जुड़े हुए मैम।
0: जी एक काफी लंबा समय तय कर लिया है आपने भी आकाशवाणी के साथ।
1: जी जी जी जी बिल्कुल मैम
0: जी।
1: और हमसे भी सीनियर सिटीजन हमारे श्रोता है, जैसे अड्डी मास्टर हो गए कानपुर के, जी
0: बिल्कुल। आप जैसे श्रोताओं का बड़ा इंतजार रहता है, आप लोगों के खातों का, ईमेल्स का और आपके फोन्स का हमें बहुत इंतजार रहता है। तो बताइए अमीर बाबू जी कि आपकी फलों की दुकान है ना?
1: जी जी मैम बिल्कुल, ओके ओके मैम। फलों की दुकान है और इस समय गर्मी लूलापन बहुत है तो फलों को काफी बचा के रखना पड़ रहा है।
0: तो फलों को बचा रहे हैं आप। और इस वक्त जो फल जो है वो कौन सा है जो बहुत डिमांड में है?
1: लीची।
0: लीची
1: लगभग 280 रुपए किलो का रेट है। लीची काफी फायदा करती है
0: जी।
1: ये मान लीजिए गर्मी का दुश्मन अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा।
0: हाँ और ये बहुत जल्दी ये भी है कि खराब हो जाती, तो इसके लिए

0: आप क्या करते हैं?
1: जी ये मुजफ्फरपुर से मैडम 12 घंटे में आ जाती है।
0: अच्छा,
1: लगभग 700 किलोमीटर का सफर तय करके हमारे ड्राइवर भाई लेके आते हैं 12 घंटे में। वहाँ से टूट के पेड़ों से पैक होके मंडी चकरपुर 12 घंटे में आ जाती है।
0: अच्छा,
1: और वहाँ से इधर सेल होके हम लोग शाम तक इसको ला के बेच लेते हैं।
0: अच्छा, जैसे घरों में हम लोग लेकर आते हैं लीची, और इसके जो जब लाएंगे तो बहुत रेड रेड होती है, और लाने के कुछ समय बाद धीमे धीमे इसका कलर भी डल हो जाता है।
1: मसला क्या है, इसका छिलका बहुत पतला होता है, जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता इसका छिलका,
0: तो इसको सेव कैसे रखा जाए?
1: हो जाता है।
0: तो इसको सुरक्षित अगर रखना हुआ हो तो कैसे रखेंगे, हम क्या करेंगे?
1: नहीं रख सकते, नहीं रख सकते
0: जी।
1: जी एक लीची और दूसरी स्ट्रॉबेरी, इसको नहीं रख सकते ज्यादा दिन।
0: तो यही है कि लाएं और फटाफट उसको खत्म कर दें, है ना?
1: बिल्कुल, अगले दिन फिर लेके आए।
0: बिल्कुल, आपकी बिक्री भी बनी रहेगी।
1: बिल्कुल, अब गाना बता दें मैं?
0: बिल्कुल बताइए।
1: फिर वह बारसवाड़ी गाने का बोल है, वो जब याद आए बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए।
0: बिल्कुल, आपकी पसंद का गाना पहुंच रहा है आप तक।
1: जी ओके मैम,
0: नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: हेलो कानपुर।
1: हेलो कानपुर,
0: कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: कचहरी मेन बाजार से चंगू सैनी।
0: बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है, बढ़िया है मैं एकदम।
0: और काम कैसा चल रहा है आपका, गैस रिपेयरिंग का?
1: ये तो 12 महीना मैडम चलता रहता है ना, कहीं कुछ बिगड़ेगा, रोज खाने पीने बनाने वाली चीज है तो कहीं कुछ बिगड़ेगा, कहीं कुछ।
0: बिल्कुल, आप लोगों के किचन से जुड़े हुए हैं
1: जी मैडम।
0: अगर आप ना हो ना तो शायद कुछ घर के चूल्हे ही ना जलें।
1: जी
0: तो बताइए कि जो आपका काम है इस गर्मी के सीजन में ज्यादा बढ़ जाता है कि हमेशा ही एक सा रहता है?
1: गर्मी में मैडम कम हो जाता है ना, जाड़े में ज्यादा प्रॉब्लम आती है गैस मिक्सिंग की, क्योंकि ठंड के उसमें गैस ठंड में जम जाती है तो प्रेशर डाउन हो जाता है, तो उसमें काम ज्यादा है, तो आदमी को जल्दी चाहिए बनाने के लिए, इसलिए गर्मी में कम होता है। गर्मी में क्योंकि गैस में प्रेशर बन जाता है ना, तो हल्के से में काम चलता है।
0: अच्छा अच्छा शंगू जी, हम अब बात करेंगे नशा मुक्त भारत अभियान की, एक ऐसा अभियान जो सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी भी है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: जिम्मेदारी ये मैडम, आजकल नशा ये तो सबसे ज्यादा बर्बाद की है सबको
0: जी,
1: है छोटा हो या बड़ा हो, धूमपान अधिकतर आदमी का गार्जियन कुछ केयर का कहता नहीं है
0: जी।
1: हमारे घर में हम क्या बताएं, मेरे छोटे भाई थोड़ा नशा करते थे, वो भी लोग खत्म हो गए शादी के चक्कर में, उनको बहुत समझाया और लोगों को भी समझाते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए मैडम
0: जी,
1: है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है।
0: बिल्कुल
1: जी,
0: तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो सकारात्मक सोच की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि आजकल के बढ़ते स्ट्रेस में लोग गलत रास्तों पे चल देते हैं, तो जरूरी है सकारात्मक सोच रखना, और सकारात्मक सोच के लिए अगर हम योगा से जुड़ जाएं तो वो और भी अच्छा हो जाएगा।
1: जी मैडम बात सही है, सुबह जल्दी उठ के योगा करना चाहिए, वही शरीर के लिए लाभदायक होता है मैडम
0: जी।
1: चलना चाहिए थोड़ा बाहर, शाम को भी थोड़ा टहलना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए सुबह,
0: प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए, अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त और शरीर के साथ साथ दिमाग को भी चुस्त दुरुस्त रखना चाहिए, और इस तरह के जैसे कि व्यसन है, इस तरह की गलत आदतें हैं, इनसे दूर रहना चाहिए नशा जैसी। बताइए आज किस फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: एक दूजे के लिए 16 बरस की।

0: हेलो कानपुर,
1: हेलो कानपुर,
0: कौन बोल रहे हैं?
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ। ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश से।
0: नमस्कार है आपको, कैसे हैं आप?
1: बस हम बहुत अच्छे हैं। और आप कैसी हो?
0: हम भी अच्छे हैं। क्या करते हैं हारुल जी?
1: खेती बाड़ी करते हैं।
0: किस चीज की खेती कर रहे हैं इस समय आप?
1: अभी बारिश का इंतजार है, बारिश होगी तो मक्का और सोयाबीन बोएंगे।
0: और अभी जैसे इन दिनों आप क्या कर रहे हैं?
1: अभी कुछ नहीं है, फुर्सत में है, बैठे हुए हैं
0: खेतों पे क्या चल रहा
1: आकाश।
0: है?
1: अभी कुछ दिनों कुछ नहीं चल रहा है, रेडियो पे फोन लगा रहे हैं और
0: अरे
1: कुछ
0: वाह, आप हमसे जुड़े हुए हैं।
1: जी आकाशवाणी में फोन लगा रहे हैं और कुछ खेल का मनोरंजन कर लेते हैं। क्रिकेट चल रहा है ना आजकल।
0: अच्छा हारुल जी, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि 12 जून से 5 जुलाई के बीच इंग्लैंड और वेल्स में होने वाली आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के मैच का जो आगाज है वो हो चुका है, और आज भारत बनाम पाकिस्तान आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का जो मैच है वो शाम 6:30 बजे से टॉस और प्री मैच शो के साथ लाइव कमेंट्री शुरू हो जाएगी, और मैच की जो पहली गेंद है वो शाम 7 बजे फेंकी जाएगी। तो अगर आप इस मैच की लाइव कमेंट्री सुनना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा 102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ। हेलो कानपुर।
2: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैं अक्षय बोल रहा हूँ कानपुर से।
0: बहुत बहुत स्वागत है अक्षत आपका, कैसे हैं आप?
2: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं?
0: हम भी बढ़िया हैं। क्या करते हैं आप?
2: मैं बिजनेसमैन हूँ।
0: और अपने बिजनेस के साथ साथ आप हमारे प्रोग्राम्स भी सुन लेते हैं?
2: जी।
0: जी अक्षत, ये बताइए कि विश्व योगा दिवस बहुत नजदीक आ रहा है, तो आप इससे जुड़कर कुछ करते हैं? योगा से रिलेटेड अपनी लाइफ के लिए कुछ करते हैं?
2: जी, मैं कोशिश करता हूँ दिन में आधे घंटे योगा करूँ और
0: जी
2: बाकी को भी संदेश दूँ कि योगा करें, क्योंकि योगा हमारे प्राचीन काल से चली आई पद्धति है और इससे हमारे शरीर को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जीने का और आगे लाइफस्टाइल जीने का मौका मिलता है।
0: बिल्कुल, फिजिकली तो हम फिट होते ही हैं और मेंटली भी हम फिट हो
2: मेंटली
0: जाते हैं।
2: भी जी।
0: जी तो अक्षत, ये बताइए कि आज किस फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं आप?
2: मैं सुना जा खुदा गवाह का, तू जाना मेरे बादशाह।
0: ठीक है अक्षत, हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

तो दोस्तों, बातों, यादों, फरमाइशों और प्यारे प्यारे एहसासों से सजी आज की ये महफिल अब यहीं सजदा लेती है। आपने अपने संदेशों और अपनी आवाजों से इस शाम को सचमुच खास बना दिया। इसी अपनापन और मोहब्बत के साथ अब दीजिए हमें इजाजत। फिर होगी मुलाकात, फिर होंगी बातें और फिर सजेगी आपकी अपनी महफिल। स्वीकार कीजिए सारिका शुक्ला का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राहुल पाल और तकनीकी सहयोग रहा प्रवीण कुमार शर्मा का।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आगरा के शमशाबाद में महाराणा प्रताप की 15 फुट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप का शौर्य, त्याग और उनका संघर्ष इतना बड़ा है कि देश उन्हें कभी भूल नहीं सकता। वे केवल एक राजा ही नहीं बल्कि भारत की सोच का प्रतीक थे, जिन्होंने कभी अपने आत्मसम्मान और मूल्यों के साथ समझौता नहीं किया। श्री सिंह ने कहा कि देश में आज हमारे जवानों को खुली आजादी है कि वे आतंकवाद का सीमा पर पार कर के भी सफाया कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश को नक्सलवाद से पूरी तरह से छुटकारा मिला है। वहीं देश में सड़कों की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर और आजमगढ़ मंडल में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शासन तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से दोनों मंडलों में संचालित पुरानी व गतिमान परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर सड़क निर्माण के कार्यों में तेजी लाई जाए और हर काम गुणवत्ता के साथ समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने मॉनसून से पहले की परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने और उन्हें समय से पूरा कराने का निर्देश दिया। प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश में अपराध और

अपराधियों के प्रति अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। वाराणसी पुलिस लाइन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीजीपी ने बताया कि अधिकांश गंभीर अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है और अपराधियों में कानून का भय बढ़ा है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने मीडिया से बातचीत कर मंदिर निर्माण कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में गठित एसआईटी की सराहना करते हुए सरकार की तत्परता को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि 24 घंटे के भीतर एसआईटी का गठन किया गया जिसमें 3 वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। सरकार ने एसआईटी से 1 सप्ताह की प्रारंभिक और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की महिला किसानों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मार्गदर्शन में इस निर्णय में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4,95,83,000 रुपये से अधिक की धन

अंतिम रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की महिला किसानों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मार्गदर्शन में इस निर्णय में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4,95,83,000 रूपये से अधिक की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। श्री मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर काम कर रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में कार्यक्रमों का दौर जारी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज बाराबंकी में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। आगरा में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की मौजूदगी में पत्रकारों से वार्ता की। फरुखाबाद में कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह और मिर्जापुर के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने मीडिया संवाद किया। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने पीलीभीत में जनता चौपाल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित होगा। सुनते रहिए 100.7 FM श्वेता के साथ।

0: विशेष कार्यक्रम। विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल में रक्षा क्षेत्र में किए गए प्रयासों से आत्मनिर्भरता और बढ़ती सैन्य शक्ति पर खास चर्चा। वार्ताकार हैं शैलेंद्र शर्मा।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिले हैं। सरकार के प्रयास विजन से न केवल दुश्मनों के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान चलाए गए, बल्कि सेना का मनोबल बढ़ाने और रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, स्वदेशी हथियारों के निर्माण को गति मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी शुरू हुए हैं। आज भारत आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन, आधुनिक सैन्य क्षमता और वैश्विक रणनीतिक प्रभाव के नए दौर में कैसे आगे बढ़ रहा है, पिछले 12 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिन्होंने देश को चुनौतियों से मुकाबले के लिए मजबूत किया है, आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कर्नल आरपी सिंह जी, सेवानिवृत्त हैं, और वायुसेना के पूर्व अधिकारी अनुपम तिवारी जी। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद
1: आरपी सिंह जी। सर, आपसे पहले जानना चाहेंगे, अगर 2014 से 2026 तक के रक्षा क्षेत्र के बदलावों को देखें तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? सैन्य आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा की सोच को कैसे आगे बढ़ाया गया?
2: पहले के कई युद्धों का परिणाम कारगिल में देखने को मिला था, कारगिल वॉर में, जहाँ पे माउंटेन वॉरफेयर में भारत की सेनाएं सक्सेसफुल हुई थी और काफी कुछ वो 62 के बाद वहाँ पे माउंटेन्स में सक्सेस मिली थी। इसी तरह से उसमें उसी समय पे जो आपके स्वामीनाथ कमीशन हुआ था, उस समय के बाद से जो परिवर्तन आया था, अब वो देखने को मिला इसी पिछले 12 सालों में। सबसे बड़ी सफलता इसमें ये मिली है कि भारत की सेनाओं तीनों अंगों का काफी कुछ विकास हुआ, माउंटेन्स एरिया तक भी जाकर के उनके आधुनिकीकरण का हुआ है। इसी तरह से सी चेंजेस में, मतलब समुद्र के किनारे भी ये काफी चेंजेस हुए। भारतीय सेनाएं पूरे बॉर्डर के ऊपर जाने में सक्षम है, रोड और उनकी तकनीकों का विकास हुआ है। भारत का जो सबसे पहला उस समय सोचा गया था कि तीनों सेनाओं के नीचे एक थिएटर कमांड बने, उसकी भी एक पहल की गई इसी दौरान में। उसके अलावा जो है, आपने सुना होगा कि उससे पहले से काफी चल रहा था कि इन सर्विस क्लास के अंदर वन रैंक वन ओपी आए, वो इसी दौरान में इस बात को भी 2017 के अंदर लाया गया, जिससे कि तीनों सेनाओं के जो भी ऑल रैंक्स थे उनके ऊपर ये बदलाव देखा गया। और उसके अलावा जो है, जनरल बिपिन रावत जो पहले सीडीएस भी नियुक्त हुए 2019 में, अभी तीसरे सीडीएस भी नियुक्त हो चुके हैं। और उसके अलावा जो है, ज्वाइंटनेस कमांड जो बनने की उम्मीद की जा रही कि इस नियर फ्यूचर के अंदर थ्रेटर कमांड्स भी आ जाएंगे। इसमें एक चीज और की गई है कि भारत को जो पहले हम लोग जितने भी अम्युनिशन हथियार इम्पोर्ट करते थे, चाहे रशिया से, चाहे

0: अमेरिका से, चाहे इसराइल से या फ्रांस से, अब उसको हम आत्मनिर्भर बनने की उसमें आ गए हैं। और इसी दौरान में ये एक तरह से प्राइवेट सेक्टर को पूरी छूट दी गई है कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया दोनों के ऊपर कार्य हो। इसी में डिफेंस कॉरिडोर, दो डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए हैं और ये जान के आपको बड़ी खुशी होगी कि इन डिफेंस कॉरिडोर में एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के अंदर है और इस उत्तर प्रदेश के अंदर 6 districts हैं और उनका जो अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो अभी इनके प्रोडक्ट्स जो हैं, बल्कि हाल के जो ऑपरेशन हुए हैं उसमें भी इस्तेमाल किए गए हैं। आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि आपके बगल में अमेठी के अंदर AK-203 जो बनाई जा रही है वो अब बाहर एक्सपोर्ट हो रही है और भारतीय सेना के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी दी जा रही है, ब्रह्मोस मिसाइल्स भी बनाई जा रही। तो इस तरह से करके आप देखेंगे कि जो चेंजेस आए हैं एक तरह से आत्मनिर्भरता की पूर्ण रूप से वह है।
1: बिल्कुल सर, अनुपम सर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सर ने जिक्र किया आत्मनिर्भर भारत की बात, रक्षा क्षेत्र में खासतौर पर और बड़े अंतर के साथ हम इसे महसूस कर रहे हैं। पहले दूसरे देशों पर निर्भरता थी लेकिन आज आत्मनिर्भर भारत की बात रक्षा निर्यात के जरिए भी हो रही है। रक्षा क्षेत्र के लिए कितना जरूरी था, सरकार के प्रयासों में अब कितना अंतर आप देख रहे हैं जब हम मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड की भी बात कर रहे हैं।
2: शैलेंद्र जी, सर की बात को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा। देखें, रक्षा के ऊपर अक्सर बातें हुआ करती थी लेकिन अभी बदला क्या है, हमको बदलाव समझना चाहिए। अभी नीतिगत बदलाव हुए, रक्षा निर्यात की नीति ही बदल दी गई है और इसी नीति का फायदा है जो हम आज ये देख रहे हैं कि 2010-11 के आसपास जो हमारा 1500 करोड़ का जो निर्यात होता था रक्षा संसाधनों का, वो अब 24,000 करोड़ का हो गया है, यानी कि 16 गुना बढ़ोतरी हुई है पिछले एक दशक के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। साथ ही साथ आप ये भी देखें कि हमने आयात पर निर्भरता घटाई है और ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है, वो भी इसी नीति की वजह से हुआ है। हमारा 70% तक रक्षा का सामग्री 2010-11-12 तक बाहर से आता था, यानी कि हमारी सेनाएं 3/4 तक विदेशी सामानों पर डिपेंड करती थी। अभी एक दशक के अंदर उसको घटा के 50% तक तो ला ही दिया गया है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज हम 50% आयातित सामान के ऊपर निर्भर हैं और बाकी हम खुद बना रहे हैं। भारत ने अब शुरुआत करी है लेकिन शुरुआत में ही जब हम निर्यात में 16 गुने का जंप देख रहे हैं तो इससे एक हौसला बढ़ता है, इससे एक विश्वास बढ़ता है और इससे लगता है कि भविष्य अच्छा है। संशय नहीं है कि अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे 2047 तक अपनी रक्षा जरूरतों का अधिकांश भाग हम खुद पूरा करेंगे। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि एयरक्राफ्ट के इंजन, जैसे कुछ अत्याधुनिक सेंसर्स हैं, उनके ऊपर अभी काम होना बाकी है और उस पर थोड़ा अगर हम स्पीड अप करेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है वो बहुत जल्द साकार होती हुई दिखाई देगी।
1: आरपी सिंह सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत जो ये स्वदेशी हथियार मिल रहे हैं सेना को, इसकी वजह से जमीन पर कितना अंतर आया?
0: नहीं, देखिए, भारत की स्थिति आत्मनिर्भरता में इतनी अच्छी सक्षम हो रही है कि इसका तो पहला रिजल्ट मैंने देखा हाल में ही आप सिंदूर के अंदर, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल कितनी सक्सेसफुल थी और वो भारत में ही बनती है जबकि वो रशियन इक्विपमेंट है, लेकिन उसका जो है इतना यहाँ पे एक तरह से मारक क्षमता हो गई है कि वो हर जल थल नभ तीनों जगह से मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल्स है, जिसको इतने सक्सेसफुल हुआ कि उसके बाद पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े कि भाई ब्रह्मोस मिसाइल कहीं भी जाकर के कहीं भी मार सकती है। मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, आकाश में भारत का जो तेजस एयरक्राफ्ट जो है काफी सक्सेसफुल है और उसकी मारक क्षमता काफी डीप है जो कि पाकिस्तान और चाइना तक काफी हुआ है, इसलिए और सक्सेसफुल है। दूसरा, अभी जो है प्रचंड जो हैप्टर बनाया गया, हेलीकॉप्टर बनाया गया, वो भी जो है एक तरह से अटैक हैप्टर है, जिसको कि इसमें पूरे के पूरे इस्तेमाल करने में एक तरह से है। तो इस एयरोनॉटिक्स के अंदर HAL के साथ मिलकर के, एयरबस के साथ मिलकर के भारत की जो आधुनिकीकरण में मेक इन इंडिया जो चल रहा है वो आगे काफी बढ़ता जा रहा और इसके अंदर जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी हिस्सेदारी ले रही हैं, वो भी आगे आ रहे हैं, चाहे रिलायंस का हो, चाहे अडानी का हो, चाहे टाटा का हो और चाहे इसमें आपका ये भारत फोर्स वाले हों, तो इससे जितनी प्राइवेट कंपनी है उसमें भी आए। इसी में भारत फोर्स ने क्या किया है, कल्याणी के 155 के आर्टिलरी गन जो SP गन्स हैं वो भी बनाने लगे हैं, जिसकी दूर की मारक की क्षमता एक्यूरेसी पूरी वो है। अभी इसी में मैंने देखा एक ट्रायल हो रहा है कि जिससे होम ऑन टारगेट को लेकर के डिजिटली वो लॉक इन करके फायरिंग करने के है। इसी में अमनिशन के ऊपर भी जा रहे हैं काफी उससे, जिससे अमनिशन को टारगेट को होम ऑन करने की है, मिसाइल्स भी बनाने लगे हैं और इसके अलावा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, साइंस टेक्नोलॉजी है, AI की टेक्नोलॉजी है और वो सब चीज भी आगे बढ़ रही है। तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके आगे फील्ड में आगे बढ़ती जा रही।
1: बिल्कुल सर, रक्षा क्षेत्र में पिछले 12 साल में सरकार की उपलब्धियों और आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण और सैन्य सुधारों पर बात करने के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया सर।
2: थैंक यू वेरी मच।
3: विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल में रक्षा क्षेत्र में किए गए प्रयासों से आत्मनिर्भरता और बढ़ती सैन्य शक्ति पर खास चर्चा। वार्ताकार थे शैलेंद्र शर्मा।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
6: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
5: स्पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
6: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
7: शहर आपका, धुन आपकी।

दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम FM टॉप 10। बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में आपका, जिसे आप सुन रहे हैं आपके फेवरेट रेडियो चैनल 100.7 FM मेगा हर्ट्ज़ पर। और अगले कुछ घंटे आप बने रहेंगे श्वेता राजवंशी के साथ। जी हाँ, आज शाम 8 बजे तक श्वेता हाजिर है ओनली ऑन FM रेनबो। फिलहाल तैयार हो जाइए एक म्यूजिकल काउंटडाउन के लिए, क्योंकि आज की इस काउंटडाउन में स्पॉटलाइट उन ट्रैक्स पर जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और बॉलीवुड रीमिक्स रील्स पर धूम मचा रहे हैं। आई एम श्योर वो आपके भी फेवरेट हैं, क्योंकि वो मेरे भी फेवरेट हैं, तो मैं जानती हूँ आप लोगों का टेस्ट। और साथ ही साथ मैं बजाऊंगी ऐसे गाने जो आपको एक नॉस्टैल्जिया देंगे, ठीक है, वो एक सरप्राइज में आगे आपको बताऊंगी। तो चलिए काउंटडाउन की शुरुआत करते हैं एक फ्रेश एंड पावरफुल ट्रैक के साथ। फिल्म धुरंधर का ये सॉन्ग अपनी सोलफुल मेलोडी और इमोशनल एक्सप्रेशन के लिए काफी पसंद किया जा रहा है। इस गाने को आवाज दी है खान साहब और शाश्वत सचदेव ने। FM टॉप 10 पर सॉन्ग नंबर 10 आपके रेडियो सेट्स पर। एंजॉय एंड कीप लिसनिंग टू 100.7 FM रेनबो।

कैसा लगा आपको ये ट्रैक, है ना दमदार? तो अब वक्त आ गया है एक ऐसे ट्रैक की ओर बढ़ने का जो 3 दशकों बाद भी डांस फ्लोर की जान बना हुआ है। जब ये सॉन्ग रिलीज हुआ था ना, तब इसके बीट्स और स्टाइल ने यूथ को दीवाना बना दिया था। बपी लहरी और अनुराधा पौडवाल की आवाजों से सजा ये अगला गाना आज भी उतना ही एनर्जेटिक लगता है। FM टॉप 10 पर सॉन्ग नंबर 9 आपके रेडियो सेट्स पर। स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM श्वेता के साथ।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
5: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
4: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
5: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
0: तो दोस्तों, टाइम हो रहा है 5:35 और प्रोग्राम चल रहा है FM टॉप 10। आप बने हैं श्वेता राजवंशी के साथ। दोस्तों, बॉलीवुड में रिमिक्स कल्चर आज बहुत पॉपुलर है। अभी आपने सुना एक बेहतरीन सा जबरदस्त गाना और आपने रिसेंटली उसे कहीं तो सुना होगा, आई एम श्योर। और सुनते ही आपकी यादें भी ताजा हो गई होंगी। जी हाँ, तमा तमा उन्हीं सॉन्ग्स में से है। फिलहाल पार्टी मोड ऑन करने का वक्त आ गया है, क्योंकि ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर फाइटर मूवी का ये एनर्जेटिक ट्रैक जिम प्लेलिस्ट एंड पार्टीज दोनों में खूब पॉपुलर है। बेनी दयाल, शिल्पा राव और विशाल शेखर की जबरदस्त परफॉर्मेंस ने इस ट्रैक को यूथ का फेवरेट बनाया है। सो FM टॉप 10 पर सॉन्ग नंबर 8 ओनली ऑन 100.7 FM। स्टे ट्यून्ड।

भाई कॉलेज फेस्ट हो या फेयरवेल पार्टीज, ये ट्रैक तो हर जगह परफेक्ट फिट है। तो सुनते हैं बादशाह और बेनी दयाल के वोकल्स में लेट्स नाचो फ्रॉम द मूवी कपूर एंड सन्स। आज भी पार्टी प्लेलिस्ट का परमानेंट मेंबर है एंड FM टॉप 10 पर सॉन्ग नंबर 7।

जी हाँ, तो जिस सरप्राइज की मैंने शुरुआत में बात की थी, अब बढ़ते हैं उन सुपर हिट्स की ओर जो 90s के दौर में ब्लॉकबस्टर्स थे। जी हाँ, वो ब्लॉकबस्टर्स थे और इन सॉन्ग का जादू इतना था कि आज भी इन्हें रिमिक्स वर्जन में लॉन्च किया जा रहा है। जी हाँ, अब दिल थाम के लीजिए क्योंकि अब प्ले होंगे पावरफुल एवरग्रीन फेवरेट्स अलका याग्निक और शंकर महादेवन की आवाज में FM टॉप 10 पर सॉन्ग नंबर 6 आपके रेडियो सेट्स पर। एंजॉय एंड कीप लिसनिंग टू 100.7 FM धड़कन लखनऊ की।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
3: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NACC द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
5: जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले।

जी हाँ, अब आ रही है नंबर वन सॉन्ग की, जिसने रिसेंटली जबरदस्त कमबैक किया है और आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं प्ले करने वाली हूँ गुप्त का सुपरहिट ट्रैक। जी हाँ, दुनिया हसीनों का मेला लगभग 3 दशकों बाद फिर से ट्रेंड कर रहा है और इस सॉन्ग को एक नया अवतार में रिसेंटली फीचर किया गया है, जिसके बाद से ये ऑनलाइन वायरल हो गया है। एंड रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ओरिजिनल सॉन्ग ने कुछ ही दिनों में लाखों नए व्यूज हासिल किए हैं और एक न्यू जनरेशन, पूरी की पूरी एक नई जनरेशन ने इस सॉन्ग को डिस्कवर किया है ना, कितनी इंटरेस्टिंग बात। सिंगर उदित नारायण जी ने भी कहा है कि उन्हें हमेशा से लगता था कि इस गाने में कुछ तो खास है, जो एक टाइमलेस बात है वो ये गाना लेकर आया है और आज उसकी पॉपुलैरिटी फिर साबित तो हो ही रही है। तो चलिए सुनते हैं हम दुनिया हसीनों का मेला, ओनली ऑन 100.7 FM, बने रहिए श्वेता के साथ।

जी हाँ दोस्तों, कहते हैं हर जमाने में कुछ आवाजें ट्रेंड फॉलो नहीं करती, वो ट्रेंड क्रिएट करती हैं। ये वही सॉन्ग्स हैं जो मास हिट्स बन गए। तो दोस्तों ये था आज का एफएम टॉप 10 काउंटडाउन। चलिए इसी के साथ मैं श्वेता अब इजाजत चाहती हूँ, कुछ ही देर में फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू 100.7 एफएम रेनबो।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में अन्य देशों के शीर्ष नवाचार स्टार्टअप और उद्यम पूंजीदाता भी शामिल हुए। इसमें उन्नत कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा तथा जैव प्रौद्योगिकी सहित 13 प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार प्रदर्शित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आगरा के ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा, महाराणा प्रताप का शौर्य, त्याग और संघर्ष इतना बड़ा है कि देश उन्हें कभी भूल नहीं सकता। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश को नक्सलवाद से पूरी तरह से छुटकारा मिला है। पिछले 12 वर्षों में विश्व स्तर पर भारत की पहचान बदली है। आगरा भी डिफेंस कॉरिडोर का नया एक नोड है। यहां डिफेंस फैक्ट्री लगेगी और ये सिलसिला जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के 13 विषयों की प्रारंभिक परीक्षा 2025 आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के 67 जिलों में बनाए गए 891 परीक्षा केंद्रों पर यह भर्ती परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे की पाली में कराई गई। परीक्षा के लिए कुल 381,605 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर और आजमगढ़ मंडलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। श्री योगी ने सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता के साथ समय से उन्हें पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान श्री योगी ने संबंधित अधिकारियों से दोनों मंडलों में संचालित पुरानी और निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए युद्धस्तर पर अभियान चलाकर सड़क निर्माण के कार्यों में तेजी लाने और सभी कामों को गुणवत्ता के साथ पूरा किए जाने का निर्देश दिए। केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में कार्यक्रमों का दौर जारी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज बाराबंकी में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। आगरा में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की मौजूदगी में पत्रकारों से वार्ता की। फरुखाबाद में कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह और मिर्जापुर के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने मीडिया संवाद किया। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने पीलीभीत में जनता चौपाल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में बने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कमर्शियल उड़ान कल से शुरू हो रही हैं। पहले दिन

चार आगमन और चार प्रस्थान मिलाकर कुल 8 उड़ानों की आवाजाही होगी। हवाई अड्डे पर पहली उड़ान लखनऊ से आएगी, जो सुबह 8:05 लैंड करेगी। जाने वाली पहली उड़ान बेंगलुरु के लिए सुबह 8:35 रवाना होगी। पहले चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22.5 करोड़ यात्रियों का वैश्विक हब बनेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। 7 बजे सुनिए प्रदेश की टॉप 10 न्यूज। सुनते रहिए 100.7 FM धड़कन लखनऊ की।

भाई आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो चैनल 100.7 मेगा हर्ट्ज पर। ये वक्त होता है शाम का जब आप इंजॉय करते हैं आपका शो, आपका प्रोग्राम शामी अवध। मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता राजवंशी। इस घंटे एक बार फिर से आपके साथ स्वागत करती हूं सबका प्रोग्राम शामी अवध में। ये प्रोग्राम है जहां पे लखनऊ का दिल धड़कता है, आप मानते हैं कि नहीं? हां जी, तो बात होगी तमाम अपडेट्स की। उससे पहले लेट्स टेक अ क्विक म्यूजिकल ब्रेक एंड स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM, धड़कन लखनऊ।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक UNIV.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

तो दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है शाम में अवध और यहाँ लेकर आते हैं हम लखनऊ सिटी की अपडेट मौसम से लेकर मेट्रो तक। जी हाँ, यहाँ हम शेयर करते हैं आपसे हमारे शहर की मेजर सिटी हैपनिंग्स, इवेंट, अपडेट्स, इन शॉर्ट शहर रौनक। कहते हैं ना अमा यार, चल क्या रहा है हमारे शहर लखनऊ में। तो भाई इस वक्त तो गाने चल रहे हैं लखनऊ में, बेहतरीन गाने। पर उससे पहले क्विक अपडेट में देती हूँ कि जून के सेकेंड हाफ में लखनऊ के क्रिएटिव स्पेसेस में पोएट्री, स्टोरी टेलिंग और म्यूजिक ओपन माइक्स का ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है, जो यंग आर्टिस्ट, राइटर्स और परफॉर्मर्स के लिए नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी बातों का ये सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो पर।

0: अपनी बच्ची की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

दोस्तों अब से कुछ ही देर में 8:30 पर आप सुन सकते हैं आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत एस्बेस्टर बर्मिंघम में भारत और पाकिस्तान के मध्य खेले जा रहे T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखाल हमारे दिल्ली केंद्र से। बाकी के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं हमारे न्यूज ऑन एयर ऐप में।

अब से कुछ देर में 6:30 पर आप सुनेंगे आईसीसी विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत एजबेस्टन बर्मिंगम में भारत और पाकिस्तान के मध्य खेले जा रहे T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल हमारे दिल्ली केंद्र से, और बाकी के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं हमारे न्यूज ऑन एयर ऐप पर।

तो दोस्तों 6:25 हो रहा है और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यूथ, प्रोग्राम शामे अवध। तो आप देख ही रहे होंगे दोस्तों, कुछ दिन से जून की गर्मी के बीच बादलों ने ना दस्तक देनी शुरू कर दी है। कल ही का मौसम देख लीजिए, हवा में नमी, आसमां में बादल, और लखनऊ वालों का अब इंतजार खत्म होने को। काश खत्म हो जाए कि मानसून जल्दी से आ जाए और जबरदस्त बारिश लेके आ जाए। वैसे भी बारिशों में लखनऊ का अपना ही चार्म होता है ना। आपको क्या लगता है? फिलहाल मुझे तो लगता है कि कैंट और हजरतगंज की वो भीगी सड़कें, वाह वाह वाह, और मरीन ड्राइव की हवा, घूमते रिवरफ्रंट का मौसम, साथ में वो गरम गरम चाय, क्या बात है, क्या मजा आता है। वो होता है असली मानसून का मजा, राइट? जी हाँ, तो आप बताएं मुझे लखनऊ में बारिश का सबसे फेवरेट स्पॉट आपका कौन सा है। तो चाय का कप तैयार रखिए और आप सुनते रहिए शामे अवध श्वेता के साथ, ओनली ऑन 100.7 FM पर।

0: the knee to start with.
1: Yeah, good.
0: Okay. How do you bowl on a wicket like this that's offering some runs?
1: Yeah, obviously it's look like a batting track, so but still we have a good bowling unit. We have a good spin bowling attack, so I think it will be a good contact.
0: Okay. Any key in or outs for you for the team?
1: Yeah, we are going with Saira. She will be playing first time in the World Cup, so that will be our.
0: Oh, the Kalesha Valley will be happy with that. All the best today.
1: Thank you. Thank you.
0: India have won the toss today and they're going to have a bat first.
2: So a very happy Indian captain over there, Smriti, all smiles, telling us that we have won the toss and India has chosen to bat first. A good toss to win today, Ovi Vaishali.
3: मुझे ये लगता है कि टॉस जीत के हमने बैटिंग का सही फैसला लिया है, क्योंकि इस पिच पे एक तो बैटिंग पिच है जो कि हमारी फातिमा पाकिस्तान की कैप्टन ने बोला है, लेकिन इसमें एक खासियत और है, जैसे जैसे यहाँ पे टाइम ढलता जाएगा वैसे वैसे स्विंग और स्पिनर्स पे काफ़ी बेनिफिट भी मिलता जाएगा। सो ये एक बैटिंग जो हमारी कैप्टन ने ली है ये एक बहुत सोची समझी चाल है और बहुत ही अच्छा डिसीजन भी लिया है इन्होंने।
2: Also a slip of tongue over there by me over there, not Smriti Mandana but of course Harmanpreet Kaur, but just to carry that conversation forward very quickly, jo aapne yahan baat rakhi abhi Vaishali ki jaise jaise ye wicket aur purana ho gaya pitch hogi, so it's a good wicket abhi bat karne ke liye, lekin baad mein bowler friendly ho jayega. I'll come to you Mona on that. We saw both the captains jumping over there at the choice of having chosen to bat first today, and given the fact that also we have Bharti coming back into the playing 11 for us today, do you think that's an advantage in terms of batting for India?
4: Definitely yes, क्योंकि आप देखिए कि वर्ल्ड कप की भी हम बात करें, अगर 50 ओवर्स का जो वर्ल्ड कप था, बैटर्स का बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा है और यहाँ पर सबको उम्मीदें होंगी कि स्मृति मांधना हो या शेफाली हो, अच्छी स्टार्ट अगर भारत को यहाँ से मिलती है और मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारती फुलमाली को आज रखा गया है टीम में, हरमनप्रीत कौर ने अच्छे दो हाफ सेंचुरीज लगाए हैं जो प्रैक्टिस मैचेस हुए थे उसमें, उनका फॉर्म बहुत क्रूशियल है भारत के लिए, और ऋचा घोष हैं, तो हम कुल मिलाकर ये जो आइडिया होगा कि एक बड़ा स्कोर और यहाँ पर खड़ा किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो पूरी तरह से नहीं तो 80% फातिमा सना पर निर्भर करती है, फातिमा का विकेट अगर जल्दी निकल गया तो वो क्रम्बल कैसे करते हैं वो हमने देखा है, तो यहाँ बहुत ही सही डिसीजन है जैसे वैशाली जी ने कहा कि पहले बल्लेबाजी की भारती को टीम में रखा, बैटिंग ऑलरेडी स्ट्रांग है इंडिया की, एक बड़ा स्कोर अगर यहाँ खड़ा करती है टीम इंडिया तो ये पहला मुकाबला है जिसको टोन सेट करने वाला मैच कहते हैं, और कागजों पर भी भारत का पलड़ा बहुत भारी है और ये ग्रुप हमने देखा है कि कितना कठिन है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, इसमें साउथ अफ्रीका भी है, तो किसी भी कोताही की यहाँ गुंजाइश नहीं है, तो यहाँ आइडिया यही होगा कि एक बड़ा स्कोर खड़ा किया जाए।
5: जी हाँ बिल्कुल, भारत और पाकिस्तान के बीच 16 T20 मुकाबले हुए हैं, इनमें भारत ने 13 और पाकिस्तान ने 3 मैच जीते हैं। T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो दोनों टीमें 8 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें भारत ने 6 बार और पाकिस्तान ने 2 बार मजीब मारी है। कर्नल, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब से वहाब रियाज ने कमान संभाली है पाकिस्तान टीम की, एक अटैकिंग इंटेंट नजर आया, जो जिम्बाब्वे के साथ उनकी बाइलैटरल सीरीज हुई थी वहां हमने देखा कि 200 से ज्यादा स्कोर बने, लेकिन प्रैक्टिस जो मैचेस थे वर्ल्ड कप के वहां वो टीम स्ट्रगल करती नजर आई, क्या उस माइंडसेट से भारत किस तरह के टोटल के आसपास आज देखेगा पहले बल्लेबाजी करते हुए?
6: देखिए, अगर आप पाकिस्तान का परफॉर्मेंस देखेंगे लास्ट 4 मंथ्स में, दैट इज दिस ईयर, तो एक्सेप्ट फॉर द सीरीज अगेंस्ट जिम्बाब्वे वेयर दे प्लेड ऑन देयर ओन ग्राउंड, सो दे स्कोर्ड वेल, इन रेस्ट ऑफ द मैचेस दैट इज इन साउथ अफ्रीका एंड ऑल्सो इन इंग्लैंड एंड आयरलैंड, दे हैव लॉस्ट ऑल मैचेस एक्सेप्ट वन विच दे वन। सो जनरली इफ यू सी देयर बैटिंग रिवॉल्व अराउंड फातिमा सना, इफ शी गेट्स आउट अर्ली देन दे आर स्कोरिंग इन द रेंज ऑफ 120-130 रन्स। सो इन विकेट्स के ऊपर मेरे ख्याल से हम अगर बैटिंग फर्स्ट अभी हम कर रहे हैं, बैटिंग हमारी स्ट्रांग है, तो अगर हम स्कोर 170 से ऊपर कर देते हैं तो इट विल बी ए वेरी चैलेंजिंग टोटल फॉर पाकिस्तान एंड वी शुड बी एबल टू बीट देम।
5: जी हाँ बिल्कुल, 2025 के बाद से फातिमा सना ने 12 मुकाबलों में 335 रन बनाए हैं, 13 विकेट भी लिए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 183.06 का है।
2: जी एंड आनंद, दिस इज ऑल्सो फॉर ऑल आर लिसनर्स हु आर जॉइनिंग अस टुडे ओवर हियर, आर कॉलिंग लाइंस आर ओपन। जी हाँ, हमारी कॉलिंग लाइंस खुल चुकी हैं 011-2342-1084, 0112342108 आप हमें कॉल करके अपने

0: सवाल पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ कर्नल भूपराज सिंह, वैशाली माथुर और मोना पार्थ साथी आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। एंड नाउ टू टेक दिस कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड, वैशाली आई विल कम टू यू। बर्मिंघम की जो पिच कही जाती है, इट्स ऑलवेज बीन अ स्लो पिच, 6.77 का यहाँ पर हमने देखा है एवरेज नेट रन रेट पर ओवर चलता है जो हम बात करते हैं। उस एंगल से हमने आज भी देखा कि व्हेन वी फर्स्ट वन द टॉस, हरमनप्रीत सेड दैट वी आर ब्रिंगिंग इन 3 स्पिनर्स एंड 2 मीडियम पेसर्स। फ्रॉम अ बोलिंग पर्सपेक्टिव फॉर द इंडियन साइड, आप किस तरह से देख रहे हैं आज भारत अपनी स्ट्रैटेजी लेके उतर रहा है?
1: वैशाली मैम, इससे पहले कि आप इस सवाल का जवाब दें, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
2: नमस्ते सर।
1: नमस्कार, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप?
2: हम जानना चाहते हैं कि आज टीम जो है ना, आज का स्कोर खड़ा करे, कम से कम 250 का स्कोर हो और बढ़िया फील्डिंग करें।
1: 250 की उम्मीद लगा रहे हैं जी वैशाली।
3: जैसा कि मैंने अभी बताया कि पिच के बारे में, बैटिंग पिच है, पाटा पिच है बिल्कुल, तो डेफिनेटली 140 से तो अबव ही जाएगा, 180 तक का टारगेट जरूर होगा भारतीय टीम का। लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के स्पिनर्स भी कोई कम नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि स्मृति वंदना जब उनके सामने नासर संधु और सादिदा आती है ना, तो उन्होंने 3 मैचेस में 2 बार उनको आउट किया है। लेकिन आज हमारी स्मृति वंदना को इनसे बचना होगा, इन खुल के खेलना होगा, क्योंकि हमारे जो हरमनप्रीत कौर, हमारी दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, तो ये एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, इनको पता है कि किस तरीके से खेलना है, कहाँ उनको लैक करके उसको इम्प्रूव करना है ड्यूरिंग द मैच। लेकिन जो हमारे यंगस्टर्स, जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनको भी कैसे लेके साथ चलना है। और उसके बाद मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि जो फातिमा है पाकिस्तान टीम की कैप्टन, वो उनको नी इंजरी है, सो हमारी टीम को ये पता है कि उनको नी इंजरी है, तो ये एक बेनिफिट भी हमारी टीम के लिए है।
1: जी हाँ बिल्कुल, इस मैच से पहले ऐसा लग रहा था कि शायद वो नहीं खेलेंगी। आपने पाकिस्तान के कुछ स्पिनर्स की चर्चा की, 2025 के बाद से सादिया इकबाल ने 12 मुकाबलों में 14 विकेट लिए हैं, फातिमा सना के नाम 13 विकेट हैं, जबकि नासर संधु जिनका आप जिक्र कर रही थी उनके नाम 9 विकेट हैं। तुबा हसन एक और ऐसी गेंदबाज जो मिडिल ओवर्स में अच्छी गेंद करें, जिस तरीके से शिफाली फॉर्म में हैं, जनवरी 2025 के बाद 21 मुकाबलों में 677 रन उनके नाम हैं, और वनडे वर्ल्ड कप में एंट्री के बाद से लाजवाब फॉर्म कैरी कर रहे हैं। स्मृति, हम सब जानते हैं कि बड़े टूर्नामेंट्स की बड़ी प्लेयर हैं, यहाँ किस तरह का स्टार्ट देख रही होंगी, चूंकि पिच पर काफी चर्चा हो रही है, बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है, आते ही स्टार्ट करेंगी या कुछ ओवर देखेंगी?
4: देखिए, फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84 रन बनाने के बाद स्मृति एक भी अर्धशतक नहीं बना पाई है लास्ट 6 पारियों में। इसके अलावा शेफाली की भी बात करें, जोहानिसबर्ग में जो 64 रन बनाए थे, उसके बाद से उनका बल्ला भी उस तरीके से नहीं चला है जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है। तो यहाँ पर क्योंकि ये विश्व कप है, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, एक भी मैच में आप कोताही नहीं बरत सकते, तो राइट फ्रॉम द वर्ड गो, शुरू से पहली गेंद से ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी। ये T20 क्रिकेट है, वनडे विश्व कप हमने जीता, वो अतीत की बात हो गई है। ऑलमोस्ट जो फलक्रम है टीम का वो वही है, टीम वही है ऑलमोस्ट, तो इन्हें पता है, जिसको कहते हैं ना, बीन देयर डन दैट, एक खिताब हम जीत चुके हैं, हमें पता है खिताब कैसे जीते जाते हैं। तो वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो स्ट्रेटजी है, जो कागजों पर बनती है, उसको मैदान पर रणनीति पर अमल करना जरूरी होगा। और यहां पर चूंकि आपने बल्लेबाजी चुनी है, तो आपको शुरू से ही आक्रामक खेल दिखाना होगा, और ये पाकिस्तान के खिलाफ मैच है, तो थोड़ा कैरिड अवे होने से भी यहां बचना बहुत जरूरी होगा।
0: राइट, एंड वी आर टोल्ड वी हैव अनदर लिसनर जॉइनिंग अस राइट नाउ विद अस। नमस्कार, गुड इवनिंग।
5: जी नमस्कार, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश तली बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अविनाश जी, बताएं क्या पूछना चाहते हैं आप?
5: जी मैं बोला था कि हम सभी जानते हैं कि ऋचा घोष हमारे विकेटकीपर बैट्समैन जो है वो बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज है, तो उन्हें हम नंबर 3 पे क्या भेज सकते हैं, क्योंकि पहले से ही अगर दबाव में डाल दें तो विपरीत टीम को तो बहुत ही हमला करने के लिए फायदेमंद होगा।
0: Right, I'll take that question straight to our expert, Colonel Gupraj. Would you want to address that? Richa Ghosh coming in at number 3 is his ask or suggestion. How good or bad do you think that is in terms of placement at number 3 for Richa Ghosh over there?
6: Well, what I feel is that we've got a very settled first 4-5 batsmen, and they are experts in their position. And Richa Ghosh may not be a good option to send at number 3. Let her play at number 6 or 7 at whatever stage she comes, so that she can get good quick runs in the later part of the innings. And Harmanpreet, Shefali Verma and Mandana, they are good players. They'll, you know, manage on top.

0: along with Jemima Rodriguez.
1: राइट
2: जी हाँ.
1: आई जस्ट टेक अ क्वेश्चन विद वैशाली ऑल्सो, आपके पास आऊंगी मैं. आनंद ने अभी बहुत अच्छी बात रखी थी कि 13-3 का आंकड़ा है, 13-3 का आंकड़ा भारत के पक्ष में अगेंस्ट पाकिस्तान. इंडिया पाकिस्तान इज ऑलवेज अ वेरी बिग थिंग बिकॉज इट्स इंडिया पाकिस्तान, बट इन टर्म्स ऑफ द क्रिकेट एंड हाउ द क्रिकेट ऑफ दीज टू नेशंस हैज इवॉल्व्ड, डू यू थिंक इट इज नो मोर अ फाइट और अ राइवलरी बिटवीन, इफ यू टॉक स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ हाउ द टू नेशंस टुडे स्टैंड इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग the kind of cricket they are playing?
3: I think it's a mindset. क्योंकि अगर एक player अगर खेल रहा है तो उसके साथ साथ हमें ना सिर्फ ये देखना चाहिए कि उसका किस तरीके की achievements है, उसने क्या क्या experience है उसके पास और वो कैसे play करता है, rather than हम अपनी politics side में रख के देखें तो. And उसके साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि वो किस तरह का fielder है, कितना अच्छी बैटिंग करता है और वो कितना इन्वॉल्व्ड है टीम के साथ, और वो सब फैक्टर्स भी देखे जाते हैं. और अभी मैं एक और चीज़ ज्वाइन करना चाहती हूँ इसमें कि ऋचा घोष के बारे में अभी हम बात भी कर रहे थे, तो ऋचा घोष हमारी इंडियन टीम के लिए एक्स फैक्टर है क्योंकि वो उस जगह पे खड़ी है जो जहाँ पे उनको कहीं भी भेजेंगे, किसी भी डाउन पे भेजेंगे, वो वहाँ जाके अपने आप को शो करती है. हमेशा हमने देखा होगा कि ऊपर का बैटिंग लाइनअप खराब हो जाता है हमारा कभी कभी, हर दिन एक जैसा नहीं होता है, लेकिन एक ऋचा घोष ऐसी है इस टीम के अंदर जो हर दिन अपने आप को शो करती है एंड वो बैटिंग करके दिखाती हैं. और उसके साथ जेमिमा रोजर्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें उनको पाकिस्तान के साथ बैटिंग करना बहुत ही मज़ेदार लगता है, और उनने जो एशिया कप में 2022 में जो खेला था उन्होंने 53 की नाबाद बारी खेली थी उनके साथ, और वो मुझे लगता है कि वो आज उतने ही जोश में भी होंगी.
2: जी बिल्कुल. अगर हम अपने श्रोताओं के लिए भारत के प्लेइंग 11 की बात करें तो स्मृति मानधना हैं, शेफाली वर्मा हैं, जेमिमा रॉड्रिग्स हैं, हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तान, भारती फुलमाली, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्रियंका पाटिल, श्रीचरणी और क्रांति गौड़. इस टीम के साथ खेल रही है टीम इंडिया. थोड़ी बात हरमन की जाए, हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम की कप्तान. इनकी कप्तानी में भारत ने T20 वर्ल्ड कप में 19 में से 13 मैच जीते हैं, 6 हारे हैं और 2025 के बाद से 19 मुकाबलों में 486 रन बनाए हैं. मोना एक ऐसी खिलाड़ी जो काफी समय से स्ट्रगल कर रही हैं, बीच में कुछ एक मैचेस में अच्छी पारियां खेलती हैं, लेकिन टीम की सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं. क्या लगता है इस बड़े मंच पर दबाव होगा उन पर?
4: देखिए ये कहना तो गलत होगा कि दबाव नहीं होगा, और खासकर अब ज्यादा दबाव होगा क्योंकि हम वनडे में विश्व चैंपियन हैं, और उस लय को बरकरार रखने का दबाव जो होता है भारतीय क्रिकेट में हर कोई जानता है किस तरीके से कैसे होता है. हरमन की हम बात करें तो एज अ बैटर मुझे अभी भी उनकी वो ऑस्ट्रेलिया वाली इनिंग याद आती है जब अकेले दम पर उन्होंने मैच जिताया था. अभी हम बात भी कर रहे थे कि टूर्नामेंट से ठीक पहले 2 हाफ सेंचुरी लगाई है उन्होंने, अनुभव है. रवानगी से पहले एक प्रेस इवेंट में उनसे पूछा गया था कि क्या ये आपका आखिरी वर्ल्ड कप है, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, यू वांट मी टू रिटायर व्हाई. तो ये एक बॉडी लैंग्वेज होती है कप्तान की, जहां आक्रामकता दिखानी होती है वहां वो आक्रामक रहती है, और मुझे लगता है हरमन वो एक धुरी है जो इस पूरी टीम को जोड़ के रखती है, और एक कप्तान के तौर पर उनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है भारतीय महिला क्रिकेट में. तो मुझे लगता है कि वो दबाव जरूर होगा, लेकिन उस दबाव से कैसे पार पाना है उस खेल की वो अब माहिर हो चुकी है.
1: Right, and I'll come to you, Mona, just to take that question forward, yeah. because aap jawab dena cha rahe the about how India. the cricket of both the countries has evolved and whether possibly India ka cricket se zyada uch ho gaya hai compared to Pakistan ka cricket.
4: Sakshi, aapne jo sawal pucha tha ki dono desh kahan thehrte hain mahila cricket mein, ye aapka question tha, to aapko ye bhi dhyan rakhna hoga ki bhartiya team khas taur pe WPL aane ke baad se ya fir exposure ki hum baat kare to lagatar khelti aa rahi hai, aur Pakistan 2 saal mein ek ya do shrinklaen khela hai. Zimbabwe के खिलाफ जो है उसको तो मैं कहूंगी बेमेल ही श्रृंखला है, उसमें शायद सबसे फास्ट हाफ सेंचुरी बनाई फातिमा सना ने, लेकिन जो हार्ड टेस्ट होते हैं किसी भी बड़े टूर्नामेंट से पहले उनसे होकर पाकिस्तानी टीम नहीं गुजरी है. और भारतीय खिलाड़ी न सिर्फ WPL आप हंड्रेड्स में देख लीजिए, आप बिग बैश में देख लीजिए भारतीय खिलाड़ी खेलते हैं, तो काफी अनुभव हो गया है बड़े मुकाबले खेलने का, और वर्ल्ड कप फाइनल तक खेल चुके हैं, तो बहुत ही फर्क है. मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी हम देखें या प्लानिंग वाइज भी हम देखें या कहां पर दोनों टीमें खड़ी हैं और बोर्ड का कितना सपोर्ट है पाकिस्तान में महिला क्रिकेट को और भारत में, तो काफी फर्क पड़ता है। आप कितने साउंड होकर उतर रहे मैदान पे वो काफी मायने रखता है। तो मुझे लगता है यहां पर निश्चित

0: तौर पर भारत का पलड़ा काफी भारी है।
1: राइट,
2: गेंदबाजी की बात करें तो श्री चरणी पर सबकी नजरें होंगी। 2025 के बाद से 20 मुकाबलों में 28 विकेट और दीप्ति शर्मा, एवरग्रीन दीप्ति शर्मा के नाम 23 विकेट हैं और अरुंधति रेड्डी ने 20 खिलाड़ियों को आउट किया है। श्री चरणी की थोड़ी बात करते हैं कर्नल, काफी नई खिलाड़ी हैं लेकिन रनों पर अंकुश लगाना हो, मिडिल ओवर्स में विकेट लेना हो, ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती हैं इस वर्ल्ड कप में।
3: देखिए, श्री चरणी इज अ वेरी गुड बॉलर, कंट्रोल से बॉल करती है, फ्लाइट करती है एंड आपने WPL में भी अगर इनका परफॉर्मेंस देखा था तो उन्होंने ऑलमोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर थी, तो शी इज़ वेरी गुड एंड ऑल्सो इन दीज लास्ट फोर मंथ्स दैट वी बीन टूरिंग साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, शी इज टेकन लॉट ऑफ विकेट्स, 2 विकेट्स, 3 विकेट्स इन एवरी सेकेंड इनिंग शी इज टेकन, सो शी इज वेरी गुड। बट वॉट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न इज द फॉर्म ऑफ दीप्ति शर्मा।
2: बिल्कुल सही, मैं इसी सवाल पर आ रहा था, शी स्ट्रगल कर रही है।
3: या शी हैज जस्ट टेकन इन वन मैच 5 विकेट्स, इन रेस्ट ऑफ द मैचेस शी इज नॉट दैट ओल्ड दीप्ति शर्मा दैट वी नो हर टू बी, पर आज उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी बॉलिंग करेगी एंड बट आई हैव गॉट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन श्रियंका पाटिल ऑल्सो, शी इज बोल्ड वेरी वेल इन WPL एंड ऑल्सो इन द प्रैक्टिस मैचेज दैट वी हैड इन इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका। So these 3 spinners we are looking at and Arundhati, the fast bowler, also she's done well. So our bowling is quite good when we compare ourselves with Pakistan.
1: Right, since we're talking of Deepti Sharma abhi, Deepti Sharma just requires 5 more wickets to go past actually Thipacha Puttawong of Thailand to become the leading wicket taker in women's T20. Mona, aapke paas aa jaati hai is baat se ki a moment of pride, kyunki hum Indian women's cricket ke evolution ki baat kar rahe hain, Deepti Sharma today stands at accomplishing a feat where she could become the record holder in terms of the number of wickets. 5 more wickets to go and she becomes the highest wicket taker in women's T20 cricket.
2: Mona, इस सवाल के जवाब पर आएंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
4: जी नमस्कार आदाब।
2: जी नमस्ते।
4: जी मैं मुस्तकीम मुतवा बात कर रहा हूँ गुजरात से।
2: जी बताएं क्या बताना चाहते हैं आप।
4: जी सबसे पहले तो हम आकाशवाणी का आभारी है कि आप रेडियो पे क्रिकेट कमेंट्री प्रसारित कर रहे हैं।
2: जी
4: और उम्मीद है कि आगे आने वाले भारत के जो मैचेस हैं इंग्लैंड, जिम्बाब्वे और आयरलैंड, उसकी भी कमेंट्री होगी रेडियो पर।
2: जी हाँ, इस विश्व कप में भारत के सभी मैचों का प्रसारण हम आपके लिए लेकर आएंगे।
4: जी जी, और भारत के मेंस टीम के भी मैचेस की भी कमेंट्री रेडियो पर जरूर लाए सर।
2: आप इस मैच से जुड़ा क्या बताना चाहते हैं?
4: आज तो बस भारत ने टॉस जीता है और भारतीय टीम को शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि भारत की टीम 170-180 रन का टारगेट खड़ा करेगी और भारत मैच जीतेगा।
2: जी हाँ, करोड़ों भारतीय प्रशंसक टीम इंडिया को शुभकामना देना चाहते हैं। जी मोना, दीप्ति शर्मा के बारे में आप बता रही थी।
0: जी बिल्कुल, आपने बात की रिकॉर्ड की दहलीज पर खड़ी हैं और पर्सनल माइलस्टोन्स इतना ज्यादा जब आप क्रिकेट खेलते हैं अक्रॉस द फॉर्मेट और ये T20 में खास तौर पे दीप्ति शर्मा का जो प्रदर्शन रहा है, जैसे अभी सर बोल रहे थे कि उतना उस कॉन्फिडेंस में वो नहीं दिख रही है, उस लय में वो नहीं दिख रही जिसकी वजह से वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी थी, लेकिन बड़े मैच की खिलाड़ी हैं और बैक ऑफ माइंड चाहे कितना भी बोले कि हमारा ध्यान नहीं रहता है पर्सनल माइलस्टोन पे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ माइंड रहता ही है कि अभी इतने विकेट बाकी हैं, तो बड़े मैच की खिलाड़ी है, बड़ा टूर्नामेंट है और सही समय पर पीक करना उन्हें आता है, तो उम्मीद हम यही करते हैं कि न सिर्फ वो माइलस्टोन बल्कि इस टूर्नामेंट में भारत को बहुत डीप ले जाने में भी वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
2: वैशाली, आपसे जानना चाहेंगे कि जब भारती फुलमाली की एंट्री होती है प्लेइंग 11 में, क्या हम इस टूर्नामेंट में बैटिंग ऑर्डर में शफल देख सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी प्लेयर हैं जो किसी भी ऑर्डर पर आकर तेज तरार पारी खेल सकती हैं।
5: अगर मैं भारती की बात करूं तो ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया ए में जो उन्होंने खेला था उन्होंने नाबाद 50+ स्कोर किया था एंड वो कंटिन्यूस करती हुई आ रही हैं, दैट्स व्हाई वो इस टीम के अंदर आज प्लेइंग 11 का हिस्सा है और उसके उनके अंदर एक खासियत और है कि उनके अंदर पेशेंस भी है। जैसे कि हम देखें अगर कंपेरिजन करें शेफाली वर्मा और भारती का, तो शेफाली के पास उतना पेशेंस नहीं है जितना कि भारती के पास है और मान सकते हैं कि पहला मैच खेल रही हैं लेकिन पहला मैच हो सकता है उनका ज़िंदगी का मैच हो और वो इसी मैच से आगे भी आएं, तो मेरी तो यही उम्मीद है कि वो 50+ स्कोर करे और हो सकता है कि जहां भी वो ओपनिंग या फर्स्ट डाउन आए तो वहां पे अपने आप को प्रूव करे।
1: राइट, आई कम टू यू नाउ कर्नल भूपराज एंड आस्क यू, डज इंडिया गो इन एज हैवी फेवरेट्स इन द गेम टुडे?
3: Oh yes, we are heavy favorites and I am hoping for a one-sided match.
1: One-sided, wow. Mona ji?
0: Hands down, bilkul India favorite hai aur jaise

0: से हम बार बार बात करें कि पाकिस्तान के लिए सब कुछ निर्भर करता है उनकी कैप्टन पर, वो आज कैसे खेलती है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि टूर्नामेंट से पहले मैंने एक बार उनका इंटरव्यू किया था और उन्होंने कहा था कि उनके फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी हैं। काफ़ी कुछ कूल डिमेनर जो महेंद्र सिंह धोनी का है वो उसी तरह से कप्तानी में विश्वास रखती है। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सफलता के मामले में धोनी की वो नक्शे कदम पर ना चले और आज बिल्कुल भारत फेवरेट रहे।
1: कर्नल भूप राज, आपसे समझना चाहेंगे, भारत और पाकिस्तान की टीम जब भी मैदान पर उतरती है और विश्व कप का जब मंच होता है, गहमा गहमी बहुत बढ़ जाती है। और हम देख भी रहे हैं कि पिछली बार जब दोनों टीमें पुरुष विश्व कप में खेली थी तो किस तरीके का माहौल था, यहाँ पर क्या इंटेंसिटी आप फील कर रहे हैं?
2: देखिए, इस बड़े मैच में थोड़ी बहुत टेंशन तो होती है दोनों टीमों के लिए, बट लेटली अगर आप देखिए तो इंडिया बोथ मेन्स एंड वेमेन्स में बड़े आराम से जीत रहा है। तो वो जो टेंशन इंडियन प्लेयर्स में है वो थोड़ी सी कम होगी इस बार, एंड मेरे ख्याल से हम लोग अच्छा खेलेंगे।
1: जी हाँ, बिल्कुल, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम अच्छा खेलेंगे। वैशाली, क्विक आपसे टेक लेना चाहेंगे, भारतीय बल्लेबाज किस तरीके की शुरुआत की उम्मीद कर रहे होंगे? हमने शेफाली की बात की, स्मृति की बात की, हमने ये भी चर्चा की कि स्मृति का फॉर्म उनके साथ नहीं है, जो टीम दक्षिण अफ्रीका खेलने गई थी, जो इंग्लैंड में वो बल्लेबाजी करके आई है, लेकिन हम सब जानते हैं वो बिग मैच प्लेयर है।
3: जी बिल्कुल, और मैं यही उम्मीद करती हूँ और बाकी फैंस भी यही उम्मीद करते होंगे कि जो पावर प्ले है उसका भरपूर फायदा उठाया जाए और जितने रन्स हम लूट सकते हैं उतने रन्स हम लूटें। हमारी टीम वो उसके बाद जब हमारी शेफाली वर्मा मारने को आती है ना तो वो रुकती नहीं है, ये हमने काफ़ी टाइम तक देखा है। और स्मृति मन्ना का जब बैट चलता है वो ग्लांस करती है, जिस तरह से वो स्लाइस करती है बैट को और उसके साथ साथ जैसे वो कवर ड्राइव लगाती है, वो रुकनी नहीं चाहिए आज के मैच में।
1: हम सब उम्मीद करते हैं कि आज भारत रुकेगा नहीं। तो विश्लेषण, आंकड़ों और उम्मीदों का यह सफर यहीं थमता है, लेकिन असली रोमांच अब शुरू होने वाला है। बर्मिंघम का मैदान तैयार है, खिलाड़ी तैयार हैं और करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें इस महामुकाबले पर टिकी हैं। भारत और पाकिस्तान की टक्कर में अब हर गेंद इतिहास लिख सकती है। वैशाली आपका, कर्नल भूपराज आपका और मोना आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
3: Thank you.
4: First ball 20.

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: मैं आशीष चरंगू अपने साथी कमेंटेटर दर्पण तिकिया, स्कोरर रजत सिन्हा और स्टैटिस्टिशियन तुषार त्रिवेदी के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप का 10वां संस्करण शुरू हो चुका है 12 जून से, और अब तक इस प्रतियोगिता के, इस विश्व कप के 5 मुकाबले खेले जा चुके हैं और आज 6वां मुकाबला है, जो कि अब से थोड़ी ही देर बाद भारत और चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान की टीमों के बीच शुरू होने वाला है एजबेस्टन बर्मिंगम पर। और इस मैच में टॉस जीता है भारत के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने, और टॉस जीतकर जैसा कि तमाम खेल के जानकारी अनुमान लगा रहे थे कि जो भी कप्तान टॉस जीतेगा पहले वो बल्लेबाजी करने का निर्णय लेगा इस पिच पे, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए ये उपयुक्त फिलहाल काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। और हरमनप्रीत कौर ने भी ठीक वैसे ही किया, टॉस जीतने के बाद उन्होंने बल्लेबाजी करना पसंद किया, उसका फैसला किया। और जो 11 खिलाड़ी आज वो टीम में उतारे गए हैं वो हैं स्मृति मांधना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर जो कि टीम के कप्तान हैं, भारती फुलमली, ऋचा घोष टीम के विकेट कीपर, दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, श्रीचरणी और श्रियंका पाटिल। तो ये है भारतीय टीम, जबकि पाकिस्तान की तरफ से जो कप्तान हैं वो हैं फातिमा साना, मुनीवाली टीम के विकेट कीपर गुल फिरोजा, आयशा जफर, सायरा जबेन, नतालिया फरवेज, आलिया रियाज, रमीन शमीम, नाशरा संधु, सादिया इकबाल और तास्मिया रुबाब। तो ये है दोनों टीमों का लेखा जोखा। फिलहाल बीच मैदान पर भारत के दोनों ही प्रारंभिक बैटर्स स्मृति मांधना और शेफाली वर्मा बीच मैदान की तरफ अग्रसर होती हुई, और निश्चित रूप से यहाँ पर भारत के तमाम जो खेल शायकीन हैं, खेल के जानकार

0: पहले ही ओवर के दौरान भारत 6-1 विकेट के नुकसान पर।
1: Jemima Rodrigues is the new batter and Sadia Iqbal misses her mark this time around, delivers this one down the leg side on a good length, too far for Jemima to make contact. Now this is an interesting one. Remember, recently they had Yastika Bhatia batting at number 3, who is a left-hander obviously. Pakistan have two left-arm spinners, so the left-hander can be very useful in modern-day cricket to counter the left-arm spinner. However, today India have left left-handed Yastika Bhatia out. Meanwhile, Sadia Iqbal delivers this one in line with the stumps on a good length, presses forward as Jemima Rodrigues and wards it off towards extra cover. End of the first over. 7-1.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने एक ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन बनाए हैं 1 विकेट के नुकसान पर, और अब स्मृति मंधना का साथ देने के लिए बीच मैदान पर जेमिमा रॉड्रिक्स हैं। 25 वर्ष की उनकी उम्र, मुंबई में जन्मी और पिछले 8 वर्षों से लगातार भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और न केवल उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है बल्कि एक बहुत गहरी छाप उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम पर अब तक छोड़ी है। 126 मुकाबले जो इससे पूर्व उन्होंने खेले हैं उसमें कुल 2732 रन उन्होंने बनाए हैं, और औसत की यदि बात करें तो 30 से ऊपर का उनका औसत और स्ट्राइक रेट लगभग 119 की। काफ़ी उम्मीदें भारत को इस अनुभवी जोड़ी से, और देखना यह है कि ये जोड़ी अब किस तरह से यानी पारी को आगे बढ़ाती हैं। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत फातिमा के द्वारा, और फातिमा साना की इस गेंद को स्क्वायर लेग के दिशा में खेल दिया एक आसान से रन के लिए वहां पर स्मृति मानधना ने, और इस एक रन के साथ उन्होंने अपना खाता भी खोल लिया और भारत का स्कोर इस एक रन की मदद से अब बढ़कर 8-1 विकेट के नुकसान पर। जेमिमा अगली गेंद का सामना करेंगी और देखना यह है कि यहां पर क्या वो स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोरबोर्ड को गतिमय रखेंगी या फिर कुछ हाथ खोलकर पावर प्ले में बड़े स्ट्रोक लगाना पसंद करेंगी। फिलहाल फील्ड प्लेसिंग के लिए थोड़ा सा परिवर्तन होता है वहाँ पर, ये देखते हुए कि बीच मैदान पर इस समय जो दो बैटर्स हैं वो एक बाएं हाथ का स्मृति मंधना और जबकि दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जेमिमा रॉड्रिक्स। एक स्पिन स्लिप के साथ गेंदबाजी करते हुए इस समय फातिमा साना जो कि टीम के कप्तान हैं, हालांकि कल चोटिल हो गई थी घुटने में, नेट प्रैक्टिस के दौरान घुटने पर गेंद आकर के लगी थी और काफ़ी संशय था कि वो आज का मुकाबला खेलेंगी या नहीं, लेकिन फिलहाल पूरी तरह से फिट। अगले गेंद फ्रंट फुट पे जाकर इस गेंद को सीधे बल्ले से हल्का सा पुश कर दिया, लेकिन मिड ऑन पर फील्डर मौजूद हैं, बाईं तरफ जाकर उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को समाप्त कर दिया। भारत टॉस जीतकर एक विशाल स्कोर खड़ा कर देना चाहता है, एक बड़ी चुनौती यहां पर रखना चाहता है।
1: And immediately Pakistan make a change. They call Muniba Ali, the wicketkeeper, onto the stumps. She is called for the helmet and she is going to now stand on the stumps because Jemima Rodrigues stepped out of her crease to play the first ball in order to try and alter Fatima Sana's length. So proactive Pakistan today.
0: अच्छी कप्तानी वहां पर फातिमा साना की। फातिमा साना की अगली गेंद और इस बार कट करने की कोशिश, गेंद ने बल्ले का भीतरे किनारा लिया और एक बाउंस के बाद जाकर विकेट कीपर मुनीबा अली के पैरों में जाकर गेंद टकराई और उसके बाद डिफ्लेक्ट हुई, और निश्चित रूप से जेमिमा रॉड्रिक्स को संभल कर खेलने की आवश्यकता है यहाँ पर। फातिमा साना ज़रूर प्रसन्न है कि जिस तरीके से वहाँ पर उन्होंने एक परेशानी में डालने की जो कोशिश की थी उसमें कामयाबी हासिल की। अगली गेंद देकर फातिमा साना टीम की कप्तान पाकिस्तान की, एक बार फिर से तैयार, दाएं हाथ से ओवर द विकेट, इस बार स्टंप के नज़दीक से गेंद, थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ ऑफ मिडल स्टंप की तरफ आती है, उस गेंद को सीधे बल्ले से बैक टू द बॉलर पुश किया, गेंद को वहां पर फील्ड किया, रन बनाने का कोई प्रश्न नहीं। पिछली 3 गेंदों पर कोई भी रन नहीं बना पाई हैं जेमिमा रॉड्रिक्स, अब तक 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और खाता अभी तक नहीं खुला है। शफाली वर्मा का पहले ही ओवर के दौरान आउट होकर जाना भारत के लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उनसे उम्मीद की जा सकती थी कि वो पावर प्ले में अच्छा खासा एक गति भारतीय स्कोर बोर्ड को दे सकती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और सादिया इकबाल ने पहले ही ओवर के दौरान उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। फातिमा साना की अगली गेंद और इस बार इस गेंद को फ्रंट फुट पे आके हल्के से पुश किया, ऑन साइड पर, मिड ऑन पर फील्डर, सीधा थ्रो स्टंप्स के ऊपर, लेकिन स्टंप के

0: आसपास कहीं भी गेंद नहीं थी और डाइव लगाते हुए जेमिमा ने अपना इस मैच का पहला रन पूरा किया। भारत 9 एक विकेट के नुकसान पर।
1: थ्री थिंग्स हैपेंड देयर आशीष। फर्स्ट ऑफ ऑल the ball went to mid-on where Alia Riaz fielded it. She hit the ball towards the stumps. She hurled it towards the stumps, I should say. And the ball did not hit the stumps. Rather, it hit Jemima. Before that, whilst Smriti Mandhana was taking the run, she had to go around the baller. Fatima Sana, in order to try and field the ball, came in her way, which is interesting. It could spark some sort of debate. Anyhow, next delivery of the over, onto the body line, delivered on the shorter side of good length, allows Smriti to pull it towards the long leg fielder, where Sadia Iqbal moves towards her left, picks it up, hurls it back to the wicketkeeper. Whilst all that is done, a single has been taken, 2 overs done. 10 for 1, our team India.
0: तो कुल मिलाकर इस ओवर के दौरान मात्र 3 ही रन आए और निश्चित रूप से पाकिस्तान की तरफ से एक बढ़िया शुरुआत की जा सकती है। अब तक पहले दो ओवर में सिर्फ 10 रन दिए हैं उन्होंने भारत के तेज तरार बैटर्स को और एक विकेट बदले में हासिल कर लिया है, वो भी शेफाली वर्मा जैसी तेज तरार बैटर का। तो देखना यह है कि तीसरे ओवर में क्या कुछ हो पाता है। क्या सादिया इकबाल ही गेंदबाजी के क्रम को जारी रखेंगी या फिर फातिमा साना वहाँ पर कोई गेंदबाजी में परिवर्तन करना पसंद करेंगी, देखना निश्चित रूप से काफ़ी दिलचस्प होगा। आज यास्तिका भाटिया को टीम में जगह नहीं मिली है और उनकी जगह पर भारतीय फुलमली को टीम में रखा गया है। हालांकि यास्तिका अच्छा प्रदर्शन कर रही थी हाल फिलहाल में, लेकिन आज टीम में उनकी जगह नहीं बनी है। सादिया इकबाल गेंदबाजी के क्रम को जारी रखेंगी, बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज। ओवर द विकेट ये गेंद थोड़ा सा फ्लाइटेड ऑफ स्टंप की तरफ। स्मृति मंदाना ने फ्रंट फुट पे जाकर इस गेंद को हल्के से पुश किया, ऑफ साइड में गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया गया बिना किसी रन के। तीसरा ओवर प्रगति पर, टॉस जीतकर पहले भारत बल्लेबाजी कर रहा है इस मुकाबले में। भारत का ये पहला मुकाबला है इस ICC महिला T20 विश्व कप का और पाकिस्तान के लिए भी ये पहला मुकाबला। अब अगली गेंद फ्लाइटेड और इस बार इस गेंद को उठा करके खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद, डाइव करके रोकने की कोशिश जरूर की थी वहां पर आलिया रियाज ने, लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटकते हुए सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रनों के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: फील्डिंग में चूक, जहां पर शायद 2 रन हो सकते थे, 2 रन अतिरिक्त भारत के खाते में जोड़ते हुए 4 रनों के साथ भारत 14 एक विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई इस गेंद को फिर से गेंद की पिच के नज़दीक जाकर हल्के से पुश किया कवर क्षेत्र में, 30 गज के दायरे के अंदर गेंद फील्ड होती हुई बिना किसी रन के। स्मृति मांधना से काफ़ी उम्मीदें हैं। यदि आप स्मृति मांधना को देखें तो एक शतक भी उनका T20 मैचेस में अब तक नज़र आता है। इसी बीच अगली गेंद और इस बार खूबसूरती के साथ मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद को प्लेस करते हुए गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 4 रनों के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: बेहतरीन अंदाज में फ्रंट फुट पे जाकर बिल्कुल गेंद की पिच के नजदीक पहुंचकर गैप को तलाशने में पूरी तरह से कामयाब रही इस अवसर पर स्मृति मांधना, और इस ओवर में अब तक 2 चौके वो लगा चुकी हैं। कुल मिलाकर 8 रन अब तक आ चुकी हैं, दो गेंदें अभी बाकी बची हैं सादिया के इस ओवर में, जबकि स्मृति का अपना व्यक्तिगत स्कोर इन 2 चौकों की मदद से फिलहाल दोहरे अंक में 10 के व्यक्तिगत स्कोर पर। वो अगली गेंद, इस बार गेंद को पूरा सम्मान दिया, फ्रंट फुट पे जाकर गेंद को बल्ले के नीचे आकर के टकराने दिया और गेंद को वहां पर फील्ड किया गया ऑफ साइड में बिना किसी रन के। अंतिम गेंद लेकर सादिया इकबाल एक बार फिर से तैयार। 30 वर्ष की उनकी उम्र और ICC रैंकिंग में पिछले कुछ समय से शीर्ष स्थान पर हैं, और जैसा कि थोड़ी देर पहले दर्पण बता रहे थे कि अब वो दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी हैं। अगली गेंद को फिर से हल्के से ड्राइव किया था ऑफ साइड पे, लेकिन इस बार गेंद को फिर से 30 गज के दायरे के अंदर फील्ड किया गया, ओवर की समाप्ति हुई।
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
5: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में। यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: So 18 for 1, half of the power play done, 3 overs done, 18 for 1 India at the loss of the wicket.
6: जनगणना 2000

0: outside the off stump. However, Harmanpreet was able to get her bat behind it and nudge it back towards the bowler. Fourth over done, 20 for 2, Team India.
1: तो हरमनप्रीत ने वहाँ एक रन बनाने के साथ ही 727 रन बना लिए हैं T20 विश्व कप में, जो कि भारत की मिताली राज के 726 रन से अब एक रन आगे हो गए हैं। तो T20 विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने का श्रेय अब हरमनप्रीत कौर के नाम दर्ज हो चुका है। और हमारे स्टेटिस्टिशियन तुषार त्रिवेदी बता रहे हैं कि जेमिमा रॉड्रिक्स के लिए छठा अवसर था, जबकि वो एक के स्कोर पर अपनी 127 पारियों में अब तक आउट हुई हैं और 37वां ऐसा अवसर जबकि वो सिंगल डिजिट में आउट हुई हैं। तो जेमिमा के लिए निश्चित रूप से ये मैच याद रखने वाला निश्चित रूप से नहीं है, हालाँकि हाल फिलहाल में उन्होंने काफ़ी अच्छे प्रदर्शन किए और ओडीआई विश्व कप की बात करें तो वहाँ भी उनका प्रदर्शन काफ़ी शानदार था, लेकिन आज उनका बल्ला नहीं चला। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत होती हुई शमीम इस समय स्थान पर हैं सादिया इकबाल के, और देखना ये है कि क्या वो अपनी टीम के लिए कुछ और सफलता हासिल कर पाती हैं। शमीम तैयार, इस बार ये गेंद घुटनों के बल बैठते हुए स्वीप कर दिया, फील्डर गेंद के पीछे बहुत तेजी के साथ दौड़ रहे हैं, लेकिन क्या गेंद को रोक पाएंगे? जी नहीं, और गेंद सीमा रेखा से जाकर टकराती हुई 4 रनों की गेंद।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: साहिरा जमीन ने हालांकि दौड़ तो काफी लगाई थी, लेकिन गेंद की रफ्तार उनसे काफी ज्यादा तेज थी, फ्लाइटेड गेंद थी थोड़ी सी, और उस गेंद को ऑफ स्टंप की तरफ हटते हुए स्वीप कर दिया था बहुत ही खूबसूरती के साथ। जानते थे कि वहाँ फील्डर मौजूद हैं, लेकिन उनके बगल से गेंद को निकालने में कामयाबी हासिल कर ली थी इस अवसर पर स्मृति मानसा ने। 15 के व्यक्तिगत स्कोर पर स्मृति इस चौके की मदद से।
0: The interesting thing, Ashish, is that Pakistan have quickly gone to Shamim, who's an off spinner. She's by no means a frontline bowler. She does bowl her off breaks, but she's considered more of a part-time option. Meanwhile, Saira Jabeen, who dived awkwardly in order to try and stop that ball, landed in a very clumsy manner, and she seems to have hurt herself. The team physio for Pakistan is currently on the field and she's attending Saira Jabeen. Looks like she's good to continue. Shamim, meanwhile, prepares herself to deliver what will be the third ball of the fifth over. India 24 for 2, Smriti Mandhana facing.
1: अगले गेंदकर एक बार फिर से तैयार हैं शमीम, और इस बार इस गेंद को खूबसूरती के साथ खेल दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद सीमा रेखा से बाहर दनदनाती हुई 4 रनों के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: इस चौके की मदद से भारत का स्कोर अब 28 दो विकेट के नुकसान पर 4.3 ओवर की समाप्ति के बाद, और इन 28 रनों में 4 चौके और 1 छक्का शामिल है। भारत, जैसा कि आप जानते हैं, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है एजबेस्टन पर पाकिस्तान के खिलाफ ICC महिला T20 विश्व कप के अपने इस पहले मुकाबले में। एक बार फिर से तैयार वहां पर रमीन शमीम, बाएं हाथ से ऑफ स्पिनर गेंदबाज, और इस बार क्रीज के बिल्कुल कोने से ही गेंद, हल्के से गेंद को पुश किया ऑफ साइड पर, और गेंद को वहां पर पॉइंट की दिशा में इससे पहले कि फील्ड किया जा सके आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल ली, और इस एक रन की मदद से हरमनप्रीत ने अपने और अपने टीम के खाते में एक रन का इजाफा किया, बल्कि स्मृति मंदाना थी, माफ कीजिए, वहां पर, और इस एक रन की मदद से उनका व्यक्तिगत स्कोर पहुंचा अब 20 पर। तो 14 गेंदों में 20 रन स्मृति के। हरमनप्रीत तैयार हैं इस समय अगली गेंद का सामना करने के लिए।
0: गुड थिंग इज स्मृति हैज लुक्ड गुड, दे ब्रॉट इन द ऑफ स्पिनर प्रोबेबली टू काउंटर द लेफ्ट हैंडर, बट शी हैज लुक्ड अनहरिड एंड शी हैज ऑलरेडी स्ट्रक 2 बाउंड्रीज। नाउ ओवर टू हरमनप्रीत हु गेट्स अ फ्लाइटी डिलीवरी व्हिच वाज डिलीवर्ड फ्रॉम ओवर द विकेट जस्ट 70 किलोमीटर्स पर आवर, सो गुड एयर गिवन देयर बाय शमीम, हाउएवर द लेंथ अलाउड हरमनप्रीत टू गेट ऑनटू द फ्रंट फुट, पुश इट टुवर्ड्स लॉन्ग on and pick up a single. 30 on the board now for India. One ball remaining in the fifth over. Around the wicket goes Shamim and delivers this one with a round armish action. Tries to deliver the quicker one. However, once again in a very unhurried, languid manner, Smriti taps it towards extra cover. No runs to be had of that delivery. This over produced 10. 30 for 2 after 5.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
5: जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा सेहत के सफर में।

0: हम सफर आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: फातिमा मसाना एक बार फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पर वहां पर नजर आ रही हैं। भारत ने पावर प्ले के पहले 5 ओवर में अब तक 30 रन बनाए हैं और 2 विकेट भारत अब तक गंवा चुका है। फातिमा मसाना नए ओवर की शुरुआत करते हुए दाएं हाथ से ओवर द विकेट कप्तान हरमनप्रीत के लिए, और हरमनप्रीत के लिए गेंद ऑफसाइड से काफी ज्यादा बाहर थी। पैर को आगे की तरफ निकालकर उस गेंद को कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में किसी किस्म का कोई संपर्क नहीं और गेंद को वहां पर विकेटकीपर ने आसानी के साथ अपने कब्जे में कर लिया। 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर हरमनप्रीत ने 4 गेंदों का सामना किया है, 2 रन बनाए हैं। 15 गेंदों का सामना करने पर के बाद स्मृति ने अब तक 20 रन बना लिए हैं, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं। आज अपेक्षाकृत अगर देखें तो अन्य किसी भी भारतीय बैटर की अपेक्षा वो ज़्यादा बेहतर आत्मविश्वास से खेलती हुई नज़र आ रही हैं। और इसी बीच वहाँ पर तीसरे अंपायर का कॉल आता हुआ कि फातिमा साना की पिछली जो गेंद थी वो नो बॉल थी, तो यहाँ पर फ्री हिट भारत के लिए। क्या उसका भरपूर लाभ कप्तान हरमनप्रीत कौर उठा पाएंगे? दाएं हाथ से ओवर द विकेट, और इस बार ये गेंद ब्लॉक होल में डालने की कोशिश की थी और गेंद को वहां पर मोड़ दिया स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन आसानी के साथ दौड़कर पूरा कर लेंगे। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़कर के भारत का 32, 2 विकेट के नुकसान पर। फातिमा साना की अच्छी गेंदबाजी, कोई अवसर नहीं दिया कि बड़ा हिट लगा सके वहां पर हरमनप्रीत।
2: राइट, फातिमा साना is turning out to be impressive, and the interesting thing was that the wicketkeeper was standing up to the stumps for Harmanpreet Kaur. We have seen in the past that when Fatima began bowling, the keeper was standing back, and now she goes back again for Smriti Mandhana, who has taken strike, delivers this one on a good length, angled away towards the imaginary fourth stump. Mandhana uses a vertical bat to tap it towards mid-off and picks up a comfortable single. Meanwhile, a good news coming from the land of Turkey, where World Cup Stage 3 of Archery is currently underway, and the good news is that in the men's recurve individual event, Dheeraj Bomadevara of India has won a gold medal. So congratulations to entire country, congratulations to all Indians, congratulations to all sports fans. We are expecting a lot from Dheeraj Bomadevara, who missed out on an Olympic medal, finished fourth in the mixed team event alongside Ankita Bhakat at the Paris Olympics. Meanwhile, back to this game, 33 for 2 India after 5.2 overs. Last over of the power play underway. Fatima Sana once again has called the keeper up to the stumps as Harmanpreet Kaur is on strike. She stands there with an open stance, good leg delivery, angled in towards the middle and off stump, and Harmanpreet plays it with soft hands, just bunts it towards the front of square leg, calls for a prompt single, and Mandhana responds as promptly too. The two batters crossover add yet another single to their account. India's score after 5.3 has moved to 34 for 2. 3 deliveries remaining in the power play. The Indian fans would want a couple more boundaries. Are we being too greedy though, Ashish?
1: निश्चित रूप से भारत को यहाँ पर कुछ बड़े शॉट्स की आवश्यकता है, या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चाहे आप उसे ग्रीड का नाम दें या फिर ज़रूरत का, लेकिन भारत को यहाँ पर कुछ बड़े शॉट्स खेलने की आवश्यकता है। ये देखते हुए कि भारत 2 विकेट गंवा चुका है, रनों की औसत रफ्तार बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 6 के आसपास मंडराती हुई। 5.4 ओवर के बाद भारत ने 34 रन बनाए हैं 2 विकेट के नुकसान पर, और पिछली गेंद पर भी कोई स्कोरिंग शॉट भारत के बैटर नहीं लगा पाए। स्मृति मांधना 21 रन बनाकर 17 गेंदों का सामना करने के बाद, जिसमें 4 चौके शामिल हैं, एक बार फिर से तैयार हैं फातिमा साना की अगली गेंद का सामना करने के लिए। फील्ड प्लेसिंग में थोड़ा सा परिवर्तन वहां पर किया जाता हुआ उनके लिए ऑफ साइड में, और फातिमा साना काफ़ी विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ खेलने वाली पाकिस्तान की खिलाड़ी हैं। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई, इस गेंद को फ्रंट फुट पे जाकर हल्के से पुश किया ऑफ साइड में, कवर क्षेत्र में 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को फील्ड किया जाता हुआ बिना किसी रन के। पिच के मिजाज को यदि आप देखें तो इस पर घास बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है, भूरे रंग की पिच है, और बल्लेबाजी के लिए जैसा कि माना जा रहा था कि काफ़ी उपयुक्त था, और मुझे लगता है कि दर्पण यहाँ पर समय जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे ये पिच स्पिनर्स के लिए शायद ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती है।
2: We hope and expect the same because India is uppishly, but it goes away from the outstretched right hand of Fatima Sana and ends up hitting the boundary cushions straight down the ground. So

0: A lovely straight drive from the bat of Smriti Mandhana marks the end of the power play. Six overs done, 38 for 2 India. Smriti Mandhana in this phase has been the top scorer. She's been elegant, she's been steady, sturdy, unhurried, and she currently wears a smile on her face. And Smriti, India will keep smiling if you stay in the middle. 25 runs off 19 balls against her name. She's joined by Harmanpreet Kaur, the captain, at the other end. 4 runs off 6 deliveries for Harmanpreet Kaur. As I said, India are 38 for 2 after 6 overs.
1: The cricket commentary will continue after a short FIFA update.
2: World Football Update from the BBC.
3: Hello, I'm Conor O'Grady of the BBC Sports Centre with the latest World Cup news. Vinicius Junior's equaliser rescued a point for Brazil in their World Cup opener with Morocco in New Jersey. 1-1 was how it finished. The five-time champions remain unbeaten in their opening World Cup match since 1934. But the former Chelsea and Tottenham midfielder Gus Poyet was disappointed with their overall performance.
4: I was surprised how bad technically they were today. I don't know if it was a pitch that was a problem, but they were missing passes, simple passes that you would expect a Brazilian Pelé to do well.
3: Scotland atop of Group C after a 1-0 victory against Haiti. It's their first World Cup win since 1990 at their first finals since 1998. It's their former midfielder, Scott Brown.
5: It's an emotional game. For us just to get the 3 points, we're sitting top of the group, it's incredible. We didn't have the best second half performance, we've all got to be honest, but we had to grind out and we knew we were going to grind out.
3: Elsewhere, Nesroy Irinkunda became Australia's youngest World Cup goalscorer as they beat Turkey 2-0 in Vancouver. Qatar claimed their first ever point at World Cup finals with a 1-1 draw against Switzerland. And there's another 4 games on Sunday. The smallest nation ever to reach a World Cup get their campaign underway. Curaçao played Germany in Houston. They're coached by the former Sunderland boss, Dick Advocaat.
6: We have everything to win, nothing to lose, because the expectation is not that high outside us, because we think that we can still surprise somebody.
3: Elsewhere on Sunday, Netherlands play Japan, Ivory Coast face Ecuador in Philadelphia, and Sweden play Tunisia. And for more World Cup news from the BBC, go to bbc.com/football.
2: World Football Update from the BBC.
7: मंथना और हरमनप्रीत वो दो खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. सुजी बेट के बाद अगर बात करें तो सबसे ज्यादा रन स्मृति मंधना के हैं और उसके बाद हरमनप्रीत कौर के हैं. तो अनुभव की कोई कमी नहीं है और इस तरह की कई परिस्थितियों से उन्होंने सामना किया है, जूझते रहे हैं और उसके बाद सफलताएं उनके हाथ लगी हैं. हरमनप्रीत कौर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये उनके लिए 10वां विश्व कप है. हर विश्व कप के हर संस्करण में उन्होंने खेला है और 5वां ऐसा अवसर जबकि लगातार वो कप्तानी कर रही हैं भारतीय टीम की. तो दायित्व उनके कंधों पर बहुत बड़ा है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और उसका निर्वाह वो किस तरीके से करती हैं ये एक देखने वाली बात होगी. फिलहाल 6 ओवर में 38 रन भारत के, 2 विकेट के नुकसान पर रनों की औसत रफ्तार पावर प्ले में 6.33 की. हरमनप्रीत 4 पर खेल रहे हैं, स्मृति 25 पर. नए ओवर की शुरुआत शमीम के द्वारा, पहली गेंद ओवर द विकेट हरमनप्रीत के लिए. मिड ऑफ की दिशा में गेंद को खेला और वहां पर गेंद को इससे पहले कि आलिया रियाज फील्ड करते आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों ही बैटर्स ने 1 रन के लिए छोर बदल लिया. इस 1 रन के साथ अब भारत का स्कोर टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर. स्मृति बाएं हाथ के बल्लेबाज, फील्ड पेसिंग में थोड़ा सा परिवर्तन. 19 गेंदों का सामना करने के बाद स्मृति ने अब तक 25 रन बना लिए हैं. पूरी एकाग्रता के साथ खेलते हुए विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप के साथ चिपके हुए और उनके लिए राउंड द विकेट आते हुए और ये गेंद फ्रंट फुट पे आके हल्के से बैक टू द बॉलर पुश किया, आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया वहां पर रमीन शमीम ने और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को समाप्त कर दिया. दर्शक अच्छी खासी संख्या में यहां पर मौजूद. अगली गेंद थोड़ा सा फ्लाइटेड मिडल और स्टंप पर, एक कदम आगे निकलकर इस गेंद को ड्राइव किया था वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में. फील्डर वहां पर नतालिया के रूप में मौजूद हैं. गेंद को उन्होंने फील्ड किया लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बैटर्स को और इस 1 रन की मदद से भारत अब 40 2 विकेट के नुकसान पर. स्मृति पहुंची 26 पर 21 गेंदों का सामना करने के बाद, इसमें 5 चौके शामिल हैं. हरमनप्रीत 5 के व्यक्तिगत स्कोर पर, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार. अगली गेंद का ओवर द विकेट, शमीम आते हुए फ्लाइटेड.

0: गेंद, एक कदम आगे निकालकर इस गेंद को हल्के से बैक टू द बॉलर पुश किया, गेंद को वहां पर अपने दाईं तरफ जाकर फील्ड किया और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को एक बार से फिर से ध्वस्त कर दिया। 40 पर अभी भी टिका हुआ भारतीय टीम का स्कोर। फील्ड प्लेसिंग का मुआयना काफी बारीकी से कप्तान हरमनप्रीत ऑन साइड पर करते हुए, क्या अगला शॉट उस दिशा में आएगा और इस बार इस गेंद को ऑफ स्टंप की तरफ हटते हुए हल्के से पुश करा ऑन साइड की तरफ, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद हैं 30 गज के दायरे के अंदर, रन बनाने का कोई प्रश्न नहीं। अंतिम गेंद का आना बाकी है रमीन शमीन की। रमीन शमीन क्या कुछ कर पाएंगी इस अपनी अंतिम गेंद पर, देखना दिलचस्प होगा। रनों की औसत रफ्तार भारत की अब 6 से लुढ़क करके 5.85 रन रह गई है। अगली गेंद और इस बार गेंद की पिच के नजदीक पहुंचकर हल्के से गेंद को पुश किया और आलिया रियाज इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड करें मिड ऑन की दिशा में, एक रन के लिए छोर बदल लिया हरमनप्रीत और वहां पर स्मृति ने। इस एक रन की मदद से स्कोर भारत का बढ़कर 41 दो विकेट के नुकसान पर 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और, आपका डीडी फ्री डिश।
6: अ T20 आई इन दिस ईयर, बट दैट वॉज ओनली हर सेकेंड T20 आई। द फर्स्ट T20 आई मीनिंग हर डेब्यू मैच was back in 2024, so she hasn't played a lot of international cricket. She is a bit of an unknown quantity, and therefore India will have to deal with her with care and caution. Delivers this one on a good length outside the off stump. Smriti Mandhana hangs back, allows the ball to come close to her, and then drives it with an angled face. The ball goes trickling away towards the deep backward point fielder. A comfortable single has been taken. That takes Smriti to 27 and India to 43 for 2. Now remember folks, 22 women's T20 internationals before today have been played at this particular venue. It's an iconic venue, the Edgbaston in Birmingham. More about that after this ball. Tasmia Rubab runs in to deliver this one on the shorter side of good length. The ball angled away towards the off stick. Once again, the batter hangs back and swipes across the line. That swish towards deep backward square leg produces a single for Harmanpreet Kaur, who is now on 8 of 12. 44 for 2 India after 7.3. The average score at Edgbaston in those 22 women's T20 internationals is 138. Even the match that happened in the afternoon today, according to India's time, between Bangladesh and Netherlands, saw Netherlands score 139 in the first innings. Meanwhile, a full toss which Smriti Mandhana has hit straight to the fielder. She wears a wry smile on her face because she knows that she has missed out on an opportunity. She had expected Tasmia Rubab to do something of that sort and hence shuffled towards the leg side early. Rubab went for a yorker, ended up bowling a full toss at the stumps, and then Smriti Mandhana unfurled a crisp extra cover drive, however straight to the fielder. So a dot ball after the three singles. Next delivery once again shuffles to the onside. That's Smriti Mandhana gets followed up and hits this one aerial. The catch has been put down. Alia Riaz running back from mid-off could not grab that one, and Smriti Mandhana gets alive. India breathe a sigh of relief.
0: काफी बड़ा अवसर था पाकिस्तान के लिए स्मृति मांधना जैसी बल्लेबाज को वापस पवेलियन लौटाने का, और इस बार जैसे ही गेंद को खेला था गेंद हवा में काफी ज्यादा उछल गई थी और आलिया रियाज वहां पर मौजूद थी, गेंद तक पहुंच भी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पूर्वानुमान में कमी रह गई जिसकी वजह से गेंद उनके हाथों से फिसलती हुई सीधा जमीन को स्पर्श कर गई। तो एक सुनहरा अवसर पाकिस्तान ने गंवा दिया यहां पर स्मृति को आउट करने का। फिलहाल भारत 45 दो विकेट के नुकसान।

0: Last delivery of the over, delivered on the fuller side of good length on the pad line, and Harmanpreet Kaur presses forward, knocks it towards wide long on, picks up a comfortable single. That marks the end of over number 8, which had a life for Smriti Mandhana. Big moment in the match. How much will that cost Pakistan, and how much will India be able to cash upon it? We will find out together. 46 for 2, the score currently.
1: तो तास्मिया रुबाब जो कि मात्र 23 वर्ष की हैं, मात्र अपना तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेल रही हैं। इससे पहले कोई भी उनके नाम के आगे विकेट दर्ज नहीं था। पहला ही अंतर्राष्ट्रीय विकेट जो उन्होंने लिया वो जेमिमा रॉड्रिक्स का था, और पिछले ओवर के दौरान एक सुनहरी अवसर उनके हाथ से निकल गया। अगर वो कैच लपक लेती आलिया रियाज तो स्मृति मांदना का विकेट भी उनके नाम के आगे दर्ज हो जाता, और क्या शानदार मैच उनके लिए साबित हो सकता था। लेकिन निश्चित रूप से इस 23 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने गेंदबाजी से, अपनी ऑफ स्पिन गेंदबाजी से काफ़ी मुतासिर किया है भारत के बैटर्स को। रोकने में कहीं ना कहीं उन्होंने कामयाबी हासिल की, और गेंदबाजी में एक और परिवर्तन यहाँ पर होता हुआ। कुल मिलाकर अब तक 4 गेंदबाज मोर्चे पर लगाए गए थे कप्तान फातिमा साना के द्वारा, और अब 5वां गेंदबाज नाशरा संधू के रूप में यहां पर लाया जाता हुआ गेंदबाजी के मोर्चे पर 46 दो विकेट के नुकसान पर 8.1 ओवर की समाप्ति के बाद। हरमनप्रीत 9 के व्यक्तिगत स्कोर पर अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हैं। रनों की औसत रफ्तार 5.63। अगली गेंद, और इस बार फ्रंट फुट पे आकर इस गेंद को खूबसूरती के साथ खेल दिया। पॉइंट और कवर के बीच में से कोई मौका नहीं खिलाड़ी के पास। गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: हरमनप्रीत कौर का ये पहला चौका, ये पहला शानदार कवर ड्राइव जो उन्होंने खेला, देखते ही बनता था। पॉइंट और कवर के बीच में से गैप हासिल करते हुए उन्होंने इस शॉट को खेला। 13 मीटर का फासला था बैकवर्ड पॉइंट और कवर के बीच जो खिलाड़ी हैं उनके बीच, और उसका भरपूर फायदा उठाने में हरमनप्रीत कौर इस बार कामयाब रही थी। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ करके 50 दो विकेट के नुकसान पर 8.2 ओवर की समाप्ति के बाद।
0: फर्स्ट बाउंड्री फॉर इंडिया इन 14 डिलीवरीज।
1: जी हाँ, बिल्कुल, काफी देर हो गई थी दर्पण जबकि भारत को तलाश थी कुछ बड़े शॉट्स की, और अंततः हरमनप्रीत, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि उनके पास खासा अनुभव है, उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, और उसका निर्वाह वो फिलहाल बखूबी करते हुए एज वेस्टर्न के मैदान पर नजर आ रही हैं। अगली गेंद हरमनप्रीत के लिए, इस बार बैकफुट पर जाकर कट करने की कोशिश थी, लेकिन बैकफुट पॉइंट पर सीधा फील्डर के हाथों में गेंद पहुंची और रन बनाने का वहां पर कोई प्रश्न नहीं। स्कोर भारत का 50 दो विकेट के नुकसान पर। अभी भी 9 ओवर प्रगति पर बाएं हाथ की ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज हैं नाशरा संधु, और अंपायर और स्टंप के बीच में आकर ये गेंद उन्होंने की अराउंड द स्टंप्स, और इस बार गेंद को खेल दिया था वहां पर स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन फील्डर एक बार फिर से वहां पर मौजूद, रन नहीं मिल पाएगा। स्कोर अभी भी 50 पर टिका हुआ, रनों की औसत रफ्तार 5.77 रन इस समय है। भारत जरूर यहां पर कोशिश करेगा कि रनों की रफ्तार हाल फिलहाल में बढ़ाए, और दर्पण अब कहीं ना कहीं जो अगर आप आंकड़े देखें तो वो ये दर्शाते हैं कि पावर प्ले में और अंतिम जो डेथ ओवर्स होते हैं उससे भी ज़्यादा जो खेल पनपता है, जो रन बनते हैं वो मिडिल ओवर्स में बनते हैं। जो टीम मिडिल ओवर्स में अच्छी बल्लेबाजी कर ले या अच्छी गेंदबाजी कर ले वो कहीं ना कहीं विजेता साबित होती है। अगली गेंद, और इस बार खेल को खूबसूरती के साथ खेल दिया हरमनप्रीत सिंह ने, मिड विकेट क्षेत्र में शानदार अंदाज में स्वीप करते हुए गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: गेंद की रफ्तार बहुत ज़्यादा नहीं थी, अपने आप को ठीक से पोजीशन किया था वहाँ पर, और बेहतरीन अंदाज में इस गेंद को स्वीप शॉट खेलते हुए 4 रन बटोर लिए अपने और अपनी टीम के लिए। हालांकि गेंद काफ़ी देर तक हवा में थी लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित, कोई भी फील्डर वहाँ पर आसपास नहीं था। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से तैयार वहां पर नाशरा संधु, उनके ओवर की अंतिम गेंद। 2 चौके अब तक हरमनप्रीत लगा चुकी हैं। इस बार फ्लाइटेड गेंद बैकफुट पे जाकर कट करने का प्रयास, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर मौजूद है। 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया जाएगा। ओवर की समाप्ति हुई इसी के साथ। 9 ओवर के बाद भारत 54 विकेट के नुकसान पर।
3: तुम रिपोर्ट लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
5: ले। जानिए आभा के बारे में।
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं।

0: और स्मृति के इस स्वीप के बाद जैसे ही गेंद को वहां पर फील्ड किया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में सीमा रेखा के नजदीक, तब तक आसानी के साथ एक रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया। 37 पर पहुंच चुकी हैं स्मृति अब 28 गेंदों का सामना करने के बाद, और कप्तान हरमनप्रीत 22 गेंदों का सामना करने के बाद 20 व्यक्तिगत स्कोर पर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। हमारे स्टेटिस्टिशियन तुषार त्रिवेदी बता रहे हैं कि हरमन और मंधना ने दोनों ने ही अब तक T20 मुकाबलों में 86-86 छक्के लगा चुकी हैं। अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को कट किया लेकिन खूबसूरती के साथ वहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गुलफिरोजा ने। शानदार क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन गुलफिरोजा के द्वारा, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। अगर जरा सी भी चूक होती तो शर्तिया 4 रन वहां पर भारत को मिल सकते थे, लेकिन फिलहाल भारत इस एक रन के साथ संतुष्ट, हरमनप्रीत भी एक रन के साथ संतुष्ट। 67 पर भारत 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, और इस बार ऑफ स्टंप की तरफ हटते हुए गेंद को स्वीप करना चाहते थे लेकिन गेंद की लाइन को पूरी तरह से चूकी, अक्रॉस द लाइन खेला था, गेंद पैड पर टकराई लेकिन ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर गेंद पैड पर टकराई थी जिसकी वजह से कोई अपील नहीं। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से ओवर द विकेट, और इस बार कदमों का इस्तेमाल करके गेंद की पिच के नजदीक पहुंचकर गेंद को वहां पर खेल दिया है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। एक रन दौड़कर पूरा किया, दूसरे रन के लिए बहुत तेजी से पलट लेंगे इससे पहले कि गेंद को फील्ड किया जा सके और थ्रो किया जा सके। इन 2 रनों के साथ भारत अब 69 विकेट के नुकसान पर। कुछ देर पहले जो औसत रनों की रफ्तार 5.85 के आसपास मंडरा रही थी वो अब 6.47 रन हो गई है, और दोनों के बीच साझेदारी भी 51 रनों की हो चुकी है 45 गेंदों का सामना करने के बाद। पहली अर्धशतक की साझेदारी भारतीय टीम की आज इस मुकाबले में।
1: Right, fifth delivery of the 11th over, and Smriti Mandhana unfolds an exquisite inside-out drive, gets 4 for it.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: Delivered on a good length, however, Smriti Mandhana shimmied down the pitch, as they say in cricket commentary often. She put her dancing shoes on, shuffled towards the leg side, and that allowed the bat to come through. Inside out she went, the ball into the gap between long off and cover, and skipped away to the boundary. Mandhana into the 40s now. Next delivery, once again she uses her feet, steps out of her crease, however Nashra Sandhu darts one into her pads in order to ensure that she cannot free her arms. However, Mandhana is able to clip that one away towards deep mid wicket, pick up a single, end of the 11th, 74 for 2.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
5: मरियम, जानिए आभा के बारे में।
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: लेकिन मानना ने 44 रन बना लिए हैं, मात्र 6 रन दूर है अपने अर्धशतक से, और अगर ये 6 रन वो बना लेती हैं तो T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में ये उनका 34वां अर्धशतक होगा। और वैसे भी दर्पण उनके बारे में कहा जाता है कि इंग्लैंड में बल्लेबाजी उन्हें खासी रास आती है। 2021 के बाद से अब तक कुल मिलाकर इससे पूर्व 6 अर्धशतक वो जड़ चुके हैं। तो नए ओवर की शुरुआत शमिंग के द्वारा, पहली गेंद और इनसाइड आउट, इस बार इस गेंद को खेल दिया, गेंद हवा में है लेकिन कोई भी फील्डर आसपास नहीं, लंबी दौड़ वहां पर क्षेत्र रक्षक लगाते हुए गेंद को 1 या 2 गज अंदर रोका, और रिले थ्रो के द्वारा गेंद पहुंचती हुई वहां पर नॉन स्ट्राइकिंग गेंद की तरफ, लेकिन तब तक इन 2 रनों की बदौलत अब 46 के व्यक्तिगत स्कोर पर भारत का स्कोर बढ़कर हुआ 76 2 विकेट के नुकसान पर। 11.1 ओवर की समाप्ति के बाद बहुत अच्छा क्षेत्र रक्षण, और निश्चित रूप से पाकिस्तान के खिलाड़ी इस तरह के क्षेत्र रक्षण को सराह रहे हैं। एक बार फिर से शमिंग की अगली गेंद और इनसाइड आउट, इस बार फिर से 30 गज के दायरे के अंदर जो फील्डर खड़े थे उनके ऊपर से गेंद निकाल दिया, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र से। हालांकि आलिया रियाज वहां पर पहुंचे थी लेकिन उनके लिए कोई मौका नहीं था।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: इसके साथ ही अर्धशतक पूरा हो चुका है स्मृति मांधना का। स्मृति मांधना का ये 5वां अर्धशतक है T20 विश्व कप में, और जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि 34वां अवसर कुल मिलाकर T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में, और पाकिस्तान के खिलाफ यदि बात करें तो ये उनका दूसरा अर्धशतक। क्या शानदार बल्लेबाजी की है। शुरुआत में भारत को झटके जरूर लगे, शेफाली वर्मा जो बल्लेबाजी के लिए उनके साथ आई

0: ही प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, मात्र 6 रन बनाकर वो वापस पवेलियन लौटी थी। जमीमा का बल्ला आज ज्यादा चला नहीं, 1 रन का उन्होंने योगदान दिया और 18 के कुल स्कोर पर वो पवेलियन की राह पकड़ बैठी। लेकिन उसके बाद से हरमनप्रीत कौर के साथ मिलकर स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर ने शानदार बल्लेबाजी की। अगली गेंद को लॉस्ट कर दिया और एक बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर लॉन्ग ऑन की दिशा में।
1: ये लगा आभा का चौका,
0: माफ कीजिएगा, 4 रनों के लिए वहां पर गेंद सीमा रेखा से बाहर पहुंची थी एक बाउंस के बाद, और लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके, 84 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तावड़तोड़ बल्लेबाजी का मुजाहरा इस समय करते हुए नजर आ रही हैं स्मृति मंदाना, अपने हाथ पूरी तरह से खोल बैठी हैं इस अवसर पर वहां पर पाकिस्तान के गेंदबाज रमीम शमीम के खिलाफ। रमीम शमीम एक बार फिर से तैयार, बार फिर से गेंद को लॉफ्ट करने की कोशिश, लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर निकली बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। गेंद को खेलने के प्रयास में इस बार पूरी तरह से चूक गई थी, स्टंप के ऊपर से गिल्लियां जरूर बिखेर दी थी वहां पर विकेट कीपर मुनीबा अली ने, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, पिछला पैर बिल्कुल क्रीज के अंदर मौजूद था स्मृति का और किसी तरीके की कोई क्षति की संभावना वहां पर भारत को नहीं थी। स्कोर अभी भी टिका हुआ भारत का 84, 2 विकेट के नुकसान पर, 2 गेंदों का आना बाकी है। उत्साह में वो गिल्लियां जरूर बिखेरी थी मुनीबा ने एक दबाव डालने की कोशिश की थी स्मृति के ऊपर, लेकिन स्मृति का पिछला पाव अंगद की तरह क्रीज में पूरी तरह से डटा हुआ था।
2: Two things. First of all, these are first signs of turn. This is the first ball that we have seen spinning in this particular match. The second thing is Smriti Mandhana had lunged forward and she had to stretch her back foot backwards as she realized that there was an opportunity of some sort of stumping, and in that she seems to have sprained her groin. She has currently taken her gloves off and she is down on the floor. The team physio has been summoned and Indian fans would hope that this is not anything serious. However, Pakistan might need to pull their socks up because this is some ordinary cricket for them. Right throughout this over, we saw that the offside field was up in the circle. Remember, there's a 25-yard circle in women's cricket and you're only allowed 4 fielders outside of it. Barring long off, everybody outside the circle was on the leg side, and with turn, Smriti Mandhana went inside out, which is one of her strengths, and Pakistan should have realized that this is the area that she will be looking to target, and yet they were bowling the off spinner and had the offside field up. So it was some ordinary cricket from them. Mandhana picked up a couple of boundaries in that direction, and after that, when they pushed one fielder back, Mandhana very cleverly went over mid-on and picked up a boundary in that direction as well. So some smart cricket. It has been a responsible innings, a class act from Smriti Mandhana all throughout the day today. She's currently batting on 54, and the good news is that the physio has done her job. Mandhana is back on her feet. 4,387 runs in T20 internationals against her name. She's the second highest scorer in all of women's T20 internationals. Only Susie Bates ahead of her with 4,720 runs. Next delivery of the over from Rameen Shamim. Delivers this one with a flatter trajectory so that Smriti Mandhana cannot use her feet. Delivers this one outside off as well. Mandhana rocks back and then wards it off towards the point fielder.
0: 145 के लगभग स्ट्राइक रेट स्मृति का और 54 रन अब तक उनके खाते में। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप की तरफ पहले से ही शफल करके आ चुकी थी और चतुराई के साथ शमीम ने हालांकि गेंद को थोड़ा उनसे दूर रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी एन वक्त पर बल्ला अड़ाने में कामयाब रही 1 रन के लिए, इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जा सकता डीप पॉइंट के क्षेत्र में। इसी के साथ ओवर की भी वहां पर समाप्ति हुई 85, 2 विकेट के नुकसान पर। 12 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है और साझेदारी की अगर बात करें तीसरे विकेट के लिए तो वो निश्चित रूप से इस समय काफ़ी बढ़िया 67 रनों की साझेदारी 53 गेंदों का सामना करने के बाद इन दोनों बैटर्स ने अब तक भारत के लिए अर्जित कर दिया है। तो ये साझेदारी यहाँ से अगर और विकराल रूप लेती है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें दर्पण निश्चित रूप से बढ़ती चली जाएंगी। शुरुआत में ज़रूर ऐसा लग रहा था कि आज कहीं ना कहीं पाकिस्तान के गेंदबाज भारतीय बैटर्स को कुछ परेशानी में डालने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही हरमनप्रीत का बीच मैदान पर पदार्पण हुआ, एक विश्वास जो टीम में आया, उसके बाद जो एक साझेदारी

0: पनपी वहां पर स्मृति के साथ, उसने कहीं ना कहीं अब भारतीय समर्थक दर्शकों को एक राहत की सांस दी है। सादिया इकबाल नए ओवर की शुरुआत करती हुई पहली गेंद को खेलने की कोशिश वहां पर स्मृति मंदाना की तरफ से, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी और वाइड का इशारा वहां पर आता हुआ, बिना किसी हिचकिचाहट के लगभग 81 किलोमीटर की रफ्तार की यह गेंद थी और कहीं ना कहीं इस बार अपनी दिशा पर नियंत्रण नहीं रख पाई थी सादिया। इस एक अतिरिक्त रन के साथ भारत का स्कोर बढ़कर के 86, दो विकेट के नुकसान पर, 3 अतिरिक्त रन उसमें शामिल है। अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच के नजदीक पहुंचे और गेंद को लॉफ्ट कर दिया, फील्डर वहां पर मौजूद लेकिन उनके हाथों से टकराती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई 6 रनों के लिए।
1: ये लगा आभा का छक्का।
0: सायरा जमीन वहां पर थी, उनके लिए एक मौका था लेकिन अपने उस हाथों में उस गेंद को कैद नहीं कर पाए, गेंद उनके हाथों से टकराने के बाद छिटकती हुई सीमा रेखा से बाहर चली गई और इस तरह से ये एक और जीवनदान और साथ ही साथ भारत और स्मृति के लिए ये 6 रन। इन 6 रनों के साथ स्कोर बढ़कर के 93, 2 विकेट के नुकसान पर। गेंद एक बार फिर से तैयार वहां पर, भारतीय इस जोड़ी ने अब तक काफ़ी मुतासिर किया है, खासतौर से स्मृति जिस तरह से अब बड़े शॉट लगा रही हैं और किसी तरह के का जो दबाव अपने ऊपर महसूस नहीं कर रही, वो भारतीय टीम के लिए निश्चित रूप से एक शुभ संकेत है। स्मृति 2 बारी ड्रॉप हो चुकी है, 27 के व्यक्तिगत स्कोर पर और फिर 55 के व्यक्तिगत स्कोर पर, 2 जीवनदान। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्मृति ने अब तक भारत के लिए 62 रन अर्जित किए हैं 40 गेंदों का सामना करने के बाद। सादिया की अगली गेंद और इस बार हरमनप्रीत ने बहुत ही आसानी के साथ पैडल स्वीप के अंदाज में गेंद को खेल दिया फाइन लेग की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है, गेंद सीमा रेखा को जाकर टकराती हुई 4 रनों के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: दो फील्डर्स ने वहां पर कोशिश जरूर की थी, दौड़ जरूर लगाई थी लेकिन गेंद की रफ्तार उनकी रफ्तार से ज्यादा तेज थी। सादिया के इस ओवर में पहली गेंद वाइड थी और उसके बाद बल्ले से अब तक 11 रन आ चुके हैं, यानी कि कुल मिलाकर 12 रन अब तक इस ओवर में भारतीय बैटर्स बटोर चुके हैं। फातिमा साना थोड़ा सा निराश हो चुकी, पाकिस्तान को एक अच्छी शुरुआत जरूर मिली थी लेकिन कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा उठाने में पाकिस्तान के गेंदबाज कामयाब नहीं रहे। पिछली 12 गेंदों में 30 रन बने हैं जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल है। शानदार प्रदर्शन स्मृति और हरमनप्रीत कौर के द्वारा और इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को पॉइंट और कवर के बीच में से प्लेस करते हुए 4 रन हासिल कर लिए हरमनप्रीत कौर ने।
1: ये लगा आभा का चौका।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं
0: है, गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया जाएगा लेकिन 1 रन जरूर मिल जाएगा हरमनप्रीत को। लगभग 75 किलोमीटर की रफ्तार की गेंद थी सादिया की। सादिया की सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन उनके पास है और अपनी गति में जिस तरह से वो परिवर्तन करती है वो देखते ही बनता है और बहुत ज़्यादा गति नहीं करती अपनी गेंदबाजी में, जिससे बैटर को वो पेस नहीं मिलता कि उनके सामने वो बड़े स्ट्रोक खेल पाए। इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक लेग स्टंप की तरफ हटते हुए स्मृति का, लेकिन शानदार फील्डिंग कप्तान वहाँ पर फातिमा साना के द्वारा। जो शर्तियाँ 4 रन प्रतीत हो रहे थे उसे 1 रन में तब्दील कराने कामयाब रही फातिमा साना, बल्कि 2 रन वहां पर लिए अंतिम गेंद पर और इन 2 रनों के साथ स्कोर भारत का बढ़कर के अब 104, 2 विकेट के नुकसान पर।
3: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
5: ली। जानिए आभा के बारे में, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: Massive over the previous one, 19 runs coming of it. Pakistan had brought Sadia Iqbal back because they understood that they need a wicket, they need to break this partnership. However, India have put their foot on the gas pedal. They are accelerating and they are looking to run away with it. Last 2 overs in totality have produced 30 runs. Smriti Mandhana on 64 of 41 and Harmanpreet Kaur, who was scored less than runner ball before that over, has also now upped the ante. She's on 30 of 26 deliveries. Ramin Shamim is given another over, which is an interesting ploy. They have the option of Nashra Sandhu, but looks like Pakistan

0: and the ball deflected onto her back leg. Luckily, not onto the stumps. Hence, the partnership is still intact. Next delivery, she uses her feet. It was delivered on a good length near the off stump. However, her in order to push it down to long on and pick up a comfortable single. With that, the Indian captain has moved to 31 of 28. 105 for 2. Our India, Pakistan have used 5 bowlers so far. Sadia Iqbal, Fatima Sana, Tasmia Rubab, Ramin Shamim and Nashra Sandhu, which means they do not have a lot of flexibility going towards the death overs. Now around the wicket to the left-hander comes Ramin Shamim. Delivers this one outside off and Smriti Mandana was almost expecting it. Hence, she shuffled towards the offside, then sat down on a knee and unfurled the sweep shot. However, she could not find the kind of connection that she was looking for. The ball hit the top edge of the bat and then clattered into the grill of her helmet. We might see the mandatory concussion test following. Yes, indeed, the team physio is out in the middle. Going through the protocols, he would be asking Smriti Mandana a few questions, making sure that she's not showing any symptoms of concussion. But the replay on my monitor shows an interesting thing, that Ramin Shamim released this one along with the seam, which means she wasn't looking to spin the ball on that occasion, because what we saw previously, that whenever she has tried to spin the ball and delivered it outside the off stump, Smriti Mandana has gone inside out and hit her over the cover or extra cover region very skillfully, in a very exquisite, very stylish manner. Therefore, she's looking to bring the ball into the left-hander, but almost as if Mandana expected it, and hence she made that shuffle towards the offside and attempted the sweep. Faulty execution, yes, but the shot selection was spot on.
1: एक अच्छा द्वंद गेंद और बल्लेबाजी के बीच में नजर आ रहा है इस समय बर्मिंघम के एजबेस्टन के मैदान पर, और भारत ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक 105 रन बनाए हैं 2 विकेट के नुकसान पर 13.3 ओवर की समाप्ति के बाद। 64 रन बनाकर स्मृति मांदना खेल रही हैं। 42 गेंदों का सामना करने के बाद उन्होंने ये रन बनाए हैं और 8 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। लगभग 152 का स्ट्राइक रेट उनका है। और हरमनप्रीत कौर, जो कि टीम की कप्तान हैं, 31 रन 28 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने अब तक बनाए हैं, 4 चौके उसमें शामिल हैं और 110 के आसपास का स्ट्राइक रेट उनका भी है। दोनों के बीच साझेदारी की यदि बात करें तो बढ़िया साझेदारी अब तक दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में तीसरे विकेट के लिए पनप चुकी है। 87 रनों की साझेदारी, 62 गेंदों का सामना करते हुए इन दोनों बैटर्स ने भारत की टीम के लिए यहाँ पर अब तक बनाने में कामयाबी हासिल की है, जिसकी वजह से भारत अब एक बेहतर स्थिति में पाकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले में नज़र आ रहा है। अगर आप भारत और पाकिस्तान महिला टीमों के बीच T20 मुकाबलों की बात करें तो कुल मिलाकर दोनों के बीच इससे पूर्व 16 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 13 भारत के पक्ष में और 3 पाकिस्तान के पक्ष में। और T20 विश्व कप की यदि बात करें तो 8 कुल मुकाबलों में इससे पूर्व भारत ने 6 और पाकिस्तान ने 2 मुकाबले जीते हैं। तो कुल मिलाकर अगर कागजों पे आप देखते हैं दर्पण, तो भारत का पलड़ा भारी है। और जैसा कि पहले भी अनुमान लगाया जा रहा था इस मैच के शुरुआत से, शुरू होने से पूर्व, कि भले ही चिर प्रतिद्वंदी हैं भारत और पाकिस्तान की टीम, लेकिन इस मैच में पलड़ा भारत का ही भारी रहने वाला है। हालांकि शुरुआती झटके भारत को जरूर लगे, लेकिन उसके बाद स्मृति मंदाना ने और हरमनप्रीत कौर ने अपनी टीम के लिए पारी को बखूबी संभाला, और जिस तरह से उन्होंने अब तक 87 रनों की साझेदारी कर ली है तीसरे विकेट के लिए, भारत अब एक बेहतर स्थिति में इस मुकाबले में नजर आ रहा है। ड्रिंक्स इंटरवल बीच मैदान पर चलता हुआ थोड़ी ही देर में संपन्न होगा, और 13.3 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने 7.78 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब तक 105 रन बटोरे हैं 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी की यदि बात करें तो गेंदबाजी में कुल मिलाकर 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल पाकिस्तान की टीम ने अब तक किया है। सादिया इकबाल ने 3 ओवर किए हैं, कोई मेडल नहीं, 34 रन 1 विकेट उनके नाम, 11.33 का उनका इकोनॉमी रेट। फातिमा साना, जो कि टीम की कप्तान है, उन्होंने अब तक 2 ओवर किए, कोई मेडल नहीं, 11 रन कोई विकेट नहीं, 5.50 का उनका इकोनॉमी रेट। अब तक की सबसे इकोनॉमिकल गेंदबाज रही हैं फातिमा साना, टीम की कप्तान। तास्मिया रुबाब ने 3 ओवर की गेंदबाजी की है, कोई मेडल नहीं, 18 रन 1 विकेट उनके नाम, 6 का उनका इकोनॉमी रेट। और रमीम शमीम ने अब तक 3.3 ओवर की गेंदबाजी में 25 रन दिए हैं, 7.14 का उनका इकोनॉमी रेट। ड्रिंक्स इंटरवल के बाद

0: पे जाकर स्क्वायर कट कर दिया गेंद सीमा रेखा से बाहर चार रनों के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: जहां से वो पारी छोड़ी थी कमोबेश वहीं से उसकी शुरुआत करते हुए ऋचा घोष एजवेस्टन पर, और फील्डर वहां पर बैकवर्ड पॉइंट पर मौजूद जरूर था लेकिन उसके सामने से गेंद को प्लेस करते हुए गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाने में कामयाब रही इस अवसर पर ऋचा घोष। ऋचा घोष ने चौके की मदद से अपना खाता खोला। भारत 114 चार विकेट के नुकसान पर, तीन गेंदों का आना बाकी है। सादिया इकबाल का एक कामयाब ओवर रहा है अब तक। आखिरी गेंद इस बार अराउंड द विकेट आते हुए कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद के पिच के नजदीक पहुंचते हुए ऋचा घोष ने इस गेंद को हल्के से पुश कर दिया मिडाउन की दिशा में खड़े हुए फील्डर की तरफ और एक रन आसानी के साथ बटोर लेंगे इससे पहले कि गेंद को वहां पर शील्ड किया जा सके। 115 चार विकेट के नुकसान पर। 22 वर्ष की उम्र ऋचा घोष की सिलीगुड़ी से आती है जहां पर बहुत ज़्यादा महिलाएं क्रिकेट खेलती हुई संभवतः आपको नज़र नहीं आएंगे लेकिन ये उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं, महिलाओं में से हैं जिन्होंने अपने लिए और सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल के लिए नाम पैदा किया है। महिला क्रिकेट का जहां तक सवाल है, फील्ड पेसिंग में थोड़ा परिवर्तन वहां पर हरमनप्रीत कौर के लिए। इस समय ऑफ साइड पर एक खिलाड़ी थर्ड मैन, शॉर्ट थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर और दो खिलाड़ी इस समय बिल्कुल सीमा रेखा पर नज़र आ रहे हैं लॉन्ग ऑफ और वाइलिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। अगली गेंद और इस बार हल्के से गेंद को पुश किया लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर मौजूद है वहां पर फातिमा साना, गेंद को फील्ड कर लेंगी और एक रन तब तक बटोर लेंगी हरमनप्रीत कौर। इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़कर अब हुआ 116 चार विकेट के नुकसान पर। एक और बड़ी साझेदारी की आवश्यकता, भारतीय फुलमली जो कि एक लंबे अरसे से भारतीय टीम में है थी बल्कि पदार्पण उनका हुआ था 2019 में लेकिन बहुत ज़्यादा मुकाबले उन्होंने भारत के लिए नहीं खेले थे, मात्र 6 मुकाबले से पूर्व 7 वर्षों के बाद टीम में वापसी की थी अच्छा डोमेस्टिक क्रिकेट और वुमेन्स प्रीमियर लीग खेलने के बाद, लेकिन आज उनका बल्ला ज़्यादा चला नहीं, बहुत जल्दबाजी में वो स्ट्रोक खेल बैठी थी और स्टंप आउट होकर वापस पवेलियन लौटी थी। अंतिम गेंद पर एक रन और भारत को, ओवर की समाप्ति 15 के बाद भारत 117 चार विकेट के नुकसान पर।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
1: जानिए आभा के बारे में।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने
1: या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: Just like a roller coaster, this match continues to go through thrilling bends, twists and turns. Just as my co-commentator Ashish said that India is holding sway, came the drinks break and after that, Pakistan came back with a couple of quick breakthroughs. As a result, we head into the final 5 overs with India's score reading 117 for 4. How many more will India be able to get? Nashra Sandhu, the left-arm spinner, begins the 16th over, delivers this one with a flighty trajectory. The ball dips on a full length near the off stump. It was delivered from around the wicket and Richa Ghosh is able to drive it towards the extra cover region and pick up a comfortable single. With that, Ghosh has moved to 7. She started off her innings in a sprightly manner, hit a 4 of the first ball that she faced. The next delivery, Harmanpreet Kaur uses her dancing shoes, gets down to the pitch of the ball. It was delivered on the shorter side of good length, outside the off stump, and then very deftly pushes it towards the extra cover fielder. No runs to be had on that occasion. So just the single of the first couple of balls of Nashra Sandhu's over. The next delivery, hurled in with a flatter trajectory at the off stump, and Harmanpreet Kaur opens her shoulders and then stabs this one towards the fielder who is stationed in front of point. No runs to be had of that one as well. 118 for 4 of the score remains at. A couple of dot balls at this stage of the innings like gold for Pakistan. Next delivery, Harmanpreet Kaur unfurls what is widely known as her favourite shot, the sweep shot. It goes aerial before the leg side sweeper can get to the ball. It bounces a couple of times and that allows 2 runs, and there is an overthrow. However, Harmanpreet Kaur, was she alive to the possibility of a third run? Remains to be seen. She was running very gingerly and had almost overrun by the looks of it, and therefore it appears that she has not taken the third run, which was definitely on due to the overthrow.

0: Harmanpreet Kaur would retain strike next delivery of the over. She backs away from the stumps and then unfurls a robust cut shot. However, the ball goes straight to the fielder station in front of point. Another dot ball, which means 5 deliveries into the 16th over. Just when you thought that India would be accelerating, this over has produced only 3 runs so far. The last ball, India would want a boundary. Nashra Sandhu would want to tidy up with a good ball. A good ball would be anything less than a boundary for her. Delivers this one outside off, and Harmanpreet Kaur unfurls the sweep shot. However, a very good diving effort at the mid-wicket boundary keeps her down to 2. By the looks of it, it's Aisha Zafar who has dived to her right and saved what looked like a certain boundary. So only 2 runs of the final ball as well. That over produces only 5. A good one for Pakistan. India would want more than 5 runs and over at this stage. 122 for 4.
1: 16 ओवर के बाद 122 चार विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम का स्कोर है। जैसा कि आप जानते हैं कि टॉस भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जीता था और टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पहला विकेट भारत ने 6 पर गंवाया, दूसरा 18 पर, तीसरा 109 पर और चौथा विकेट भारत का 110 पर गिरा था। तीसरा और चौथा विकेट ड्रिंक्स इंटरवल के फौरन बाद गिरा और दर्पण, जैसा कि अक्सर क्रिकेट में कहा जाता है कि जब भी कोई ब्रेक होता है क्रिकेट में तो उसके बाद बहुत संभावना बढ़ जाती है कि जो कंसंट्रेशन होता है, जो एकाग्रता होती है बैटर की, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है और उसका खामियाजा अक्सर बैटर्स को भुगतना पड़ता है। और कोचिज अक्सर कहते हैं कि जब भी ड्रिंक्स ब्रेक हो या किसी भी तरीके का व्यवधान हो और उसके बाद खेल शुरू हो तो थोड़ी देर तक आप अपनी एकाग्रता को वापस हासिल करने की कोशिश कीजिए और फिर बड़े शॉट के लिए जाइए। फिलहाल अगले गेंद, और इस बार इस गेंद को इनसाइड आउट खेलना चाहते थे ऋचा घोष। बहुत अच्छे तरीके से गेंद बल्ले पर आई नहीं, काफी देर तक गेंद हवा में थी, लेकिन एक रन जरूर मिल जाएगा इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जा सके। इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़कर के 124 चार विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम का स्कोर।
0: यू आर राइट आशीष दैट आफ्टर अ ब्रेक द बैटर शुड टेक टाइम, बट द क्वेश्चन इज डू वी हैव टाइम इन T20 क्रिकेट। हरमनप्रीत कौर मीनवाइल ऑन स्ट्राइक, she is looking desperate and she unfurls an aerial flick shot. There's a fielder down there and she's caught it at the brink of the boundary. Fatima Sana punches the air in delight. She has dismissed her counterpart. The Pakistani captain gets out. The Indian captain Harmanpreet Kaur was looking desperate for a big shot. We talked you through it in the previous over as well. She shuffled towards the offside and hence that delivery was received by her on her pads. She unfurled an aerial flick shot and almost cleared the square leg boundary, almost being the key word. However, Natalia Parvez, who was stationed in the deep, hopped up and caught it. A good catch, and India have now lost their 5th wicket. 1, 2, 3, 4, 5.
1: शानदार कैच वहां पर लपका नतालिया परवेज ने, और कहना होगा कि कप्तान ने कप्तान का विकेट ले लिया। पाकिस्तान के कप्तान फातिमा साना गेंदबाजी के मोर्चे पर थी और हरमनप्रीत ने एक बार फिर से गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में सीमा रेखा से बाहर पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार अपने प्रयास में वो कामयाब नहीं रही, उचित दूरी नहीं दे पाई और गेंद को वहां पर बहुत ही खूबसूरती के साथ नतालिया परवेज ने अपने हाथों में कैद किया और हरमनप्रीत की पारी को समाप्त कर दिया। 36 के कुल स्कोर पर ये 36 रन 35 गेंदों का सामना करने के बाद हरमनप्रीत कौर ने बनाए थे। और अब दीप्ति शर्मा, जो कि आगरा उत्तर प्रदेश से आती हैं, वो इस समय बीच मैदान पर हैं। 16.2 ओवर के बाद भारत 123 5 विकेट के नुकसान पर। 92 पारियों में 1210 रन उन्होंने अब तक बनाए हैं, लगभग 105 का स्ट्राइक रेट है। और दीप्ति शर्मा ने पिछले ओडीआई विश्व कप में भी शानदार प्रदर्शन किया, तो देखना यह है कि इस T20 विश्व कप में क्या कुछ कर पाती हैं। फिलहाल पहली ही गेंद पर आकर के उन्होंने अपना खाता खोल लिया 2 रनों के साथ और इन 2 रनों की वजह से अब भारत का स्कोर बढ़कर के 125 5 विकेट के नुकसान पर।
0: That one was delivered from around the wicket by Fatima Sana onto the pad line. Deepti Sharma using her wrist to flick it away towards the mid-wicket region, and the running between the wickets was pretty impressive. This is something that Deepti has worked upon. Talk more about that after this ball.

0: Fatima Sana once again around the wicket with the keeper up to the stumps, runs in, delivers this one on a drivable length, and Deepthi Sharma hits it aerial. Luckily for her, the ball bounces before it goes to the extra cover fielder. It was a slowish ball from Fatima, just 92.2 kilometers per hour. And Deepthi Sharma will breathe a sigh of relief. 105, her strike rate, as Ashish just told you. However, that is a thing of the past. She has been working on increasing that strike rate. Because she bats at this number, at number 7, she knows that she will be required to go from ball 1. As it is in this situation too, not a lot of time remaining. The next delivery, over pitch from Fatima Sana. However, Deepthi Sharma, maybe because she hit the last one aerial, she decides to hit this one along the turf in a very measured manner. The ball goes to long off and she picks up a single, taking India's score to 126 for 5, 19 balls remaining. So not a lot of time for Deepthi to have a look in, get herself in, or settle herself, or set her eyes, as we say. Meanwhile, on the other end is Richa Ghosh, who's known to explode from ball 1. One delivery remaining in the 17th over. Ghosh on strike. He runs in, does Fatima Sana, this time from over the wicket. Keeper still up to the stumps, and an Aurai delivery, this one from the Pakistani skipper, way down the leg side. Muniba Ali, the wicket keeper, did really well to dive towards her right and ensure that the ball was stopped. Otherwise, it could have gone on to kiss the boundary cushions in the fine leg region as well. It ends up being only a wide. Claire Polosak, the umpire, extends her arm to signal that. So an extra run and an extra delivery to India. 127 for 5. Final delivery of the 17th over coming up. Here comes Fatima Sana. Delivers a leg cutter. However, the length is very short. A long hop at the pad line, and Richa Ghosh swipes her bat across in order to put this one towards the deep square leg region, where the fielder dives and stops it near the boundary, and hence Ghosh can get only a couple of runs of it. End of the over, 129 for 5.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: पाकिस्तान के कप्तान फातिमा साना का एक कामयाब ओवर समाप्त होता हुआ। गेंदबाजी के विशेषण की बात करें तो 3 ओवर कोई मेडल नहीं, 18 रन और एक सफलता जो कि उन्होंने अपने पिछले ओवर के दौरान हासिल की। हरमनप्रीत कौर के रूप में सबसे इकोनॉमिकल गेंदबाज हैं अब तक इस पारी में पाकिस्तान की टीम का, जहां तक सवाल है। हरमन की यदि बात करें तो ये 12वां अवसर, जबकि वो प्रतिद्वंदी टीम के कप्तान के द्वारा आउट की गई T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में, और पाकिस्तान के खिलाफ ये दूसरा अवसर था जबकि प्रतिद्वंदी टीम के कप्तान ने उन्हें आउट करके पवेलियन चलता किया। नए ओवर की शुरुआत नाशरा के द्वारा, और पहली गेंद को वहाँ पर खूबसूरती के साथ 2 रनों के लिए खेल दिया। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़कर के पहुँचता हुआ 131, 5 विकेट के नुकसान पर 17.1 ओवर की समाप्ति के बाद।
0: Deepthi Sharma was a little bit slow to turn around for the second run and hence almost found herself in trouble. However, a big dive saved her. It was Diana Beg who was stationed at deep backward square leg. She ran towards her right and picked that ball up and hurled a flat throw towards wicketkeeper Muniba Ali. Diana Beg is not a part of Pakistan's playing 11 today, but she's on the field as a substitute fielder. Next delivery from Nashra Sandhu, flatter trajectory. Deepthi Sharma wanted to step out of her crease. However, she aborted that plan as soon as she saw the trajectory of the ball. In the end, adjusts into a defensive dab towards the offside. So another dot ball for our scorer Rajit Sinha to mark.
4: लगभग 68 किलोमीटर की रफ्तार उनकी गेंदों की, और इस बार इस गेंद को ऑफ स्टंप की तरफ हटते स्वीप के अंदाज में खेला। गेंद वहां पर शॉर्ट लाइन लेग पर खड़े हुए फील्डर के पास पहुंची थी, लेकिन बहुत तेजी के साथ दौड़कर अपने बल्ले को क्रीज में टिकाने में कामयाब रही थी। इस अवसर पर ऋचा घोष, और वहां पर रनआउट की जो एक संभावना बनी थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई इस एक रन की मदद से, जिसमें जोखिम भरपूर था। भारत 132, 5 विकेट के नुकसान पर। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, लेकिन उतनी ही रनिंग बिटवीन द विकेट ऋचा घोष की तारीफ करनी होगी इस अवसर पर, जिस रफ्तार के साथ उन्होंने वो दौड़ लगाई और उस एक रन को मुकम्मल किया। दाएं हाथ की ऋचा घोष तैयार, एक बार फिर से अगली गेंद का सामना करने के लिए नाश्रा संधु के द्वारा अंपायर और स्टंप के बीच में से निकलती हुई ये गेंद उनके हाथों से ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। अपने घुटने को जमीन पर टिकाते हुए स्वीप करना चाहती थी लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में किसी किस्म का कोई संपर्क नहीं था और गेंद को वहां पर आसानी के साथ मुनीबा अली ने अपने दस्तानों में कैद कर ली। एक क्षण के लिए शायद लगा था कि गेंद और बल्ले के बीच में कहीं कोई संपर्क तो नहीं है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। पवेलियन छोर की तरफ से एक बार फिर से नाश्रा संधु तैयार हैं अपने ओवर की पांचवी गेंद लेकर लेग स्टंप की तरफ हटते हुए कट करने के लिए जगह बनाना चाहती थी लेकिन गेंद ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं, गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर जाकर लगी और गेंद पहुंची जरूर कवर क्षेत्र में 30 गज के दायरे के अंदर लेकिन रन बनाने का कोई अवसर ऋचा घोष के पास नहीं था। अंतिम गेंद लेकर नाश्रा संधु तैयार। लगातार 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की नीचे रफ्तार की गेंदों को कर रही हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बड़ा तेज शॉट लगाने में भारतीय बैटर्स को कोई अवसर नहीं मिल रहा। अगली गेंद फिर से लेग स्टंप की तरफ कट करने की कोशिश लेकिन फिर से कवर क्षेत्र में गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया गया, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति 18 के बाद भारत 132 पांच विकेट के नुकसान पर।
0: Courageous from Nashra Sandhu. Richa Ghosh is a big hitter, yet Sandhu flighted the ball, gave it air, told Ghosh, go and make your own pace. Ghosh even tried. She tried to muscle the ball. She swung her bat so hard a couple of times that the wind generated by it might have been felt in the stands at Edgbaston. However, she was early into the shot. Interesting signal from umpire Claire Polosak. Pakistan have been penalized. They have not completed their overs in time, which means for the remaining 12 balls, they need to have an extra fielder inside the 25-yard circle, which means they can now have only 3 outside the circle. Tasmia Rubab, the youngster, is going to be bowling the penultimate over. Deepthi Sharma is on strike. The keeper is up to the stumps and India need boundaries. Even in the last over, we saw 4 dot balls. They cannot afford it. Delivers this one down the leg side on a shortish length and Deepthi Sharma cashes upon. She finds India a much needed boundary.
5: Ye laga abha ka chauka.
0: A long hop asking to be punished, angled towards the body and Deepthi Sharma hung back, allowed it to come close and then pulled it over the head of the short fine leg fielder. Normally that fielder might have been standing back on the boundary, but remember, Pakistan have been penalized. Deepthi Sharma moves to 10 of 7. She would want to now keep on pushing the accelerator. India would want to collect as many as they can in the remaining 11 deliveries. Another shot of a length delivery this time around from Tasmia Rubab. However, Deepthi Sharma fails to find the gap in the deep and has to settle for the single. It was another vigorous pull shot from the Indian all-rounder. However, Diana Beg, the substitute fielder, ran towards her left from the deep backward square leg position and then put in a sliding stop. She quickly got up and hurled it back to the wicketkeeper. 137 for 5 India with 10 balls remaining. On strike now is Richa Ghosh, who wasn't able to put the ball away in previous over delivered by Nashra.

0: valuable runs for India, Richa Ghosh has moved to 20 off 11. She went deep in her crease and that allowed her to get underneath that very full ball which was delivered at the stumps. And then she swung her bat hard, 72 metres far. The ball went once again, goes deep in her crease, swings the bat hard. This one was delivered outside the off stump. She miscues it but still gets a boundary of the outside edge. India cross 150.
1: ये लगा आभा का चौका.
0: तास्मिया went wide off the off stump because she did not want to get inside Richa Ghosh's arc. However, Ghosh threw her bat at it. She did not connect in the meat of the blade, ended up slicing this one. However, the ball still went over the head of the shot third fielder and skipped away to the fence. 19 runs in this over. A crucial one from India's perspective. Will this be the difference at the end of the day? One ball remaining. Tasbia Rubab wearing a stern expression on her face. Deepti Sharma ready to run at the non-striker's end. Ghosh on strike. A shot is delivery and it has been swatted away into the gap. Four more.
1: Ye laga abha ka choka.
0: 155 for 5 after 19. It was a long hop from the youngster with plenty of width on offer. Richa Ghosh had her weight on the back foot and she was able to pull it away into the gap. There's a geometry lesson for all of you. Deep mid-wicket, long on, both were stationed on the boundary and the ball went right in the center of that gap. She bisected it. That's what you call a bisector. 155 for 5, 6 balls to go. Fatima Sana to bowl, Deepti Sharma to bat, Richa Ghosh at the non-striker's end and Ashish Charangu to call.
2: तस्मिया रुबाब का पिछला ओवर काफी महंगा साबित हुआ. 23 रन उसमें आए जिसमें चार चौके और एक छक्का भी शामिल था. क्या शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन रिचा घोष के द्वारा और दीप्ति के द्वारा होता हुआ इस समय एडबेस्टन के मैदान पर, जिसकी बदौलत भारत इस समय 19 ओवर की समाप्ति के बाद 155 है 5 विकेट के नुकसान पर. ये 23 रन इस ओवर में जो बनाए हैं भारतीय बैटर्स ने, कि निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं इस मुकाबले के नतीजे का जहाँ तक सवाल है. फातिमा साना अपने नए ओवर की शुरुआत कर रही हैं जो कि भारतीय पारी का अंतिम ओवर है और वहां पर दीप्ति शर्मा है. पहली गेंद को बाएं हाथ के दीप्ति शर्मा ने खेल दिया वहां पर मिड विकेट क्षेत्र में. एक रन वहां पर ज़रूर मिल जाएगा उन्हें. इस एक रन की मदद से उनका स्कोर बढ़ करके हुआ 12 और भारत का स्कोर 156 5 विकेट के नुकसान पर. रिचा घोष जो कि इस समय आग उगल रही हैं एजबेस्टन के मैदान पर, देखना है कि अगली गेंद पर क्या कुछ कर पाएंगी. 13 गेंदों में अब तक 28 रन बना चुकी है. अगली गेंद और इस बार फिर से खेल दिया उस गेंद को. देखना है कि एक क्षण के लिए लगा था कि वहां पर रिचा घोष दोबारा से संभवतः उसी तरह का शॉट खेलने का प्रयास करेंगी. भारत 156 5 विकेट के नुकसान पर. साना की अगली गेंद और इस बार लो फुल टॉस पर आती हुई इस गेंद को स्वीप करने के अंदाज में खेल दिया. लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद सीमा रेखा से बाहर जा रही है 4 रनों के लिए.
1: ये लगा आभा का चौका.
2: रिचा घोष का बल्ला इस समय मानो आग उगल रहा हो एजबेस्टन के मैदान पर. 160 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो गया है. रिचा घोष ने 32 रन बना लिए हैं 14 गेंदों का सामना करते हुए, जिसमें 5 चौके और एक छक्का शामिल है. 228 के लगभग का उनका स्ट्राइकिंग रेट. भारत को इसी तरीके की बल्लेबाजी की दरकार थी अपने लोअर मिडल ऑर्डर से, और रिचा और दीप्ति ने अब तक बिल्कुल भी निराश नहीं किया है. 4 गेंदों का आना बाकी है. फातिमा के इस बार शॉट ऑफ लंग गेंद, कंधे का इस्तेमाल किया पटकने की कोशिश, और इस बार इस गेंद को वहां पर पुल करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में किसी तरह का संपर्क नहीं हुआ और बाकी का काम पूरा किया वहां पर मुनीबा अली ने, और कोई रन नहीं इस गेंद पर. पहली डॉट गेंद इस ओवर में आती हुई, और देखना यह है कि क्या अगली बची हुई गेंदों पर रन बनाने में भारतीय बैटर्स कामयाब होंगे या फिर नहीं. भारत 160 पर पहुंच चुका है जो कि निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्कोर माना जा सकता है. अगली गेंद लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर और उसको खेल दिया फाइनल लेग की दिशा में, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए.
1: ये लगा आभा का चौका.
2: भारत इस समय शानदार बल्लेबाजी करता हुआ दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष चार रनों के साथ भारत का स्कोर बढ़कर के, देखना यह है कि तीसरे अंपायर क्या इस गेंद को वाइड भी देते हैं या फिर नहीं। चार वाइड के रन वहां पर भारत को मिलते हुए 165, पांच विकेट के नुकसान पर। तीन गेंदों का आना अभी भी बाकी है। बाउंड्री लाइन पर जो तीन फील्डर हैं वो सभी ऑन साइड पर। अगली गेंद लेक्सम से फिर ज्यादा बाहर की तरफ और वाइड का इशारा आएगा। जैकलिन विलियम्स जो कि वेस्ट इंडीज की हैं, अपना 91वां T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला जिसमें वो अंपायरिंग कर रही हैं, उनकी नजरों से बच नहीं पाई ये गेंद। और लगातार दो वाइड गेंद जिस तरह से की है कप्तान फातिमा साना ने, वो कहीं ना कहीं दर्पण दिखाता है कि दबाव इस समय पाकिस्तान और पाकिस्तान की टीम के कप्तान पर है।
0: लुक्स लाइक शी इज ट्राइंग टू फॉलो अप घोष, शी इज ट्राइंग टू इंश्योर दैट शी डजंट गेट द room to swing her arms. Keeper goes back, one of the fielders on the offside drops back, however Richa Ghosh opens her arms and pumps this one over extra cover. This was delivered outside the off stump at 105.5 kilometers per hour on a length. Richa Ghosh however was able to get underneath it, yet she was not able to find the desired timing. The ball slows up in the outfield and the pair of Deepthi and Richa have to settle for a couple. 168 for 5 the score moves to. It has been a long over from Fatima Sana because of those couple of wide deliveries. Two deliveries still coming up. Two legitimate balls still to go. Here comes Fatima. And she's got Richa Ghosh out bowled. Almost as if Ghosh had decided yesterday that she was going to swing her bat and try and deposit this one over long on. She swung it even before the ball arrived. It was on a length. It was there to be hit. And hence an awry smile on the face of Ghosh's, on the face of Richa Ghosh, because she knows it was there to be hit. However, it seems like, according to the replay on our monitors, that it might have been the wobble seam delivery, which sometimes can land on the seam and generate extra bounce, sometimes can land on the side and skid through. It generated a bit of extra bounce and clattered into the top of the off and the middle pole.
2: 34 रनों की शानदार पारी खेल करके रिचा घोष, जो कि टीम के विकेट कीपर भी हैं, वो वापस इस समय पवेलियन लौट चुकी हैं और जिस तरह की पारी की दरकार थी टीम को उनसे, उन्होंने ठीक उसके अनुरूप आज बल्लेबाजी की है। बर्मिंघम के एजबेस्टन के मैदान पर अंतिम गेंद का आना बाकी है। श्रृंखला पाटिल इस समय बीच मैदान पर हैं और इस पारी की अंतिम गेंद का सामना वो करेंगी। देखना है क्या कुछ कर पाती हैं। नौ पारियों में 26 रन अब तक उन्होंने बनाए हैं और 74 का उनका स्ट्राइक रेट। फातिमा साना तैयार अगली गेंद करने के लिए। लेक्सम से बाहर की तरफ, क्या वाइड होगी? जी हाँ, एक बार फिर से गेंद वहां पर वाइड। लगातार इस ओवर में यदि बात करें तो वाइड का सिलसिला देखने को मिला है। तीसरी वाइड गेंद जो कि कप्तान फातिमा साना करती हुई। 7-22 के रन इस ओवर में भारत को मिल चुके हैं उपहार स्वरूप और जैकलिन विलियम्स ने एक बार फिर से कोई कोताही नहीं दिखाई। जैसे ही उन्होंने देखा कि लेक्सम से काफी ज्यादा बाहर गेंद है, दोनों भुजाओं को जमीन के समान अंतर फैलाकर उन्होंने वाइड का इशारा किया। फातिमा का ये लंबा ओवर क्या इस गेंद के साथ समाप्त तो होगा या फिर एक और वाइड या नो बॉल? अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को रिवर्स स्वीप करना चाहती थी LBW की वहां पर अपील। स्टंप के बिल्कुल सामने जाकर गेंद उनके शरीर पर टकराई थी और देखना यह है कि टीवी अंपायर का वहां पर क्या फैसला होता है।
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
5: ली। जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: The score was reading 169 for 6 after 19.5 overs. Shreyanka Patil attempted what we might call the reverse sweep or the reverse lap shot. And on the first
6: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत

0: भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू

0: राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
1: द वर्ल्ड सीक्स ट्रस्टेड एंड रिलायबल पार्टनर्स।
2: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
1: एंड अ स्केल दैट फ्यू कैन मैच।
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
3: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को

0: सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
1: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
0: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
2: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
3: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
0: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचीरस तालुका में महासवाड़ा पंडरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे, इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
5: गुड इवनिंग। This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice. Focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors.
6: Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Palada Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in the group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. And now the news in detail. Emmanuel Macron held delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice in France. The discussions between two sides focused on expanding the special global strategic partnership between two countries across key sectors including defense, technology and trade. Prime Minister Modi was accompanied by the National Security Advisor Ajit Doval, External Affairs Minister S. Jaishankar, Foreign Secretary Vikram Misri and senior officials. President Macron was accompanied by French Minister for Europe and Foreign Affairs Jean-Noël Barrot and other senior officials. The two leaders also interacted during a walk-and-talk session at Villa Carolos. Earlier, Prime Minister Modi and French President Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Palada Expositions at Nice in France today. The landmark initiative showcases India's rapidly expanding innovation and startup ecosystem. The flagship event being held under the India-France Year of Innovation brings together over 120 Indian startups and leading investors, technology leaders and premier educational institutions from across the globe. It features innovations across 13 key sectors, including advanced computing, semiconductors, artificial intelligence, clean energy, and others. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi highlighted India's startup revolution by saying that the country's youth are developing solutions for global challenges in a number of areas.
7: Aaj Bharat mein ek startup revolution ho raha hai. Is revolution mein Bharat ka naujawan एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स.
6: Highlighting the strength of India-France ties, Mr. Modi said, while many nations engage in trade and strategic cooperation, only a few relationships are guided by a shared vision as well as common interests.
7: दुनिया में अलग-अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग-अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती हैं, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं. भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है.
6: Addressing the gathering, French President Macron praised India's emergence as a global innovation powerhouse and said the question today is no longer whether India is innovating, but who will innovate with India.
8: A country with 1.4 billion inhabitants, a country who pays on know-how and research, knowledge and training as many engineers as Europe and the US combined, more than 1 million per year. So in every respect, a country with research, innovations and frontier models is spearheading global innovation.
6: The French president also lauded India's achievements, including Chandrayaan mission, as examples of India's technological excellence.
8: With the Chandrayaan 3 mission in July 2023 that allowed the very first moon landing on the south pole of the moon, that was led in a record time by Israel, with cost, with record cost, is demonstrations in terms of strengths, innovation, but also in terms of implementations at the industrial level, and something that is very concrete. And this has to lead many countries of the world to see India how it's like today. Not only a country full of contractors, no, it's a country of innovation.
6: Speaking at the event, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said India is emerging as a trusted and reliable partner at a time of global geopolitical and technological transformation.
9: The world seeks trusted and reliable partners, and that is what India brings to the table. We bring the energy of the world's youngest large nation, the finest talent pool available, and a scale that few can match.
6: Following the inauguration, Prime Minister Modi and President Macron visited the exhibition and interacted with startup founders, researchers and investors participating.

0: It is a sitter by the standards of international cricket. She might have been staring into the sun, but she's wearing the sunglasses. She can shake her head all she wants now. However, the truth is that catch is expected to be taken on a good length, and Muniba Ali stepped out like she had decided yesterday, tried to go inside out, ended up slicing the ball and running towards her left from backward point. Arundhati got to the ball, got two hands to it, and yet couldn't hold on. Next delivery, a good looking drive towards deep cover, produces a single and marks the end of the fourth over. 37 without loss. Sriyanka's two overs have seen two drop catches.
1: बिल्कुल, श्रियंका पाटिल के पिछले दो ओवर में दो अवसर ऐसे आए जबकि मुनीबा अली को आउट किया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले ओवर में ऋचा घोष ने उनका कैच छोड़ा और इस ओवर के दौरान अरुंधति रेड्डी ने उनका कैच छोड़ा, और निश्चित रूप से इस तरीके की जो क्षेत्ररक्षण में चूक है तो वो भारतीय टीम पर दबाव काफ़ी बढ़ा सकती है, भारतीय टीम के लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। भारतीय टीम ने आज बल्लेबाजी अच्छी की, खासतौर से स्मृति मंदाना की बात करें या फिर हरमनप्रीत की बात करें या ऋचा घोष की बात करें, लेकिन अब भी गेंदबाजी में वो धार देखने को नहीं मिली है जिसके लिए भारतीय टीम से अपेक्षा की जा रही है।
0: इंटरेस्टिंग थिंग देयर आशीष, इवन स्मृति मंदाना वाज ड्रॉप ट्वाइस, लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैटर ड्रॉप ट्वाइस, द सेम हैज हैपेंड इन पाकिस्तान इनिंग्स एज वेल। एंड इंडिया डेस्परेटली नीड टू पुल देयर सॉक्स अप, दे डेस्परेटली नीड अ विकेट, बिकॉज इफ दिस पार्टनरशिप गोज ऑन फॉर अ व्हाइल प्रेशर विल बी ऑन इंडिया। एंड इन ट्रबल call whom? Call Deepti Sharma. Deepti Sharma has been summoned and delivers a very good delivery to start off with. Slow through the air, just 70 kilometers per hour, delivered from over the wicket, pitches round about the off stump and then spins sharply to beat Muniba Ali's tentative poke. A good start from Deepti Sharma. However, can she produce a wicket in this over and swing the momentum towards India? Muniba Ali shuffles towards the offside. Deepti Sharma goes even wider. However, Muniba Ali is able to stretch her arms out and slash this one straight to the fielder station at cover point. Two dot balls to start off with. Deepti Sharma's beginning has been solid, but can she continue bowling in tidy areas?
1: दीप्ति शर्मा से काफ़ी उम्मीदें हैं भारत को, दाएं हाथ से ओवर द विकेट स्टंप के नज़दीक से मुनीबा अली के लिए, और इस बार इस गेंद को स्वीप करना चाहते थे। कामयाब जरूर रहे लेकिन गेंद ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं और वहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया स्क्वायर लेग की दिशा में 25 गज के दायरे के अंदर बिना किसी रन के। स्कोर पाकिस्तान की टीम का 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए फिलहाल 37 रन है बिना किसी विकेट के नुकसान के, जबकि पांचवा ओवर इस समय प्रगति पर है। अगली गेंद फ्लाइटेड, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंचे, गेंद को उठा करके खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं। मिड विकेट क्षेत्र में गेंद को वहां पर फील्ड किया गया, क्षेत्र रक्षक गेंद से काफ़ी दूर था, लेकिन एक रन जरूर मिल जाएगा इससे पहले कि गेंद फील्ड होकर पहुंचे वापस दीप्ति शर्मा के पास। इस एक रन की मदद से 38 पर पाकिस्तान की टीम का स्कोर, मुनीबा पहुंचे 24 पर। 30 गेंदों का सामना करने के बाद उन्होंने ये 24 रन बनाए हैं और गुल फिरोजा इस समय 12 के व्यक्तिगत स्कोर पर अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार है। रनों की रफ्तार को थामने में जरूर कामयाबी हासिल हुई है दीप्ति शर्मा को इस ओवर के दौरान। पहली चार गेंदों में ये पहला रन था, अगली गेंद तो और रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, गेंद हवा में और वहां पर कोई गलती नहीं की, पहला झटका लगता हुआ गुल फिरोजा के रूप में पाकिस्तान को यह झटका लगा है और दीप्ति शर्मा ने अपने पहले ही ओवर के दौरान ये सफलता भारत को दिलवा दी है। जिस उम्मीद के साथ हरमनप्रीत कौर ने उन्हें गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया था, निराश नहीं किया और जैसे ही इस बार रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की वहां पर कोई गलती नहीं हुई और बहुत आसानी के साथ कैच कर लिए गए इस अवसर पर पाकिस्तान के गुल फिरोजा।
0: Catch taken at backward point by Bharti Pulmali. Now, interesting thing was that Deepti Sharma pushed backward square leg to the boundary. She also pushed mid-wicket to the boundary. Remember, you are only allowed two fielders outside the 25-yard circle in the power play. So, both those fielders were on the leg side and Deepti went around the wicket for this delivery, which means she wanted to give away a single by delivering it on the pad line. Gul Firoza was very well aware of it and therefore, she tried to manufacture a shot by flipping in her stance and going over backward point. However, she wasn't able to find the desired elevation and Bharti Pulmali did the rest. And now in walks Aisha Zafar, who last month against Zimbabwe, which is

0: is not considered the strongest team in the world, but against that side, she scored a century. Remember what I told you? In women's T20 internationals, only 3 centuries have been scored by Pakistani batters. 2 by Muniba Ali, 1 by Aisha Zafar, both of them out in the middle. Last delivery of the 5th over is coming up. Deepti Sharma currently in play. She is delivering the last delivery of her 1st over, delivers this one on the pad line, and there comes the sweep shot. Well placed by Aisha Zafar. She beats the diving shot fine leg fielder to her left. However, the deep backward square leg fielder will be able to run around and cover up for the mistake done inside the inner ring. Hence, only a single end of the 5th. 39 for 1.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा?
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: तो दीप्ति शर्मा का कामयाब ओवर समाप्त होता हुआ भारत के लिए पहली सफलता उनके नाम के आगे दर्ज हो चुकी है और अब तक 162 विकेटें उन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में हासिल की है, जो कि इस विश्व कप में खेलने वाले तमाम गेंदबाजों में से सबसे ज़्यादा है। क्या शानदार प्रदर्शन रहा है दीप्ति शर्मा का, न केवल गेंदबाजी से बल्कि बल्लेबाजी में भी उन्होंने समय समय पर जौहर दिखाए हैं। और श्रियंका पाटिल के स्थान पर, जिन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी की है लगातार, उनके स्थान पर अब अरुंधति रेड्डी गेंदबाजी के मोर्चे पर नजर आ रही हैं 39 एक विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद।
0: A slight delay because there's some problem with the zinc bail, which is now being replaced. Looks like the replacement has been done and now we are set to go. Arundhati Reddy to bowl what will be her 2nd over.
1: पहले ओवर में 8 रन उन्होंने दिए थे। देखना है कि अपने इस दूसरे स्पेल के पहले ओवर में क्या कुछ कर पाती हैं। पहली गेंद ओवर द विकेट, लेग स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ ऑन फील्ड अंपायर जैकलिन विलियम्स के द्वारा। एक रन अब उपहार के रूप में मिलता हुआ पाकिस्तान की टीम को। इस एक रन की मदद से पाकिस्तान की टीम का स्कोर 40 एक विकेट के नुकसान पर 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम एज वेस्टर्न पर इस समय भारतीय गेंदबाजी का मुकाबला कर रही है। अगली गेंद बैकफुट पर जाकर हल्के से पुश किया, लेकिन एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में गेंद 25 गज के दायरे के अंदर फील्ड कर ली गई और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को वहाँ पर समाप्त कर दिया गया।
0: And there comes a flat throw to the keeper, who fails to gather it once again. However, the overthrow doesn't cost India anything, but Richa Ghosh needs to tighten up.
1: जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कहीं ना कहीं न केवल एक कैच उन्होंने छोड़ा है, बल्कि जो स्टंप के पीछे गैदरिंग है उनकी, तो वो आज उतनी साफ नहीं है। अगली गेंद इसे बेच और उठा करके खेल दिया मिड विकेट क्षेत्र में। इस बार जफर ने गेंद सीमा रेखा से बाहर 5 रनों के लिए, 4 रनों के लिए माफ कीजिएगा।
4: ये लगा आभा का चौका।
1: 5 के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंची हैं आयशा जफर इस चौके की मदद से। और आयशा जफर, जिसके बारे में अभी दर्पण बता रहे थे कि जिम्बाब्वे के खिलाफ जो घरेलू T20 मुकाबले हुए थे उसमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था और 102 रन बनाए थे पहले ही मैच में और उसमें आउट भी नहीं हुई थी। 47 गेंदों में वो 102 रनों की पारी उन्होंने खेली थी। अगली गेंद बैकफुट पे जाकर खूबसूरती के साथ कट कर दिया और गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई एक बार फिर से 4 रनों के लिए।
4: ये लगा आभा का चौका।
1: पहले ओवर में 8 रन दिए थे अरुंधति रेड्डी ने और इस ओवर में लगातार यहां पर रन लुटाती हुई नजर आ रही हैं। पहली गेंद वाइड थी, उसके बाद लगातार 2 चौके और कहीं ना कहीं उन्हें अपनी लाइन और लेंथ पर ज़रूर सोचना होगा। बहुत ज़्यादा रूम ना दें वो बल्लेबाजों को स्ट्रोक खेलने के लिए, कुछ ऐसा उनको करना होगा। एक बार फिर से तैयार, इस बार इस गेंद को बैकफुट पे जाकर हल्के से पुश किया, दाईं तरफ जाकर गेंद को फील्ड करने की कोशिश ज़रूर की थी अरुंधति ने वहाँ पर, लेकिन अपने इरादे में कामयाब नहीं रही और इससे पहले कि गेंद को वहाँ पर फील्ड किया जा सके, बहुत तेज़ी के साथ दौड़कर 1 रन और जुटा दिया पाकिस्तान की आयशा जफर ने। आयशा जफर इस एक रन की मदद से दोहरे अंक में 10 के व्यक्तिगत स्कोर पर 5 गेंदों का सामना करने के बाद मुनीबा अली 24 के व्यक्तिगत स्कोर पर अगली गेंद का सामना करेंगी।

0: 2।
1: 53 एक विकेट के नुकसान पर एक बार फिर से अराउंड द विकेट, वहां पर दीप्ति शर्मा और गेंद को स्वीप करना चाहते थे लेकिन वहां पर फाइन लेग पर फील्डर मौजूद, कोई कोताही नहीं, बहुत ही सफाई के साथ उस कैच को मुकम्मल कर लिया और यहां पर पाकिस्तान को एक और झटका लगता हुआ। आयशा जफर, जिनसे काफी उम्मीदें पाकिस्तान की टीम को निश्चित रूप से रही होगी, जिम्बाब्वे के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, शतक लगाया था, लेकिन यहां पर दीप्ति शर्मा ने उन्हें वापस पवेलियन चलता कर दिया है मात्र 12 के व्यक्तिगत स्कोर पर। इस गेंद को जैसे ही उन्होंने अपना मौका ताड़ने की कोशिश की, स्वीप किया था लेकिन फाइन लेग जो कि 25 गज के दायरे के अंदर वहां पर मौजूद था, कोई गलती वहां पर नहीं हुई और इस तरह से उस कैच को मुकम्मल कर लिया गया। तो एक और झटका पाकिस्तान की टीम के लिए। स्मृति मांधना ने बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे की तरफ डाइव लगाते हुए उस गेंद को अपने हाथों में कैद किया और ये कामयाबी भारत की झोली में डाल दी।
0: विकेट वंस अगेन फॉर दीप्ति शर्मा, शी डिलीवर्स एवरी टाइम इंडिया नीड्स हर टू। व्हेन शी वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द अटैक, व्हाट डिड वी से, इन ट्रबल कॉल दीप्ति, and she has delivered with not just one but two wickets now, two wickets in her 1.3 overs, 2 for 3, and in walks youngster Saira Jabeen. Now Saira Jabeen and Munir 18 in 80 balls here at Edgbaston, which has been an iconic ground and has witnessed many iconic moments in cricket, is witnessing another iconic match because both the teams are tussled out there. Dipti Sharma still around the wicket, delivers this one on a good length, slow through the air, just 70 kilometers per hour, and that allows the batter to get onto the front foot and then nudge it towards backward square leg and pick up a comfortable single. In case you've just joined us, Pakistan have just lost their second wicket. Smriti Mandhana with an excellent catch at short and grab it inches from the ground, produce that wicket of the bowling of Dipti Sharma. Meanwhile, the next delivery, Dipti beats the bat, good length, pitches outside off and then spins further away. Muniba Ali flayed her hands away from the body, the ball whizzed past the outside edge and Richa Ghosh once again fumbled in collection. Final ball of the over on a drivable length, in a measured manner, Muniba knocks it towards deep extra cover where Jemima Rodrigues mops up a comfortable single added. Pakistan moved to 55 for 2 at the end of the 7th.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
4: लड़िए मां, जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहे और जहां चाहे ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: अपना पांचवा T20 विश्व कप खेल रही दीप्ति शर्मा ने दो सफलताएं अब तक अपने पहले दो ओवर के स्पेल में हासिल कर ली हैं और भारत की अब तक एकमात्र सफल गेंदबाज हैं। और उनका गेंदबाजी का विश्लेषण यदि आप देखें दर्पण, तो दो ओवर में कोई मेडल नहीं, 5 रन उन्होंने दिए और 2 सफलताएं, ना केवल सफल बल्कि साथ ही साथ किफ़ायती भी, और जिसकी दरकार है भारत को गेंदबाजी में परिवर्तन। श्री चरनी इस समय अरुंधति रेड्डी के स्थान पर आती हुई पहली गेंद और इस गेंद को स्वीप करने के अंदाज में खेला लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है, गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा जेमिमा रॉड्रिक्स के द्वारा, लेकिन तब तक 1 रन के लिए छोर बदल लिया था दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से मनोबा का स्कोर हुआ 28, 25 गेंदों का सामना करने के बाद। और अब वहाँ पर श्री चरनी की यदि बात करें तो 21 मैचों में अब तक 28 विकेट उन्होंने हासिल की है, शानदार प्रदर्शन रहा है चरनी का पिछले कुछ समय में। बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज हैं और अराउंड द विकेट आते हुए इस अवसर पर 1 रन के लिए खेल दिया था उस गेंद को मिड विकेट क्षेत्र में। इस 1 रन की मदद से सायरा का स्कोर पहुंचा 2 पर और पाकिस्तान की टीम का स्कोर हुआ 57 2 विकेट के नुकसान पर। 8वां ओवर इस समय प्रगति पर है, गेंद की रफ्तार यदि आप देखें तो चाहे श्री चरनी की बात करें या फिर दीप्ति शर्मा की, बहुत ज़्यादा गति नहीं दे रही हैं अपनी गेंदों को।

0: गेंद और इस बार इस गेंद को ड्राइव किया वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक रन का और इजाफा होता हुआ मुनीबा अली के खाते में। इस एक रन की मदद से मुनीबा पहुंची हैं अब 35 के व्यक्तिगत स्कोर पर और पाकिस्तान की टीम 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए फिलहाल पहुंच गया है 58 दो विकेट के नुकसान पर। दोनों सफलताएं दीप्ति शर्मा के खाते में। श्री चरणी की अगली गेंद और लीडिंग गेंद और इसके साथ ही एक और सफलता वहां पर भारत को। श्री चरणी जो कि बहुत बढ़िया प्रदर्शन करती हुई हाल फिलहाल में नजर आ रही हैं, एक बार फिर से उन्होंने अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरा है एजबेस्टन के इस खूबसूरत मैदान पर और सजबीन में, जबकि इस गेंद को खेलने की वहां पर कोशिश की थी अक्रॉस द लाइन, बल्ले का मुंह बहुत जल्दी बंद हो गया था, गेंद बल्ले के बाहरी किनारे पर लगती हुई लीडिंग एज लेती हुई हवा में उछली और 25 गज के दायरे के अंदर वहां पर उस गेंद को लपकने में किसी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती कप्तान हरमनप्रीत ने। तो इस तरह से पाकिस्तान को तीसरा झटका लग चुका है। एक बार फिर से भारतीय टीम इस समय बहुत तेजी के साथ इस मुकाबले में वापसी करती हुई, हालांकि एक समय जिस तरह से उनके प्रारंभिक बल्लेबाजों ने शुरुआत की थी लग रहा था कि कहीं ना कहीं भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं, लेकिन 38 के कुल स्कोर पर भारत को पहली सफलता दीप्ति शर्मा ने दिलाई और अगले ही ओवर में एक और कामयाबी उन्होंने दिलाई दी थी आयशा जफर का विकेट लेकर। और मजे की बात है गुल फिरोजा और आयशा जफर दोनों ही 12-12 के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट हुए थे।
1: Right, so third wicket down now. Natalia Parvez makes her way to the middle, and Shri Charni producing the goods for India. Left arm spinner, the preferred left arm spinner. She comes in to deliver what will be the fifth ball of the eighth over. This one, an attempted slog sweep from Natalia Parvez, which lands in the vacant region at mid-on before Kranti Gaur can run in from long-on, pick the ball up and hurl it back towards the 22-yard strip. A comfortable single will be taken, so not a very convincing shot, but it allows Natalia Parvez to get off the mark. Remember, Radha Yadav is a part of the squad and she is an all-rounder. She can bat a bit too. However, Team India prefers Shri Charani over her, even though she's a bit of a liability in the field or has not really been that good in the field of late. She has also, she doesn't have that kind of batting credentials either. Yet, she brings so much with the ball in her hand that India prefer her. The next delivery, which was the final one of the 8th over, was delivered on a drivable length. Muniba Ali inside edged it onto her pads. End of the 8th, 59 for 3 are Pakistan. And they are in pursuit of 171. Still need 113 more in the remaining 72 balls. So Shri Charani and Deepti Sharma, the successful bowlers for India. Deepti Sharma will continue and she will deliver her third over. Big appeal for LBW and shakes her head. Does umpire Claire Polosak. This one was delivered from around the wicket. Pretty much in line with the stumps. At least it looked so to my untrained eye. Attempted a sweep there. Did the batter and did not connect. And interestingly, India have challenged the decision. They have opted for the use of DRS and Claire Polosak makes the signal over to TV umpire.
0: तो भारत के लिए यहाँ पर एक और अवसर है, हालांकि अपील बहुत विश्वास के साथ की थी वहां पर दीप्ति शर्मा ने, अंपायर क्लेयर पोलोसेक ने उसे नकार जरूर दिया था, लेकिन एक लंबी मंत्रणा वहां पर दीप्ति शर्मा, विकेट कीपर ऋचा घोष और कप्तान हरमनप्रीत के बीच में हुई थी और उसके बाद हरमनप्रीत ने फैसला लिया कि वो DRS के लिए जाएंगे। तो देखना यह है कि टीवी अंपायर का वहां पर क्या निर्णय आता है। निश्चित रूप से भारतीय टीम को काफ़ी उम्मीदें हैं, जिस तरह से आत्मविश्वास से लबरेज दीप्ति शर्मा अपनी इस अपील पर नजर आ रही थी और मुनीबा अली 29 रन बनाकर खेल रही हैं, नतालिया परवेज एक रन बनाकर खेल रही हैं। इस समय प्रश्न चिन्ह उन्हें लेकर के है कि नतालिया परवेज क्या मैदान पर रहेंगी, बल्लेबाजी को जारी रखेंगी या फिर पवेलियन की तरफ वापसी करनी होगी।
1: The thing to be seen here is whether the ball pitched in line with the stumps or not, because remember Deepti Sharma went around the wicket to the right-handed

0: batter. She often gets a lot of drift. Did the ball drift enough to pitch in line with the stumps is the question. Before that, of course, TV umpire Kim Cotton will go through the procedures. First of all, she will check if there is any bat involved or not. And Ultra Edge tells us, the according to the graph that is up on our monitors, it tells us that there is no bat or no glove involved. Ball tracker coming up next. Yes, it has drifted in enough to pitch in line with the stumps. However, it is spinning, or rather drifting a little bit too much, suggests ball tracker. It would have only clipped the off stump. Hence, it's two reds, pitching in line, impact in line, but wickets hitting is umpire's call. Two reds and an amber. India will keep the review. However, Natalia Parvez survives.
1: So, Natalia Parvez abhi bhi beech maidan par ek ke vyaktigat score ke saath tappa khane ke baad gend drift hokar bahar ki taraf nikal rahi thi aur umpire's call thi wo wahan par जिसका लाभ नतालिया को मिला था वहाँ पर. इसी बीच रनआउट की एक और अपील अगली गेंद पर आगे की तरफ निकली थी बहुत तेज़ी के साथ. दीप्ति ने वहाँ पर थ्रो किया था रिचा घोष की तरफ और स्टंप के ऊपर से उन्होंने गिल्लियाँ बिखेर दी थी. देखना है कि क्या इस अवसर पर ये टीवी अंपायर का जो रिव्यू है वो भारत के पक्ष में जाता है या नहीं. लेकिन जो हमें स्क्रीन पर देखने से लग रहा है दर्पण, उससे तो ये लगता है कि बल्ला टिकाने में कामयाब हुई थी नतालिया परवेज अपनी क्रीज के अंदर. तो 8.2 ओवर की समाप्ति के बाद 59 विकेट के नुकसान पर 171 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम का स्कोर है फिलहाल एजबेस्टन पर आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के 10वें संस्करण के इन दोनों ही टीमों के पहले मुकाबले के बीच में. नतालिया एक बार फिर से स्ट्राइक पर स्टांस लेने के साथ तैयार और अराउंड द विकेट आते हुए दीप्ति शर्मा. और इस बार मिडल ओवर लेग स्टंप की इस गेंद को कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए मोड़ दिया था बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में. स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे जाकर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया लेकिन तब तक आसानी के साथ एक रन जुटाने में कामयाब रही नतालिया परवेज. और इस एक रन की मदद से पाकिस्तान की टीम का स्कोर अब 63 विकेट के नुकसान पर. मुनीबा अली ने अब तक बढ़िया बल्लेबाजी की है 29 के व्यक्तिगत स्कोर पर. ओवर द विकेट मुनीबा के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज मुनीबा ने इस बार ये गेंद जो कि ऑफ स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर थी अपनी जगह खड़े होकर बल्ले को बिल्कुल आड़ा करते हुए किसी तरीके से इस गेंद को धकेलने में कामयाबी हासिल की कवर क्षेत्र की तरफ. आसानी के साथ एक रन और जुटा लेंगे. इस एक रन की मदद से पाकिस्तान की टीम का स्कोर 61 विकेट के नुकसान पर. दीप्ति शर्मा ने काफ़ी कसावट भरी गेंदबाजी की है और दो सफलताएं अब तक भारत के खाते में डाल चुकी हैं अराउंड द विकेट. और इस बार इस गेंद को सेव करने के अंदाज में खेला लेकिन प्रोटेक्शन है वहाँ पर. डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद हैं. गेंद को उन्होंने फील्ड किया लेकिन एक रन का इजाफा और हो जाएगा इस पाँचवीं गेंद पर. और 62 स्कोर हुआ पाकिस्तान की टीम का 3 विकेट के नुकसान पर. अंतिम गेंद का आना बाकी है. पिछली 3 गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करने में मुनीबा अली और नतालिया परवेज कामयाब हुए हैं दीप्ति शर्मा के सामने. अंतिम गेंद पर मुनीबा क्या बड़ा स्ट्रोक लगाएंगी. ओवर द विकेट मुनीबा के लिए और फ्रंट फुट पे आकर हल्के से गेंद को पुश किया एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में. 25 गज के दायरे के अंदर गेंद को फील्ड कर लिया गया और रन की तमाम संभावनाएं समाप्त कर दी गई. अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं. 9 ओवर के बाद पाकिस्तान 62-3 विकेट के नुकसान पर.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
2: तुम हो ही भुलक्कड़.
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले.
4: जानिए आभा के बारे में.
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
0: Pakistan need 109 more runs in the remaining 11 overs. Sri Charani begins a fresh over, delivers this one on a very full length. Natalia Parvez wanted to step out of her crease. However, she had to abort the plan in being because the ball landed or dipped in the block hole. She was able to squeeze it back to the bowler. Deepthi Sharma, before this, delivered her third over. Now that is interesting. That is interesting. Why? We'll tell you after this ball. Sri Charani runs in to deliver the next delivery. Delivers this one outside the off stump. And excellent bit of fielding from Harmanpreet Kaur. Might have produced another wicket for India. However, we will wait. We will wait for the umpire to make a signal and clear polo sack. Looks like is not very interested. Harmanpreet Kaur is celebrating. Radha Yadav, Smriti Mandhana and Deepti Sharma

0: run to her, hugged her. She has started celebrating, but the empire has not given it out. That is interesting. This one was pushed towards the extra cover region. Harmanpreet dived towards her right, picked it up and hurled a flat throw towards Richa Ghosh, who collected the ball with the bails off. However, with an excellent dive, Muniba Ali had made her ground, and Claire Polosak has not even attempted to use technology. She says, I've got eagle eyes, I've seen it with my own eyes, it is not out. Excellent bit of umpiring. The replay suggests that her decision was correct. Next delivery, flighted outside the off stump, chipped towards Kranti God at long off, who fumbles and therefore allows two runs to the Pakistani batters. But excellent bit of umpiring that, Ashish.
1: बिल्कुल, तारीफ करनी होगी वहाँ पर क्लेयर पोलोसैक की, जिन्होंने बहुत आत्मविश्वास के साथ वो निर्णय लिया. और टेक्नोलॉजी का भी जब हमने उपयोग देखा स्क्रीन पर होते हुए तो लगा कि वो बिल्कुल सही थी अपनी जगह पर. इसी बीच अगली गेंद और गेंद को वहाँ पर खेल दिया खूबसूरती के साथ, गेंद सीमा रेखा से बाहर, चार रनों के लिए.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: स्वीप करने के अंदाज में खेला था मुनीबा अली ने इस अवसर पर, और गेंद डीप स्क्वायर लेग की दिशा से होती हुई चार रनों के लिए बाहर चली गई. श्री चरणी, जो कि मात्र 21 वर्ष की हैं, आंध्र प्रदेश से आती हैं और पहला अपना विश्व कप खेल रही हैं. 2025 के बाद दर्पण अगर देखें तो सबसे ज़्यादा विकेट भारत के लिए अगर किसी गेंदबाज ने बटोरे हैं तो वो श्री चरणी हैं.
0: That is why Radha Yadav has been kept out of the side. Next delivery, lofts this one over extra cover, does Muniba Ali. The leaping fielder at the edge of the 25-yard circle will not be able to get to it, and hence a couple of runs will be taken. That takes Pakistan's score to 71 for 3 in 9.5 overs. This one was delivered from over the wicket, outside off by Shri Charani. One ball remaining in the 10th over, and Pakistan thus far seem like they are on track, given that India was 65 for 2 at the end of their 10th over. Next delivery induces the edge, does Shri Charani, but there is no slip in place, and the run out opportunity, if at all there was any, has been squandered too, because Richa Ghosh has not been able to collect this one cleanly. It was delivered outside off on a length. Muniba Ali went for the drive, got a thickish outside edge. The ball went towards Shefali Verma, who was stationed at short third, who picked it up, hurled a flat throw towards the Indian wicketkeeper, who could not quite collect it cleanly. The single was taken. Pakistan end the 10th over with their score reading 72 for 3. Just going back on the point of Deepthi Sharma, her three overs have been used, and Ashish, she's the designated death bowler in this Indian team. But Harmanpreet realized that the need of the hour is give her the extra over, which means there could be trouble when it comes to death.
1: जी हाँ, हो सकता है, लेकिन शायद हरमनप्रीत की मंशा ये हो कि उस स्टेज तक उस मैच को जाने ही ना दिया जाए और पहले ही पाकिस्तान की पारी को समेट लिया जाए. और मुझे लगता है कि उन्होंने सही कप्तानी की है वहाँ पर, लगातार दीप्ति शर्मा को तीन ओवर करा के. श्री चरणी का ये ओवर महंगा ज़रूर साबित हुआ, 10 रन उनके इस ओवर में आए. 2 ओवर की गेंदबाजी उन्होंने की है, एक सफलता उनको भी मिली है, कुल मिलाकर 14 रन उन्होंने दिए हैं. और श्री चरणी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पहला विश्व कप खेल रही हैं, और इनसे भविष्य में भी भारत को बहुत आशाएं हैं. फिलहाल पाकिस्तान 72, 3 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद, और 10 ओवर के बाद भारत की पारी की जो स्थिति थी वो ये कि भारत ने 65 रन बनाए थे और 2 खिलाड़ी भारत के आउट हुए थे. तो 7 रन पाकिस्तान ज़्यादा बना चुका है, लेकिन 1 विकेट भी उसने ज़्यादा गंवाया.
0: Shreyanka Patil begins a fresh over, and something interesting has happened. This was delivered from around the wicket on a length, and Muniba pushed it towards the left of her. Shreyanka Patil wanted to gather the ball, however the non-striker came in the way and Shreyanka was not able to stop the ball, and hence the single was taken. Shreyanka looks at the umpire and says that this is not fair, but the umpire shakes her head. Next delivery, delivered on a good length at the stumps, goes down on a knee, does Natalia Parvez, and slog sweeps it towards the fielder on the leg side boundary. Jemima Rodrigues collects it and hurls a throw at the non-striker's end, which Shreyanka Patil has not been able to collect cleanly, and she has copped one in the groin region, and she's currently on the floor.
1: यहाँ थोड़ी बहुत पीड़ा में जरूर है, लेकिन बहुत जल्द खेल एक बार फिर से शुरू होगा और पाकिस्तान की टीम की शुरुआत जैसा कि हमने कहा कि अच्छी ज़रूर हुई, लेकिन उसके बाद लगातार अंतराल के बाद भारतीय गेंदबाजों को सफलताएं मिली। 2 विकेट अब तक दीप्ति शर्मा चटका चुकी हैं, 1 विकेट श्री चरनी ने अपने स्पेल में हासिल अब तक किया है। श्रियंका पाटिल का ये दूसरा स्पेल है, हालांकि पहले स्पेल में कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाई थी। मुनीबा अली की बात करें तो उन्होंने आज बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है, 40 रन अब तक उन्होंने बना डाले हैं 34 गेंदों का सामना करने के बाद, जिसमें 5 चौके शामिल हैं और लगभग 117 का स्ट्राइक रेट है। और बाकी बल्लेबाज आया राम गया राम की तर्ज पर नज़र आए पाकिस्तान की टीम की जहां तक सवाल है। गुल फिरोज़ा की बात करें, आयशा ज़फ़र की बात करें या साइरा ज़बीन की बात करें, तो ये खिलाड़ी बहुत कम योगदान देकर वापस पवेलियन लौटते हुए नज़र आए। लेकिन पाकिस्तान की दृष्टि से अगर आप देखें तो यहाँ पाकिस्तान की टीम को एक बड़ी साझेदारी की दरकार है, जबकि भारत नहीं चाहेगा कि एक बड़ी साझेदारी पाकिस्तान की तरफ से देखने को एडवेस्टन पर मिले।
0: Meanwhile, the team physio is out in the middle attending Shreyanka Patil. She's been given some water and some moments to breathe hard and collect her breath back. Renuka Thakur, one of the reserve players, is also out there in the middle. It is interesting that India have kept Renuka Thakur out, because remember, back in 2022, when the Commonwealth Games were held at this very ground, every match was played at this very ground during that competition, Renuka Thakur was super impressive. She picked up 11 wickets in that tournament, which was the highest, not just for India, but in the entire tournament. Rather, they preferred Kranti Gaur and Arundhati Reddy as the seamers over Renuka Thakur. Anyhow, Shreyanka is good to go. Around the wicket, she runs in to deliver what will be the third delivery of the 11th over. Delivers this one on a good length, in line with the middle and leg pole. Muniba Ali gets a healthy stride out and then uses her wrist to deftly turn it away towards mid-wicket. Picks up a comfortable single that takes Pakistan's score to 75 for 3. They need 96 more in the remaining 57 balls.
1: श्रियंका पाटिल ने 14 महीनों की इंजरी के बाद वापसी की थी और WPL में भी उन्होंने खासा अच्छा प्रदर्शन किया था। अगली गेंद फ्लाइटेड और इस बार इस गेंद को खेल दिया, लेकिन एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में वहां पर फील्डर मौजूद हैं। गेंद को उन्होंने फील्ड किया और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को इसी के साथ समाप्त कर दिया। पाकिस्तान 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 75-3 विकेट के नुकसान पर 11वां ओवर इस समय प्रगति पर है। 2 गेंदों का आना बाकी है। श्रियंका पाटिल एक बार फिर से और इस बार इस गेंद को खेलने के प्रयास में बल्ले का किनारा जरूर दे बैठी, लेकिन एक बाउंस के बाद वहां पर गेंद पहुंची थी बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े हुए फील्डर के पास। सीधा थ्रो वहां पर स्टंप्स पर आया स्ट्राइकिंग एंड की तरफ। क्या भारत के लिए ये रनआउट के रूप में एक और सफलता आ सकती है? जैकलिन विलियम्स ने टीवी अंपायर को रेफर किया है, काफी नजदीकी मामला हो सकता है तरपन।
0: गेस हू द फील्डर इज, दीप्ति शर्मा कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर इंडिया। The replay on our monitor is up and it suggests that the batter is short. Natalia Parvez got an outside edge. She wanted the single. However, Muniba Ali denied it and hence she had to turn back and go towards safety. Looks like she hasn't been able to ground her bat, or is it Muniba Ali who has been run out? We'll find out in just a second. However, it is Deepti Sharma's golden arm which has produced another wicket. Beg your pardon, it is Muniba Ali who failed to make her ground at the striker's end, and therefore another wicket produced for India. Pakistan are 75 for 4.
1: क्या सटीक निशाना था वहाँ पर दर्पण दीप्ति शर्मा को? और मुझे याद आता है कि किस तरह से क्रिकेट की और राह पकड़ी थी दीप्ति शर्मा ने। एक मैदान पर जबकि खेल हो रहा था, उनके भाई वहाँ पर खेल रहे थे और गेंद उनके पास पहुँची थी और बड़े कैजुअल अंदाज में उन्होंने गेंद को फेंका और वो सीधा जाकर स्टंप पर टकराई, और वहाँ पर जो यूपी के चीफ सेलेक्टर थे उस समय, उन्होंने वहाँ से उनको अपनी छत्र छाया में ले लिया और आज भी उन्होंने वैसे ही कमोवेश कारनामा करके दिखाया है।
0: She was born with it, isn't it? She was born with it. The talent was gifted to her by Mother Nature. Anyhow, responsibility now on the shoulders of Pakistan skipper Fatima Sana, who now makes her way to the middle. Pakistan are 75 for 4 and have just lost the wicket of Muniba Ali, who has been their top scorer so far. 41 of 35 is what Muniba managed. She hit 5 boundaries in that innings of hers. and Shreyanka Patil's over has produced a wicket finally. Remember, two drop catches of her bowling. This doesn't go into her account.

0: Count this run out, but it produces a wicket for India and another drop catch. Looks like this was a cotton bowled opportunity which Shreyanka Patil has spilled herself on a length in line with the stumps. Fatima Sana pushed it with hard hands. The ball went uppishly back to the bowler, who failed to hold on to it in her follow through. 75 for 4.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
3: ली। जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: तो पिछला ओवर भारत के लिए सफलता लेकर के आया जब दीप्ति शर्मा ने रन आउट करवा दिया था मुनीबा अली को एक बिल्कुल डायरेक्ट थ्रो स्ट्राइकिंग एंड पर, और जिसकी वजह से मुनीबा अली 41 के व्यक्तिगत स्कोर पर वापस पवेलियन लौटने पर मजबूर हुई थी। इधर श्री चरनी के स्थान पर अब शफाली वर्मा गेंदबाजी के मोर्चे पर है, जो कि दाएं हाथ से ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करती हैं, और पिछले कुछ समय में हमने देखा कि अक्सर भारतीय आक्रमण की शुरुआत उनके द्वारा की जाती रही, लेकिन आज उनसे आक्रमण की शुरुआत तो नहीं कराई गई, लेकिन फिलहाल बीच मैदान पर शेफाली वर्मा नज़र आ रही हैं। बल्लेबाजी में मात्र 6 रन बनाए एक छक्के की मदद से। देखना यह है कि गेंदबाजी में भारतीय टीम के लिए क्या कुछ कर पाती हैं। अगली गेंद, और इस बार फातिमा सना ने इस गेंद को खेला लेकिन सीधा कवर क्षेत्र में, 25 गज के दायरे के अंदर। कोई रन नहीं बनेगा। पहली गेंद पर एक सिंगल, दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं, और तीसरी गेंद का सामना करने के लिए फातिमा एक बार फिर से तैयार। इस बार लेक्सम से काफ़ी ज़्यादा बाहर, निश्चित रूप से वाइड का इशारा वहां पर अंपायर की तरफ से आएगा। इस एक अतिरिक्त रन की बदौलत 77 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान की टीम का स्कोर 4 अतिरिक्त रन उपहार के स्वरूप अब तक पाकिस्तान की टीम को दिए जा चुके हैं भारतीय गेंदबाजों के द्वारा। शिवाला वर्मा एक बार फिर से तैयार, दाएं हाथ से ओवर द विकेट, धीमी गति की गेंद, और इस बार इस गेंद को उठा करके खेलना चाहते थे कवर के ऊपर से, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, गेंद को लपक लिया आसानी से जेमिमा रॉड्रिक। स्मृति थी वहां पर, दरअसल उन्होंने गेंद को लपका और इस तरह से पारी समाप्त कर दी है। वहां पर एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में फातिमा सना की, खाता भी अपना नहीं खोल पाई 0 के स्कोर पर। 6 गेंदों का सामना करने के बाद वापस पवेलियन लौट रही है। धीमी गति की गेंद थी और इस गेंद को उठा करके खेलना चाहती थी, लेकिन वहां पर स्मृति मंदाना ने बहुत ही अच्छे पूर्वानुमान के साथ अपने पंजों पर उचकते हुए उस गेंद को, कैच को मुकम्मल किया और पारी को समाप्त कर दिया पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना के लिए।
0: गेट शेफाली टू बोल अ लिटिल बिट मोर। Do you or do you not remember the World Cup final from the last year when she produced a couple of wickets? Here again she has produced the goods for India. Shefali Verma with the wicket of Fatima Sana has pushed Pakistan on the back foot, 77 for 5. Meanwhile, I need to make a correction. The last ball of the previous over, I said Shreyanka Patil dropped a catch. However, the replays that appeared a little bit late on our monitor suggested that the ball had fallen just short of Shreyanka Patil, so she collected it on a half volley, or rather fumbled in the collection, but it was on a half volley. Alia Riaz meanwhile has now come out to the middle. She is the most experienced batter in this team. In fact, a lot of eyebrows were raised when Fatima Sana was appointed as the skipper, because Alia Riaz is far more experienced. Why was she not given the captaincy? But that is another matter. Currently, she needs to bat Pakistan out of trouble. A delivery on a full length near the off stump, which has been squeezed along the carpet towards cover. Alia Riaz faces a dot ball to begin her innings. Next delivery, again on a full length, once again gets forward as Alia Riaz, and this time knocks it towards long off. A comfortable single will be taken that gets Alia Riaz off the mark, and Pakistan's score moves to 78 for 5 with a ball remaining in Shefali Verma's first over. Runs in the Shefali, once again a full length delivery outside the off stump. Natalia crouches and then heaves it towards deep mid wicket, where Radha Yadav does the mop up job. A comfortable single has been taken, but single

0: won't hurt India anymore because they are in ascendancy with the score reading 79 for 5 at the end of the 12th over. Pakistan need 92 more runs in just 8 overs. Safe to say that India now are in the driver's seat.
1: जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और स्मृति मानधना की भी तारीफ करनी होगी, 68 रनों की बेहतरीन पारी और उसके बाद दो शानदार कैच उन्होंने जो लपके हैं, तो कहीं ना कहीं प्लेयर ऑफ द मैच के लिए भी वो एक प्रबल दावेदार इस मुकाबले में नजर आ रही हैं दर्पण।
0: Absolutely, catches win matches, the odds, the old saying. Shri Charni with a change of ends produces another wicket. Harmanpreet Kaur takes the catch and extra cover. Natalia Parvez has to say goodbye. India get another wicket. Pakistan, a collapsing Pakistan, are crumbling. India on top. They were 75 for 3 and now they have been reduced to 79 for 6. This was a floated up delivery at the off stump on a very full length. Natalia stayed beside the line, tried to go inside out over extra cover but could not find the desired elevation, stretched her arms upward, did the Indian captain, and the ball stuck to the middle of her palms like a bug in a cobweb. Out for 7 of 13 balls without scoring any boundaries is Natalia Parvez. Pakistan down in the dumps, 79 for 6.
1: तो 26 रन बनाते बनाते पाकिस्तान ने अपने 5 विकेट गवा दिए हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान इस समय बैकफुट पर है इस मुकाबले में भारत के खिलाफ। और भारतीय गेंदबाजों ने, खासतौर से स्पिन गेंदबाजी की यदि हम तारीफ बात करें तो दर्पण, काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन। तेज़ गेंदबाजी को लेकर चिंताएं पहले भी थीं और आज भी इस मुकाबले में हमने देखा कि चाहे क्रांति गौड़ हों या फिर अरुंधति रेड्डी, उन्होंने उस तरह का प्रदर्शन नहीं किया जिस तरह के प्रदर्शन की अपेक्षा थी, लेकिन भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। नए ओवर की शुरुआत, बल्कि श्री चरनी वहां पर अपने ओवर को जारी रखती हुई पहली गेंद पर सफलता उनको मिल चुकी है और इस समय शमीम वहां पर बल्लेबाजी के लिए मौजूद हैं, रमीन शमीम। देखना है कि यहाँ पर किस तरह से पाकिस्तान की पारी को आगे बढ़ा पाती हैं। पाकिस्तान की टीम इस समय खासी मुश्किलों में नज़र आ रही है। श्री चरनी की अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन एज बेस्टन पर।
0: ओवर द विकेट, डिलीवर्स दिस वन नियर द ऑफ स्टंप एंड इट वाज पुश्ड टुवर्ड्स लॉन्ग ऑन फॉर अ सिंगल बाय शमीम हु गेट्स ऑफ द मार्क। द नेक्स्ट डिलीवरी कम्स अराउंड द विकेट, डज Shri Charani, delivers this one to Alia Riaz, once again near the off stump. Alia Riaz with a deft push towards mid-off where the captain fumbles. Harmanpreet Kaur with a little bit of a misfield allows 2 runs and hence Alia Riaz takes herself to 3, Pakistan 82 for 6. Next delivery of Shri Charani is over on a good length around the off stump, 78 kilometers per hour or about. Riaz has to adjust into a defensive push.
1: 44 गेंदों में 89 रनों की आवश्यकता है पाकिस्तान की टीम को और 4 विकेट मात्र सुरक्षित है पाकिस्तान की टीम के। अगली गेंद श्री चरनी की और इस बार अराउंड द विकेट आते हुए अंपायर उस स्टंप से बीच से निकलकर, ये गेंद फ्लाइटेड थी, बैकफुट पे जाकर कट करने का प्रयास किया लेकिन सीधा 25 गज के दायरे के अंदर फील्डर के हाथों में गेंद पॉइंट क्षेत्र में पहुँचती हुई बिना किसी रन के। पिछली 2 गेंदों पर कोई रन नहीं मिला है आलिया को और देखना यह है कि आलिया रियाज और रमीन शमीम मिलकर यहाँ पर पाकिस्तान की पारी को और कितना दूर ले जा सकते हैं। अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद के पिच के नज़दीक पहुँचकर गेंद को ड्राइव किया, वाइड एश लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर मौजूद है, गेंद फील्ड हो रही है लेकिन उससे पहले दोनों ही बैटर्स ने 1 रन के लिए छोर बदल लिया और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के अब हो गया है पाकिस्तान का 83 6 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर की समाप्ति के बाद।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
4: ली। जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: 42 गेंदों में 88 रन। वर्मा की पहली गेंद को वहां पर स्वीप करने की कोशिश, कामयाबी मिली लेकिन शॉर्ट फाइन लेग पर फील्ड

मौजूद और इससे पहले कि गेंद फील्ड हो सके एक रन के लिए आसानी के साथ छोर बदल लिया बल्लेबाजों ने। इस एक रन की मदद से स्कोर पाकिस्तान की टीम का बढ़कर के अब 84 विकेट के नुकसान पर। शेफाली वर्मा को पिछले ओवर के दौरान सफलता मिली थी, क्या इस ओवर में भी वो भारतीय टीम के खाते में एक और सफलता दे पाएंगी? ऐसा कर पाती हैं तो भारत के लिए जीत की राह और ज़्यादा आसान हो जाएगी। फिलहाल मंत्रणा चलती हुई ऑन फील्ड अंपायर जैकलिन विलियम के साथ शेफाली वर्मा की। 13.1 ओवर के बाद पाकिस्तान की टीम का स्कोर 84 रन है 6 विकेट के नुकसान पर। मुनीबा अली को अगर छोड़ दें दर्पण तो बाकी के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए पाकिस्तान की टीम के।

0: विकेट क्रीज के कोने से बाएं हाथ के बल्लेबाज शमीम के डीप बैकवर्ड पॉइंट स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है वहां पर, और इससे पहले कि गेंद फील्ड होकर पहुंचे एक रन का अवसर था दोनों बल्लेबाजों के लिए। इस एक रन की मदद से 85-6 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान की टीम का स्कोर 13.2 ओवर की समाप्ति के बाद। गेंद और रनों के बीच का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में इस समय पूरी तरह से झुका हुआ नजर आ रहा है। अगली गेंद आलिया के लिए, और आलिया ने इस बार बैकफुट पे जाकर गेंद को कट किया, लेकिन बहुत ताकत से लगा हुआ स्ट्रोक नहीं था, ठीक तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं, गेंद स्वतः ही जाकर के रुक गई थी। हालांकि एक दौड़ लगाते हुए गेंद को रोका जरूर वहां पर दीप्ति शर्मा ने, थ्रो किया, लेकिन तब तक दो रनों का फासला तय कर चुके थे आलिया रियाज और तमीम शमीम। दो रनों की मदद से आलिया रियाज पहुंची 7 पर और पाकिस्तान की टीम का स्कोर 87-6 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर शफाली वर्मा इस बार ओवर द विकेट, और इस गेंद को कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए मोड़ना चाहती थी। ऋचा घोष के पास अवसर था, अगर सीधा थ्रो उनका स्टंप्स की तरफ लगा होता तो गेंद स्टंप्स पर लगने के साथ ही बैटर आलिया रियाज को वापस पवेलियन जाना पड़ सकता था। हालांकि रिव्यू वहां पर जरूर लिया है।
1: Two things happened there. First of all, there was an appeal for LBW because Shefali thinks that her ball spun enough to beat the inside edge of the bat and hit Alia Riaz on the pads. After hitting the pad, the ball trickled away towards the onside and Riaz wandered out of her crease in order to search for a non-existent run. Richa Ghosh ran towards her left, picked the ball up and then attempted to hit a direct hit, score a direct hit at the keeper's end, but she was not able to. So Riaz survived the run out scare. However, for the LBW appeal, which was denied by umpire Jacqueline Williams, India have posed a challenge. Harmanpreet Kaur has shown the T signal, which calls for DRS. The first replay is on our monitors and it's a complicated replay because the bat and pad are close together. There is a definite spike on the graph of ultra edge. However, the bat and pad are super duper close. So we do not know whether that spike is due to the ball hitting the bat or it is due to the bat hitting the pad. And therefore, the wisdom of umpire Aloys Sheridan, who is in the chair of TV umpire right now, matters a lot. It is her judgment which will decide whether or not we go to the ball tracking replay. Only if at first we will go to the ball tracking replay and thereby the question of whether it was in line, whether it would have gone on to hit the stumps will arise. But the first question is whether it has hit the pad first or the bat first. Looks like umpire Sheridan has decided that it has hit bat first, which means India will lose a review and Alia Riaz will survive.
0: जी, काफ़ी नज़दीकी मामला था क्योंकि बैट और पैड जैसा कि दर्पण आपने बताया बिल्कुल साथ थे, और वहाँ पर टीवी अंपायर के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध होने के बावजूद कोई बहुत आसान निर्णय नहीं था, लेकिन फैसला अंततः बल्लेबाज के पक्ष में रहा और पाकिस्तान की टीम का स्कोर 87-6 विकेट के नुकसान पर।
1: And that is why, Ashish, we need umpires. People say, do away with them, leave everything to technology. No, we need umpires. This is the reason.
0: जी हाँ, हर मशीन के पीछे एक मानव ज़रूर होता है और यहाँ भी हमने वैसे ही देखा। फिलहाल अगली गेंद पर एक रन का इजाफा, 88-6 विकेट के नुकसान पर। लक्ष्य है पाकिस्तान की टीम के सामने 171 रनों का, यानी बची हुई 37 गेंदों में 83 रनों की आवश्यकता है, और ये लक्ष्य जो है निश्चित रूप से किसी भी सूरत में आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल लक्ष्य है। और अगर यही स्थिति अगले 2-3 ओवर तक बनी रही तो मैं कहूँगा दर्पण फिर ये मैच जो है पूरी तरह से भारत के पक्ष में हो जाएगा, और जो बचे हुए खिलाड़ी यहाँ पर है, बल्लेबाज हैं, उनसे ये उम्मीद की जानी कि वो यहाँ पर 36 गेंदों में 82 रन बनाएंगे, शायद थोड़ा सा ज़्यादा होगा।
1: Absolutely, it's a mountain to climb. A single to end the 14th over, which was played down to long on by Ramin Shamim, and that calls for a drinks break. The final one of this particular match, Pakistan are 89 for 6 and need 82 more runs in the remaining 6 overs. India have plenty of

0: flexibility going into the final six because of the two overs, two excellent overs delivered by Shefali Verma, who, as we have been saying, should be getting more and more opportunities to bowl as she has proven it again and again. Arundhati Reddy, Shreyanka Patil, Kranti Gaur, Deepti Sharma, Shri Charani and Shefali Verma, the six bowlers that have been used by Captain Harmanpreet Kaur. Of course, this match is being played at the Edgbaston, which is an iconic cricket ground in Birmingham in England. It hosted its first ever first class game back in 1885, first test match in 1902 and first women's test match in 1963. Of course, has hosted some iconic matches like the Commonwealth Games of 2022, the 1999 World Cup semi-final. Remember Lance Klusner, Alan Donald, that run out? That match happened here. Brian Lara, who scored 501 not out during a first class game, that happened here. So it's been an iconic ground, and looks like one more chapter will be added today when India beat Pakistan. Are we jumping the gun? No, we aren't, because this looks like an improbable climb, doesn't it, Ashish?
1: Yeah, और इतिहास भी अगर आप देखें तो वो कहीं ना कहीं कहता है कि शायद इतिहास अपने आप की पुनरावृत्ति इस संस्करण में भी करे. T20 विश्व कप में पाकिस्तान कभी भी ग्रुप स्टेज से आगे नहीं पहुंचा है T20 विश्व कप के मुकाबलों में, और 2024 में भी उन्होंने जो चार मैच खेले अपने ग्रुप में उसमें सिर्फ एक जीता था. और उधर आप भारत की यदि बात करें तो भारत चार बार सेमीफाइनल में पहुंच चुका है. 2020 में भारत रनर्स अप रहा था, ऑस्ट्रेलिया ने उसे पराजित किया था. और रैंकिंग के हिसाब से भी अगर देखें तो भारत मीलों दूर है, मीलों आगे है पाकिस्तान से. तीन नंबर की पोजीशन पर भारत है T20 रैंकिंग में, जबकि आठवें स्थान पर पाकिस्तान है. तो कागजों पर कोई मेल नहीं है, लेकिन जैसा कि हम अक्सर कहते हैं कि खेल के मैदान पर जो प्रदर्शन होता है नतीजे उसके हिसाब से आते हैं. लेकिन आज खेल के मैदान पर भी भारत का प्रदर्शन पाकिस्तान के प्रदर्शन से काफी ज्यादा बेहतर अब तक नजर आया है.
0: However, there is something to play. There is something to play for, and that is net run rate. Remember, this group that India is in is called the group of death. India, Australia, South Africa, three contenders for the cup. Only two will make it to the semi-final, and therefore it could come down to net run rate at the business end, and therefore India would want to win by a big margin. Shri Charani will begin bowling. What is the 15th over of the innings? Delivers a tossed up ball which Shamim gets a long stride forward to. She takes it on the full in front of the off stump and then bunts it towards the square leg region. That will allow for a comfortable single, which takes Pakistan's score to 90 for 6 after 14.5. Shri Charani switches her angle, goes around the wicket for the right-handed Alia Riaz, and Alia Riaz steps out to this good length ball and chips it towards the right of Shri Charani. Shri Charani wanted to run towards her right and attempt a catch. However, the non-striker was in the way.
1: Non-striker ki wajah se Shri Charani us catch ko lene ki koshish bhi nahin kar paayin. Pakistan filhal 91, 6 wicket ke nuksan par. Is baar ye gend over the wicket to bae haath ke batter ko. और उस गेंद को खेलना चाहते थे ऑफ साइड पे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क ठीक तरह से हुआ नहीं और इस बार रन लेने का कोई अवसर भी नहीं बन पाया. पहली दो गेंदों पर दो सिंगल्स, तीसरी गेंद डॉट बॉल, 33 रनों में 80 रनों की आवश्यकता. समीकरण लगातार मुश्किल होते जा रहे हैं पाकिस्तान की टीम के लिए. और इस बार इस गेंद को उठा करके खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बहुत ज़्यादा दूर नहीं गई और वहाँ पर आसानी से कवर क्षेत्र में लपक ली गई. और एक बार फिर से पाकिस्तान मुश्किलों में पड़ता हुआ. सातवें विकेट का पतन हो चुका है रमीन शमीम के रूप में. चार रन उन्होंने बनाए छह गेंदों का सामना करने के बाद, और श्री चरनी को एक और सफलता यहां पर मिलती हुई. तो भारत अब काफी मजबूत स्थिति में आ चुका है. ये गेंद हवा में टप्पा खाने के बाद जैसे ही थोड़ी सी टर्न हुई अंदर की तरफ, उसको खेलने का प्रयास किया था ऑफ साइड में. कवर क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे, आगे की तरफ गेंद को डाइव करते हुए लपकने में कामयाबी हासिल की क्षेत्र रक्षक ने, और इस तरह से पारी का अंत कर दिया रमीन शमीम का. तो सात विकेट का नुकसान. श्रियंका पाटिल वहाँ पर क्षेत्र रक्षक थी, उन्होंने ये शानदार कैच लपका और 91 रनों पर पाकिस्तान की टीम अब सात अपने बल्लेबाज गवा चुकी है. मात्र तीन विकेटों की और

0: और आवश्यकता है भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। पाकिस्तान के लिए अगर मैं कहूं दर्पण कि यहां से अब जीत की संभावनाएं पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी।
1: Absolutely, they call it the game of glorious uncertainties. But Pakistan need more than a miracle if they are to win this. Nashra Sandhu is the new batter in. She's not in the side for her batting credentials. Sri Charani goes around the wicket for the right-handed batter, delivers this one on a drivable length on the stumps, and the batter will be able to work it towards mid-wicket and pick up a comfortable single that takes Pakistan's score to 92 for 7 with one ball remaining in the 15th over. Tried to step out and whack it, did Ramin Shamim on that occasion. Ended up slicing it, an excellent diving catch from Shreyanka Patil at backward point. Next delivery of the over, which is the final one of the 15th over, induces an outside edge and the ball goes trickling away to Deepti Sharma at backward point. And because it is Deepti, Alia Riaz doesn't even think of a single. They know what Deepti can do. They know what she did earlier. End of the 15th, 92 for 7.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
4: लड़िए मां, जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: श्री चरणी के चार ओवर का कोटा समाप्त हो चुका है और चार ओवर की गेंदबाजी में उन्होंने 21 रन दिए, 3 सफलताएं हासिल की और इकोनॉमी उनकी 5.25 रन की। शानदार प्रदर्शन श्री चरणी के द्वारा एक बार फिर से। काफ़ी युवा गेंदबाज हैं और काफ़ी प्रभावित किया है 2025 के बाद से अपनी गेंदबाजी से। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत हो चुकी है शफाली वर्मा के द्वारा और शफाली वर्मा की पहली गेंद पर एक रन और दूसरी गेंद को खेल दिया था वहां पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन इससे पहले की गेंद फील्ड होकर पहुंचे विकेटकीपर के दस्तानों की तरफ 3 रन दौड़कर पूरे कर लिए वहां पर। एक अच्छा प्रयास वहां पर क्षेत्ररक्षण का, गेंद को रोकने के प्रयास में राधा के द्वारा और वहां पर रिले थ्रो के द्वारा गेंद अंततः पहुंची थी विकेटकीपर ऋचा घोष के दस्तानों में, लेकिन तब तक दौड़कर 3 रन बना लिए थे पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने आलिया इन 3 रनों के साथ 12 के व्यक्तिगत स्कोर पर। और अब नाशरा संधू तैयार हैं अगली गेंद का सामना करने के लिए। शफाली वर्मा की ये गेंद ओवर द विकेट और इस बार इस गेंद को स्लॉग शिफ्ट करने के अंदाज में खेला। मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, गेंद वहां पर फील्ड कर ली जाएगी, लेकिन एक रन का इजाफा इसी बीच ज़रूर हो जाएगा पाकिस्तान के योग में। नाशरा संधू इस एक रन की मदद से 3 पर और आलिया रियाज अब तैयार हैं वहां पर 12 के व्यक्तिगत स्कोर पर अगली गेंद का सामना करने के लिए। और इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, गेंद को पूरी तरह से चूकी, पैड पर लगी लेकिन नेक्सम के बाहर जाकर गेंद पैड पर टकराई थी जिसकी वजह से कोई अपील नहीं की वहां पर शफाली वर्मा ने। गेंद की रफ्तार इस बार थोड़ी सी ज़्यादा थी शफाली वर्मा की, लगभग 93 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर खेलने का प्रयास, कॉट बिहाइंड की अपील जरूर की लेकिन वाइड का इशारा आता हुआ ऑन फील्ड अंपायर जैकलिन विलियम्स के द्वारा, जो कि वेस्ट इंडीज की हैं अपने 91 में T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में इस समय अंपायरिंग कर रही हैं।
1: शफाली वर्मा आस्क ऋचा घोष, आवाज आई क्या? Richa Ghosh shaked her head. Then why were you appealing? Anyhow, next delivery outside the off stump, lofted over backward point, and the ball goes skipping away to the fence. 100 up for Pakistan with this boundary.
5: ये लगा आभा का चौका।
0: अंतिम गेंद का आना बाकी है, 10 अतिरिक्त रन हैं इन 102 रनों में। गेंद शफाली वर्मा की बैकफुट पे जाकर कट किया बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट के बीच में से गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई, लेकिन गेंद को वहां पर रोक लिया जाएगा क्रांति गोड के द्वारा। गेंद को फील्ड किया ऋचा घोष की तरफ थ्रो, लेकिन तब तक आसानी के साथ 2 रनों के लिए छोर बदला बल्लेबाजों ने और इन 2 रनों के साथ पाकिस्तान की टीम का स्कोर 16 ओवर की समाप्ति के बाद 104 7 विकेट के नुकसान पर। आलिया रियाज 18 रन बनाकर खेल रही हैं और नाशरा संधू ने अब तक 3 रन अपने बल्ले से योगदान के रूप में पाकिस्तान को दिए हैं।
1: Right, 4 overs remaining, and as we said, India will want to restrict Pakistan to as low a total as possible, because remember, net run rate could come into equation.

0: 2020 internationals. Alone at the top of the mountain, the player of the tournament from the 2025 ODI World Cup has begun the T20 World Cup campaign in style. India win by 64 runs.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा?
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: तो भारत की शानदार सफलता इस T20 विश्व कप के 10वें संस्करण के अपने पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रनों से पराजित करने में कामयाब रही भारतीय टीम। और T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच ये नवा मुकाबला था और इन 9 मुकाबलों में अब तक 7 भारत के पक्ष में रहे और 2 पाकिस्तान के पक्ष में। भारत की शुरुआत टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए भले ही अच्छी ना हुई हो, लेकिन उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने, खासतौर से स्मृति मंधाना ने, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 68 रनों की एक शानदार पारी उन्होंने खेली। इसके अलावा कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 रनों की बेहतरीन पारी खेली और ऋचा घोष ने अंतिम ओवर में जिस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ थी। 34 रनों की एक बेहतरीन पारी की वजह से भारत 20 निर्धारित ओवर में 170 रन बनाने में कामयाब रहा। 6 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान को 171 रनों की दरकार थी मुकाबले को जीतने के लिए। शुरुआत उनकी अच्छी हुई, मुनीबा अली ने अच्छा प्रदर्शन किया अपने बल्ले से, लेकिन खासतौर से मध्य क्रम में उनके विकेट एक के बाद एक बहुत तेज़ी के साथ गिरते रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाई। और भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा ने आज 5 विकेट हासिल किए। अब वो T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने वाली गेंदबाज बन चुकी हैं। एक शानदार सफलता। और श्रीचरणी ने भी आज भरपूर योगदान दिया। शफाली वर्मा का भी प्रदर्शन गेंदबाजी से बहुत अच्छा रहा। तो कुल मिलाकर जो स्पिन गेंदबाजी रही ओवर में ही पारी को समेट दिया पाकिस्तान की 106 रनों पर और इस मुकाबले को 64 रनों से जीत लिया। तो मैं आशीष चरणगु, अपने साथी कमेंटेटर दर्पण टिकिया, स्कोरर रजत सिन्हा और स्टैटिस्टिशियन तुषार त्रिवेदी के साथ आपसे विदा लेता हूं, लेकिन आप बने रहिए आकाशवाणी के साथ। अब से थोड़ी ही देर में हमारा विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: Player of the match.
6: जब इरादे चैंपियन जैसे हों तो शुरुआत भी चैंपियंस वाली ही होती है। बर्मिंघम के मैदान पर आज टीम इंडिया ने सिर्फ जीत दर्ज नहीं की बल्कि पूरे विश्व कप को एक संदेश दिया है। भारत यहां हिस्सा लेने नहीं, इतिहास रचने आया है। बल्ले से दम, गेंद से धार और मैदान पर शानदार जज्बा। भारतीय खिलाड़ियों ने खेल के हर विभाग में पाकिस्तान को 64 रन से पीछे छोड़ते हुए विश्व कप अभियान का आगाज यादगार बना दिया है। लेकिन हर बड़ी जीत के पीछे होता है एक ऐसा सितारा जिसने दबाव के क्षणों में टीम का रास्ता रोशन किया, जिसने अपने प्रदर्शन से मुकाबले की दिशा बदल दी। और इस कार्यक्रम यानी पोस्ट मैच शो का नाम ही है प्लेयर ऑफ द मैच। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और मेरे साथ है मेरी को होस्ट साक्षी मांडवाल। साक्षी, स्वागत आपका।
7: Thank you so much, Anand. And indeed, what a start for India in the ongoing ICC Women's T20 World Cup to have just defeated Pakistan in a very convincing manner by 64 runs. And what a feat over there for Deepthi Sharma today. A 5-wicket haul, thereby also becoming the only bowler in the women's history of T20 cricket to have achieved, or should I say, taste that sweet victory of getting the most.

0: number of wickets. More to talk on this. I'm joined over here by Vaishali. Along with her, we have with us, of course, Colonel Bhupraj and Mona ji. Good evening, everybody.
1: Good evening.
2: Hi, good evening.
0: Now, quickly to start with you, Colonel Bhupraj, I'll come to you. A very good start for the Indian women in the T20 World Cup this season.
2: Oh, yes. It was a great match. There were some jitters, you know, in the first six overs. But thereafter, the way our spinners bowled, slightly slow in the air, with that loop, and deceived the Pakistani batsmen. It was a great display of spin bowling by Dipti Sharma and Shri Charni.
3: जी बिल्कुल, चार ओवर में 10 रन देकर 5 विकेट और T20 के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज बन गई हैं। श्री चरणी ने 3 विकेट लिए, शेफाली वर्मा के नाम 1 विकेट। चर्चा थी मोना की पिच पर थोड़ा सा टर्न देखने को मिलेगा, लेकिन भारतीय स्पिनर्स ने कमाल का प्रदर्शन किया और विश्व कप के पहले मैच में बहुत कॉन्फिडेंस देखा हरमनप्रीत कौर को।
4: बिल्कुल कॉन्फिडेंस देखा, और टॉस के समय हमने जैसे देखा था जब हरमनप्रीत ने बल्लेबाजी का चयन किया था, तो यही उनका आकलन था कि शुरुआत में बल्लेबाजी के लिए अच्छी है पिच और बाद में स्पिनर का इसमें रोल होगा। और बिल्कुल सटीक आकलन था, क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से, हम पहले भी बात करते हैं, श्री चरणी ने जिस तरह गेंदबाजी की और दीप्ति शर्मा क्या कमाल की प्लेयर है। ऐसे लग रहा है कि जो वनडे वर्ल्ड कप फाइनल जहां छोड़ा था, वहीं से इन्होंने T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच पकड़ लिया है। और ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है कि उसकी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो दूसरे फॉर्मेट के वर्ल्ड कप में थी, वो पहले ही मैच से जबरदस्त फॉर्म में है। और पाकिस्तान के लिए यहां बहुत निराशा हाथ लगी है।
3: चलते हैं प्लेयर ऑफ द मैच दीप्ति शर्मा की तरफ, जहां से बात हो रही है।
5: I like this kind of wickets, and I think it's all credit goes to the team. I'm grateful that Hanumanji is great, and I like ICC tournaments. I think because from there I started, so I like it. Yeah.
6: What was the key to bowling on this surface today?
5: I think because it's turning, so I vary my pace in every ball and every over. That helped me a lot. Yeah.
6: Slow or quick? As we look at your wickets here, you slowed it up quite nicely, especially to the left-handers.
5: Yeah, because it's turning, so I just have believe that I have to bowl a little bit slower in the air, and just believing in myself and bowling in the right areas. That's what I was doing. Yeah.
6: How important is your experience in England? I know you've played international cricket, but you've played a lot of 100 cricket here as well. You know these grounds well.
5: Yeah, it's an amazing crowd here, and a lot of people are coming and supporting Indian team today, and that's what we want in every game. That's keep coming and keep supporting. And especially I wanted to mention about Smriti and Haridi's partnership. From there, we threw the momentum.
6: You went through that difficult phase. It's well documented. You went a few games without wickets. Are you a worrier, a fretter, or do you just know class is permanent?
5: Actually, I was not worried about when I didn't get wickets, but I always believe in myself that whenever the right time will come, I'll step up for the team, and that's how I play and bowl. Yeah.
6: Well, you definitely stepped up today. That was a magnificent performance. Well done, Deepti.
5: Thank you so much.
3: प्लेयर ऑफ द मैच दीप्ति शर्मा ने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन एक तरफ उन्होंने कहा कि यहां बड़ी तादाद में दर्शक आए थे हमें सपोर्ट करने के लिए। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि किसी भी T20 विश्व कप के ग्रुप स्टेज में सबसे ज्यादा दर्शक आज के मैच में आए थे। जो आधिकारिक आंकड़ा आ रहा है वो 18,814 दर्शकों का आ रहा है। इससे पहले यह कीर्तिमान 6 अक्टूबर 2024 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में ही बना था, जहां 15,935 दर्शक थे। दीप्ति के प्रदर्शन पर हम बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये आंकड़े बताते हैं कर्नल की किस तरीके से महिला क्रिकेट में दिलचस्पी बढ़ी और टीम इंडिया का रुतबा कैसे बढ़ रहा है।
2: हाँ जी, ये जो 50 ओवर वर्ल्ड कप जो हम जीते हैं, उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ गया प्लेयर्स में, एंड वो आज दिखाई पड़ रहा है। एक टाइम पे तो लग रहा था थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन वो जो सेल्फ डिटर्मिनेशन और जो आपने जज्बा है अपने प्लेयर्स का जीतने का, वो दिखाई पड़ा, एंड दैट टर्न द मैच इन अ फेवर।
0: Right, and also to tell our listeners today, this is actually the fourth biggest defeat for Pakistan in women's T20 World Cups. Earlier, it was, again, the topmost is 114 versus England in Cape Town 2023, then 94 versus Australia in 2014, 68 versus England in Chennai, versus England in Chennai in 2016, and 64 that was today against India in Birmingham. Vaishali, aapke paas aati hoon.

0: जब कोई भी देश एक सीज़न की शुरुआत करता है या टूर्नामेंट की शुरुआत करता है और इतनी बड़ी तादाद से कह लीजिए इतनी बुरी तरह हारता है, तो मेंटली एंड मॉरली ये कितना डिप्लीटिंग हो सकता है उस देश के लिए टूर्नामेंट में आगे प्रोग्रेस करते वक्त। मैं बात कर रही हूँ अब यहाँ पर पाकिस्तान की खासतौर से।
1: पाकिस्तान ने स्टार्ट बहुत अच्छा दिया था, लेकिन जिस तरह से वो हार की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे आफ्टर 10 ओवर के बाद। लेकिन बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान के कैप्टन पे बहुत, एक लीडर का होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जैसे हम देखें हमारी हरमनप्रीत कौर है वो एक बेहतरीन लीडर हैं, उनको ये पता है कि किस बॉलर को किस वे में और कहाँ पे यूज़ करना है। वैसे ही फातिमा की अगर बात करूँ तो वो उतना कॉन्फिडेंट थी, बट जैसे उनकी विकेट गई एंड द वे सी रिएक्टेड, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम बैकफॉल पर भी देख सकते हैं, और उसके साथ साथ पाकिस्तान टीम थोड़ा सा उनका मॉरल डाउन जरूर हुआ है, क्योंकि एक ये फाइनल मैच की तरह खेला जाता है और बहुत इम्पॉर्टेंट था उनके लिए ये मैच जीतना भी, और जो वो उस वहाँ उस जगह तक नहीं पहुँच पाए हैं, बट सेकंड मैच उनके पास होपफुली है, और वो वहाँ पे अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वहाँ पे वो अपनी जीत को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी मॉरल डाउन हुआ नहीं है, बट हो सकता है और आगे सेकेंड मैच को देखते हुए।
2: जी हाँ, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच में हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका।
3: हाय, मैं वाई वेंकट रेड्डी गांव लकवरो जिला सूर्यापेट तेलंगाना से बोल रहा हूँ।
2: जी रेड्डी साहब बताएं, क्या बताना चाहते हैं आप?
3: बचपन में मैं काम सुनता था, तब कपिल देव की ऑलराउंड परफॉर्मेंस कमेंट्री में सुनते थे, आज दीप्ति शर्मा भी वही किया। दीप्ति शर्मा अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए मरी इंडिया को जितवाया। लेकिन मेरा एक सवाल है
2: जी,
3: बैटिंग इंडिया की बैटिंग में एक स्लॉट ठीक नहीं है, कुछ मैचों में भारती फूलमाली खेल रहे हैं, कुछ मैचों में यशिका भाटिया खेल रहे हैं, लेकिन इन दोनों भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। इनके अलावा प्रतिका रावल अनुष्का शर्मा को ट्राई किया जाना चाहिए, ये तो मेरा मानना है, आप क्या कहते हैं?
2: जी हाँ, एक बढ़िया पॉइंट उठा रहे हैं कर्नल। अगर आपसे बात करें तो पहले भी चर्चा हो रही थी कि यष्टिका खेलेंगी, भारती को स्टार्ट मिला, अब ये हरमन और अमोल मजूमदार को तय करना है कि भारती को एक और मैच देंगे या यष्टिका भाटिया को लेकर आएंगे नेक्स्ट मैच में।
4: मेरा ख्याल से यष्टिका भाटिया को चांस मिलना चाहिए, एंड उसने भी ये जो प्रैक्टिस मैच हुए हैं इसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो उम्मीद करते हैं कि उसको चांस मिलेगा।
0: Right, and a good news for all our listeners over here that this is indeed the biggest win by India in the T20 World Cup ever. This margin of victory that we have achieved today is the third biggest win that India has achieved. Prior to this, it was 82 against Sri Lanka and 72 versus Bangladesh, and today we have gone on to make that record. Now, coming to specifically, Mona, I'll come to you. आपके पास कि दीप्ति शर्मा की थोड़ी और आज बात करना बनता है. 166 is the number of wickets. And I remember जब शो की शुरुआत हुई थी, हमने तब ये बात करी थी कि आज अगर वो 5 wickets ले लेती हैं, तो वो highest wicket taker in the history of women's cricket. अगर हम बात करते हैं तो T20 के अंदर तो बन जाएंगी 166 पे पीछे थाईलैंड की थिपाचा पुत्तावोंग है, और उनको भी आज वो आगे पीछे छोड़ के चली गई है, निकल गई है। क्या आपको लगता है ये सीजन उनका बेस्ट सीजन जाने वाला है दीप्ति शर्मा का?
5: देखिए, अभी तो ये पहला मैच इस टूर्नामेंट का उन्होंने खेला है, और इससे पीछे लगातार हम बात कर रहे थे, खबरें भी आ रही थी कि वो उस लय में दिख नहीं रही हैं जिसके लिए उनको जाना जाता है, या जो वर्ल्ड कप में थी। लेकिन मैच के बाद जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे विकेट आ रहे हैं या नहीं, लेकिन मुझे खुद पर इतना भरोसा है कि जब टीम को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर परफॉर्म करूँगी। और कुछ खिलाड़ी जो इस टीम में हैं, जो बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं, जैसे आप स्मृति मांधना की बात कर लीजिए, दीप्ति शर्मा की बात कर लीजिए, जब ज़रूरत होती है उस समय वो परफॉर्म करते हैं, और यही एक चैम्पियन खिलाड़ी लक्षण है। तो जिस तरह से आगाज हुआ है उनका, लगता है कि ये सीजन जो कॉन्फिडेंस है उनकी, जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो बात कर रही है, जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रही थी, तो लग रहा था कि हाँ बहुत अच्छा ये टूर्नामेंट उनका जाने वाला है, और ये भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी एक अच्छा संकेत है।
2: जी हाँ बिल्कुल, बढ़िया स्टार्ट मिला है, और प्लेयर ऑफ द मैच के कार्यक्रम में एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका।
6: नमस्कार सर
2: जी, अपना

0: साथ एक श्रोता भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग। हेलो,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रही हैं?
1: एक हायरी बोल देते हैं आपके लिए।
0: जी जरूर
1: जी। तारीफ कैसे करें आपकी हर लफ्ज वो खुशबू आ रही गुलाब की। और मैं मैच के लिए बोलना चाहती हूँ कि जैसे ही पिछले मैच जीते थे वर्ल्ड कप जीत के लाए थे, ऐसे ही ये मैच भी जीते हो। मैं जवाई माँ की बहुत बड़ी फैन हूँ।
0: जी शुक्रिया, थैंक यू।
1: हमारी शुभकामनाएं इनके साथ, पूरी टीम ऐसे ही जीतती रहे। सीना भी मंसूरी बोल रही, पालताना का, इंदौर से।
0: थैंक यू हमें कॉल करने के लिए और भारतीय टीम को अपनी दुआएं देने के लिए शुक्रिया। नाउ वैशाली, मैं आपके पास आती हूँ क्विकली। हमने देखा एक तरफ भारतीय कप्तान थी हरमनप्रीत कौर जो बहुत खुश नजर आई, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तानी कप्तान की भी यहाँ पर बात करते थोड़ी सी, तो जो उन्होंने बातें रखी फातिमा सना ने, उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उनका पावर प्ले किया था चेस के समय, 6 ओवर के अंदर 52 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, जो आज तक का पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम का T20 इंटरनेशनल्स के अंदर सबसे अच्छा या उमदा पावर प्ले रहा है, उसके बाद भी वो कैपिटलाइज करके कन्वर्ट नहीं कर पाए कि चेज में हो सकते। आपको कहाँ लगता है ये पाकिस्तानी महिला टीम फंबल करती है चेज के अंदर या टारगेट्स को ऑन बोर्ड बनाने में भी?
2: जब हम बैटिंग करते हैं तो हमें मेनली ये देखना होता है कि आप किस फील्डर के पास कैच दे रहे हैं। फिर आपको देखना होता है कि आप अगर लॉफ्टी शॉट खेल रहे हैं तो कैसे आप खेल रहे हैं, कितना बाहर निकल के खेल रहे हैं। और आज पाकिस्तान की टीम ने जितने भी कैचेस दिए हैं वो इंडियन टीम ने ग्रैब किए हैं। सिर्फ एक अरुणती रेड्डी के अलावा किसी और हमारे किसी भी इंडियन प्लेयर ने वो कैच ड्रॉप नहीं किए हैं। अभी उन्होंने बोला कैचेस विन मैचेस, सो हमारी टीम ने कैचेस किए और पाकिस्तान की टीम ने वो कैचेस ड्रॉप करे। जो हमारे हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदना दोनों के कैचेस ड्रॉप हुए थे, वहाँ पे गेम चेंज हो गया। एंड वैसे ही यहाँ अगर हम पाकिस्तान के बैटिंग के बारे में बात करें तो जब उनकी बैटर बैटिंग कर रहे थे तो जो वो कैच उनके उठे हैं वो हमने ग्रैब करे हैं। तो यही एक डिफरेंस मेन होता है, क्योंकि दोनों साइड से बॉलर अपना काम करते हैं, बैटर अपना काम करते हैं, लेकिन एक फील्डिंग ऐसी चीज है जहां से आप इन और आउट कर सकते हैं गेम को।
0: जी, आई वुड वांट टू टेक दिस पॉइंट फॉरवर्ड टू कर्नल भूपराज। डू यू थिंक दैट समवेयर द पाकिस्तानी वुमेन्स टीम्स अप्रोच ऑफ गोइंग इनटू द चेज हैड फॉल्स और हैड सर्टेन cons in their approach, because we also saw them making very lopsided shots or going for impulsive shots at times. Do you think that was required, that aggressive intent without reading the room or the situation too well?
3: Actually, you know, they went for those big shots and it shows lack of experience on part of some of the players. I think half the team is new and they learn from experience. This is a good learning experience for them.
4: वैशाली बात कर रही थी कैचेस की। पांच जितने भी मैचेस अब तक इस विश्व कप में हुए, 36 कैचेस छूट चुके हैं, जो ये दिखाता है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कैचेस छूट रहे हैं। उन्होंने आपसे एक सवाल जरूर जानना चाहेंगे, विश्व कप में अब तक जितने मैचेस हुए हैं, इंग्लैंड ने 200 से ज्यादा टोटल बनाया, श्रीलंका की टीम स्ट्रगल करती नजर आई, कल एक तरफा मुकाबला हुआ ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच, दक्षिण अफ्रीका इस वर्ल्ड कप कंटेंडर्स में से एक है, लेकिन वन साइडेड लॉस। इस विश्व कप के पिचेस पर बात करें, ओवरऑल क्या नजर आ रहा है अब तक?
5: देखिए, अभी तक जो मुझे लगता है कि शुरुआत में जितने भी आपने बड़े स्कोर बनाए हैं, पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने बड़ा स्कोर खड़ा किया, तो शुरुआत में जो टीम जो बैटर्स के लिए अच्छी पिच देखने को मिल रही है और जैसे जैसे उस पर वियर एंड टीयर आ रहे हैं, तो वहां पर मुझे लगता है कि जो स्लो आर्म बॉलर्स हैं, जो स्पिनर्स हैं, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और जैसे हमने देखा पिछले कुछ सालों से कि स्पिनर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल देखने को मिल रहा है टीम के साथ, तो मुझे भी ये लगता है कि अभी तक के मैचेस को देखकर यही लगता है कि जो भी टीम टॉस जीत रही है वो पहले बल्लेबाजी करके बड़ा स्कोर बनाना पसंद कर रही है, और उसके बाद जब गेंदबाजों की भूमिका आती है तो रिलायंस जो है वो पेस बॉलर्स की बजाय स्पिनर्स पे ज्यादा है, जबकि ये इंग्लैंड में हो रहा है टूर्नामेंट और अभी सारा कुछ वहां बदला बदला सा नजर आ रहा है।
4: जी आपको जोड़ना चाह रहे हैं करना?
3: हाँ, एक्चुअली ये जो विकेट है इसके ऊपर आज ये तीसरा मैच हुआ है, तो इसलिए ये थोड़ा विकेट जो है स्पिनर्स को हेल्प कर रही थी, तो अब जब अगले ग्राउंड पे मैच होगा तो इतना स्पिन को हेल्प नहीं करेंगी विकेट्स।
0: Yeah, because of the wear and tear and of course the used pitch coming into play again. Vaishali, आपके पास आती हूँ क्विकली, आपसे पूछूंगी कि आज जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने आज बल्लेबाजी

0: करी है, उसमें दो नाम तो हमें पता है, स्मृति मंदना और दूसरा हम बात करेंगे ऋचा घोष की, बट उसके अलावा किसी भी और भारतीय बल्लेबाज ने कोई बहुत ज़्यादा उच्च स्तर का बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं दिया है। हम कह सकते हैं कि हमारी कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक साझेदारी निभाई सामने से स्मृति मंदना के साथ, लेकिन फिर भी उनका भी रन अ बॉल ही स्ट्राइक रेट रहा। आज तो ये पाकिस्तान है, आगे हमारे खिलाफ बहुत बड़े बड़े देश आ रहे हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है हमारे ग्रुप के अंदर। क्या बैटिंग के नज़रिए से आपको कोई कंसर्न लग रहा है?
1: वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड के साथ ऑलरेडी इंडिया टीम खेल के आई है एंड वहाँ पे उनका जो बैटिंग लाइनअप था वो थोड़ा सा अभी जो आज खेला उससे काफ़ी ही पुअर था एंड आज बैटिंग काफ़ी बेटर हुई है, बट हर दिन एक जैसा नहीं होता। सो हो सकता है कि नेक्स्ट मैच में नीदरलैंड के अगेंस्ट शिफाली वर्मा बेटर स्कोर करे एंड जेनिमा रोजर्स जो हमेशा करती हुई आती हैं बट उनका आज दिन नहीं था, लेकिन स्मृति मंदना की जो पार्टनरशिप हरमनप्रीत कौर के साथ थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर वो नहीं होती तो 91 रन्स की जो पार्टनरशिप है वो नहीं बनती और वो उस टाइम पे उन दोनों का होना बहुत जरूरी था इससे। और मुझे लगता है कि हरमनप्रीत कौर अगर जितनी भी उन्होंने पिच पे खड़े होकर टाइम दिया है वो उस टाइम पे उस जरूरी था, क्योंकि इतना स्कोर करना इम्पॉसिबल था उनके बिना सपोर्ट के। से पहले आती तो वो शायद उतना बेटर अच्छी बैटिंग नहीं कर पाती जो हमने अभी देखी एंड लास्ट टू ओवर्स में उन्होंने जिस तरह से चौके एंड छक्के लगाए हैं वो भी देखने को नहीं मिल पाते।
2: कर्नल, अगर ओवरऑल टीम कॉम्बिनेशन की बात करें, हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए सोफी मोनेलियो आती हैं जो 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करती है, काफी डेप्थ है बल्लेबाजी में। इंग्लैंड के लिए देखें तो सोफी एकलस्टन तक वो बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन भारत की टेल थोड़ी लंबी नजर आती है क्योंकि श्री चरणी है वहां पर और भी जो तेज गेंदबाज हैं। आज के मैच में रेणुका नहीं खेली, लेकिन अगर हम बात करें क्रांति गौड़ की तो एक 3-4 बैट्समैन लोअर मिडिल ऑर्डर में ऐसे हैं जिनसे आप बड़े स्कोर की उम्मीद नहीं कर सकते। T20 आजकल हाई डिमांड है, चैलेंजर से भी आप बड़े शॉट्स की उम्मीद करते हैं। क्या जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा भारत के लिए ये मुश्किल का सबब हो सकता है?
3: देखिए, ये प्रॉब्लम तो आ सकती है। हमारी टीम है जो फर्स्ट 6 बैट्समैन के ऊपर रिलाई करती है और बाद में ये 4 जो बॉलर्स आते हैं, तो वेरेज जो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है या इंग्लैंड जैसी टीम है उनके पास काफी ऑलराउंडर्स हैं, उनके जो बॉलर्स हैं वो भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। सो ये एडवांटेज उनको है, हमें थोड़ा डिसएडवांटेज है एंड बट आई थिंक आवर फर्स्ट 6 बैट्समैन शुड ओवरकम दिस डिसएडवांटेज।
0: राइट, मैं आपके पास आऊंगी। आज का मैच तो चली सारी भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए भी और भारतीय टीम के लिए भी एक ऐसा दिन रहा दैट वी कैन स्माइल एट द एंड। 2 या 3 एरियाज ऑफ कंसर्न जो आपको प्रेजेंट विमेंस क्रिकेट टीम में, इंडिया भारतीय टीम में आपको दिखते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि काम की जरूरत है, तो वो क्या होंगे?
4: देखिए, सबसे बड़ी बात है टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही लगातार बात हो रही थी कि अच्छी ओपनिंग की भारत को बहुत जरूरत है और बहुत कुछ रिलाय करेगा कि किस तरीके से शेफाली और स्मृति मंदना पावर प्ले का इस्तेमाल करते हैं। आज पावर प्ले में हमने 2 विकेट गवाए, रन भी 38 ही बने, तो यहाँ पर ये बहुत ध्यान रखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी टीमों के खिलाफ आप पावर प्ले को यूं जाया नहीं कर सकते, आपको अच्छा रन अच्छा। आज आप देखिए पावर प्ले में पाकिस्तान हमसे बेटर खेला है, तो यहां पर सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो ये है कि आपको पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा, शेफाली वर्मा स्ट्रोक प्लेयर है, कुदरती वो बहुत अच्छा स्ट्रोक्स लगा के खेलती है, थोड़ा सा कर्व करना पड़ेगा उनको। मैच अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि किस समय पर उनको क्या शॉट खेलना है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है टीम के लिए, तो उनको अपना विकेट बचाकर खेलना है। भारती फुलमाली को खिलाना है या यास्तिका भाटिया को, तो मुझे लगता है कि यास्तिका भाटिया को अगले मैच में जरूर मौका देना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप है, यहाँ आप प्रयोग करने के लिए नहीं आए, आपको यहाँ एक सेट टीम, एक मैच विनिंग टीम उतारनी है। और गेंदबाजी में जैसे हमने पहले भी कि मुझे लगता है अरुंधति रेड्डी की जगह रेणुका सिंह ठाकुर को यहां पर उतारा जाना चाहिए अगले मैच में।
2: वैशाली, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, T20 विश्व कप जो पुरुषों का हुआ जहां अभिषेक शर्मा की फॉर्म नहीं थी, सूर्य कुमार यादव से पूछा गया, उन्होंने कहा कि हम टॉप 3 को नहीं छेड़ेंगे। चर्चा चल रही यास्तिका भाटिया को टीम में लाने के लिए, वो नंबर 3 खेलती हैं, तो क्या हम इस विश्व कप में अपने प्लेइंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो टॉप 3 भी चेंज होगा? जमीमा को नंबर 4 खेलना पड़ेगा तब अगर यास्तिका टीम में आती है।
1: यास्तिका अभी तक देखी गई है कि वो 4 या 5 नंबर पे ही खेलती हुई नजर आई है, तो मुझे नहीं लगता कि जेमिमा की

0: बारी को हमें ऊपर नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि लाइनअप के बाद अगर ओपनर हम देखते हैं तो उसके बाद जेमिमा ही लाई करती है बैटिंग के लिए, और वही एक ऐसी बैटर है जो वहां पे स्टे भी कर सकती है और आपको स्टे के साथ रन भी दे सकती है। स्कोर बोर्ड चलना बहुत जरूरी है ड्यूरिंग द मैच, और वो यास्तिका भाटिया आफ्टर 10 ओवर्स जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जब बॉल 6 ओवर के अंदर हम कोई सामने से हमें कोई बॉलर मीडियम पेस स्पेशली बॉल डाल रहा होता है तो वो बॉल स्विंग होती है तो उसको खेलना उतना इजी नहीं होता है। तो यास्तिका भाटिया को अगर हम देखें तो उनको स्पिनर खेलना इजी होगा खेलने के लिए, एंड मीडियम पेसर को उतना कन्वर्ट नहीं कर पाएंगी।
1: Right, okay, we've spoken a lot about the Indian women's cricket team. Let's also slightly talk about the Pakistani women's cricket team. From that angle, if we now say very quickly, I want your take on that, Colonel Bhupraj. How difficult is the road ahead for the Pakistani team?
2: Well, in this tournament, I see a very bleak future for them because they've lost to us. And then there are two more strong teams, Australia and South Africa in this, Australia and South Africa.
3: जी, दोनों हैं इस टीम.
2: So it will become difficult for them to qualify for the semi-final.
3: तो बर्मिंघम के इस शाम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मंच पर बड़े खिलाड़ी ही नहीं बड़ी टीमें भी अपना चरित्र दिखाती हैं। भारत ने विश्व कप अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है, लेकिन ये सिर्फ दो अंक हासिल करने की कहानी नहीं है, ये आत्मविश्वास, तैयारी और उस विश्वास की कहानी है जो किसी भी टीम को चैंपियन बनने की राह पर आगे बढ़ाता है। आज बल्ले ने दम दिखाया, गेंद ने कमाल किया और मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों ने वो जज्बा दिखाया जिसे करोड़ों भारतीय अपने दिलों में लेकर चलते हैं। वैशाली आपका, कर्नल आपका और मुना आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
4: अभी आप

0: नमस्कार। सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
1: पाकिस्तान ऑफ द आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
0: अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज गोरखपुर महानगर की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के साथ ही प्रदेश के सुपोषण मिशन के द्वितीय फेज के कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री आज वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में गोरखपुर महानगर के विकास की 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने